ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 8 अगस्त 2026। प्रातः के 5:57 हो रहे हैं। हमारी आज की प्रथम सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि UPI के माध्यम से किए जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, NPCI और भारतीय रिजर्व बैंक UPI को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। भारत ने महज 3 वर्षों में 1000 किलोमीटर से अधिक सुरक्षित क्वांटम संचार स्थापित किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में 3रे भारत अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक महोत्सव में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र, वित्तीय संस्थानों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और स्टार्टअप्स के बीच नजदीकी सहयोग से भारत का फिनटेक क्षेत्र देश के आर्थिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण चालक बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि देश के फिनटेक क्षेत्र में विकास के अगले चरण में AI, क्वांटम प्रौद्योगिकियों, साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन और विश्वसनीय डिजिटल नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई।

0: करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: सरकार की ओर से 4 मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 2 दिन के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति श्री विजयपुरम स्थित सेलुलर जेल राष्ट्रीय स्मारक का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति कल विजयपुरम के फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर अमित शाह महाराष्ट्र के राज्य शहरी सहकारी बैंक महासंघों और जिला संघों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीका के सांसदों की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस निर्णय पर संसद निर्णय करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जाँच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शनों में करीब 50 लोगों की मौत की खबर है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इस बीच दिल्ली में कल रात से ही लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। प्रातः के 6:05 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है आज का विचार कार्यक्रम। आज हम आपको सुनवा रहे हैं मातृ प्रेम विषय पर श्री प्रमोद कुमार शर्मा के विचार।
3: या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। श्रोताओ, हमारी शास्त्रीय परंपरा में माता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। हम हर किसी ऋण से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन मातृ ऋण से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। माता गर्भधारण कर 9 मास तक हमारी संरचना करती है और उसके पश्चात दूध पिलाने से लेकर भोजन, कपड़े, शिक्षा, दीक्षा सब कुछ माता की देखरेख में होता है। इसलिए मातृ प्रेम का कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता। माँ खुद गीले में सोती है और अपने बच्चों को सूखे में सुलाती है। एक माँ का उत्तरदायित्व निभाना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हमें दुनिया भर की तमाम माताओं का विशेष ख्याल रखना चाहिए। अगर हम अपने घरों को देखें तो वहाँ पर माता की उपेक्षा उस घर को नरक स्वरूप बना देती है। जिन घरों में माता के प्रति अगाध प्रेम, निष्ठा, समर्पण, सेवा इत्यादि होते हैं, वे घर हमेशा स्वर्ग की भांति चमकते रहते हैं। किसी भी प्रांत में चले जाइए, किसी भी भाषाई क्षेत्र में चले जाइए, माँ के लिए असंख्य कहानियाँ

0: लियां, दोहे, गीत, न मालूम कहां कहां तक मां के औदार्य को कहने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन फिर भी लगता है कि जैसे हमने माता के लिए विशेष कुछ नहीं किया, जितना भी हम करते हैं वह कम दिखाई देता है। मातृ प्रेम सर्वोच्च है। जो संतान अपनी मां से प्रेम करती है उसका भाग्य उज्ज्वल होता है। मां स्नेह की प्रतिमूर्ति है, मां ममता का गंगा जल है, मां एक अद्वितीय शक्ति है। इसीलिए हमारे यहां नवरात्रों में माता की पूजा की जाती है। मां दुर्गा के विभिन्न 9 रूपों की लगातार 9 दिन तक समस्त भारत में पूजा अर्चना की जाती है, जो अपनी संतति को एक नई शक्ति से भर देती है और उसके विकास के लिए आशीर्वाद देती है। जिन्हें मां का आशीर्वाद मिला होता है वे लोग कभी भी पिछड़ते नहीं हैं, वे लोग कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाते। जिन लोगों को मां का प्रेम नहीं मिलता वे लोग असंतुष्ट रहते हैं, वे लोग असफल हो जाते हैं अपने प्रयोजन में, अपने लक्ष्य में। उनके भटकने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। जो मातृभक्त होता है वो कभी भटकता नहीं है और ना किसी को भटकाता है। आज हमारे सामूहिक परिवार टूट रहे हैं, हम अपनी माताओं का ख्याल नहीं रख रहे हैं। मैक्सिम गोर्की का उपन्यास मां के त्याग और बलिदान का अनूठा और अनुपम उदाहरण है। एक मां जनक्रांति ला सकती है, एक मां अपने भीतर की शक्ति से संपूर्ण ब्रह्मांड को गुंजायमान कर सकती है, एक मां अपने देश, काल, पर्यावरण और परिस्थिति को बहुत ही सरलता से, सहजता से लेते हुए हर संघर्ष में विजय प्रदान कर सकती है। इसलिए मत भूलें कि मां का प्रेम सबसे ऊंचा है और हमें इससे वंचित नहीं रहना है। हमें अपनी मां की सेवा करनी है, हमें अपने मां के आदेश की पालना करनी है। जो ऐसा नहीं करते वे आधे अधूरे रह जाते हैं, और कोई भी मां नहीं चाहेगी कि उसकी संतान आधी अधूरी रहे। तो आइए हम भी संकल्प करें कि हम अपनी माता को कभी निराश नहीं करेंगे, कभी उनका अपमान नहीं करेंगे, उनकी कही गई हर बात को स्वीकार करेंगे। ऐसा करने से आपको मानसिक शांति मिलेगी, आपके भीतर शक्ति का स्रोत फूट पड़ेगा।
1: मातृ प्रेम विषय पर अभी आपने सुना श्री प्रमोद कुमार शर्मा के विचार। आज का विचार कार्यक्रम में हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:10 हो चुके हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। श्री गणेश करते हैं जय गणेश गणनाथ हरिओम शरण के भक्तिमय स्वर में।

श्रावण मास है और शिव का स्मरण हो नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो प्रस्तुत है सुरेश वाडकर के स्वर में डम डम शिव का डमरू बाजे।

कैलाश खेर के स्वर में इस भजन के साथ भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है रामचरित मानस गान। श्रोता, हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं बालकांड दोहा संख्या 313 से दोहा संख्या 315 की अंतिम चौपाई तक का सस्वर पाठ। मुख्य स्वर महेंद्र कपूर और भूपेंद्र सिंह का है।

दशरथ कुमारों की बारात कई दिनों पहले जनकपुर पहुंच चुकी है। योग लग्न देखकर राजा जनक की मंडली के लोग बारातियों को आमंत्रित करने जनवा से पहुंचे। गुरु वशिष्ठ से आज्ञा ले कुल की रीतियां संपन्न कर स्वयं अवध नरेश मुनियों तथा साधुओं को साथ लेकर चले। राजा दशरथ का भाग्य तथा वैभव देख ब्रह्मा सहित देवगण उनकी सराहना कर रहे हैं। शिव ब्रह्मा आदि देवताओं की टोलियां अपने अपने विमानों पर सवार होकर फूल बरसाती श्री राम का विवाह देखने चल पड़ी हैं। विवाह मंडप की अद्भुत रचना अलौकिक साज श्रृंगार तथा अयोध्या वासियों के सुंदर रूप के सामने देवता तथा देवांगनाएं मानो प्रभाहीन हो गई हैं। ब्रह्मा को विशेष आश्चर्य होता है क्योंकि वहां उस मंडप में उन्हें अपनी कोई रचना दिखाई नहीं देती। चकित देवताओं को भगवान शंकर सांत्वना देते हैं कि विचार कर देखो, ये सीता तथा अखिल ब्रह्मांडों के परमेश्वर साक्षात भगवान का शुभ विवाह है। प्रसन्न मन और पुलकित शरीर वाले राजा दशरथ के साथ ब्राह्मणों तथा साधु संतों की मंडली ऐसी शोभायमान है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हैं। इसी प्रकार चारों कुमारों की शोभा निराली है, मानो अपने चार अवयवों के साथ संपूर्ण मोक्ष ने शरीर धारण कर लिया है।

रामचरितमानस ज्ञान के आज के अंक में हमने आपको सुनवाया बालकांड दोहा संख्या 313 से दोहा संख्या 315 की अंतिम चौपाई तक का सस्वर पाठ। मुख्य स्वर महेंद्र कपूर और भूपिंदर सिंह के थे। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:40 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। पहले बताते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। इस सप्ताह संसद में ये कार्यक्रम प्रस्तुत होगा रात्रि 8:00। रात्रि 9:30 पर आप सुनिएगा अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे लघु रूपक राष्ट्र जागरण की दीपशिखाएँ, स्वतंत्रता संग्राम की अग्रणी महिला सेनानियाँ। रात्रि 9:30 पर रात्रि 10:00 अनुप्रसारित होगा हमारे दिल्ली केंद्र से संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसमें आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं गिरिमल्लप्पा भंजंत्री का शहनाई वादन। रात्रि 10:00 से संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत बात करें हमारे जयपुर अजमेर केंद्र के प्रसारणों की, तो संध्या 6:42 पर आप सुनेगा जिले की चिट्ठी। संध्या 7:00 आप सुनेंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। संध्या 7:00 श्रोताओं, आकाशवाणी बीकानेर का विशेष कार्यक्रम बीकानेर की सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का साप्ताहिक कार्यक्रम बीकानेर दर्पण प्रस्तुत करेंगे रात्रि 8:15 पर। श्रोताओं, हमारी इसी सभा में आपसे कुछ ही पलों में 6:45 पर खेती की बातें कार्यक्रम सुनेगा, जिसमें आज विषय है खीरे की फसल में ध्यान रखने योग्य बातें। वाचक स्वर श्रीमती मुक्ता जैन के रहेंगे। लोक भजन आप सुनेगा प्रातः 6:50 पर। सुप्रभात कार्यक्रम प्रातः 7:00, जिसमें विषय रहेंगे चर्चा के

0: भीष्म साहनी जयंती, भारत छोड़ो आंदोलन और गोवा क्रांति दिवस। हमारी इसी सभा में फिल्म संगीत सुनेगा प्रातः 7:30 पर। इसके बाद फिल्म संगीत आप फिर से सुनेंगे जय जवान कार्यक्रम में 10:00 और हेलो बीकानेर कार्यक्रम में 11:00। दोपहर 12:40 पर और दोपहर 2:30 पर भी आप फिल्म संगीत का लुत्फ ले पाएंगे इस सभा में। कार्यक्रम सौरभ 8:30 पर होगा। सौरभ कार्यक्रम में वार्ता सुनेगा स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थानी कवियों का योगदान। वार्ताकार होंगी श्रीमती कृष्णा आचार्य। सुगम संगीत प्रातः 8:45 पर। लोक संगीत का समय रहेगा प्रातः 9:10 का, जबकि शास्त्रीय संगीत सुनेगा प्रातः 9:30 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे शिव कुमार शर्मा का संतूर पर बजाय राग किरवानी। बहनें सुनेंगे अपना कार्यक्रम महिला जगत हमेशा की तरह दोपहर 1:05 पर, जिसमें आज होगी एक वार्ता स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान की महिलाओं का योगदान। वार्ताकार होंगी डॉक्टर कांता मीणा। युवाणी कार्यक्रम हमेशा की तरह संध्या 5:05 पर, जबकि ग्रामीण जगत के अंतर्गत फरमाइशी पत्रों पर ईमेल पर आधारित लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजे गांव गुवाड़ होगा संध्या 7:30 पर। लेकर आएंगे अश्विनी व्यास। श्रोताओं, ये था हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 MHz पर। प्रातः के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आज आपको सुनवा रहे हैं विषय है खीरे की फसल में ध्यान रखने योग्य बातें। वाचक स्वर हैं श्रीमती मुक्ता जैन के।
1: राम राम किसान भाइया, आज आपा बात करा खीरे री उन्नत खेती रे बारे में। जी हाँ, आपा सगला लोग जाना कि आ एक नकदी फसल है, इमें किसान भाई अपनी नियमित आमदनी कर सके है, हैर दैनिक जरूरता भी ये फसल सुबह पूरी कर सके है। सबसे बड़ी बात है कि इमें पौष्टिकता और गुणासु भरपूर खीरो पूरे विश्व में भारत में सबसे महत्वपूर्ण मान्यो जावे है। खीरे ने सलाद के सागे सागे खूबसूरती बढ़ाने वाला उत्पादा में भी आपा काम में ले सका हाँ। इनकी खेती देश रे सभी हिस्सा में करी जावे है। अगर ग्रीन पॉली हाउस में इनकी खेती करा तो आपा वर्ष में किसी भी महीना में इनकी खेती कर सका हाँ। अगर खेत में इनकी खेती करा हाँ तो इनके वास्ते आपा ने 20 डिग्री तापमान बीज ने अंकुरित होने के लिए चाहिए और पौधे ने ग्रोथ करण रहे वास्ते 20 से 25 डिग्री तापमान होनो चाहिए। सबसे पहला खीरे री फसल वास्ते अपन ने खेत री तई चोखी तैयारी करनी है। इन वास्ते वो देखनो है कि अपना खेत में फसल वास्ते खेत खाली है तो बीसु ई समय में फसल आपा लगा देनी चाहिए। इसु किसान री आमदनी भी बढ़े और खेती में किसान बाइरा री जरूरता ने भी पूरो करियो जा सके। खीरा री खेती आपा आलू सु खाली उड़ा खेत में लेर गेहूं तक रे खेत में कर सका हाँ। आलू रे खेत में कम खाद री आवश्यकता हुए है, जबकि दूसरी फसला रे खाली उड़ा खेता में आपा ने खाद रो ध्यान रखनो होसी। सबसे पहला आपा कम से कम 3 साल में 1 बार गोबर री बनोड़ी खाद डालनी है। इसु अपनी जी की फसल वा चोखी होसी और रासायनिक खाद रो प्रयोग भी आपा ने कम करनो पड़सी। गोबर री बनोड़ी 40 से लेर 50 टन एकड़ आपा ने खाद डालनी चाहिए और सागे ही मिट्टी री जांच भी करवा लेनी चाहिए तो बहुत ही चोखो वेला। खीरो चाहे हाइब्रिड हो या देसी हो, दोनों ही किस्म खीरे रे लिए नदियां के किनारे वाली मिट्टी ज्यादा चोखी रवेला। ज्यादातर खीरो ककड़ी तरबूज और खरबूज री खेती या आपा कह सकांगे किसी भी बेल वाली फसल रे वास्ते नदियां रे किनारे वाली जमीन हमेशा चोखी रहा करे है। अब आपा के सामने है कि इनकी बुबाई किया करा तो खेत ने तैयार करने रे बाद कम से कम 12 घंटा तक खेत ने आराम देनो है। इन्हें बाद खेत री बुवाई करनी है। खीरो लगाने रो सर्फ जिको

0: सब सोचो को समय है वो फरवरी सुलेर मार्च रो महीनो होया करे। यदि किसान फसल लगावे बीसु 30, 35 सुलेर 40 दिन में फसल आपने पगर तैयार हो जासी और इंगे बाद अगली फसल री प्लानिंग भी आपा आपने मतलब जी को दिमाग है भी मापा कर सका हाँ और आपा खेत ने खाली नहीं रेवन देवा। 1 हेक्टेयर में 250 सुलेर 3 किलोग्राम बीज ही लागे और बुआई रो समय स्थान विशेष जलवायु पर निर्भर करया करे है। और इन अलावा आपने खीरे री मतलब कई तरह री किस्मा होया करे है जी हाइब्रिड किस्म है और विदेशी दोनों ही होया करे है। विदेशी किस्मा में जी जापानी लॉन्ग ग्रीन चयन स्ट्रेट आर्ट पाइन सेट आदि चोखी होया करे है जी की उन्नत किस्मा है और भी मतलब बहुत है जी स्वर्ण अगेती है स्वर्ण पूर्णिमा है पूसा उदय पूसा संयोग हिमांगी जॉयवेट सेंट पूना और इन प्रकार और भी बहुत सारी इंगी किस्मा होया करे है। अब इरी निराई गुड़ाई किन प्रकार के नहीं है तो फसल री वेल जब बढ़न लागे और 1 या 2 पानी लाग जाने रे बाद खरपतवार आपने निकाल देनी है और भी समय कोशिश करनो है कि इंगी कोई खरपतवार नाशक ने प्रयोग कर गए आपा खुरपी सु निराई कर देवा जिसू इमें फल पर कोई भी दुष्प्रभाव को नहीं पड़ेला और फसल स्वादिष्ट भी होगा। इंगी तुड़ाई वास्ते आपने ध्यान रखना है कि जब फसल पीलो पड़न लाग जाए पीसू पहला इंगी तुड़ाई कर लेनी चाहिए जिसु इंगो बाजार में मूल्य भी चोखो मिलेला और 1 या 2 दिन तक इंगो आपा राख पी सका हाँ। पीले फल तोड़ने पर इंगो आपने बेचना भी मतलब महंगो पड़ेला और आपने इंगो उचित मूल्य को नहीं पड़े। अब इनकी बीज री तैयारी आपने किन प्रकार करनी है तो हमेशा जिका किसान जिका है भाई आत्मनिर्भर बनाने की बात करा हाँ तो इन कड़ी में आप कह सका कि अगर किसान थोड़ी मेहनत अगर बीज के लिए भी करे तो किसी कंपनी की तरफ अपन भी देखना कौन पड़े है चोखो बीज अपने मिल सके है। बीज ने तैयार करने रे वास्ते फलारे पीले होकर तोड़नो या ध्यान रखनो है कि फल की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। ऐरी में लंबो काट कर साफ पानी सु दो बीज धूप में सुखा देना है इस सूखी जगह में बीजाने रख देना है। तो इन सगली बातारो ध्यान रख आपा खीरे री चोखी फसल ले सका हाँ।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में आपने सुनी चर्चा विषय था खीरे की फसल में ध्यान रखने योग्य बातें। वाचक स्वर श्रीमती मुक्ता जैन के थे। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारो चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनते हैं लोक भजन गणपत लाल डांगी एंड पार्टी के स्वर में

सावन की इस भीनी भीनी सुबह में बादलों ने जैसे आकाश पर अपनी कविता लिख दी है। शायराना हो रहा है, थोड़ा होने दीजिए। भीगी हवा की हर सरगम मन को छू रही है और उगते सूरज की सुनहरी आभा यह संदेश दे रही है कि हर नया दिन अपने साथ नई खुशियों का निर्माण लेकर आता है, एक निमंत्रण लेकर आता है। जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हर सुबह हमें फिर से मुस्कुराने, फिर से सपने देखने और फिर से आगे बढ़ने का अवसर देती है। इसलिए आज की सुबह का स्वागत एक मुस्कान के साथ कीजिए, क्योंकि खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं। और आज तो क्या करें, क्या कहें, सावन की इस प्यारी सी ठंडी ठंडी गुलाबी पिंकी पिंकी सी सुबह में आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे मौसम को देखकर कोई भी खुश हो सकता है, पर मेरी खुशियों का राज कुछ और भी हो सकता है। जानिए क्यों खुश हूँ मैं।

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: श्रोताओं, जीवन में खुशियां तभी स्थायी होती हैं या स्थायी बन जाती हैं जब समाज में शांति, सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं जीवित रहें। हिंदी साहित्य के महान कथाकार भीष्म साहनी ने अपने पूरे साहित्यिक जीवन में इन्हीं मूल्यों, इन्हीं बातों को शब्द दिए। आज उनकी जयंती पर यानी 8 अगस्त को हम अपने श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित करते हैं।

और नमन करते हैं। श्रोता, 1915 में आज ही के दिन 8 अगस्त को तत्कालीन रावलपिंडी में जन्मे भीष्म साहनी ने हिंदी साहित्य को ऐसी रचनाएं दी जिनमें केवल कहानी नहीं बल्कि समाज की धड़कन सुनाई देती थी। उनका सर्वाधिक चर्चित उपन्यास तमस भारत विभाजन की त्रासदी का एक अत्यंत मार्मिक दस्तावेज है। यह केवल बंटवारे की कहानी नहीं बल्कि इस बात की चेतावनी भी है कि सांप्रदायिकता और नफरत दोनों का अंत हमेशा पीड़ा में ही होता है। इस पर आधारित दूरदर्शन धारावाहिक ने भी करोड़ों लोगों को इतिहास के उस दर्द से परिचित कराया और इसी पर बनी तमस एक बेहतरीन फिल्म साबित हुई। श्रोताओं, भीष्म साहनी की अन्य महत्वपूर्ण कृतियों में अगर बात करें तो बसंती, मैयादास की माड़ी, झरोखे, पाली और कड़ियां भी शामिल है। नाट्य साहित्य में हानूश, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी और मुआवजे ऐसी रचनाएं आज भी रंगमंच की धरोहर मानी जाती है। श्रोताओं, बहुत कम लोग जानते हैं कि वे एक संवेदनशील अभिनेता भी थे। उन्होंने फिल्म मिस्टर एंड मिसेज अय्यर और एक और थी मोहन जोशी हाजिर हो ऐसी फिल्मों में अभिनय भी किया है। उनकी लेखनी का मूल संदेश था मनुष्य की पहचान उसके धर्म, जाति या भाषा से नहीं बल्कि उनकी इंसानियत से होती है। आज जब हम उन्हें स्मरण कर रहे हैं तो उनके साहित्य से यह प्रेरणा मिलती है कि विविधताओं से भरे हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति उसकी एकता, उसका भाईचारा और आपसी विश्वास है। बड़े बड़े साहित्य अकादमी और पद्म पुरस्कारों से सम्मानित श्री भीष्म साहनी का साहित्य हमें बांटता नहीं, जोड़ता है, दीवारें नहीं पुल बनाता है। आइए इसी भावना के साथ सुनते हैं एक ऐसा गीत जो पूरे भारत को एक परिवार मानने और एक रहते हुए आगे बढ़ने का संदेश देता है, क्योंकि भारत हमको हमारी जान से भी प्यारा है।

श्रोताओं, 8 अगस्त 1942, ये दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है। मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान, जिसे आज अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, इसमें अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के एक अधिवेशन में महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक करो या मरो का आह्वान किया। यह केवल एक नारा नहीं था, बल्कि देश की स्वतंत्रता के लिए अंतिम जन आंदोलन का उद्घोष था। 9 अगस्त की सुबह होते होते महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद सहित अधिकांश बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आंदोलन रुका नहीं। तो श्रोता, हम बात कर रहे हैं आज भारत छोड़ो आंदोलन की। जी हाँ, एक ऐसे स्वप्न को जन जन तक संकल्प बनाया था इस आंदोलन ने। इस आंदोलन में अरुणा आसफ अली ने ग्वालिया टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा दी थी। देश भर में विद्यार्थियों, युवाओं, किसानों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता जैसे अनेक नेताओं ने भूमिगत रहकर भी आंदोलन को आगे बढ़ाया। उषा मेहता द्वारा संचालित गुप्त कांग्रेस रेडियो उस समय आज़ादी की आवाज़ बन गया था। श्रोताओं, आज़ादी के दीवानों ने जो हमारे लिए बलिदान दिए, उनकी गणना नहीं की जा सकती। उनको पूरी तरह से हम समाहित भी नहीं कर सकते हमारे कार्यक्रम में, लेकिन हमें याद रखना और उन्हें स्मरण रखना, उन बातों से आज भी अपने देश प्रेम को जगाए रखना, ये हमारा कर्तव्य है। यद्यपि यह आंदोलन तत्काल स्वतंत्रता नहीं दिला सका था, लेकिन इसने ब्रिटिश शासन को यह स्पष्ट संदेश दे दिया कि भारत पर अब अधिक समय तक शासन करना संभव नहीं है। 5 वर्ष बाद 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्रता हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन हमें आज भी यह सिखाता है कि जब किसी राष्ट्र का संकल्प जाग जाता है, तो सबसे बड़ी शक्ति उसके सामने नहीं टिक सकती, चाहे वो दुनिया की सबसे बड़ी क्या सर्वशक्तिमान शक्ति ही क्यों ना हो। जब राष्ट्र प्रेम जागता है, तो उसके आगे कुछ नहीं टिकता है, और हमें आज़ादी मिलकर रहती है।

श्रोताओं, स्वतंत्रता की कहानी हमने सुनी भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर, लेकिन स्वतंत्रता की कहानी 15 अगस्त 1947 पर समाप्त नहीं होती। जब पूरा भारत स्वतंत्र हो चुका था, तब भी गोवा, दमन और दीव पर पुर्तगाल का शासन बना रहा। गोवा के लोगों ने भी स्वतंत्रता का सपना देखा था और सबके लिए लंबे समय तक संघर्ष और आंदोलन किया। वर्ष 1946 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गोवा में नागरिक अधिकारों की आवाज़ बुलंद की। इसके बाद अनेक सत्याग्रह हुए। आज़ाद गोमांतक दल सहित कई संगठनों ने गोवा मुक्ति आंदोलन को नई दिशा दी। देश भर से सत्याग्रही गोवा पहुंचे और अनेक लोगों ने बलिदान भी दिया। जब सभी शांतिपूर्ण प्रयास विफल रहे, क्योंकि भारत सरकार चाहती थी कि इसमें किसी प्रकार की हिंसा ना हो, तो उन्होंने कई बार वार्ता, कई बिचौलिए देशों को शामिल करते हुए भी प्रयास किए, लेकिन

तत्काल सरकार यह मानने को ही तैयार नहीं थी कि गोवा भारत का अभिन्न अंग है। बहुत प्रयासों के बाद जब अहिंसा का मार्ग सफल नहीं हो रहा था, तब भारत सरकार ने दिसंबर 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया। थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों के समन्वित अभियान के बाद 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ और भारत का अभिन्न अंग बना। पुर्तगाल की गोवा में चल रही सरकार ने, जो कि अपने आप में एक राजतंत्र की तरह चल रही थी, वहाँ पे कोई नागरिक अधिकार बचे नहीं थे, उसने भारत सरकार और भारतीय सेना के सामने समर्पण, आत्मसमर्पण कर दिया। गोवा मुक्ति केवल एक भूभाग की मुक्ति नहीं, बल्कि ये भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता का भी प्रतीक थी। आज का गोवा अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता और पर्यटन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, लेकिन उसकी इस पहचान के पीछे स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष और बलिदान भी उतना महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता केवल सीमाओं की रक्षा से नहीं, बल्कि उन मूल्यों से भी सुरक्षित रहती है जिन्हें हमारे पूर्वज हमें सौंप कर गए हैं। जब इतिहास हमें प्रेरणा देता है तो भविष्य अपने आप उज्ज्वल दिखाई देने लगता है। श्रोताओं, आज का जो गोवा है, जो कह सकते हैं कि प्राकृतिक सुंदरता और प्रेम का एक डेस्टिनेशन बन चुका है, वहाँ पे जाने पर जाने क्या क्या ख्याल आते हैं। पहला ख्याल तो यही आता है कि जाएं तो वहीं बस जाएं, वापस लौटने का मन नहीं करता जी।

तो श्रोताओ, अभी अभी मेरे दिल में एक और ख्याल आया कि बादल यूं ही बरसते रहे, धरती यूं ही महकती रहे, ज्ञान आपके विचारों को समृद्ध करता रहे, स्वतंत्रता की चेतना आपके कर्मों में जीवित रहे और जीवन का हर नया सवेरा आपको कुछ अच्छा सोचने, कुछ अच्छा करने और कुछ किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की प्रेरणा देते ही रहे। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं मालकों साहब से अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। शुरुआत करते हैं आजा नचले के इस गीत के साथ।

ये हरिहरन और आनंद बख्शी अनु मलिक, ये तीनों की जोड़ी ने प्रस्तुत किया आपके सामने यादें फिल्म का ये बेहतरीन नगमा। बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, सुनते हैं फिल्म ताल से अगला गीत, आनंद बख्शी और ए आर रहमान ने इसे रचा है, आवाज़ें उदित नारायण और अलका याग्निक की है।

कार्यक्रम की अगली पेशकश जावेद अख्तर की कलम से, संगीत है शंकर एहसान लॉय का, आवाज़ श्रीनिवास की, और फिल्म का नाम दिल चाहता है।

श्रोताओं, जब हम प्यार में होते हैं तो लगता है कि ये दिन एकदम से गुजर जा रहे हैं। दो दिन की ज़िंदगी है, कैसे प्यार करें। तो खुदा से हम गुजारिश करते हैं कि 100 साल तो कम से कम हो जिसमें हम सनम की आंखों में डूब जाएं, और 100 साल ऐसे हो जो वो हमारे सामने ही रहे। तो ऐसी ख्वाहिशों को लेकर आ रहे हैं ज़मीर काज़मी के ये शब्द फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई से। कुमार शानू और अलका याग्निक के स्वर में ये गीत है और संगीत अनु मलिक का है।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के बजने को हैं 8 और अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया, उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए यूपीआई लेन देन निःशुल्क रहेगा। भारत ने प्रस्तावित एफसीआरए विधेयक पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज किया, विधेयक को देश का आंतरिक मामला बताया। झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पहले औपचारिक बातचीत की। रूस से तेल खरीदने वाले 5 देशों पर 100% शुल्क लगाने का विधेयक अमेरिका के सेनेट में पारित। और पूर्वी राजस्थान तथा ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। वे 3000 से अधिक विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे, जिनमें स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं के साथ 587 पीएचडी शोधार्थी शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह के दौरान संस्थान के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान जैसे प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल मेधावी छात्रों को प्रदान करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे, जो आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित एआई संचालित हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा है। यह आधुनिक सुविधा एआई, डेटा साइंस, एडवांस कंप्यूटिंग और अंतर विषयक शोध के क्षेत्रों में संस्थान की क्षमताओं को मजबूत करेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि आईआईटी दिल्ली ने हमेशा अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री मोदी ने कहा कि वह इस अग्रणी संस्थान के छात्रों और शिक्षकों के बीच जानने के लिए उत्सुक हैं। श्री वांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
4: कल नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आईआईटी दिल्ली के निदेशक रंजन बैनर्जी ने बताया कि प्रधानमंत्री संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। श्री रंजन बैनर्जी ने नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा के बारे में भी जानकारी दी।
6: इस कॉन्वोकेशन में 3000 से अधिक ग्रेजुएट्स डिग्रीज ले लेंगे। कॉन्वोकेशन में हमारी एक नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा AI बेस्ड सुपर

0: computer, 250 petaflops, one of the most powerful supercomputers in an academic environment launched by our prime minister.
1: भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किया जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने स्पष्ट किया है कि व्यापारियों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के बीच होने वाले व्यावसायिक शुल्क का भुगतान उपभोक्ताओं को नहीं करना होगा। एक रिपोर्ट। यूपीआई के जरिए लेनदेन पर चार्ज लगने की खबरों ने आम उपभोक्ताओं और छोटे दुकानदारों के बीच चिंता पैदा कर दी थी। इस भ्रम को पूरी तरह दूर करते हुए पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई ने साफ किया है कि ग्राहकों के लिए यूपीआई सेवाएं पूरी तरह मुफ्त बनी रहेंगी। डिजिटल इंडिया की रफ्तार को बनाए रखने और वित्तीय समावेशन को सुरक्षित रखने के लिहाज से ये स्पष्टीकरण एक बड़ा राहत देने वाला कदम है। पीसीआई ने कहा है कि यूपीआई देश की महत्वपूर्ण डिजिटल व्यवस्था बन चुका है, जिसका इस्तेमाल करोड़ों लोग रोजाना करते हैं। बढ़ते लेनदेन को देखते हुए सुरक्षा, तकनीक और ढांचे को मजबूत बनाए रखना जरूरी है, ताकि भविष्य में भी यूपीआई उपभोक्ताओं और कारोबारियों के लिए सुचारू रूप से काम करता रहे। समाचार कक्ष से फरहत नाज। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक FCRA पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
2: We have seen the comments.
3: हमने टिप्पणियां देखी हैं। ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अमेरिका सहित कई देशों में विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
2: Regulate the flow of foreign funds.
1: भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के संबंध में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता की आवश्यकता वाले लोगों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही है।
2: While we are coordinated,
3: पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में हम स्थानीय नौवहन मंत्रालय और अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के आवाजाही और व्यापार के निर्बाध संचालन की मांग दोहराते रहे हैं। हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वे लोगों के बुनियादी ढांचे और नागरिकों, खासकर वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाने से बचें।
1: पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर भी नजर बनाए हुए है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब डेढ़ घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: सरकार की ओर से चार मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिकी सेनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले चीन और अन्य देशों को दंडित करने संबंधी विधेयक को पारित कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि चीन और अन्य देश रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीद रहे हैं, जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद मिल रही है। लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखे गए इस विधेयक को समर्थन में 86 और विरोध में 11 वोट पड़े। ये विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले 5 बड़े देशों पर 100% शुल्क लगाने की अनुमति देगा। विधेयक में ईरान पर प्रतिबंध संबंधी 1996 के अधिनियम को बढ़ाकर 2031 तक

0: रोकने का भी प्रावधान किया गया है। 1996 के इस अधिनियम में ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। एक रिपोर्ट।
1: संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। इनमें प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल दोनों शामिल हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चुनाव में कथित गड़बड़ियां और स्थानीय विधानसभा चुनाव में बाहरी लोगों के लिए सीटें आरक्षित किए जाने के विरोध में प्रदर्शन जारी है। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शन में करीब 50 लोगों की मौत हुई है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में आज हवा के निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण ओडिशा में तेज बारिश की आशंका है। इसके चलते राज्य में व्यापक वर्षा होगी।
2: मौसम विज्ञान विभाग ने 6 जिलों के लिए ऑरेंज चेतावनी और 24 जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की है, जिसमें कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। ऑरेंज चेतावनी वाले जिले सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, केंदुझर और मयूरभंज है। भारी बारिश के अनुमान के देखते हुए एहतियात के तौर पर मयूरभंज में आज सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इस बीच बालेश्वर के बस्ता में जड़का नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: केरलम से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी जिलों में आज भी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है।
3: केरलम में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। राज्य के सभी जिलों में बीते सप्ताह से ही बारिश संबंधी अलर्ट जारी किए गए हैं। कासरगोड, कुन्नूर, वायनाड, कोझिकोड, कोट्टायम, अलापुजा और पथनामथिट्टा जिले आज ऑरेंज अलर्ट पर, जबकि बाकी जिले येलो अलर्ट पर हैं। केरलम और लक्षद्वीप में आज तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने 25 करोड़ ओपीडी पंजीकरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इस उपलब्धि से पता चलता है कि मिशन के तहत नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। एक रिपोर्ट।
4: अक्टूबर 2022 में शुरू होने के बाद से स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने मरीजों के लिए आसान QR कोड स्कैन के जरिए अस्पताल में डिजिटल रूप से पंजीकरण कराने की सुविधा देकर OPD रजिस्ट्रेशन के अनुभव का कायाकल्प कर दिया है। यह सेवा अभी देश भर के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 756 जिलों में 30,800 स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार स्कैन एंड रजिस्टर ट्रांजेक्शन के साथ देश में सबसे आगे है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में एम्स नई दिल्ली में सबसे ज्यादा मरीजों ने इस सेवा से पंजीकरण कराए हैं। इस उपलब्धि के बारे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बरनवाल ने कहा कि स्कैन एंड रजिस्टर के जरिए 25 करोड़ लोगों के OPD में पंजीकरण की उपलब्धि भारत के डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र में नागरिकों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। आनंद के रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चिराग झा।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद कनक। आज अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी हेडलाइन बनाया है। नीट पेपर लीक को लेकर CBI द्वारा दाखिल आरोप पत्र के हवाले से दैनिक जागरण ने लिखा है, NTA के ही 3 विषय विशेषज्ञों ने किया नीट का पेपर लीक। अमर उजाला ने लिखा है, CBI का दावा, पेपर बनाते समय ही सवाल याद करते, टेलीग्राम व्हाट्सएप से बिचौलियों तक पहुंचाते, NTA के 3 विशेषज्ञ मास्टरमाइंड, कई महीने पहले रची साजिश। लोकसत्य लिखता है, CBI ने दाखिल की चार्जशीट, NTA के एक्सपर्ट निकले विभीषण। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, जिस तेजी से CBI ने इस जांच को अंजाम दिया है उसी तेजी से आगे भी कार्रवाई करने की जरूरत है। देश में जो भी पेपर लीक के मामले हाल के महीनों में सामने आए हैं उनकी भी CBI जांच करनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दिल्ली NCR में कल हुई घनघोर बारिश को जनसत्ता ने आफत की बरसात कहा है। अखबार लिखता है, राजधानी में अगस्त के पहले सप्ताह में 2011

0: Digital Payments Body, PCI. India rejects objections raised by a US lawmaker on proposed FCRA bill, says legislation in country's internal matter. Jharkhand government holds first formal talks with protesting students over alleged irregularities in recruitment examinations. US Senate passes Russia sanctions bill seeking 100% tariff over five countries. And heavy to very heavy rainfall likely over East Rajasthan and Odisha today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है सौरभ कार्यक्रम। सौरभ कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं एक वार्ता, स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थानी कवियों का योगदान। वार्ताकार हैं श्रीमती कृष्णा आचार्य।
2: साहित्य का हित चिंतन वैश्वात्मकम और विश्व कल्याण की भावना पर आधारित होता है। जिस ग्रंथ में समष्टिगत हित चिंतन प्राप्त होता है वही साहित्य है। इसीलिए विद्वानों ने ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य माना है। प्रत्येक युग का श्रेष्ठ साहित्य अपने युग के प्रगतिशील विचारों द्वारा किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित होता है। साहित्य सृष्टा प्रतिभा संपन्न होने के कारण अपने साहित्य की छाप समाज पर छोड़े बिना नहीं रह सकता। साहित्य में वह शक्ति मानी गई है जो तोप और तलवारों में भी नहीं होती। भिन्न भिन्न देशों में जितनी भी क्रांतियां हुई है वे सब वहां के सफल साहित्यकारों, कवियों और गीतकारों की देन है। जिस तरह निर्जीव शरीर का कोई मूल्य नहीं, ठीक उसी तरह साहित्यहीन राष्ट्र का भी कोई मूल्य नहीं होता। मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं। स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थानी साहित्य कवियों, रचनाकारों, गीतकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1857 की आज़ादी के महायज्ञ से पहले भी मुगल सत्ता और उसके बाद अंग्रेजों और राजतंत्र की व्यवस्था के खिलाफ राजस्थानी साहित्य की सृजनात्मक और रचनात्मक योगदान की महती भूमिका रही है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। चूंकि साहित्य जनमानस की भावनाओं को समाज के सम्मुख प्रस्तुत कर युग परिवर्तन की अदम्य शक्ति को समाहित किए रहता है, राजस्थान का साहित्य भी अपना विशाल वितान लिए खड़ा है। राजस्थान को एक और जहां अपने युद्ध वीरों सूरमाओं पर गर्व है, वहीं दूसरी ओर अपने साहित्यकारों, कवियों, गीतकारों और संतों पर भी गर्व है जिन्होंने अपनी कलम और वाणी की धार द्वारा समाज व राज्य में फैली अराजकता, क्रूरता, अन्याय और शोषण के खिलाफ एक सशक्त परचम फहराया व निरपेक्ष दृष्टिकोण से साहित्य सृजन करते हुए जनमानस में जन चेतना की अलख जगाई। राजस्थान का डिंगल साहित्य, साहित्यकार, इतिहास दोनों ही अद्वितीय है। इसका कारण है कि यहाँ के कवियों ने सुनी सुनाई कथा कहानियों को ही काव्य रूप में मंडित नहीं किया, अपितु जीवन मूल्यों का ह्रास होती अपनी आंखों के समक्ष देखा, भोगा, उसे ही काव्यमय रूप में ढालकर इतिहास धर्म, समाज धर्म और देश धर्म के साथ जोड़कर कवि धर्म का सार्थक निर्वाह किया। राजस्थान में इतिहास और साहित्य सृजन की परंपरा दीर्घकाल से चली आ रही है। यहाँ के साहित्य को वीर, श्रृंगार और भक्ति रस की त्रिवेणी कहा जाता है। राजस्थान में रचित विपुल वीर रसात्मक साहित्य और यहाँ की भाषा के मूल्यांकन से स्पष्ट हो जाता है कि राजस्थान का साहित्य विलक्षण है। यहाँ की भाषा और साहित्य ने कायर से कायर मनुष्य को भी वीरता का अमृत पिलाया। जीवन और जगत की वास्तविकता को मूर्त रूप प्रदान करने की दृष्टि से राजस्थानी साहित्य अनुपम है। राजस्थान के वीरों की तरह कविगण भी अपनी आन बान शान से पहचाने जाते हैं। यश या धन के लोभ में कभी भी अपने स्वाभिमान पर आंच नहीं आने दी। अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक बीकानेर के भक्त कवि पृथ्वीराज राठौड़ ने अकबर के शत्रु मेवाड़ के महाराणा प्रताप की स्वाभिमानी प्रवृत्ति, वीरता, स्वदेश प्रेम की प्रशंसा में लिखा, दरबांकी दिन पाधरा मरद नमू के माण, दरबांकी दिन पाधरा मरद नमू के माण, घणा नरीदा धोरिया और रहे गिरंदा राणा माई।

अहिड़ा पूत जण जहिड़ा राणा प्रताप अकबर सूतो ओझ के जान सिराणे सांप, जान सिराणे सांप। इसी तरह आगे के कवियों ने भी अपना अपना कवि कर्म कर स्वाधीनता संग्राम में राजस्थान को नई दशा और दिशा प्रदान की। राजस्थान मुगलों के पश्चात अंग्रेजों के आधिपत्य में रहा। अंग्रेजों द्वारा सामाजिक परंपराओं रीतियों पर कुठाराघात से उत्पन्न असंतोष व विद्रोह हुआ। जनता द्वारा भोगे अन्याय असंतोष आक्रोश से साहित्यकार कविगण इतने व्याकुल हुए कि उन्होंने अपनी रचनाओं और गीतों में इनका खुलकर विद्रोह किया। समाज में एक नई धारा प्रस्तुत कर जन चेतना की घर घर अलख जगाई। कवि बांकीदास असिया। कवि बांकीदास असिया ने भारतीय नरेशों को अंग्रेजी खतरे से सावधान रहने की पहल की। आयो अंग्रेज मुल्क न ऊपर आ हंस लीनी खाच डरा धनियों मरे न दीदी धरती धनियों गयो गई धरा फौजों देख न कीदी फौजों दोई न कीदा खणांडड़ा खवा खंच चूड़े खवंदरे उन इज चूड़े गई इला उन इज चूड़े गई इला। शंकरदान सामोर। कवि ने अपने काव्य के माध्यम से जोधपुर उदयपुर जयपुर के अधिपतियों में जोश पैदा किया। हिंदू मुसलमानों को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक होने की प्रेरणा दी। शंकरदान सामोर जन कवि थे और गांव-गांव जाकर भारत विजय किसानों की समृद्धि हेतु आत्मविश्वास जगाने का स्वर दिया। धरा हिंदवाणरी दाबली दगासू धरा हिंदवाणरी दाबली दगासू प्रकट में लड़ियो ही पार पड़सी संकट में एक होए भेद मेटो सकल लोक जद जोश सू जबर लड़सी। अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी को लूटकर अंग्रेजी कूटनीति का विरोध करने वाले शेखावाटी के डूंगजी जवार जी की वीरता की प्रशस्ति में अनेक गीत गाए गए। रींझा देवण युद्ध करण मैम सुने जगमाय ज्वार डूंग दोसू जिसा नर जन्मे फिर नाय छोटा मोटा गांव लूटिया नहीं नाम डूंग जी और नाम करो तो लूटो डूंग जी अंग्रेजों की छावनी अंग्रेजों की छावनी। कवि सूर्यमल मिशन ने भारतवासियों की मनोदशा के लिए शासकों की दूरदर्शिता और फूट की नीति को उत्तरदायी मानते हुए अंग्रेजों के समक्ष नतमस्तक होने वाले कायरों के लिए लिखा था कि तन दुरंग अर जीव तन कडणे मरणे हेक जीव विनाठा जय कडो नाम रही जय नेक। इसी तरह से शंकरदान सामोर जी ऐसे कवि थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरोध में निकाले गए झुलसों में सबसे आगे रहकर अपनी कविताओं के माध्यम से पुरजोर विरोध किया। उनके कानों में देश स्वतंत्रता के सुर महाकवि सूर्यमल मिशन की तरह बहते रहते थे। इन डंकी गिण एकरी भूले कुछ सा भाव सूरा आलस ऐस में अकज गमाई आव जिन बन भूल न जाऊं ता गेंद गवे गिंदराज तिन बन जम्बुक ताखड़ा उधम मंडे आज उधम मंडे आज। शंकरदास सामोर ने सूर्यमल मिशन जैसी ठसक देखने को मिलती जो कवि कर्म में अपनी आन बान शान के लिए किसी भी तरह समझौता नहीं करते। महाकवि सूर्यमल मिशन ने तो बूंदी नरेश राम सिंह की शान में झूठे कसीदे गढ़ने से अच्छा वंश भास्कर के लेखन को आधा अधूरा छोड़ना भी उचित समझा था। फरवरी 1903 में जब वायसराय लॉर्ड कर्जन से मिलने भारतीय नरेशों के दल में शामिल होने के लिए मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी दिल्ली जा रहे थे तो कवि केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी रा चुंगटियों के रूप में कुछ दोहे लिखकर महाराणा को भेजे जिनके फलस्वरूप महाराणा फतेह सिंह का सुप्त आत्म गौरव और देश प्रेम जाग उठा। फिर फतेह सिंह जी दिल्ली दरबार में उपस्थित नहीं हुए। पग पग भम्या पहाड़ धरा छोड़ राख्यो धर्म महाराणा मेवाड़ हृदय बसिया हिंद रे धन धड़िया गमसाण राणा सदा रैया निडर पेंखता फुरमान हलचल किए फतमल हुए नरियद संग नजराणा झुक करसी सरसी जी का नरियद से नजराणा झुक करसी सरसी जका पसरे लो किय पाण पाण थका था रो फता देखे लो हिंदवाण निज सूरज दिस ने हसू पण तारा परमाण निरख निसांसा ना खसी पण तारा परमाण निसांसा निरख निसांसा ना खसी। केसरी सिंह स्वयं स्वतंत्रता प्रेमी आन बान हेतु कफन बांध कर मृत्यु को चुनौती को स्वीकार करने वाले योद्धा थे। राजस्थानी क्रांतिकारी कवियों की श्रेणी में कवि गणेशी लाल व्यास उस्ताद इनका नाम एक उल्लेखनीय नाम है जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए एक कवि होने के नाते काफी संघर्ष किया। नेताओं के बीच
पनपती राजशाही, सामंतशाही, भ्रष्टाचार अपने समय के दोगले

0: पन से भरे बुद्धिजीवी और जनता की गाढ़ी कमाई से पनपते पूंजीपतियों की भर्त्सना खुलेआम करने वाले कवियों में कवि गणेशीलाल व्यास उस्ताद का नाम हमेशा अग्रणी रहेगा। अपने कवि कर्म के द्वारा उन्होंने गरीब किसानों और मजदूरों की व्यथा कथा बहुत ही प्रभावी ढंग से जनता के समक्ष रखी थी। उस्ताद जानते थे कि विचार और भावना की टक्कर हमेशा चलती रहती है। वे यह भी जानते थे कि सार्वभौमिक मुक्ति के लिए मनुष्य को सांसारिक परिवर्तनों को स्वीकार करते रहना चाहिए। उस्ताद जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बेबस लोगों की आवाज़ को अपनी कविताओं में ढालकर उसे जनता के समक्ष रखा। उन्होंने जनता के बीच इनकलाब की आवाज़ को बुलंद किया। मैं आया अकल बताबा ने जनतारो राज जमाबा ने राजा देख समझ ली सगड़ी रीत पांच रजवाड़ा री सेंग ढोल में पोल भरी है धूम मची है धाड़ा री धाड़े त्याने धमकाबा ने बड़ा ठिकाना जोर जतावे करे होड़ रजवाड़ा री माडाणी माँ राजा बन गया चाल ढाल सब भांडा री बनपन रो बैम मिटावन ने बड़पन रो बैम मिटावा ने मोटा अफसर लिवी मोटरा अदबिचला घोड़ा राखे छोटा रे आटेरो घाटो रिश्वत खाए धान चाखे छोटा रे आटेरो घाटो रिश्वत खाए धान चाखे और भवसागर भेद मिटावा ने भवसागर भेद मिटाबा ने। कवि कन्हैयालाल सेठिया के नाम से तो हर राजस्थानी परिचित है। उनके काव्य में राजस्थान शब्द शब्द में झलकता है। उनके काव्य में शब्दों के फूल महकते नजर आते हैं। उनकी कविताओं में भी राजस्थानी जनता की गुलाम भारत में जो दशा थी वह मार्मिक ढंग से उभरी है। बावे कोई और है लाटे कोई और खावे कोई और है दाणे दाणे मोर पीठ बिगाड़े दीठ ने दीठ सुधारे दीठ बिरथा ऊंडे आँख ने सैंबी भऊ अदीठ माटी करे दुभांत कद मोटा कर दे पाल कड़क लगावे कोयला हीरा कुंख उजाड़ सूख करे संसार सू बीरे हिये विकार भाषा निर्मल दीठ ने औसतरो दरबार करड़ाई के काम की चिमटा चूंटे कहाल और मुक्की सु नारेल रो फोड़े फेर कपाल बोका डोंका तैत करी लंफ लेशा गिगनार बना मूंज ना ख्यो नसो सोटा दियो उतार धोरा सुरवण बोर लो खेतर लारो चीर सदा सुहागन मरुधरा कुंख उजाड़ी वीर तिल मिलकर डोरो बड़े आंसू नाखे मैण झरे पड़ाई पीड़ में बेही आछा नैण झरे पड़ाई पीड़ में बेही आछा नैण। ऐहा कन्हैयालाल जी सेठिया सन 1939 से 1947 तक कवि रेवंदाचारण ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। इनकी कविताओं ने जन जागृति फैलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनकी कविताएं मंचों का मान सम्मान बढ़ाने वाली और जनता की जुबान पर चढ़ने वाली सहज सरल कविताएं थीं। वे इतने बुलंद स्वर में कविता पाठ करते कि उन्हें हजारों की भीड़ में भी माइक की जरूरत नहीं पड़ती थी। इनकलाब की आंधी देखिए अंधार घोर आंधी प्रचंड अंधार घोर आंधी प्रचंड आ धुआं धोर धौं धौं करती अंधार घोर आंधी प्रचंड आ धुआं धोर धौं धौं करती आवे है उर में भाग लिया गढ़कोटा बंगला न ढहती आवे है उर में भाग लिया गढ़कोटा बंगला न ढहती बेताल बतूलो नाचे है जिनने आगे संदेश लिया राती ने काली पीली आ कुण जाने कितरा भेक किया वे शंख बजे सरनाटारा वे शंख बजे सरनाटारा कोई गीत मरण रा गावे है वे शंख बजे सरनाटारा कोई गीत मरण रा गावे है अंधार घोर आंधी प्रचंड आ धुआंधार धौं धौं करती आवे है उर में भाग लिया गढ़कोटा बंगला ने हरती। सत्यप्रकाश जोशी चंद्र सिंह जी गजानन वर्मा कल्याण सिंह राजावत रघुनाथ सिंह हाडा मेघराज मुकुल नारायण सिंह भाटी जैसे कई कई कवियों ने अपनी काव्य प्रतिभा का लोहा मनवाया था। स्वतंत्रता के इस आंदोलन में राजस्थान के कवियों ने घर घर अलख जगाई और वीरता का डंका बजाया था।
1: प्रत्येक मंगलवार गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
2: सौरभ कार्यक्रम के अंतर्गत आपने अभी सुनी एक वार्ता। स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थानी

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 8:45 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं स्वाति नाटेकर के स्वर में इस गीत के साथ, आज किसी ने बातों बातों में जब उनका नाम लिया।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में। आइए सुनते एक गजल। स्वर है नीना राजेंद्र मेहता, सुरेंद्र मलिक गिमनाम। लिखा है इसे सुरेंद्र मलिक ने, संगीत है राजेन भूरे का।

0: अभी आपने सुना एक गीत सुरिंदर मलिक और नीना राजेंद्र मेहता के स्वर में। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे राज्य कैबिनेट की बैठक में पंचायत और निकाय चुनाव वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत कराने सहित कई महत्वपूर्ण फैसले सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जोजड़ी बांडी और लूणी नदियों में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर एक हफ्ते के भीतर निगरानी समिति बनाने के निर्देश दिए और प्रदेश भर में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कल जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय तिरंगा रैली से होगी समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे समारोह में स्नातक स्नातकोत्तर और 587 पीएचडी शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे श्री मोदी मेधावी छात्रों को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक निदेशक स्वर्ण पदक शंकर दयाल शर्मा स्वर्ण पदक और परफेक्ट 10 स्वर्ण पदक प्रदान करेंगे प्रधानमंत्री आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित परम प्रज्ञा नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का भी वर्चुअल उद्घाटन करेंगे सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आईआईटी दिल्ली ने शोध और नवाचार के क्षेत्र में हमेशा महत्वपूर्ण योगदान दिया है उन्होंने कहा कि वो इस प्रतिष्ठित संस्थान के छात्रों और शिक्षकों के बीच आने को लेकर उत्साहित हैं प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव अब वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत कराए जाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कल जयपुर में हुई मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक में ये निर्णय लिया गया बैठक में राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को भी मंजूरी दी गई इसके साथ ही पंचायत राज और नगरीय निकायों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों में आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया है सरकार अब आरक्षित सीटों के निर्धारण के लिए लॉटरी प्रक्रिया शुरू करेगी बैठक के बाद प्रेस वार्ता में उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि राजस्थान कृषि और खाद्य प्रसंस्करण नीति 2026 और राजस्थान फूड पार्क विकास नीति 2026 को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है
1: हमारे किसानों को ग्रामीण क्षेत्र में मजबूती देने के लिए ये राजस्थान एग्रो फूड प्रोसेसिंग नीति हम लेकर आए हैं जिसके अंदर फल सब्जी मसाला अनाज तिलहन दलहन औषधीय उत्पाद लघु वन उपज शहद दूध पशु आहार इन सभी की इकाइयों को मजबूती मिलेगी इसके अंदर कोल्ड स्टोरेज भी बनाए जाएंगे और सप्लाई चेन भी स्थापित करी जाएगी उसी के साथ राजस्थान फूड पार्क विकास नीति 2026 भी लाएगी जिसके अंदर फूड पार्कों को मजबूती दी जाएगी उसके लिए भूमि आवंटित की जाएगी और उसका संचालन के अलग अलग श्रेणी बनाई गई है
0: मंत्रिमंडल ने मजदूरी संहिता नियम 2026 को भी स्वीकृत किया है इसके तहत श्रमिकों के काम के घंटे तय किए गए हैं साथ ही उनका महंगाई भत्ता वर्ष में दो बार संशोधित होगा प्रदेश में ई केवाईसी नहीं कराने वाले करीब 27 लोगों के नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची से हटाए गए हैं खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि इससे पात्र और जरूरतमंद परिवारों को योजना का फायदा मिल सकेगा उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 1 करोड़ से अधिक पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिला है नवम्बर 2024 में शुरू किए गए गिवअप अभियान के तहत करीब 67

0: लाख लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से लाभ छोड़ा है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कहा है कि राज्यों के बीच अनुभवों का आदान प्रदान और आधुनिक तकनीक का प्रभावी उपयोग भविष्य की चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कल इंदौर में पश्चिम क्षेत्रीय पुलिस समन्वय समिति की 13वीं बैठक में ये बात कही। इस दौरान श्री शर्मा ने राजस्थान पुलिस के साइबर अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में किए गए नवाचारों की जानकारी भी साझा की। बैठक में अंतर्राज्यीय अपराधों की रोकथाम और साइबर अपराध नियंत्रण पर भी चर्चा हुई। साथ ही गुमशुदा बच्चों की तलाश, मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक और तकनीक आधारित पुलिसिंग सहित अन्य विषयों पर भी विचार विमर्श हुआ। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, YouTube चैनल राजस्थान AIR न्यूज और Facebook AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की जोजुड़ी, बांडी और लूणी नदियों में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को एक हफ्ते के भीतर निगरानी समिति बनाने का निर्देश दिया है। इस समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे। इसमें पर्यावरण, वन, जल संसाधन और उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। ये समिति नदियों में हो रहे प्रदूषण की लगातार समीक्षा करेगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि इन नदियों का पानी गंभीर रूप से प्रदूषित हो चुका है। कई जगहों पर फैक्ट्रियों का गंदा पानी अवैध रूप से नदियों में छोड़ा जा रहा है। इससे नदी, पर्यावरण और वन्य जीवों को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को ऐसा शिकायत तंत्र बनाने का भी निर्देश दिया है जिससे लोग नदी प्रदूषण या पर्यावरण से जुड़े मामलों की आसानी से शिकायत कर सकें और उन पर जल्द कार्रवाई हो सके। उत्तर पश्चिम रेलवे ने रेल परिसर और रेलगाड़ियों में धूम्रपान करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर जुलाई माह में 269 लोगों पर कार्रवाई की है। इस दौरान 38 स्टेशनों और 231 ट्रेनों में जांच कर कुल 5,38,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि यात्रियों को स्वच्छ, सुरक्षित और धूम्रपान मुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है।
1: हम लोग स्टेशन पे भी ड्राइव कर रहे हैं, ट्रेनों में भी ड्राइव कर रहे हैं। इस स्टेशन पे लगातार सीसीटीवी कैमरा की मदद से भी मॉनिटरिंग की जा रही है और ऐसे लोगों को पकड़ा जा रहा है। ट्रेन में भी कोच में टीटी और आरपीएफ दोनों मिलके ऐसे लोगों को पकड़ रहे हैं। साथ में ही ट्रेन में एक ऑटोमेटिक स्मोक डिटेक्टर भी लगे हुए हैं जिसको FSDS रेलवे की भाषा में बोला जाता है, उसके द्वारा भी स्मोकर को पकड़ा जा रहा है। तो सभी यात्रियों से, सभी नागरिकों से मेरी अपील है कि रेलवे सबकी कलेक्टिव प्रॉपर्टी है, इसके सेफ और सिक्योर संचालन में सभी लोग सहयोग करें और धूम्रपान किसी भी परिस्थिति में रेलवे परिसर में और ट्रेन में ना करें।
0: प्रदेश में कल से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत होगी। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। कल सभी जिलों में तिरंगा प्रभात फेरी निकाली जाएगी। 10 अगस्त को तिरंगा यात्रा का आयोजन होगा। वहीं 11 और 12 अगस्त को तिरंगा प्रदर्शनी और मेले लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल जयपुर में राज्य स्तरीय तिरंगा रैली का नेतृत्व करेंगे। ये रैली सुबह 9:30 बजे अल्बर्ट हॉल से होकर चौड़ा रास्ता और त्रिपोलिया गेट होते हुए बड़ी चौपड़ तक जाएगी। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने रैली से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सुरक्षा, यातायात, पेयजल, चिकित्सा सहायता और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। और अब मौसम। प्रदेश में हो रही बरसात से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। तापमान में आई गिरावट से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। राज्य के पूर्वी इलाकों में बरसात से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। भरतपुर में अत्यधिक बरसात को देखते हुए जिला कलेक्टर ने स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में आज का अवकाश घोषित किया है। हनुमानगढ़ में सुबह से ही कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बरसात का दौर बना हुआ है। पाली में बादल छाए हुए हैं और रिमझिम बरसात हो रही है। राजधानी जयपुर में भी सुबह से ही फुहारों का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आगामी एक सप्ताह तक राज्य के अधिकांश भागों में मानसून के सक्रिय रहने की संभावना जताई है। आज भरतपुर जयपुर कोटा अजमेर और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है वहीं सीकर और झुंझुनू के लिए बरसात का ऑरेंज अलर्ट है और अंत में मुख्य समाचार एक बार

0: फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। राज्य कैबिनेट की बैठक में पंचायत निकाय चुनाव और वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत कराने के फैसले सहित कई महत्वपूर्ण फैसले। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जोजड़ी, बांडी और लूणी नदियों में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर एक हफ्ते के भीतर निगरानी समिति बनाने के निर्देश दिए और प्रदेश भर में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कल जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय तिरंगा रैली से होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 9:10 हो चुके हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। शुरुआत करते हैं समंदर खान, सत्तार खान और रमजान खान के स्वर में सावरिया रा हिंडा। सुनते हैं बेहतरीन लोकगीत।

सावन के महीने में। आइए एक और सावन का ही लोकगीत सुनते हैं, ममता सिंह और सतीश देहरा के स्वर में, आई सावन ये री तीज।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं, एक सुनवाते हैं आपको एक अंताक्षरी, सीमा मिश्रा, प्रिया, गीतांजलि, दीपशिखा, राकेश काला और शंभू के स्वर में।

सीमा मिश्रा, राकेश काला, शंभु, प्रिया, गीतंजलि और दीपशिखा के स्वर में इस अंताक्षरी के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं।

प्रातः के 9:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर पर बजाया राग किरवानी।

शास्त्रीय संगीत के एक कार्यक्रम में अभी आपने सुना पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर पर बजाया राग किरवानी। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का एक कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के बजे हैं 10 और अब आप सुनेंगे कार्यक्रम जय जवान।

जय जवान सुनने वाले हमारे सभी फौजी भाइयों और हमारे नियमित श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, हमारे सैनिक, हमारे मिलिट्री, हमारे आर्म्ड फोर्सेस, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो और या एयरफोर्स, हमारे जवान अपने देश की संस्कृति, अपने देश की मिट्टी की खुशबू, अपने देश के कल्चर, अपने देश के हर एक पहलू को जानते भी हैं और उससे बहुत प्यार करते हैं। तो उसी प्यार के नाम करते हैं पहला ये गीत। आनंद राज आनंद के स्वर में उन्हीं का है संगीत, उन्होंने ही से लिखा है और फिल्म का नाम है जिस देश में गंगा रहता है।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: बदलो बदलो, आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान।
5: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
4: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
5: जन जन की वाणी, आकाशवाणी के माध्यम से।

0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुंचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: हमारे जवान भारत की पहचान, और उनकी पहचान में एक और चीज़ शामिल है, वो है अनुशासन। अनुशासन में रहते हुए उनका अपना व्यक्तित्व, अपने विचार और अपनी अलग पहचान भी होती है। जब वे ड्यूटी पर होते हैं तो अनुशासन का स्तर सर्वोच्च स्तर पर रहता है, और जब वो अपने पिंडचे यानी कि अपने गली मोहल्ले अपने गांव आते हैं तो उनका स्वयं का जो व्यक्तित्व होता है, जो बचपन से उनके साथ रहा है, वो भी कहीं ना कहीं निखर के आता है। अपने व्यक्तित्व, अपने विचार और अपनी अलग पहचान के साथ वे अपनी जगह बनाते, वे परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना जानते हैं और हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ करते हैं। तो सुनते हैं अब आगे ऐसा ही एक उनकी पहचान और उनकी खुद के आत्मविश्वास को बयां करता ये गीत। जावेद अख्तर के बोल हैं कि मैं जो हूँ मैं वो हूँ। हाँ, ए हरिहरन, अभिजीत रूकुमार राठौड़ और जॉली मुखर्जी की आवाज़ है, अनु मलिक का है बेहतरीन संगीत।

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: हमारा अगला गीत हमारे फौजी भाइयों के परिवार को समर्पित है। जब कोई अपना नहीं रहता तो एक खालीपन, एक सन्नाटा हमेशा आसपास होता है, लेकिन हमेशा लगता है कि वो कहीं दरवाजे पे ही है, दस्तक देने वाला है। तो सुनते हैं एक बेहतरीन नगमा रेखा भारद्वाज और जगजीत सिंह के स्वर में, फिल्म का नाम है तुम बिन टू।

एक सन्नाटा हमेशा आसपास होता है, लेकिन हमेशा लगता है कि वो कहीं दरवाजे पे ही है, दस्तक देने वाला है। तो सुनते हैं एक बेहतरीन नगमा रेखा भारद्वाज और जगजीत सिंह के स्वर में। फिल्म का नाम है तुम बिन टू। इस गीत को संगीतबद्ध किया है अंकित तिवारी ने और लिखा है मनोज मुंतशिर ने।

0: लीजिए, अब सुनते हैं देश के महान गायक कैलाश खेर का हमारी भारतीय सेना के नाम एक बेहतरीन संदेश।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

जब हमारे फौजी भाई बड़ी मुश्किल से छुट्टियां लेकर और अपने घर, अपने पिंड, अपने गांव वापस आते हैं, अपने जीवन साथी से मिलते हैं, तो चारों तरफ जैसे हरियाली, सावन और बारिश, रिमझिम सभी महसूस होने लग जाते हैं। और वो जब आते हैं तो होठों पे तराने अपने आप खिल जाते हैं। तो आइए सुनते हैं फिल्म इल्जाम का ये गीत। बप्पी लहरी का है संगीत, नाजिया हसन और जोहेब हसन के स्वर में।

अब जब आ ही गए हैं तो स्वागत नहीं करेंगे? करेंगे जी, जरूर करेंगे। स्वागत के लिए आ रही हैं साधना सरगम, फिल्म का नाम है विजय पथ।

स्वागत का क्रम हम जारी रखते हैं और उनके आने पे जो रंग पूरे घर नहीं बल्कि पूरे गांव पे जब छा जाता है तो बजता है ढोल। और इस गीत को लेकर आ रहे हैं उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, अनु मलिक का है संगीत और जावेद अख्तर के हैं प्यारे से बोल। फिल्म का नाम है विरासत। तो श्रोताओं, जीवन की राह में कर्तव्य और उत्सव साथ साथ चलते हैं। हमारे वीर जवान भी कठिन परिस्थितियों में देश के सुरक्षा का जो दायित्व निभाते हैं उसके साथ हर खुशी और हर पर्व का महत्व भी जानते हैं। तो इसी उल्लासपूर्ण भावना के साथ अब समय है कार्यक्रम के आखिरी गीत का, ढोल बजने लगा।

फिल्म विरासत के इस गीत के साथ ही हम लेते हैं विदा। जय जवान कार्यक्रम यहीं होता है समाप्त। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जय जवान। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दिन के बज चुके हैं 11, तो आप सुनते हैं फोन इन पर आधारित कार्यक्रम हेलो बीकानेर। आज की सूत्रधार हैं श्रीमती कोमल तनेजा, प्रस्तुति श्रीमती पुनीत बिश्नोई की है, जबकि संयोजन किया है श्री अमित सिंह ने। तो सुनते हैं हेलो बीकानेर।

0: कार्यक्रम हेलो बीकानेर सुनने वाले सभी श्रोताओं का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमेशा की तरह आज भी अपने निर्धारित समय पर हाजिर हो चुके हैं लेकर प्रोग्राम हेलो बीकानेर। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत इस बात से कि जीवन कितना सुंदर है, जब हमारे पास ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए इतना कुछ है तो फिर नकारात्मक बातों में क्यों उलझें। ये दिन ये पल अनमोल है, इसे मुस्कुराकर जिए। हर छोटी सी खुशी को अपनाएं और हर सांस के लिए कृतज्ञ रहें। जी बिल्कुल श्रोताओं, कहते हैं ना, जीवन का कुछ भरोसा नहीं रहता। कब कोई पल हमारे लिए क्या लेकर आए ये हम नहीं जानते, लेकिन हाँ, जो पल हम आज जी रहे हैं, जिस पल में आज हम हैं, उसी में अपने आप को खुश रखने का प्रयास तो हम कर ही सकते हैं। जैसे कि हमारा कार्यक्रम हेलो बीकानेर, हमारे अपने श्रोताओं का कार्यक्रम है ये, और इस कार्यक्रम के जरिए हम अपने श्रोताओं से बात करते हैं, रूबरू होते हैं और उन्हें उनकी पसंद का गीत सुनवाते हैं। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में संयोजन है श्री अमित सिंह का और प्रस्तुति है श्रीमती पुनीत विश्नोई की। और आज का ये कार्यक्रम हेलो बीकानेर लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी रेडियो साथी कोमल तनेजा। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले श्रोता के फोन कॉल से। हेलो।
1: हेलो
0: जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो बीकानेर में।
1: नमस्कार, मैं वृंदावन सुरभि से राजेंद्र कुमार गढ़वालकर।
0: जी राजेंद्र जी, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ मैडम
0: जी, बताइए क्या संदेश लाए हैं आज?
1: संदेश तो मेरा आज प्रोग्राम के लिए है। पहले सभी सुनने वाले श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: जी बिल्कुल।
1: ये जो हेलो बीकानेर है ना, मैं तो सोचता हूँ जैसे गुलदस्ता होता है, गुलदस्ते में कितने फूल होते हैं, बहुत सुंदर लगता है। ऐसे ही मैं कहता हूँ इस प्रोग्राम को गानों का गुलदस्ता कहें ना तो अतिशोक्ति नहीं होगी।
0: जी बिल्कुल, एकदम सही फरमाया आपने राजेंद्र जी, क्योंकि अलग अलग श्रोता हमें कॉल करते हैं और अपनी अलग अलग पसंद सुनते हैं, तो निश्चित रूप से अलग अलग पसंद के कारण ही ये कार्यक्रम एक गुलदस्ता का रूप लेता ही है।
1: और सबसे बड़ी बात मैडम ये है कि प्रेजेंटेशन जो है ना आपका, इतना लाजवाब है कि शुरुआत इतनी सुंदर होती है, साहित्य के शब्द इतने जबरदस्त होते हैं आप लोगों के, क्या कहना।
0: जी जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका है। आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है और आप नियमित हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो बताइए राजेंद्र जी, आज आप गीत कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: महुआ पिक्चर का मोहम्मद रफी का गाया हुआ है एक सॉन्ग, बहुत अच्छा सॉन्ग है, वो गाना सुनना चाहता हूँ। मेरे मित्र का नाम लेना चाहता हूँ।
0: जी लीजिए, आप अपने साथियों का नाम।
1: मेरे एक ही मित्र है खास, सुरेश कुमार जी गहलोत।
0: जी, आप और आपके मित्र सुरेश कुमार जी गहलोत।
1: जी
0: जी, तो सुनिए आपकी पसंद का ये गीत, आपने हमें कॉल किया, शुक्रिया
1: जी, धन्यवाद।

0: जय नारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर राजस्थान से मैं डॉक्टर अशोक कुमार शाही।
1: जी अशोक कुमार जी, कैसे हैं आप?
0: ठीक है
1: जी, आपका स्वागत कार्यक्रम हेलो बीकानेर में।
0: धन्यवाद जी।
1: जी बताइए, क्या संदेश देंगे आज?
0: संदेश तो यही है कि अभी बारिश का मौसम काफी हो गया है, स्विच ऑन हो गया है, तो इसलिए अपने आप को संभालना बहुत जरूरी है, पर्टिकुलरली मॉस्किटो से। क्योंकि अभी इस मौसम में तरह तरह के मच्छरों की प्रजातियां उत्पन्न होंगी जो मलेरिया फीवर भी करती हैं और दूसरे फीवर भी करती हैं, तो उनसे बचाव के लिए हमें एंटी मॉस्किटो क्रीम्स वगैरह इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे कि इनसे बचा सके। पर्टिकुलरली छोटे बच्चों का भी ध्यान इसी से रखना होगा और इसके अंदर शरीर को ढक के रखना चाहिए।
1: जी बिल्कुल अशोक जी, आपने सही कहा, सावन का महीना लग चुका है और लगातार बारिश का जो माहौल है वो हमारे बीकानेर शहर में इन दिनों बना हुआ है। तो सावन का महीना एक स्वच्छता लेके आता है। माना जाता है कि जब बारिश होती है तो सब चीजों को स्वच्छ कर देती है, लेकिन उस स्वच्छता को बरकरार रखना हमारा काम है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो हमारे आसपास अगर पानी इकट्ठा है तो उसे हम साफ करें, पानी इकट्ठा ना होने दें ताकि जो मच्छर हैं वो ना पनपे।
0: हाँ, मच्छरों का ब्रीडिंग प्लेस ना बनने से पानी तो जहाँ इकट्ठा होता है वहाँ पर उस पानी का निकास रखें जिससे कि वो ब्रीड ना हो, और ब्रीड होंगे तो फिर वो आप ही को परेशान करेंगे।
1: जी बिल्कुल। जब आपने मच्छरों की बात करी है तो मच्छरों में सबसे जो खतरनाक मच्छर होता है वो होता है डेंगू का, और वो दिन के समय काटता है। तो अपने आप को पूरी तरह से ढक के रखें अगर हम कहीं भी काम करने जा रहे हैं बाहर, तो
0: मतलब बाजू भी ढके रहे और पैर भी ढके रहे, तो उससे क्या होता है कि गर्मी तो जरूर लगती है, बीच बचाव हो जाता है।
1: तो आप बताइए आज आप गीत कौन सा सुनेंगे?
0: एक बहुत मुकेश का बहुत सुंदर गीत गाया हुआ भी है, रानी रूपमती का। बहुत बसता था वो हम छोटे थे जब, और आ लौट के आ जाओ मेरे नीत, मुकेश जी है।

0: आवाज नहीं है, तो बहुत अच्छा गीत है, वो अगर सुनवा सके हैं।
1: जी बिल्कुल, हम आपकी फरमाइश को जरूर पूरा करेंगे। और बेहद ही खूबसूरत गीत आपने चुना है, फिल्म रानी रूपमती से आपने इस गीत को चुना है, तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। आपने हमें कॉल किया, शुक्रिया,
0: धन्यवाद।

0: हेलो
1: नमस्ते मैडम
0: जी, नमस्ते, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो बीकानेर में।
1: मैं राधेश्याम कटारिया, श्री कर्णपुर, जिला गंगानगर से बोल रहा हूँ मैडम।
0: जी राधेश्याम जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है मैडम, बरसात हो गई है, चारों तरफ खुशहाली हो गई है।
0: जी बहुत खुशी की बात है, आपके वहाँ पर बरसात हो चुकी है।
1: हाँ जी, 2-3 दिन से लगातार हो रही है, कल से।
0: तो आपकी कामना पूरी हुई।
1: हाँ जी मैडम।
0: बहुत टाइम से इंतजार था कि राजस्थान में बीकानेर संभाग में बारिश हो, लेकिन बारिश हो नहीं रही थी, और अब 3-4 दिन से लगातार जो बारिश है वो हो रही है पूरे संभाग में।
1: हाँ जी मैडम।
0: तो आप बताइए, आज क्या संदेश लेकर आए?
1: आज मैडम मैं ये संदेश लेके आया हूँ, अपने मोटरसाइकिल, टू व्हीकल हो चाहे कार हो, स्कूटर पे तो हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है चलाते टाइम, और
0: बिल्कुल।
1: कार के अंदर बैठे हैं तो सीट बेल्ट लगानी बहुत जरूरी है। इसमें यातायात के नियमों का तो पालन होता ही है और खुद की सुरक्षा भी होती है।
0: जी बिल्कुल सही कहा राधेश्याम जी, यदि हम कोई भी वाहन चलाते हैं तो हमें अपने जो यातायात के नियम है उसका पूरी तरह से पालन करना चाहिए, ताकि हम भी सुरक्षित रहें और हमारी यात्रा भी सुरक्षित रहे।
1: हाँ जी मैडम, यदि थोड़ी सी भी गफलत करेंगे अपने तो खुद का नुकसान भी अपने को
0: जी
1: सहन करना पड़ेगा।
0: जी जी जी आए दिन ये समाचार सुनते हैं ना कि भी एक्सीडेंट के केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, वो
1: हाँ
0: इसी
1: जी मैडम।
0: कारण से ही बढ़ रहे हैं कि एक तो अनियंत्रित गति से हम वाहन को चलाते हैं, दूसरा दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग, और 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग हम नहीं करते हैं।

0: उसी
1: से तो नुकसान होता है मैडम,
0: उसी से ही नुकसान होता है। तो हम अगर अपने बच्चों को कोई भी वाहन दे रहे हैं तो सबसे पहले उन्हें यातायात के नियमों से अवगत कराएं।
1: हाँ जी मैडम।
0: तो बताइए राधे श्याम जी, आज आप गीत कौन सा सुनेंगे?
1: आज मैडम फिल्म है अभिनेत्री का गीत है, सारे गमा पा गा रे मेरे संग मेरे साजना।
0: मौसम के अकॉर्डिंग ये आपने गीत को चुना है।
1: बहुत ही अच्छा गीत है मैडम ये।
0: जी बिल्कुल, बेहद ही खूबसूरत गीत है ये। और अब हम आपकी फरमाइश को पूरा करते हैं, आपने हमें कॉल किया, शुक्रिया। आइए सुनते हैं ये गीत।
1: थैंक यू मैडम।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते जी।
0: जी, नमस्ते, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो बीकानेर में। कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं दीप सिंह भाटी बोल रहा हूँ, तिलक नगर बीकानेर से। हाँ
0: दीप सिंह जी भाटी जी, बीकानेर से आप बात कर रहे हैं। आपका कॉल पहली
1: जी।
0: बार लगा है क्या आज?
1: नहीं, पहली बार नहीं, 1 साल के बाद लग रहा है ये।
0: 1 साल बाद आपका कॉल लग रहा है,
1: हाँ,
0: आपने 1 साल बाद ट्राई किया तो
1: निकटता हो रहा है, लगता नहीं है, बिजी
0: जी, तो आपका कॉल ही
1: रहता
0: एक
1: है।
0: साल बाद लगा है। आप ट्राई रोज करते हैं
1: हाँ,
0: जी, तो देखिए 1 साल का टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है।
1: बात
0: हाँ, और उसके बाद आज आपका कॉल लग गया और हमारी और आपकी
1: गया।
0: बातचीत हो रही है। तो बताइए दीप सिंह जी, क्या करते हैं आप?
1: हम तो बेकार में आदमी हैं, बैठे हैं बस,
0: जी
1: मनोरंजन करते हैं रेडियो का।
0: जी जी जी रिटायर पर्सन हैं आप और रेडियो जो आपका साथी रहा होगा जिंदगी भर, तभी
1: हाँ,
0: आप आज भी रेडियो के साथ जुड़े हुए हैं।
1: रेडियो साथ जुड़ा हुआ, आज से नहीं गया, 1963 में जुड़ा हुआ हूँ रेडियो से।
0: जी, बहुत खूब। तो बताइए क्या संदेश देंगे आप?
1: संदेश है कि आप जनता से ये कह रहे हैं कि अभी मौसम का ध्यान रखें, मौसम सुहाना हो रहा है, खाने पीने के कुछ परहेज रखें, वैसे तली हुई चीजें नहीं खाएं, ये संदेश दे रहे हैं आप।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने, मौसम परिवर्तन की ओर है, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, तो इसमें जो हम फ्रेश फूड का इस्तेमाल करें, ताज़ा खाना घर का बना हुआ ही खाएं।
1: हाँ, वही खा रहे हैं।
0: बाहर का किसी भी तरह से कोई भी खाना अगर
1: नहीं,
0: हम सेवन कर भी रहे हैं तो उसकी स्वच्छता का विशेष रूप से ख्याल रखें।
1: हाँ सही बात, स्वास्थ्य बहुत ध्यान बहुत करना जरूरी है।
0: जी जी बिल्कुल। तो बताइए दीप सिंह जी, आज आप गीत कौन सा सुनेंगे?
1: आया साउंड झूम के टाइटल गाना ये। हाँ, ये सुनाइए आप।
0: बिल्कुल, हम आपकी फरमाइश को जरूर पूरा करेंगे। आपने हमें कॉल किया, शुक्रिया। आइए सुनते हैं आपकी
1: धन्यवाद।
0: पसंद का ये गीत।

0: हरिओम सर, नमस्कार।
1: जी हरिओम नमस्कार
0: हाँ जी,
1: जी। सुभाष जी कैसे हैं आप, क्या हाल चाल
0: मैं
1: है
0: ठीक
1: आपके?
0: हूँ। आप सुनो मेरा हाल।
1: जी बिल्कुल, हमारा भी हाल चाल ठीक है। और बताइए क्या संदेश देंगे आज?
0: संदेश मैं ये कहता हूँ, साल में 4 महीने होते हैं पवित्र। एक तो सावन का महीना शिव जी को पसंद है, एक कार्तिक का महीना, एक माघ का महीना, साख हो गया 4 महीने पवित्र। इन 4 महीनों में व्रत जरूर रखना चाहिए, कथाएं जरूर सुननी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए और दान बहुत करना चाहिए। इन दिनों में जो दान दिया जाता है ना, वो 100 गुना फल मिलता है उसका। जैसे
1: जी
0: अभी शिव जी का जल रहा है, इसके लिए शिवलिंग पर बिल पत्र देना, ओम नमो शिवाय इस मंत्र का जप जितना कर सकते हो उतना करो। शिव जी को जो चीज प्रिय है वो देनी है। ऐसे तो शिव जी तो खाली जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इन दिनों में हरा साग हरी सब्जी नहीं खानी चाहिए।
1: जी बिल्कुल सुभाष जी, आपने सही कहा। और ये कठिन तपस्या है, और कहते हैं ना कि गृहस्थ में रहकर भी यदि हम कुछ भी ईश्वर के प्रति जरा सा भी कुछ भी अर्पण हम उन्हें कर देते हैं, या सच्चे भाव से उन्हें याद भी कर लेते हैं, तभी हमारा काम बनने लग जाता है।
0: वो जरूर मदद करता है अपनी, उसको पता है कि ये मुझे याद करता है, वो
1: क्यों?
0: तो क्या दिन रहता है। ये और बता दो
1: क्योंकि
0: आपको,
1: दिया हुआ
0: आप
1: सब कुछ उस ईश्वर का ही हमारे पास होता है, तो कहते हैं ना कि उसका दिया ही हम उसको क्या अर्पित कर सकते हैं, हम कुछ भी
0: अपनी
1: हम
0: है क्या
1: अर्पित नहीं कर
0: ताकत ही
1: सकते
0: नहीं
1: हैं।
0: है, सब उसी का है। अपने जो बेटे और होते हैं ना, ये भी उसी के अपने थोड़ी हैं।
1: बिल्कुल सही
0: वो तो
1: कहा।
0: इसीलिए करते हैं कि आप इनको संभालो, इनकी देखभाल करो।
1: बस देने के
0: और
1: भाव को एक जागृत करने की एक ही अवस्था हम कह सकते हैं कि अगर हम कुछ भी चीज ईश्वर को अर्पित करते हैं तो उसमें ये भाव होता है कि उसका उसी को अर्पित हम कर रहे हैं, उसका शुक्राना हम कर रहे हैं। एक शुक्रिया करने का एक अंदाज है कि हम उस ईश्वर को कितना याद कर रहे हैं, या उसके प्रति हम कितना श्रद्धा भाव हम अपने अंदर अपने भीतर रखते हैं। बस
0: बिल्कुल भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे से जो भूल होगी है क्षमा करें और आपकी माया हमें मोहित नहीं करें,
1: और
0: बस।
1: वो प्रार्थना है, और प्रार्थना में कहते हैं ना बहुत शक्ति होती है। अगर हम नित्य
0: बिल्कुल
1: नियम से सुबह शाम चाहे हम एक प्रार्थना सच्चे मन से उस ईश्वर से कर लें, तो निश्चित रूप से हमारे पाप कर्म जो होते हैं वो धुलते हैं और हमारा मन भी स्वच्छ बनता चला जाता है।
0: बिल्कुल, श्रद्धा भक्ति से करेंगे तो कर्म भी अच्छे बनेंगे। ये सब क्या है, प्रभु की माया। श्रद्धा और भक्ति से ही भगवान मिलते हैं, वैसे नहीं मिलते।
1: जी बिल्कुल सही कहा। तो बताइए सुभाष जी, आज आप गीत कौन सा सुनेंगे?
0: वो तो अभी देख लो, बारिश का मौसम है, मौसम के अनुसार काला बाजार देवानंद और वहीदे रहमान की फिल्म आई थी, रिम झिम के तराने लेके आई, बताओ।
1: बेहद ही
0: और
1: खूबसूरत गीत।
0: ये गाना सुनाओगे तो बारिश और तेज आएगी।
1: जी जी बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हमारे बीकानेर शहर में अच्छी खासी बारिश वैसे हो रही है और होती रहे ऐसे ही, और गाना भी आपने इस मौसम के अकॉर्डिंग ही चुना है। तो अब हम आपकी फरमाइश को पूरा करते हैं, आइए सुनते हैं इस गीत को। आपने हमें कॉल किया, शुक्रिया।
0: ठीक है, धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी मैडम जी नमस्कार।
0: जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो बीकानेर में।
1: जी मैडम जी नमस्कार। मैडम जी
0: जी बताइए, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: आपका नियमित श्रोता बीकानेर रेडियो स्टेशन से, और मैं बोल रहा हूँ मैडम जी जिला जबलपुर के चरगवा रोड ग्राम बगरई गांव से श्याम शंकर राय।
0: जी श्याम शंकर जी, कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल मैडम जी, बस आप लोगों का आशीर्वाद है मैडम जी। बस
0: प्रदेश से बोल रहे हैं?
1: हाँ, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से मैडम जी।
0: जी जबलपुर से आप बात कर रहे हैं?
1: जबलपुर से दूर से बोल रहा हूँ। आपके जो कार्यक्रम है बीकानेर रेडियो स्टेशन, मैं मोबाइल के ऐप के माध्यम से मैं सुनता हूँ जी।
0: न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप ऐसे ही हमारे कार्यक्रम सुनते रहें।
1: जी मैम। और आप भी मैडम जी, आपकी जो प्रस्तुति होती है, जो भी कार्यक्रम में आप प्रस्तुति करती हैं, बहुत सराहनीय और लाजवाब होती है मैडम जी।
0: जी जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो बताइए श्याम शंकर जी, आप जबलपुर में क्या खास बात है, आपके क्या खासियत है वहाँ?
1: हमारे यहाँ जबलपुर में, मैं भेड़ा घाट के पास में स्थित है मेरा गाँव ग्राम बगरई। तो जो पर्यटक क्षेत्र में विश्व में पहचान है भेड़ा घाट धुआंधार की, तो बस मैं वही संगमरमर की वादियों से, मेरा गांव बिल्कुल लगा हुआ है पास में ही, वहीं से बोल रहा हूँ मैडम जी। वो मेरे यहाँ मैडम जी एक और खास जो विशेषता है मेरे ग्राम में, ग्राम बगरई में, जो मार्बल्स की मूर्तियां हैं व्हाइट पत्थर की, तो वो हमारे यहाँ गांव में 98% लोग कारीगर हैं, और हर देवी देवताओं के हर प्रकार की मूर्तियां यहाँ बनाई जाती हैं
0: मार्बल में।
1: मार्बल में मैडम जी, यानी बस फोटो दे दो कारीगर को, वो पूरी आकृति पत्थर में उतार देते हैं मैडम।
0: बहुत अच्छा काम है कारीगरी का, और पत्थर भी कहते हैं ना कि बोलते हैं जब वो मूर्ति रूप में ढल जाते हैं।
1: जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल जी।
0: तो
1: जी।
0: बहुत खूब आपने बताया कि आपके वहाँ पर एक तो धार झरना बहता है,
1: नर्मदा तट है वहाँ, वही उसी में एक प्राकृतिक कुछ ऐसी सुंदरता है मैडम जी, जो पत्थरों से नीचे जो जल गिरता है तो एक बहुत ही देखनीय मतलब दस होता है वो,
0: मतलब कि धुएं जैसा प्रतीत होता है।
1: घाट में मैडम जी देश विदेश से, दुनिया से, कई प्रांतों से, देशों से लोग आते हैं देखने के लिए।
0: जी जी जी, बहुत ही दर्शनीय स्थल है आपके जबलपुर में ये।
1: जी मैम।
0: तो अब बताइए आज आप गीत कौन सा सुनेंगे?
1: मैडम जी गीत है पुरानी फिल्म आशिकी है, और वो गाने में जो बोल है कुमार सानू, शायद अनुराधा पोटवाल जी की आवाज है।
0: बिल्कुल,
1: तो गाने
0: बिल्कुल।
1: के बोल है मैडम जी तू मेरी जिंदगी है।
0: फिल्म आशिकी का गीत आपने पसंद किया है, और इस गीत को गाया है कुमार सानू और अनुराधा पोटवाल ने।
1: जी मैम। जी जी
0: जी। तो अब हम आपकी फरमाइश पूरी करते हैं, सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। आपने हमें कॉल किया, शुक्रिया
1: जी मैडम जी। नमस्कार मैडम जी।

0: हेलो
1: नमस्ते बहन जी।
0: जी, नमस्ते। स्वागत का कार्यक्रम हेलो बीकानेर में।
1: गांव खोकराम वाली से विनोद बारा सा निवेदन कर रहा हूँ।
0: जी विनोद जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत ही बढ़िया है, प्रोग्राम आपके सुनते रहते हैं लगातार। और एक सुझाव मेरा आज रहेगा आपसे।
0: जी बिल्कुल, फरमाइए।
1: मैं ये चाहता हूँ कि आपकी आकाशवाणी बीकानेर से व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर ही कोई प्रोग्राम शुरू किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रोता जुड़ जाए।
0: कि हमारे जो राजस्थानी प्रोग्राम आता है उसमें
1: हाँ वो
0: हम
1: तो मैं सुनता
0: मेल
1: रहता हूँ,
0: के,
1: ग्राम जगत है।
0: हाँ उसमें हम ईमेल
1: मेल
0: के,
1: आईडी पर,
0: हाँ
1: हाँ
0: मेल
1: ईमेल पे
0: आईडी
1: आप,
0: के ऊपर आप अपनी फरमाइश अगर हमें भेजते हैं तो हम उसको
1: है
0: हम
1: ना,
0: पूरा
1: भेजता
0: करते हैं।
1: रहता हूँ। वो प्रोग्राम भी मैं सुनता हूँ, राजस्थानी लोकगीतों का प्रोग्राम
0: हाँ
1: है,
0: जी,
1: मैं हर शनिवार को आता है
0: हाँ,
1: तो मैं सुनता हूँ और मेल भी करता हूँ।
0: जी
1: कार्यक्रम बहुत बढ़िया है, राजस्थानी लोकगीत में सुनने को मिलते हैं।
0: जो आपने हमें सुझाव दिया है कि फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम जो कार्यक्रम है उसको शुरू करें, तो ये प्रयास हमारा रहेगा भविष्य में। तो बताइए आज आप क्या संदेश देंगे?
1: संदेश सिर्फ ये है कि सावन का महीना है तो ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाते रहें और उनकी देखभाल करते रहें। अगर लगा लिए हैं तो उनकी देखभाल जरूर करें।
0: तो
1: हाँ
0: अब तो बारिश का माहौल चारों ओर है, आपके वहां पर भी बारिश हो चुकी होगी।
1: मौज तो होगी, बारिश होगी, दो बार ही हो गई है, हमारे पिछले 2 बार बारिश हो चुकी है,
0: जी, हमारे पूरे
1: अच्छी
0: बीकानेर
1: बारिश।
0: संभाग में बारिश का आगाज जो है वो हो चला है,
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल,
0: ऐसे ही सावन का महीना अच्छे से हम सबके लिए हो।
1: उनका महीना है और सावन का गीत अगर बज जाए तो और भी सुहाना हो जाएगा मौसम।
0: जी बिल्कुल।

0: सही कहा,
1: के चुपके मूवी का है, आपके सजन सावन में। हाँ
0: बेहद ही खूबसूरत गीत है सावन का ये
1: जी,
0: गीत है,
1: हाँ जी,
0: और
1: हाँ जी,
0: फिल्म चुपके चुपके का गीत आपने पसंद किया है, और इस
1: हाँ
0: गीत को
1: जी,
0: आवाज दी है लता मंगेशकर ने।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो अब आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। आपने हमें
1: ओके
0: कॉल
1: डन,
0: किया, शुक्रिया।

0: जी बताइए कौन बोल रहे हैं।
1: मैं रामेश्वर कुमार बोल रहा हूँ, दर्जियों की बड़ी बार बीकानेर से।
0: जी रामेश्वर जी कैसे हैं आप, बहुत दिनों बाद आपका कॉल आया है।
1: मैडम ऐसा है पिछली से मैं अस्वस्थ हो गया था।
0: अब कैसा है स्वास्थ्य आपका?
1: अब मैं सही हूँ बिल्कुल, आपसे बात करने के लिए।
0: तो बताइए क्या संदेश देंगे आज?
1: संदेश ये कि मौसम अपने कमी उमस हो जाती है, कभी बरसात हो जाए छाटे नाग देते हैं, सही नहीं रहता है
0: जी। बीकानेर में अभी 3-4 दिन से तो हो रही है बारिश लगातार, ठीक है थोड़ी कम ज्यादा तो चलता रहता है, और मौसम में नमी है तो इसलिए मौसम में विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का हमें ख्याल भी रखना है। तो हमें स्वच्छता रखनी है अपने आसपास के वातावरण में ताकि हम स्वस्थ रहें और इस मौसम का भी भरपूर आनंद हम ले सकें। बताइए रामेश्वर जी आज आप गीत कौन सा सुनेंगे?
1: गीत मैडम आप मुझे फिल्म प्यासा का है, कॉमेडी सॉन्ग है, जॉनी वॉकर पर फिल्म आ गया। तो दिल डूबा जाए
0: और इस गीत को सुनते ही वो जो छवि है फिल्म की
1: याद आती है।
0: हाँ वो गाने में जो कॉमेडी जॉनी वॉकर ने करी थी वो हमें हमारे आंखों के आगे स्वतः ही आ जाती है।
1: सही बात है मैडम।
0: हाँ गाना ही ऐसा है और बहुत हास्यप्रद कह सकते हैं इसे, और बहुत ही अच्छा है ये गाना। मशहूर हुआ था और आज तक भी हमारे जहन में विद्यमान है उसकी तस्वीर है। हाँ जॉनी वॉकर की अदाएं हमें याद स्पेशली आती हैं। और फिल्म प्यासा का गीत आपने पसंद किया है रामेश्वर जी, तो आइए सुनते हैं इस गीत को। आपने हमें कॉल किया शुक्रिया,
1: आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: Tell Molly, jump in.

0: हेलो
1: हेलो। हाँ था ढोलमा टेलीफोनिंग कार्यक्रम
0: जी, बिल्कुल सही जगह आपने कॉल किया है। स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो बीकानेर में।
1: जी, राजस्थान जिला बीकानेर गंगा शहर से मंसूर अली बोल रहा हूँ मैम।
0: जी मंसूर जी, कैसे हैं आप?
1: हम सब इससे उम्मीद करता हूँ आकाश में ढोलमा टेलीफोन पूरा परिवार स्वस्थ होगा और मस्त होगा।
0: जी बिल्कुल, हम सब भी यहाँ पर सही हैं, स्वस्थ हैं।
1: संदेश यही देना चाहता हूँ मैम कि देखिए, परिवार से बड़ी कोई दौलत नहीं होती दुनिया के अंदर। तो भाई परिवार के सदस्य मिलजुल कर रहे, चाहे वो आप कहीं भी रहे, मतलब थोड़े से मिले जुड़ कर रहे हैं, बस कहने का मतलब यही है। जैसे कहते हैं ना कि भाई अगर पेड़ से पत्ता टूट जाता है तो उसकी हालत देख लीजिए, तो बस अगर पेड़ से जुड़े रहेंगे तो हरे भरे रहेंगे, परिवार से जुड़े रहें, सदस्यों के साथ रहें।
0: बहुत खूब, बहुत अच्छी बात मंसूर जी आपने कही कि हम पूरी दुनिया में कहीं पर भी रहें लेकिन अपनी जड़ों से जरूर जुड़े रहें।
1: जुड़े हैं, सच हरे भरे रहें।
0: अगर हम अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं तो चाहे हम अपने देश में कहीं भी रह रहे हैं या विदेश में भी रह रहे हैं, तो हम अपने संस्कार, अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूलते हैं।
1: जी,
0: और वही है कि हमें अपने संस्कार और अपनी संस्कृति को हमेशा बनाए रखना चाहिए ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी उससे लाभ उठाएं।
1: ऐसे में हमारा परिवार भी, परिवार के कुछ सदस्य जिसमें अम्मी हो गई, भाभी जान हो गए और भैया जी हो गए, तो ये बस वहाँ मदिया शरीफ घर के लिए जा रहे हैं, तो मैं ये कवाली उनकी नजर करना चाहता हूँ परिवारजनों मित्रजनों के साथ।
0: जी, तो आपके परिवार में आपके बड़े बुजुर्ग जो हैं वो हज यात्रा के लिए जा रहे हैं।
1: के लिए
0: तो बहुत खूब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम बहुत अच्छी ये कामना करते हैं कि उनकी जो हज यात्रा है वो सफल रहे। और
1: का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहने के लिए।
0: और आप ये गाना उन्हें डेडिकेट कर रहे हैं, उस खुदा को याद करती हुई ये कव्वाली है कि इबादत करते हैं सच्चे मन से तो निश्चित रूप से हमारी हर यात्रा सफल होती है। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आपका जो परिवार जा रहा है हज यात्रा की ओर, उनकी ये यात्रा बहुत ही सुखद और बहुत सफल रहे। और अब आइए सुनते हैं इस कव्वाली को, आपने हमें कॉल किया, शुक्रिया।

0: ये था हमारा आज का फोन कॉल पर आधारित कार्यक्रम हेलो बीकानेर। श्रोताओं, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। श्रोताओं, यदि आप भी हमारे कार्यक्रम हेलो बीकानेर में अपनी पसंद का कोई गीत सुनना चाहते हैं तो आप अपना फोन कॉल रिकॉर्ड करवा सकते हैं बुधवार दिन में 11 से 12 बजे तक। हमारा फोन नंबर है 01512528041, 01512528042। हमें आपकी फोन कॉल का इंतजार रहेगा। इस कार्यक्रम का प्रसारण हम करते हैं शनिवार दिन में 11 से 12 बजे तक। इस कार्यक्रम में संयोजन था श्री अमित सिंह का और प्रस्तुति थी श्रीमती पुनीत विश्नोई की। और अब कार्यक्रम को करते हैं संपन्न। दे आपकी रेडियो साथी कोमल तनेजा को अनुमति। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन पर आधारित कार्यक्रम हेलो बीकानेर। सूत्रधार श्रीमती कोमल तनेजा, प्रस्तुति श्रीमती पुनीत बिश्नोई और संयोजन श्री अमित सिंह का। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दिन के 12 बज रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पढ़ाई के बाद छात्र जीवन की नई शुरुआत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: प्रतिपल बदल रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ी फोर्स है टेक्नोलॉजी की स्पीड। आज कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि अगले 20-30 वर्षों की दुनिया कैसी होगी, लेकिन साथियों जब जब बदलाव का दौर आता है तब तब चुनौतियां भी आती है और नए अवसर भी पैदा होते हैं। दुनिया बदलेगी, टेक्नोलॉजी

0: भी बदलेगी, इंडस्ट्रीज बदलेगी, प्रोफेशंस भी बदलेंगे, लेकिन इन सब के बीच मेरी बात याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आईआईटी दिल्ली कैंपस में आना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि आप केवल डिग्री नहीं अपने सपने लेकर यहां से निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 587 पीएचडी शोधार्थियों को सम्मानित किया। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और विद्यार्थी प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब डेढ़ घंटे तक चली बैठक में विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा की ओर जा रही थी। इसी दौरान चलवांज मोड़ के पास चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। चंबा के पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस दल ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री मोदी ने इस घटना में परिजनों को खोने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क रहेंगे। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई, रिजर्व बैंक यूपीआई को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने सीमा पार आतंक की साजिश रचने में 2 आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र दाखिल किया है। दोनों आरोपी पंजाब और नई दिल्ली में सुनियोजित हमले के लिए आईईडी, विस्फोटक और हेरोइन की कथित तस्करी में संलिप्त हैं। एजेंसी की मोहाली विशेष अदालत में कल शुभम कुमार और फरार जसवीर चौधरी के विरुद्ध अभियोग पत्र दायर किया गया। रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। यूक्रेन की राजधानी कीव के निकट रूस द्वारा रात में किए गए मिसाइल हमलों में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। आज तड़के कीव के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ये हमले हुए। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के 3rd दिन भारत को पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। 19 वर्षीय आशीष ने 74.09 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 2रा स्थान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के जॉन हैंड्रिक हेमेंस ने स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Sai Ramujtaba.

मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम इस प्रकार है। शाम 8 बजे आप सुनेंगे इस सप्ताह संसद में, रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे अखिल।

भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती में लघु रूपक राष्ट्र जागरण की दीप शिखाएं विषय पर रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, कलाकार गिरिमल्लप्पा भजंत्री।

शाम 6:40 पर आप सुनेंगे हमारे जयपुर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम जिले की चिट्ठी, और शाम 7 बजे आप सुनेंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी हमारे जयपुर केंद्र से।

दिन के 1:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम महिला जगत। कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, भीष्म साहनी जयंती, जल जंगल जमीन, प्रकृति की अनमोल धरोहर, बच्चों को टीम वर्क का महत्व बताएं। कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ताकार डॉक्टर कांता मीणा की वार्ता, विषय स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान की महिलाओं का योगदान। शाम 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा। लघु जानकारी के विषय रहेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, भीष्म साहनी जयंती, जैव विविधता और थार रेगिस्तान, आत्ममंथन करें। शाम 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्रामीण जगत में आज, फरमाइशी पत्रों व ईमेल पर आधारित लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजे गांव गुवाड़। रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे बीकानेर की सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का साप्ताहिक कार्यक्रम बीकानेर दर्पण। वाचक स्वर श्री महेश उपाध्याय के, प्रस्तुति श्रीमती पुनीत बिश्नोई, संयोजन श्री अमित सिंह का।

अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे गज़लों का कार्यक्रम सुगम संगीत, और फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन के 12:40 पर, दोपहर 2:30 पर, शाम 6:05 पर, रात्रि 9:15 पर।

ये था कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है गजलों का कार्यक्रम सुगम संगीत।

अभी आप सुन रहे थे गजलों का कार्यक्रम सुगम संगीत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत, सुनिए बेटा फिल्म से, स्वर है अनुराधा पोडवाल का।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर दिन के 1 बजने को है प्रस्तुत हमारे जयपुर केंद्र से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शिरकत कर रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि आज वे केवल अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर रहे हैं बल्कि जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से इस पल को पूरी तरह से जीने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में उन्हें परिसर में बिताए समय और यादों की कमी महसूस होगी। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को नई यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी और उनके सफल भविष्य की कामना की। प्रदेश में आगामी पंचायत राज संस्थाओं और नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण और निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। हनुमानगढ़ में नगर परिषद की मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत आज विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, अपात्र नाम हटाने और विवरण में संशोधन के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। वहीं पाली में जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी ने चुनाव तैयारियों की समीक्षा करते हुए निर्वाचन प्रकोष्ठों को सक्रिय करने और राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के शुद्धिकरण को लेकर बैठक करने के निर्देश दिए हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने लोगों से मॉनसून के दौरान अधिक से अधिक पौधे लगाने का आह्वान किया है। साथ ही लगाए गए पौधों को जीवित रखने के लिए हर संभव प्रयास करने को कहा है।

0: वे आज बूंदी में सघन पौधरोपण अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में 1100 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पेड़ पौधे लगाने के साथ ही उनकी देखभाल और संरक्षण की भी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग ने पौधों के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान की नीति भी लागू की है। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद हैं। इससे पहले पुलिस परेड ग्राउंड में अतिथियों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज भीलवाड़ा के पॉलीटेक्निक कॉलेज में पौधरोपण कार्यक्रम में भाग लिया। मौसम विभाग ने आज जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार 10 से 12 अगस्त के दौरान दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। इस दौरान कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। जोधपुर और बीकानेर संभाग के सीमावर्ती इलाकों को छोड़कर पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन मध्यम बारिश हो सकती है। इस बीच भरतपुर के बयाना में भारी बारिश के बाद बांध बारेठा में पानी की आवक बढ़ गई है। बांध में जलस्तर भराव क्षमता के नजदीक पहुंच गया है। जल संसाधन विभाग ने कुकुंद नदी के बहाव क्षेत्र में आने वाले करीब 50 गांवों के लिए अलर्ट जारी किया है। लोगों से नदी नालों से दूर रहने और मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की अपील की गई है। प्रशासन के अनुसार बारिश जारी रहने पर बांध के गेट कभी भी खोले जा सकते हैं। पिछले 24 घंटे में अलवर के थानागाजी में सबसे अधिक 93 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने पिछले 28 कार्य दिवसों में 14 भर्तियों के अंतिम परिणाम जारी किए हैं। आयोग के अध्यक्ष कर्नल केसरी सिंह ने बताया कि इस अवधि में 11 विचारित सूचियां और साक्षात्कार के लिए सफल अभ्यर्थियों की 36 सूचियां भी जारी की गई हैं। उन्होंने कहा कि आयोग युवाओं के भविष्य और उनके समय की अहमियत को समझता है। भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से पूरा करना आयोग की प्राथमिकता है। जुलाई 2026 से अब तक जारी अंतिम परिणामों में चिकित्सा शिक्षा, कॉलेज शिक्षा और संस्कृत कॉलेज शिक्षा से जुड़े विभिन्न पद शामिल हैं। भारतीय भुगतान परिषद पीसीआई ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दिन के 1:05 हो रहे हैं। आरंभ होता है महिला श्रोताओं का कार्यक्रम महिला जगत। कार्यक्रम के आज के अंक के प्रस्तुतकर्ता हैं सपना व्यास और सुरभि बोहरा।

0: कुदरत के रूप में बसा है कुछ खास। तो स्वागत है सखियों आपके अपने ही कार्यक्रम महिला जगत में, और आपका स्वागत करती है आपकी अपनी दो रेडियो सखी, मैं सपना व्यास, और मेरे साथ है मेरी प्यारी सी सखी
1: सुरभि बोहरा
0: का प्यार भरा नमस्कार। और बहनों, मेरी तरफ से, हमारी तरफ से सावन की
1: बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएं। सपना, ये सावन में जो बार बार सुहाना मौसम हो जाता है ना, उस समय खिड़की खोल के ठंडी हवा का मजा लेने का आनंद ही कुछ और है। दिल करता है बस ठंडी हवा को महसूस करते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है सुरभि।
1: और सपना, मन तो ये करता है कि हम सावन में जो है वो फुहारों का आनंद ले, ठंडी हवा का आनंद ले, पर ये जो अभी जो बाहर धूप है ना, तो गर्मी भी इससे बहुत लग रही है ना।
0: बिल्कुल सही कहा सुरभि। और बारिश के साथ ही काले बादलों की उमड़ घुमड़, पेड़ों पर झूमती हरियाली और हवा में वो सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू। सच में सावन आते ऐसा लगता है ना सुरभि, जैसे हमारी पूरी प्रकृति ने नया श्रृंगार कर लिया हो और हमारी पूरी प्रकृति मुस्कुराने लगी हो। क्यों?
1: बिल्कुल सही कहा सपना। सावन का तो नाम सुनते ही मन मयूर होकर नाचने लगता है। ना जाने कितना सुकून और कितनी आज की घोल दी है कुदरत ने इस मौसम में। चारों तरफ बस खुशहाली और रंगों का मेला नजर आ रहा है।
0: और सुरभि, और बात जब रंगों की हो, तो भला सावन के मौसम में हमारी संस्कृति का वो खास रंग कैसे छूट सकता है? क्यों?
1: हाँ,
0: जो हर महिला के दिल के सबसे करीब होता है। क्यों?
1: हाँ, और मैं समझ भी चुकी हूँ सपना कि तुम किसकी तरफ इशारा कर रही हो। तुम जरूर राजस्थान के लहरिये की बात कर रही हो।
0: बिल्कुल सही कहा सुरभि कि भाई सावन के इस खास मौसम में जब ठंडी हवा चलती है और जब रंग बिरंगा लहरिया लहराता है ना, तो ऐसा लगता है भी जैसे आसमान इंद्रधनुष खुद जमीन पर उतर गया हो।
1: सच में सपना, सावन का और लहरिया का तो जन्मों जन्मों का नाता है। सावन के इस सुहाने मौसम में लहरिया सिर्फ एक पोशाक नहीं रह जाता, बल्कि हमारी खुशी और हमारे उल्लास का और हमारे तीज त्योहार की रंगत भी बन जाता है।
0: और सच में सुरभि, सावन का ये मौसम लहरिया के पंचरंगी मिलकर हमारे जीवन में एक नई उमंग भर देते हैं।
1: बिल्कुल सपना, ये सावन का मौसम ऐसे ही खुशियों की बहार लाता रहे। सावन का ये प्यारा मौसम आपके जीवन को सजाए लहरिये के हर रंग की तरह और आपके चेहरे पर मुस्कान लाए।
0: और सुरभि, और जब हवा में रंग बिरंगा लहरिया और चुनरी लहराती है ना, तो दिल अपने आप ही गुनगुनाने लगता है कुछ इस गीत की तरह।

मौसम की इस रंगत से महक उठा है आसपास। सावन लाया है खुशियों की नई आस। हर तरफ हरियाली की चादर बिछी है ए दिल, हर तरफ हरियाली की चादर बिछी है ए दिल।

0: रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: सच में सपना, सावन की ये बूंदें और लहरिए के रंग हमें खुशियां तो देते ही हैं, पर साथ ही हमें यह भी याद दिलाते हैं कि ये सारी खुशियां और खूबसूरती हमारी इस माँ प्रकृति की वजह से ही तो संभव है।
1: बिल्कुल सही कहा सुरभि तुमने कि भी हमारी संस्कृति में तो हमेशा से ही जल, जंगल और जीवन का सबसे बड़ा आधार माना गया है। और ये सिर्फ तीन शब्द ही नहीं है, बल्कि ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की सबसे अनमोल धरोहर है।
0: और सोचो सपना, जल है तो जीवन में रस है, जंगल है तो शुद्ध हवा है, और ये हरियाली है और जमीन है। जमीन तो हम सबको शरण देने वाली अन्नपूर्णा माँ है। अगर इन तीनों में से एक का संतुलन भी बिगड़ता है ना, तो हमारा इसका सीधा असर प्रकृति के सौंदर्य पर पड़ जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा सुरभि तुमने कि भी जल है तो जीवन में मिठास और ताजगी है, और जल से ही हमारी नदियाँ, कुएं और पोखर लबालब भरते हैं। जंगल है तो शुद्ध हवा, औषधिया, बेजुबान पक्षियों का बसेरा, ये हरी भरी छांव है। और हमारी जमीन, ये मिट्टी तो अन्नपूर्णा है ही, जो पूरी दुनिया का पेट भरती है।
0: सही बात है सपना, इनमें से एक का संतुलन बिगड़ता है तो उसका सीधा असर हमारी जीवन शैली, पर्यावरण और इस सावन की खूबसूरती पर भी पड़ता है। आज के इस दौर पर जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए वर्षा के जल को सहेजना, पेड़ों की कटाई को रोकना बहुत जरूरी हो जाता है, और जमीन को उपजाऊ बने रहना भी तो बहुत जरूरी है ना?
1: बिल्कुल। और अगर जल, जंगल और जमीन नहीं बचेंगे ना, तो सुरभि सावन का ये रूप, ये रिमझिम और मल्हार हम कहाँ ढूंढेंगे। प्रकृति का संरक्षण ही हमारा पहला धर्म है। सावन का ये पवित्र महीना हमें केवल उत्सव मनाने का संदेश नहीं देता, बल्कि धरती माँ का आभार व्यक्त करना और इसे सहेजने का की प्रेरणा हमें देता है।
0: इस मौसम में बारिश के पानी यानी जल की एक एक बूंद को वाटर हार्वेस्टिंग या छोटे छोटे उपायों से सहेजने की कोशिश करें, और अपनी इस पावन जमीन पर कम से कम एक पौधा लगाकर उसे जंगल जैसा हरा भरा बनाने का जिम्मा जरूर उठाएं।
1: वाह, कितनी सुंदर बात कही है तुमने सुरभि, कि जब हमारी जमीन हरी भरी होगी ना, जब जल से भरे पोखर मुस्कुराएंगे, तभी तो सावन के झूले और लहरियों के पंचरंगी रंग सच्चे मायनों में खिलेंगे। जंगल, जल और जमीन का संरक्षण ही हमारी संस्कृति का असली श्रृंगार है। जल, जंगल और जमीन को मिलकर बचाना है, प्रकृति की इस अनमोल धरोहर से जीवन को सजाना है। और सुरभि, और प्रकृति के इसी सुंदर रूप, धरती और गगन के इसी अटूट रिश्ते को बयां करता है ये हमारा प्यारा सा नगमा।

0: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: सुरभि, जब भी अपने देश की आजादी का इतिहास पन्नों पर उभरता है ना, तो दिल गर्व से भर जाता है। देश को आजाद कराने में जहां अनगिनत वीरों ने अपनी जान की बाजी लगाई, वहीं हमारे भारत की बेटियों ने भी किसी से कम हिम्मत नहीं दिखाई दी। और जब बात आती है हमारी मरुधरा, हमारे राजस्थान की, तो यहाँ की महिलाओं ने तो सामाजिक बंधनों और घूंघट की ओट को पीछे छोड़कर ऐसी हिम्मत दिखाई जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। तो सखियों, इसी संदर्भ में सुनते हैं एक वार्ता। वार्ता का विषय है स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान की महिलाओं का योगदान। वार्ताकार है डॉक्टर कांता वीणा।
2: किसी देश या राज्य की स्वाधीनता के लिए उसके विरोधियों प्राय शासक से युद्ध करने को स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। देश में जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, तब राजस्थान भी उससे अछूता नहीं रहा। राजस्थान में अंग्रेजों का अजमेर पर आधिपत्य था, शेष राजस्थान पर राजा महाराजाओं का शासन था। अंग्रेजों ने देशी रियासतों के कामकाज में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था, जिसके कारण राजस्थान में किसानों व जनजातियों व महिलाओं आवाज उठाई और संघर्ष किया। कालांतर में विभिन्न रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना हुई। प्रजामंडलों ने लोगों में राजनीतिक चेतना जागृत की एवं बाद में राजस्थान के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान की महिलाओं के द्वारा अग्रणी भूमिका निभाई। इसके योगदान ने स्वाधीनता आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की।

अमर शहीद वीर बालिका कालीबाई। वीर बालिका कालीबाई का जन्म जून 1935 को सोमाभाई के घर हुआ। डूंगरपुर रियासत के शासक महारावल अंग्रेजों को हुकूमत की सहायता से अपना राज्य चलाते थे। 1942 में महारावल ने कानून बनाकर अपनी रियासत में पाठशालाओं को बंद करने की योजना बनाई। डूंगरपुर राज्य में जन जागृति हेतु सेवा संघ के द्वारा पाठशालाएं खोली गई। जब शिक्षक सेंगाबाई अध्यापन का कार्य करवा रहे थे, पुलिस के द्वारा सेंगाबाई को अपनी गाड़ी के पीछे रस्सी से बांधकर घसीटकर ले जाया जा रहा था। जैसे कालीबाई को पता चला तो वह गाड़ी के पीछे भागी और रस्सी को दांतली से काटकर अपने गुरुजी को बचाया। पुलिस वालों ने गोली चलाई। गोली लगने से कालीबाई शहीद हो गई। मात्र 12 वर्ष की उम्र में जागीरदारों व अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध बहादुरी की एक मिसाल कायम कर शिक्षा की अलख जगाई। अंजना देवी, स्वतंत्रता सेनानी और लेखिका अंजना देवी, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के साथ साथ एक लेखिका के तौर पर भी लोगों को जागरूक किया। अंजना देवी गांधी जी की अनुयायी और गांधीवादी साहित्य की प्रशंसक थी। एक बार वो 500 महिलाओं को एकत्रित कर अवैध रूप से गिरफ्तार किए गए किसानों को छुड़ा लाई थी। ब्रिटिश शासक का विरोध करने के लिए उन्हें 2 बार जेल भी जाना पड़ा। आजादी के बाद उन्होंने समाज उत्थान के लिए काम करने के साथ उन्होंने महिलाओं में चेतना जागृत कर उन्हें सशक्त बनाया। उन्होंने 1921 से 1924 तक महिलाओं में राजनीतिक चेतना जगाने का कार्य किया। इन्हें अपने पति स्वतंत्रता सेनानी रामनारायण चौधरी से राजनीतिक गतिविधियों और समाज सेवा का शुरुआती ज्ञान मिला। सीकर में हुए सत्याग्रह का नेतृत्व भी अंजना देवी के द्वारा किया गया। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण राजस्थान से गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला अंजना देवी थी। अपने पति रामनारायण चौधरी व अन्य सदस्यों के द्वारा मिलकर राजस्थान सेवा संघ का गठन किया गया। श्रीमती सुमित्रा खेतान, राजस्थान चरखा संघ की मंत्री श्री मदनलाल खेतान की पत्नी, सत्याग्रह में केसरी साड़ी पहनकर कंधे पर हरा थैला व हाथों में तिरंगा झंडा लिए 2 वर्ष के बच्चे के साथ गिरफ्तार हुई और जेल गई। दुर्गा देवी शर्मा, शेखावटी की महिला, सत्याग्रह का प्रथम जत्था दुर्गा देवी शर्मा के नेतृत्व में 18 मार्च 1939 को सत्याग्रह के लिए जयपुर पहुंचा। दुर्गावती देवी शर्मा झुंझुनू जिले के चेरी बड़ी गांव के स्वतंत्रता सेनानी पंडित ताड़केश्वर शर्मा की पत्नी थी। नगेंद्र बाला, कोटा की स्वतंत्रता सेनानी समाज सेविका, जो 1941 से 1947 तक किसान आंदोलन में सक्रिय रही। नगेंद्र बाला राजस्थान की प्रथम जिला प्रमुख बनी। वह सदैव महिला कल्याण कार्यों में जुड़ी रही। बाला प्रसिद्ध क्रांतिकारी केसरी सिंह बाराहट की पोत्री और प्रताप सिंह बाराहट की भतीजी थी। श्रीमती इंदु देवी गोयनका, जोधपुर की 15 वर्षीय इंदु मती जी का त्याग अपूर्व था। यह धनी परिवार में बड़े लाड़ प्यार से पली हुई थी, किंतु विवाह के 6 माह बाद ही अपने माता पिता व सास ससुर को छोड़कर हंसते हंसते सत्याग्रह में मारवाड़ी समुदाय के योगदान के लिए जानी जाती है। कुछ महिलाओं को लेकर 1930 में राष्ट्रीय महिला समिति की स्थापना की। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में बंगाल से गिरफ्तार होने वाली प्रथम राजस्थानी महिला थी श्रीमती जानकी देवी बजाट। सेठ जमनालाल बजाज की धर्म पत्नी व राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ कस्बे के मूल निवासी सेठ गिरधारी लाल जी की पुत्री, जिनका जन्म 7 जनवरी को जावरा मध्य प्रदेश में हुआ। बजाज ने विनोबा भावे के सानिध्य में गो सेवा का कार्य भी किया। भूदान यज्ञ व कूपदान कार्यक्रमों में इनकी सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 में जानकी देवी बजाज को पद्म भूषण से अलंकृत किया। पद्म भूषण प्राप्त करने वाली यह राजस्थान की प्रथम महिला व्यक्तित्व थी। श्रीमती किशोरी देवी, सरदार हल्लाल सिंह की धर्म पत्नी, जिनके नेतृत्व में सीहोट के जमींदारों के द्वारा महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार का विरोध करने के लिए 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में हुए एक विशाल महिला सम्मेलन में 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। सम्मेलन की अध्यक्षता श्रीमती किशोरी देवी, जागीर प्रथा के विरोध के साथ उन्होंने अपने पति हरलाल सिंह के साथ मिलकर किसान आंदोलन को आगे बढ़ाया। अनेक बार सामंती व पुलिस व्यवस्था से टक्कर लेनी पड़ी। श्रीमती फूला देवी, झुंझुनू जिले की मंडासी गाँव की चौधरी आशाराम की पत्नी श्रीमती फूला देवी जी, प्रजामंडल सत्याग्रह में महिलाओं के जत्थे का नेतृत्व किया। 1932 में फूला देवी झुंझुनू में हुए महाअधिवेशन में अपने पुत्र पुत्रियों के साथ आई और उन्होंने चंदे के रूप में अपने पैरों के चांदी के कड़े उतार कर दे दिए। खेतूबाई, बीकानेर के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी वेद बंगाराम की बहन, जिन्होंने दूधवा खारा किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया। उन्होंने जीवन पर्यंत खादी वस्त्र धारण करने का व्रत लिया। बीकानेर की महिलाओं

में राष्ट्रीय भावना का प्रसार करके अत्याचारों का मुकाबला करने को प्रेरित करना इनका मुख्य लक्ष्य रहा। लक्ष्मी देवी आचार्य, यह बीकानेर के श्रीराम आचार्य की पत्नी थी। इनके जीवन का अधिकांश समय कलकत्ता में बीता। 1930 से 31 में इन्होंने कलकत्ता में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार आंदोलन में भाग लिया। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में दोनों बार 6-6 माह की जेल हुई। जेल से मुक्ति के बाद बंगाली संस्था की अध्यक्ष निर्वाचित हुई। यह बीकानेर प्रजा मंडल के संस्थापकों में से एक थी। बीकानेर के जन आंदोलन के पक्ष में मारवाड़ी समाज में लोकमत जागृत किया। 1940 के बाद वह व्यक्तिगत सत्याग्रह में गिरफ्तार हुई। नारायणी देवी वर्मा, राजस्थान के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री माणिक्यलाल वर्मा की धर्मपत्नी, जिनका राजस्थान की महिला स्वतंत्रता सेनानी में अग्रणी स्थान है। इनका जन्म मध्य प्रदेश के सिंगोली ग्राम में हुआ था। इन्होंने देश में प्लेग महामारी के दौरान बहुत सहायता की। वह जब 1939 में वर्मा जी जेल चले गए तो प्रजामंडल का संचालन भी किया। इन्होंने 14 नवंबर 1944 को भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की। 1952 से 53 में वर्मा जी के साथ मिलकर आदिवासी कन्या महाविद्यालय की स्थापना की। 1970 से 76 तक राज्यसभा की सदस्य रही। नारायणी देवी विभिन्न ग्रंथों के अध्ययन से तथा अपने पति के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में कार्य करते करते अपनी बौद्धिक क्षमता को धारेदार बना लिया था। बिजोलिया में शिक्षा व समाज सुधार से प्रारंभ किया आंदोलन, सार्वजनिक जीवन, किसान सत्याग्रह, प्रजामंडल सत्याग्रह व भारत छोड़ो आंदोलन तक गतिशील रहा। उन्हें जेल यातनाओं से भी गुजरना पड़ा। 12 मार्च 1977 को उनका निधन हो गया। मणिबहन पांड्या, भोगीलाल पांड्या की धर्म पत्नी, जिन्होंने अपने पति के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में बराबर सहयोग किया। श्रीमती शकुंतला त्रिवेदी, बांसवाड़ा राज्य प्रजा मंडल की गतिविधियों का संचालन करने के लिए श्रीमती शकुंतला त्रिवेदी ने बांसवाड़ा में स्वयं सेवक दल का गठन व प्रजा मंडल आंदोलन में हिस्सा लिया। श्रीमती सत्यभामा, बूंदी के नित्यानंद नागर की पुत्र वधु सत्यभामा ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर भारी कष्ट उठाए। इन्हें अपने 2 बच्चों के साथ जेल भी जाना पड़ा। ब्यावर अजमेर आंदोलन 1932 का भार इन्हीं के कंधों पर आ पड़ा। गांधी जी की मानस पुत्री होने का इन्हें सौभाग्य 1942 में इन्हें भी जेल की सजा काटनी पड़ी। श्रीमती शांता त्रिवेदी, राजस्थान महिला जागरण की दिशा में कार्य करने वाली अग्रणीय महिलाओं में इनका नाम है। उदयपुर में प्रजामंडल के आंदोलन में स्वयं सेविका के रूप में इन्होंने भाग लिया और विद्यार्थियों में राष्ट्रीय चेतना का संचार किया। सामंतवाद के विरुद्ध छिड़े संघर्ष में 4 अप्रैल 1948 को महिलाओं का नेतृत्व करते हुए जब वह रंग निवास पहुंची तो सामंतवादियों की ओर से उन पर भयंकर हमला हुआ, जिसमें वे घायल हो गई। श्रीमती भगवती देवी विश्नोई, उन्होंने 1933 से 34 में अजमेरी नैरली आश्रम में रहकर हरिजन जातियों के समाज सुधार और शिक्षा के प्रसार का कार्य किया। 1938 में प्रजामंडल के आंदोलन में वह एक बार भीलवाड़ा में गिरफ्तार हुई। 1942 में भी 6 महीने उदयपुर सेंट्रल जेल में नजरबंद रही। सत्यवर्ती शर्मा, इनके नेतृत्व में महिलाओं का प्रथम जत्था मथुरा से भरतपुर सत्याग्रह करने पहुंचा। इस जुलूस में इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वह इनके साथ 2 बच्चियां भी थी, जिन्हें इनसे छीनकर अनाथालय में भेज दिया गया। 1949-1947 तक यह भरतपुर के प्रजामंडल आंदोलन में भाग लेती रही। सुशीला त्रिपाठी, अलवर के लोक जागरण के अग्रदूत लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी की पत्नी थी। अपने पति के साथ हिंदी प्रचार का कार्य मद्रास में किया। हिंदुस्तान सेवा संघ की शाखा को सहयोग दिया। दिल्ली के चांदनी चौक में सत्याग्रह किया तथा 6 महीने की कारावास का दंड मिला। रतन शास्त्री, जब जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह में मुख्य कार्यकर्ता गिरफ्तार हो गए थे तब अन्य व्यवस्था का जिम्मा संभालने वालों में यह भी शामिल थी। रतन शास्त्री वनस्त्री विद्यापीठ में अपने पति की सहभागिता थी। अगस्त 1942 में इन्होंने विद्यापीठ के कार्यकर्ताओं और छात्रों को आंदोलन में भाग लेने की खुली छूट दे दी थी। पद्मश्री व पद्म भूषण से सम्मानित होने वाली यह राज्य की एकमात्र महिला है। श्रीमती कोकिला देवी, नमक सत्याग्रह में अन्य महिलाओं के साथ कोकिला देवी ने अजमेर में सत्याग्रह किया और गिरफ्तार हुई। श्रीमती मेहता, राजनारायण मेहता की पत्नी व बूंदी राज्य के भूतपूर्व प्रधान सेनापति पंडित निरंजन दास नागर की पुत्र वधु श्रीमती मेहता ने महिलाओं में जन चेतना को बढ़ाने का दायित्व आपने खूब ही निभाया। श्रीमती रामलोरी देवी, 1930 से 1947 तक उन्होंने प्रत्येक आंदोलन में सभा, जुलूस, राजनीतिक समारोह में भाग लिया। ये शेखावटी किसान आंदोलन से संबंध रही और अपने 6 माह के पुत्र के साथ जेल गई। श्रीमती रमा देवी, बिजोलिया आंदोलन के समय पंडित लादूलाल जोशी की पत्नी रमा देवी 1931 में बिजोलिया गई, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और वहां से निकल जाने को कहा, किंतु उनका जवाब था, जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वह यहां आती रहेगी। वहां के

0: कोतवाल ने अपमानित किया, पिटाई की, किंतु वह दृढ़ रही। 1930 से 32 में सत्याग्रह व सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया, वह जेल भी गई। श्रीमती भारती देवी, इन्होंने जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह में महिलाओं के जत्थे के साथ गिरफ्तार हुई और 3 महीने की सजा हुई। श्रीमती सरस्वती देवी पांडे, श्रीमती पांडे प्रजामंडल के आंदोलन में गिरफ्तार हुई तथा जेल भी गई। राम प्यारी शास्त्री, काशी नागरी प्रचारणी सभा में संबंध रही तथा अपने ओजस्वी भाषणों से राष्ट्रीय भावनाओं को उभारने में सफल रहा करती थी। श्रीमती राम दुलारी शर्मा, कोटा के रामपुरा क्षेत्र में 13 अगस्त 1942 को क्रोधित होकर महिलाओं की भीड़ ने राम प्यारी के नेतृत्व में कोतवाली को घेर लिया। श्रीमती सावित्री देवी भाटी, 1942 में जब मारवाड़ लोक परिषद ने उत्तरदायित्व शासन के लिए आंदोलन शुरू किया तब वह सार्वजनिक क्षेत्र में कूद गई, गिरफ्तार हुई तथा जेल भी गई। उन्होंने महिलाओं को जागृत करने के लिए कठोर परिश्रम किया। श्रीमती गंगाबाई कजोड़ देवी, जिन्होंने प्रजामंडल के आंदोलन में भाग लिया, यह महिला वर्ग में प्रथम थी जो परिवार की सीमाओं को तोड़कर आई। नवाद्वार में रात दिन की हड़ताल के समय पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर बहुत यातनाएं दी। विजया बहन भाव सागर ने प्रजामंडल के सहयोगी संगठन के रूप में महिला का गठन कर बांसवाड़ा अनाज आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई। स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान की महिलाओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके साहस शौर्य बलिदान से अपना लोहा मनवाया, हम इनके योगदान को हमेशा याद रखेंगे।
1: बहनों, अभी आपने सुनी वार्ता। वार्ता का विषय था स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान की महिलाओं का योगदान। वार्ताकार डॉक्टर कांता मीणा। बहनों, मरुधरा की इन महान बेटियों के त्याग ने हमारी इस माटी को और भी पावन और गौरवान्वित बनवा दिया है। और जब बात हमारी इस सुहानी राजस्थान की मिट्टी की हो तो दिल खुशियों से और संगीत से भर जाता है। तो सखियों, इस खास एहसास के साथ आगे बढ़ते हैं और अब सुनते हैं हमारी मरुधरा का यह सदाबहार और मीठा सा गीत।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: सुरभि, सावन की इस महीने में अभी हमने बात की सावन के झूले की, जिम जिम फुहारों और लहरियों के रंगों की, तो सुरभि, ये अगस्त का महीना सिर्फ कुदरत के सजने का महीना ही नहीं है, बल्कि ये महीना आज़ादी की उस सबसे बड़ी क्रांति का साक्षी है जिसने अंग्रेजों की हुकूमत की नींव को हिलाकर रख दिया था।
3: अरे वाह सपना, तुम तो भारत की स्वतंत्रता संग्राम की उस ऐतिहासिक घटना की बात कर रही हो जिसने पूरे देश को एक सूत्र में पिरो दिया।
2: सही पहचाना सुरभि तुमने, के द्वितीय विश्व युद्ध के उस दौर में जब पूरा देश ब्रिटिश शासन के अत्याचारों से तंग आ चुका था, तब 8 अगस्त 1942 की उस रात को मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान, जिसे आज हम क्रांति मैदान के नाम से जानते हैं, में अखिल भारतीय कांग्रेस की एक कमेटी की बैठक हुई और वहीं से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने ऐतिहासिक बिगुल फूंका था। वो था ऐतिहासिक बिगुल भारत छोड़ो आंदोलन का।
3: और सपना, इसी मैदान से बापू ने देशवासियों को वो ऐतिहासिक मंत्र दिया, करो या मरो। इसका मतलब था कि या तो हम भारत को आजाद करवाएंगे या फिर इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे, लेकिन गुलामी का एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।
2: और हाँ सखियों, उस एक हुंकार का असर क्या हुआ, 9 अगस्त की सुबह होते होते अंग्रेज सरकार ने बौखलाकर ऑपरेशन जीरो ओवर चला दिया और गांधी जी, सरदार पटेल, पंडित नेहरू जैसे तमाम बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। और अंग्रेजों को लगा कि नेता तो जेल में चले जाएंगे तो आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन वो भूल गए थे कि अब ये आंदोलन नेताओं का नहीं बल्कि भारत जनता का अपना आंदोलन बन चुका था।
3: बिल्कुल सपना, जब नेतृत्व करने वाले बड़े नेता जेल में थे तब आम जनता ही नेता बन गई थी। अरुणा आसफ अली जैसे वीरांगना ने पुलिस की लाठियों और गोलियों की परवाह किए बिना ग्वालियर टैंक मैदान पर तिरंगा फहरा दिया। उषा मेहता जी ने गुप्त रूप से कांग्रेस रेडियो चलाकर आजादी की खबरें पहुंचाई।
2: और सबसे अद्भुत बात यह है कि सुरभि, इस आंदोलन में समाज के हर वर्ग ने हिस्सा लिया, चाहे वो खेत में हल चलाने वाला किसान क्यों ना हो, कारखाने में काम करने वाला मजदूर हो, स्कूल कॉलेज छोड़ने वाले युवा या फिर घर की देहरी पार करके सड़कों पर उतरी हमारी माताएं और बहनें। देश के कोने कोने में जन सैलाब उमड़ पड़ा था, जगह जगह पर जुलूस निकलवाए गए, हड़तालें हुई और विदेशी हुकूमत के प्रतीकों का बहिष्कार किया गया।
3: सच में सपना, भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों को यह साफ संदेश दिया कि भारत पर उनका शासन चलाना नामुमकिन है। यह आंदोलन भारतीय जनता के अटूट साहस, त्याग और बलिदान की एक मिसाल बना जिसने 1947 में हमारी आज़ादी का रास्ता पूरी तरह साफ कर दिया।
2: और सुरभि, आज जब हम आज़ाद भारत की इस पावन मिट्टी पर सावन की फुहारों का आनंद लेते हैं, अपनी संस्कृति और धरोहर पर गर्व करते हैं, तो हमें उन तमाम अनाम शहीदों, स्वतंत्रता से नानियों और वीरों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिनकी शहादत की बदौलत से हम आज आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं, कुछ इस तरह।

0: सुरभि, अगस्त का ये महीना जहाँ एक तरफ क्रांति और देशभक्ति के रंगों से भरा है, वहीं दूसरी तरफ ये महीना हिंदी साहित्य की उन महान शख्सियतों को याद करने का भी समय है जिन्होंने अपनी लेखनी से अपने समाज को एक नई दिशा दी।
1: अरे वाह सपना, तुम तो हिंदी साहित्य के उस महान बरगद की बात कर रही हो जिनकी कहानियों और उपन्यासों ने हर आम भारतीय के दिल को छुआ है। वो है भीष्म साहनी जी।
0: बिल्कुल सही कहा सुरभि। और 8 अगस्त 1915 को जन्मे महान कथाकार, नाटककार और अनुवादक भीष्म साहनी जी की जयंती भी इस अगस्त के महीने में आती है। और सुरभि, तुम्हें पता है अभी हमने भारत छोड़ो आंदोलन की बात की थी, तो भीष्म साहनी जी केवल एक लेखक ही नहीं थे बल्कि 1942 के आंदोलन में उन्होंने खुद स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई थी और वो जेल भी गए थे।
1: क्या बात है सपना, यानी एक तरफ देशभक्ति का जुनून और दूसरी तरफ कलम की ताकत। भीष्म साहनी जी की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि उनकी लेखनी में समाज का दर्द, आम इंसान की संवेदनाएं और जीवन का कड़वा सच बहुत ही सादगी के साथ झलक कर आता था।
0: बिल्कुल सुरभि। और उनका कालजयी उपन्यास तमस भला कौन भूल सकता है, देश के विभाजन की त्रासदी, सांप्रदायिक का जहर और उस दौर में पीसती आम इंसानियत का जो जीवंत और मार्मिक चित्रण उन्होंने तमस में किया है वो आज भी पढ़ने वालों की रूह कपा देता है। और इस रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।
1: और सपना सिर्फ तमस ही क्यों, उनके नाटक हानूश, कबीरा खड़ा बाजार में और कहानियां जैसे चीफ की दावत आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। चीफ की दावत कहानी में तो उन्होंने जिस तरह बूढ़ी माँ के प्रति बदलते सामाजिक रवैये को दर्शाया है वो हर पाठक की आंख को नम कर देता है।
0: और बिल्कुल

0: भी। और तुम्हें मालूम है हमारे महान अभिनेता बलराज सहनी के छोटे भाई होने के बावजूद भीष्म जी ने साहित्य और रंगमंच की दुनिया में अपनी एक अलग और अमिट पहचान बनाई। पद्म भूषण से सम्मानित भीष्म सहनी जी हमेशा ये मानते थे कि साहित्य का काम सिर्फ मनोरंजन करना नहीं बल्कि समाज में मानवीय मूल्यों और भाईचारों को जिंदा रखना है।
1: सच में सपना सावन की फुहारें जैसे प्रकृति को नया जीवन देती है, वैसे ही भीष्म सहनी जी का साहित्य हमारे विचारों को संवेदनशील और बनाए रखता है। आज उनकी जयंती के अवसर पर हमें उनकी रचनाओं को पढ़कर अपनी नई पीढ़ी तक उनके विचारों को पहुंचाने का संकल्प लेना चाहिए।
0: बिल्कुल सुरभि, चाहे आजादी की लड़ाई हो, जल जंगल जमीन को बचाना हो या फिर साहित्य की दुनिया, हर जगह एक बात समान है कि कोई भी बड़ा बदलाव अकेला इंसान नहीं ला सकता, उसके लिए एकता और टीम वर्क की जरूरत होती है।
1: वाह सपना, कितना सुंदर मोड़ लिया है तुमने। और ये बात हमारी बच्चों को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जो अभी सावन का मजा ले रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और बच्चों के जीवन में टीम वर्क यानी मिलकर काम करने की भी आदत का बहुत बड़ा महत्व है। अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि हर खेल या काम में सिर्फ अकेले ही उन्हें जीतना है, लेकिन जब वे टीम में काम करना सीखते हैं तो वो शेयरिंग, केयरिंग और एक दूसरे की मदद करना सीखते हैं।
1: बच्चों के जीवन में टीम वर्क यानी मिलकर काम करने की आदत का बहुत बड़ा महत्व है। अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि हमें केवल खेल ही खेलना है या फिर सिर्फ अकेले ही जीतना है, लेकिन जब टीम में काम करते हैं तो वो समझ जाते हैं।
0: तो इसलिए सभी माता तक यही मुझे यही कहना है कि बच्चों को केवल आगे बढ़ने की होड़ में ना डालें बल्कि उन्हें खेल खेल में टीम वर्क का महत्व सीखे, क्योंकि जब हमारे बच्चे मिलकर सोचना और काम करना सीखेंगे तभी तो हमारा देश और समाज भी आगे बढ़ेगा। तो बहनों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे नई बातों के साथ, नए जज्बातों के साथ, नए नगमों के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए आपकी अपनी रेडियो सखी सपना व्यास।
1: सुरभि बोहरा को स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 2 बज रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार।

0: over the construction project. A federal appeals court has blocked work on the proposed White House ballroom. Trump has described the court ruling as a national security threat and a national disgrace, and said his administration would challenge the decision before the U.S. Supreme Court. At least three people, including a child, have been killed in overnight Russian missile strikes near the Ukrainian capital Kyiv. The attacks hit areas east of Kyiv in the early hours today. Regional Military Administration Chief Temur Kachenko said three people were also injured in the ballistic missile strikes. India opened its medal account on the third day of the World Athletics Under-20 Championships in Eugene, USA, with Ashish Yadav winning silver in the men's javelin throw. The 19-year-old produced his best effort of 74.09 meters in his third attempt to finish second. Ashish became only the second Indian after Neeraj Chopra to win a silver in the event at the World Athletics Under-20 Championships. South Africa's Jan Hendrik Heymans won the gold with a throw of 80.5 meters. Indian shuttler Ashmita Chaliha has reached the women's singles final of the Korea Masters Super 300 Badminton Tournament in Asan, South Korea. Ashmita defeated fellow Indian Rakshita Ramraj in the semi-final today. Ashmita will face China's Qiu Han in the women's singles final tomorrow. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says self-reliance in emerging sectors like semiconductors, space and drones will serve as a strong foundation for Viksit Bharat. Urges IIT students to keep national interests at the center of their decisions. Jharkhand government holds a second round of talks with student protesters over alleged irregularities in JPSC and GSSE examinations. Seven people killed and 11 injured in a private bus accident in Chamba district of Himachal Pradesh this morning. IMD issues orange alert for heavy to very heavy rainfall over Rajasthan and Odisha today. Amarnath Yatra from Jammu towards Baltal suspended due to bad weather conditions. And in men's javelin throw, Ashish Yadav wins silver at World Athletics Under-20 Championships in United States. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने आईआईटी के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतल की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों के भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
2: आप सब जानते हैं, हर पीढ़ी के सामने उस टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती है और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण

0: आपके लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
0: श्री मोदी ने सोशल मीडिया के युग में उत्पन्न होने वाले विकर्षणों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को वेतन, नौकरी या कार्यक्षेत्र के आधार पर दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना चाहिए।
1: जब हम बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए प्रारंभ करते हैं तो एक बड़ा डिस्ट्रक्शन भी हमारे सामने आता है। ये डिस्ट्रक्शन होता है एक दूसरे से कंपेरिजन का। लेकिन याद रखिए, जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है, आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा।
0: इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण ने भारत के शिक्षा तंत्र को शिक्षार्थी केंद्रित, अनुसंधान आधारित और भविष्योन्मुखी बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के संस्थानों में नया आत्मविश्वास जगाया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में परम प्रज्ञा नामक एक उच्च दक्षता की कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन भी किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और उन्हें कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावशाली कानूनी ढांचा तैयार करना है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस विधेयक को मानसून सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। झारखंड में आज JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के बीच विभिन्न समूहों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता का दूसरा दौर आज आयोजित किया गया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: आज रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार द्वारा गठित मंत्रियों की विशेष कमेटी और छात्र संगठनों के बीच दूसरे दौर की वार्ता सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई। सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल ID भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच परीक्षा गड़बड़ी मामले की जांच कर रही CID ने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और आयोग के 3 वर्तमान सदस्यों को पूछताछ के लिए समन भेजा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मध्य प्रदेश के भोपाल में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक आज से शुरू हुई। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में इस बैठक में सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालय, रचनात्मक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भोपाल में 5 अगस्त से चल रहे ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के तहत आज ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हो रही है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में हो रही इस बैठक में दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्री भी शामिल हैं। बैठक में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की घोषणा, जिसे भोपाल डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा, साथ ही सांची कल्चर कनेक्ट पर भी चर्चा होगी। बैठक के बाद मंत्री और प्रतिनिधि सांची के विश्व धरोहर स्थल का भ्रमण करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
0: ये समाचार हमारे NewsOnAIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया है कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन शहरी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी और भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करके उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। सहकारी समितियों में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एक

0: केंद्रीय शासी या सहायक निकाय होता है जिसका गठन कई स्वतंत्र सहकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। मुंबई के फोर्ट क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। सहकारी क्षेत्र की शक्तियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि छोटे छोटे निवेश को जोड़कर बड़े कारोबार के लिए बड़ी पूंजी जुटाई जा सकती है।
1: मेरा जो कोऑपरेटिव का समझ है, बड़ा व्यापार करने के लिए छोटे छोटे लोगों की कोऑपरेटिव बनाकर छोटी पूंजी से बहुत बड़ी पूंजी निर्मित कर बड़ा व्यापार किया जा सकता है। अमूल आज 1,25,000 करोड़ का व्यापार करता है। इप्को, क्रिप्को, एक जमाने में लिज्जत पापड़, ये किसी में भी पूंजी का निवेश 50 रुपया से ज्यादा नहीं है और आज अमूल विश्व का खाद्य पदार्थों का सबसे ज्यादा लोकप्रिय ब्रांड बन व्यापार कर रहा है।
0: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि बिहार से पहली बार जीआई टैग वाले मिथिला मखाना की 18 मीट्रिक

0: पापड़ ये किसी में भी पूंजी का निवेश 50 रुपया से ज्यादा नहीं है और आज अमूल विश्व का खाद्य पदार्थों का सबसे ज्यादा लोकप्रिय ब्रांड बन व्यापार कर रहा है।
1: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि बिहार से पहली बार जीआई टैग वाले मिथिला मखाना की 18 मीट्रिक टन खेप ऑस्ट्रेलिया भेजी गई है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दरभंगा में किसानों से सीधे खरीदी गई इस खेप से उन्हें बाजार मूल्य की तुलना में लगभग 18% से अधिक लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सहयोग से हासिल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये लेख भारत के बढ़ते आत्मनिर्भर चिकित्सा प्रौद्योगिकी तंत्र को उजागर करता है, जो घरेलू विनिर्माण, आयात पर कम निर्भरता और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना और मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी पहलों से आगे बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। ये दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा जा रही थी। चलवांज मोड़ के पास चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति को देखते हुए आज जम्मू से बालतल की ओर श्री अमरनाथ जी यात्रा रोक दी गई है। हालांकि बालतल से पवित्र गुफा की ओर यात्रा सामान्य रूप से जारी है। सुबह से 2500 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को जम्मू की ओर जाने की अनुमति दी जा रही है। मौसम विभाग ने केरलम में मूसलाधार बारिश की आशंका को देखते हुए आज 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और शेष 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कल के लिए 4 उत्तरी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आज लक्षद्वीप, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश में इस महीने की 10 तारीख तक तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली NCR में मौसम विभाग ने आज दिन भर बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। भानु प्रताप के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। एक रिपोर्ट।
3: रेलवे ने ओणम के दौरान यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 14 अगस्त से 6 सितंबर के बीच अब तक 112 विशेष ट्रेन सेवाओं की घोषणा की है। इनमें से 38 विशेष ट्रेन दक्षिण रेलवे के अंतर्गत चलाई जाएंगी। दक्षिण रेलवे ने अन्य रेलवे जोन के लिए भी 16 अतिरिक्त विशेष ट्रेन की घोषणा की है। इसके अलावा अन्य रेलवे जोन भी इस दौरान 58 विशेष ट्रेन चलाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। उधमपुर में महिलाओं का एक समूह हर घर तिरंगा अभियान के तहत हाथ से राष्ट्रीय ध्वज और तिरंगे से जुड़ी सजावटी वस्तुएं तैयार कर रहा है। हरियाणा में हर घर तिरंगा अभियान और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल से 17 अगस्त तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रात में रूस द्वारा किए गए मिसाइल हमले में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन प्रमुख

0: मूर ताकाचेंको ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों में 3 लोग घायल भी हुए हैं। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत को पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। 19 वर्षीय आशीष ने 74.09 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के जॉन हैंड्रिक हैंसमैन ने स्वर्ण पदक जीता। अश्मिता चालिहा दक्षिण कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने आज सेमीफाइनल में हमवतन रक्षिता रामराज को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने IIT के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतर की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत। सुनिए, फिल्म का नाम है कसूर। स्वर है अलका याग्निक और कुमार सानू के।

तेजस 2023 फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना अरिजीत सिंह और शाश्वत सचदेव की आवाज़ों में। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है पाठशाला, स्वर है सलीम मर्चेंट का।

सांवरिया फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना पार्थिव गोहिल के स्वर में। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए रशीद अली और यशवंतरा दास की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है जाने तू या जाने ना।

फिल्म देसी बॉयज़ में मीका सिंह और शेफाली अलवारिस के गाए इस गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दोपहर के 3 बज रहे हैं, हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे हमारी नियमित सांध्यकालीन सभा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी
0: मन चाहेगी आप सभी को नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतर्देशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मन चाहे गीत कार्यक्रम में। और आज के इस कार्यक्रम का आगाज हो रहा है मिस्टर नटवरलाल फिल्म के गाने से। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें और फरमाइश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक और सुशांत नायक। सेक्टर 18 जगाधरी हरियाणा से विनय मोहन, मीनाक्षी, पलोमा और डॉक्टर ईशानी। और ये चिट्ठी लखी श्रीवास्तव, दिशा, दिव्यांश और रूही की है, अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से। इसके अलावा ये खत है चेतन शामतकर और ज्योति शामतकर और पुरुषोत्तम शामतकर का, उल्हासनगर से। और इसी गाने की फरमाइश करने वाले ये श्रोता हैं गुजरात भावनगर से राहुल ओझा, दीपल और

की नाम कुछ प्राप्तक ओझा जैसा कुछ नाम लिखा हुआ है और ये कर्नाटक से चिट्ठी है। चिन्ना तिरुपति से श्यामला प्रकाश अश्विनी रमेश आनंद और मनवित की, आप सभी सुनिए ये गाना। लता मंगेशकर और किशोर कुमार। गीत आनंद बख्शी, संगीत राजेश रोशन।

कार्यक्रम का अगला गीत जमाने को दिखाना है, फिल्म से है और इस गाने को शैलेंद्र सिंह ने गाया है। आपको बता दें कि मजरू सुल्तानपुरी का लिखा यह गीत आरडी बर्मन ने कंपोज किया और चिट्ठी लिखी घड़ी नांदूरा से श्री कृष्ण बाठे, संदीप अमूल्य और वैशाली बाठे ने। इसी गाने के लिए राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती जासमीन और प्रयागराज का खत है और ये चिट्ठी है रवि भाई सिसोदिया, मुन्ना भाई सिसोदिया, गीताबा सिसोदिया, धर्मराज, करणराज और पूरे सिसोदिया परिवार की केदारनाथ सोसाइटी से। वामन मगरे मराठवाड़ा नांदेड़ से इन्होंने चिट्ठी लिखी है और वारंगा फाटा जिला हिंगोली से कुंडलीक मोरे, पांडुरंग मोरे, अश्विनी मोरे और वैष्णवी मोरे ने चिट्ठी लिखी है और दिलचस्प ये है कि केदारनाथ सोसाइटी वाले हमारे श्रोताओं ने अपना नाम नहीं लिखा, वो नाम अपने शहर का नाम लिखना भूल गए। आपके लिए ये गाना

विविध भारती पर आप मन चाहे गीत कार्यक्रम सुन रहे हैं और अब जो गाना आ रहा है उसके लिए आप सभी के खत मिले हैं। अल्लिया नगर केंड गांव से भाऊ साहिब, नवथर, अक्षय चंदन, जय कुमार चंदन, रुचिता चंदन और इनका परिवार। ये चिट्ठी है टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से अशोक कुमार, श्याम कुमार, प्रमिला, चीनू, आसमा, दीपक, अनुश्री और पूरे श्याम कुंवर परिवार की और बहुत ही रंग बिरंगी चिट्ठी राजेश वाघमारे, प्रिया वाघमारे, रोहन वाघमारे और नेहा वाघमारे की। जूना तारफेल अकोला महाराष्ट्र से, फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा और ये पूरा परिवार हयात कॉलोनी अररिया बिहार से इस गाने को सुनना चाहता है। उदयपुर से फरमाइश आई है अशरफ खान, जब्बार मोहम्मद, तजीब खान, मंजू और निम्मी की। आप सभी की फरमाइश पर सौतन फिल्म का गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, गीत सावन कुमार, संगीत उषा खन्ना।

0: बिल्कुल नहीं,
1: हाँ।
0: तेरी कसम आऊंगा।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं मनचाही गीत कार्यक्रम, और मनचाही गीत कार्यक्रम में देश भर से हमारे श्रोता लिखते हैं चिट्ठियां और इंतजार करते हैं अपनी चिट्ठियां शामिल होने का और अपने गानों का। संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया बागपत उत्तर प्रदेश के हमारे श्रोता, ग्राम खकल तहसील कौंच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक सिंह गुर्जर, अंश राज गुर्जर और इनका पूरा परिवार, रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी और बाबू भाई महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर के श्रोता हैं, और गणेश पेट पाथरडी से अंबादास शिंदे, संगीता शिंदे, कृष्णा शिंदे, आराध्या श्लोक और भैया, और ये श्रोता हैं सिंधी कैंप की खोली अकोला महाराष्ट्र से श्याम संतानी, आशा संतानी, नैन्सी संतानी और सुमित संतानी, ये सभी सुनना चाहते हैं जावेद अख्तर का लिखा गीत, हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत है, फिल्म है मशाल।

और अब मंचाई गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश बहू बेगम फिल्म का गीत साहिर लुधियानवी की बोल रोशन की तर्ज और आप सभी की फरमाइशें चूड़ी लाइन भाटापारा से अब्दुल मजीद कुरैशी रेहाना बेगम और मोहम्मद साजिद पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया गीता रानी जाजोरिया गगनदीप जाजोरिया और बीबी आरजू जाजोरिया वरुण जऊलका से महेंद्र सरकटे विजया सरकटे और मिलिंद सरकटे निखिल साकरकर रोहित सुनीता अरविंद साकरकर और पूरा परिवार मालेगांव जिला वाशी से और कबीर रेडियो श्रोत्रा संग बालोद छत्तीसगढ़ से डॉली बेबी पूजा तमूरिया राधिका प्रभा देवी अजय देव देव शंकर तुषार देव तमूरिया और इनका पूरा परिवार। ये गाना आप सभी की फरमाइश पर, फिल्म का नाम है बहू बेगम, आशा भोसले और मोहम्मद रफी।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी,
0: मन चाहेगी।

0: नाट्य तरंग में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नाटक किसी एक फूल का नाम लो का पहला भाग। मूल गुजराती लेखक मधु राय, हिंदी रूपांतरण ज्योति व्यास, संपादन चिरंजीत, निर्देशक सुशील बैनर्जी। तो सुनिए नाटक किसी एक फूल का नाम लो का पहला भाग।
1: केशव, ओफ ओफ, केशव कहाँ चला गया? केशव, केशव, वो तीसरी घंटी हो गई, ओ केशव से कहोगी अनाउंस करे। हाँ है ये लेकर कि तुम केशव ठाकर,
2: प्लीज अभी आया पाटिल जी, प्लीज प्लीज
1: वो कहिए, वो अभी आया पाटिल जी, जाके अनाउंस क्यों नहीं कर रहे?
2: जहाँ जहाँ जाओ
1: केशव, कहाँ जा रहे हो? माइक्रोफोन तो ये रहा।
2: सॉरी सॉरी डॉक्टर साहब, माइक्रोफोन ठीक करो। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आई मीन नमस्कार देवियों और सज्जन। हाँ तो नाट्य मंच अपने नए नाटक के प्रथम प्रदर्शन के अवसर पर आप सबका सहर्ष स्वागत करता है और आपके सम्मुख प्रस्तुत करता है हास्य प्रधान नाटक किसी एक फूल का नाम लो। सज्जनों सज्जनों शांत, इसके लेखक हैं केशव ठाकर और निर्देशक जगन्नाथ पाठक। सज्जनों सज्जनों सुनिए सुनिए, कलाकारों का भूमिकाओं सहित परिचय इस प्रकार है। कांता कामनी देसाई, प्रमोद प्रमोद जगन्नाथ पाठक, भाभी स्वाति सोनी। सज्जनों शान और सुनिए, नंदलाल प्रीतम सोनी, निरंजन सुंदर देसाई और देश पांडे केशव ठाकर। हाँ सज्जनों, तो अब प्रस्तुत है नाट्य मंच का ये नाटक किसी एक फूल का नाम लो।

0: कांता, मान लो कि
1: प्रमोद, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुम अपनी जिद छोड़ोगे नहीं और मैं सारी जिंदगी,
0: मुझे भी तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। और हमारे बीच पति पत्नी की सारी बातें मुझे लगता है इसी के साथ खत्म होती है। ओह, कितनी देर हो गई।
1: दफ्तर जा रहे हो प्रमोद? जाओ।

0: जरूर आइएगा। बाय।
1: कहो मेरी जान।
0: ओह, तुम आ गए निरंजन। आज रात को फैसला हो जाएगा। मैंने नंदलाल भाई और भाभी को बुलाया है।
1: सच मेरी कांता?
0: आओ सब आ जाओ, आज मेरी अर्थी उठ रही है, रोने वालों की जरूरत होगी। नंदलाल भाई आओ, ज्योत्सना भाभी आओ, निरंजन तुम भी आओ।
2: आखिर हुआ क्या कांता?
3: अरे नंदलाल, मैं बताती हूँ। असल में कांता और निरंजन,
4: नहीं नहीं नहीं, ये बात झूठ है, हम प्रेमी नहीं है।
2: प्रमोद, तुम ये क्या टाइप कर रहे हो?
5: आज जहाँ दंगा होने वाला है नंदलाल भाई, उसी को खत्म करने के लिए मैंने अपना यह घोषणा पत्र तैयार किया है। तो सुनो, आई प्रमोद पटेल, हस्बैंड ऑफ माय मोस्ट बिलवड वाइफ कांता पटेल, मैडम नेम कांता गोस्वामी, डू हियर बाय डिक्लेयर।
3: प्रमोद भाई सुनिए ना, मैं तुरंत अनुवाद कर सकती हूँ। लाइए अपना कागज मुझे दीजिए, मैं पढ़ती हूँ।
5: ठीक है, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता।
3: अच्छा, तो प्रमोद भाई कहते हैं, मैं प्रमोद पटेल, कांता पटेल का स्वामी, घोषणा करता हूँ कि मेरी किसी समय प्यारी पत्नी कांता मेरे विश्वास पात्र दोस्त निरंजन को चाहती है, इसलिए आज फला साल के फला महीने की फला तारीख को अपनी मर्जी से, अपनी अक्ल से, मैंने अपनी जान देने की घोषणा की है।
5: मुझसे सुनो मेरी घोषणा। मैं प्रमोद पटेल अपनी सारी ताकत जुटाकर कांता के छिपाए हुए पिस्तौल से आत्महत्या करता हूँ। अलविदा। अलविदा।
0: मुझे विश्वास हो गया है कि।
5: कैसा विश्वास?
0: कि तुम मुझे प्यार करते हो।
5: फिर भी मैं अपनी घोषणा पर अटल हूँ।
0: प्रमोद रुक जाओ।
5: दो।
0: इस पिस्तौल से मैं ही मरूंगी। लाओ पिस्तौल मुझे दो।
5: कांता, ये पिस्तौल मुझे दो।
4: तुम्हारा संसार उजड़ने के पहले मैं ही इस पिस्तौल से।
0: खबरदार निरंजन, तुम मेरे जीवन में तो आए, पर अब मेरे और मेरे पति के बीच में मत आना, वरना अभी इस पिस्तौल से।
4: ठीक है, पहले मुझे मार डालो, मेरी दुखी आत्मा को शांति दो। कांता, कांता मुझे गोली मार दो, वरना मैं तुम्हारे हाथ से पिस्तौल लेकर आत्महत्या कर लूंगा।
0: सच? तुम मुझे इतना प्यार करते हो निरंजन?
5: कांता, कांता तुम मुझे ही मार डालो, मुझे ही मार डालो, या पिस्तौल मुझे दो, मैं अपने आप ही मर जाऊंगा।
6: तुम दोनों प्रेमी जियो और खुश रहो।
2: सुनो प्रमोद, तुम्हारी पत्नी यदि दूसरे को चाहती है तो इसमें मरने की कोई जरूरत नहीं। मुझसे शादी करने से पहले मेरी इस पत्नी ज्योत्सना को किसी दूसरे से प्यार था।
3: हैं? नंदलाल, इस रहस्य का तुम्हें पता था?
2: तुम्हारा प्रेमी देश पांडे थोड़े दिन हुए वो मेरे पास आया था पैसों के लिए।
5: कैसे पैसे?
2: ब्लैकमेल के पैसे।
3: लेकिन ब्लैकमेल किस लिए?
2: उसके पास तुम्हारी कुछ तस्वीरें हैं।
3: है?
5: कितने रुपए मांगता है वो?
2: सौदा आज पक्का होगा, वो आता ही होगा यहाँ।
5: यहाँ?
2: हाँ, मैंने देश पांडे को यही का पता दिया है, और अब प्रमोद, कांता और निरंजन तीनों से मेरी प्रार्थना है, देश पांडे यही आ रहा है, तुम में से जो भी मरना चाहता है वो उसे मारने के बाद मरे, तो मैं उसका एहसान मानूंगा।
4: प्रमोद, तुम्हारा इरादा मुझे मारने का हो तो रुक जाओ, मैं देश पांडे का खून करूंगा, और इस तरह फांसी पर लटक कर तुम्हारी और नंदलाल की दुनिया आबाद कर जाऊंगा।
5: शायद देश पांडे आ गया, मैं दरवाजा खोलता।
0: नहीं, तुम यही रुको प्रमोद, तुम्हारा शायद भागने का इरादा है, दरवाजा मैं ही खोलूंगी।
3: कांता, अपना पिस्तौल मुझे देती जाओ, उस चांडाल का मैं खून करूंगी।
5: ये मेरा घर, मैं ही उसका खून करूंगा, तुम्हें करना हो तो उसे अपने घर ले जाओ। लो, वो आ गया।
7: आप सबको नमस्कार, माफ कीजिए, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन।
2: गुड इवनिंग मिस्टर देश पांडे। ये सब मेरे मित्र हैं। ज्योत्सना, तुम तो इन्हें मिस्टर देश पांडे को जानती हो?
3: हाँ हाँ।
2: और

0: कांता, निरंजन, ये है मिस्टर देश पांडे, जिनका खून कौन करे इस बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे। हैं? सब लोग एक पंक्ति में क्यों बैठ गए?
1: आखिर बात क्या है नंदलाल?
0: तुम्हें नहीं, मैं इस थिएटर हॉल में बैठे हुए दर्शकों को सब बताता हूं। देवियों और सज्जनों, अभी थोड़ी देर पहले प्रमोद, कांता और निरंजन एक दूसरे के लिए आत्महत्या करना चाहते थे, एक दूसरे से अपना खून कराने के लिए जोर दे रहे थे, और अब सवाल है मिस्टर देश पांडे के खून का। भाइयों और बहनों, आप जानते हैं कि ये रहस्य नाटक है। इस नाटक के सभी पात्र यहां मौजूद हैं। आप विद्वानों में से कोई भी ये बता दे कि किसका खून होगा और कौन खून करेगा, तो उसकी अक्ल की मैं दाद दूंगा। आपको बस इतना बता दूं कि खून इनमें से ही किसी एक का होने वाला है और इनमें से ही कोई करेगा भी।
2: नंदलाल, मेरे हाथ में ये पिस्तौल देख रहे हो ना, मैं तुम्हारी तिकड़मों से तंग आ चुकी हूँ। अरे, हम सबको कठपुतली की तरह नचाने वाले, मैं तुम्हारा खून करती हूँ।
0: अरे जोसना, ये क्या कर रही हो?
2: भाभी,
0: ये पिस्तौल असल है,
2: मेरे पास रहने दो। भाभी, ये पिस्तौल मुझे दो।
3: क्या कर रही हो तुम?
2: हट जाओ भाभी। शेखर खोसला, शेखर खोसला।
4: अरे भाई, शेखर खोसला कौन था?
5: सीट पे बैठा था वो।
6: अरे भैया, मैं लूट पे बैठा था, गोली लगते ही ढेर हो गया।
4: गोली चलने वाली वो एक्ट्रेस कौन सी?
5: अरे वो एक मशहूर एक्ट्रेस कामिनी देसाई थी। कामिनी देसाई?
4: कामिनी देसाई? अरे अरे अरे, वो कांता का रोल जो कर रही थी वही।
7: मैं सच कहूंगा, पूरा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा।
8: आपका नाम? उम्र? काम?
7: जगन्नाथ महाशंकर पाठक, उम्र 33 साल, काम नाटकों में अभिनय करना।
8: सरकारी वकील अब दवा से गिरा कर सकते हैं।
9: थैंक यू मिलॉर्ड। मिस्टर पाठक, आप मुलजिमा कामिनी देसाई को जानते हैं?
7: जी हाँ, हमने कई नाटकों में एक साथ अभिनय किया है।
9: कुछ और?
7: मतलब?
9: कामिनी देसाई आपकी प्रेमिका है?
7: जी जी हाँ, कामिनी देसाई मेरी प्रेमिका है।
9: जगन्नाथ महाशंकर पाठक, क्या यह भी सही है कि आप दोनों अगले महीने की 15 तारीख को शादी करने वाले थे?
7: जी जी हाँ।
9: 15 को ही क्यों?
7: वो हम लोग एक नया नाटक तैयार कर रहे थे और उम्मीद थी कि नाटक सफल होगा और उसकी आमदनी में से हम हनीमून के लिए कुछ पैसे बचा सकेंगे।
9: ये नाटक कब हुआ?
7: पिछले महीने की 1 तारीख को।
9: नाटक का नाम क्या था?
7: किसी एक फूल का नाम लो।
9: उस नाटक में आप दोनों के अलावा और किन किन लोगों ने काम किया था?
7: प्रीतम सोनी, स्वाति सोनी, सुंदर देसाई और
10: केशव ठाकर का नाम लेते लेते रुक क्यों गए? उसके नाम को लेकर उस दिन कामनी से तुम्हारी जो बातचीत हुई थी वो क्या भूल गए हो?
11: हम दोनों, प्रीतम, स्वाति और सुंदर, ये तो नाटक के पात्र पक्के हो गए, लेकिन छठे पात्र के लिए कोई नहीं मिल रहा।
7: छठे पात्र के लिए सुनो, छठे पात्र

0: ठाकर के लिए केशव ठाकर।
1: केशव ठाकर वो लेखक।
0: इसमें इसमें हंसने की क्या बात है, छोटा सा रोल है, बहुत मजा आएगा। हाँ
1: सुंदर से पूछ ले।
0: आता ही होगा सुंदर भी। जी मेरा नाम सुंदर देसाई, उम्र 30 साल, काम नाटकों में अभिनय करना, मुलजमा कामनी देसाई, उसको मैं जन्म से जानता हूँ सर। हम सब नाटकों में काम करते हैं, किसी एक फूल का नाम लो नाटक में हम सब ने काम किया था। कामनी देसाई मेरी सगी बहन है सर, सगी बहन।
2: आप दोनों साथ रहते हैं?
0: जी हाँ, मैं कामनी और मेरी माँ तीनों साथ रहते हैं।
2: तीनों साथ रहते हैं। कामिनी ने जिसका खून किया उसके बारे में आप क्या जानते हैं?
0: जी नहीं, उसके बारे में मैं पहले कुछ नहीं जानता था। उसके मरने के बाद जाना कि उसका नाम शेखर खोसला था और वो किसी बड़ी फर्म का मालिक था।
2: उस नाटक में हत्या की घटना थी और उसमें पिस्तौल की जरूरत थी, ठीक है?
0: जी हाँ, लेकिन पिस्तौल में गोली नकली भरनी थी।
2: जगन्नाथ पाठक और कामनी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ये आप जानते हैं?
0: जी हाँ, पाठक मेरा पुराना दोस्त है, हमने बहुत से नाटकों में एक साथ काम किया है। कामनी और पाठक ज्यादातर नायक नायिका का काम करते थे और जाहिर है।
3: सच सच कह दूं ना कि तुम्हें अपनी बहन कामनी और पाठक की शादी की बात पसंद नहीं थी?
0: जाहिर है, तुम दोनों में प्यार है और तुम शादी करोगे।
1: सुंदर, पाठक का कहना है कि मेरा इससे शादी करना तुम्हें पसंद ना होगा।
0: बिल्कुल पसंद नहीं होगा।
4: सुन लिया कामनी?
0: अरे वो तुम्हारा प्रीतम लाल नहीं आया?
4: तुम उसे प्रीतम लाल क्यों कहते हो?
3: अरे लगता है प्रीतम सोनी आ रहा है।
1: लेकिन वो तो अकेला ही आ रहा है।
4: प्रीतम, स्वाति सोनी कहाँ है?
5: आती होगी, वो सीधी आने वाली थी।
0: अजी स्वाति जरूर आई ही ना।
2: सुंदर,
0: अरे पाठक यार डांटते क्यों हो? मान लिया तुम इस नाटक के डायरेक्टर हो, लेकिन
6: रिहर्सल में अनुशासन जरूरी है। आई वॉन्ट डिसिप्लिन आई सी।
0: अरे यार मैं स्वाति से शादी का प्रस्ताव नहीं करने वाला हूँ।
7: जी मेरा नाम प्रीतम लाल, कंचनलाल सोनी, उम्र 42 साल, काम अभिनय। जी कामनी को मैं 7-8 साल से जानता हूँ, मुझे कुछ पता नहीं मरने वाला कौन था। मेरा ख्याल है कामनी पाठक के प्यार में।
2: आपने ये कैसे मान लिया?
7: कामनी ने मुझसे कहा था कि पाठक उससे शादी नहीं करेगा तो वो आत्महत्या कर लेगी।
2: अच्छा, पिस्तौल चलाने की बात नाटक में लिखी हुई है क्या?
7: जी हाँ, नाटक में नंदलाल ये कहता है कि
2: मिस्टर प्रीतम, अच्छा ये बतलाइए कि पिस्तौल में असली गोली कैसे आई?
7: जी जी नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। कामनी भोली होने के कारण कई बार उत्तेजित होती, पर किसी को उससे बैर हो या उसे किसी से बैर हो ये नहीं माना जा सकता।
2: आपकी पत्नी स्वाति सोनी और?
7: जी
8: मैं स्वाति सोनी हूँ, पति का नाम प्रीतम सोनी, उम्र 37 साल, व्यवसाय गृहिणी का, और कभी कभी अपने पति प्रीतम के साथ नाटक में काम करने का। कामनी मेरी पक्की सहेली है, लगता है किसी ने उसे फंसाया है। मैं तो मान भी नहीं सकती कि उसने ऐसा किया होगा, इसमें जरूर कोई धोखा है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती।
2: रोने की जरूरत नहीं, सवालों के जवाब सिर्फ हाँ या ना मिली। क्या ये सच है कि कामिनी और पाठक के बीच प्यार था?
8: जी हाँ।
2: कामिनी को किसी और से भी प्यार था?
8: जी हाँ।
2: हाँ
8: जी,
2: या ना?
8: जी, इस सवाल का जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकूंगी।
2: क्या मतलब?
8: कामिनी एक सफल अभिनेत्री है, उसके बहुत सारे प्रशंसक हैं, वो एक भावुक स्त्री है और स्त्री का हृदय।
2: बस बस, ठीक से सोचकर जवाब दीजिए। आप बता सकती हैं पाठक और कामिनी की शादी करने पर क्या किसी को एतराज था? पाठक की कामिनी के सिवाय कोई दूसरी प्रेमिका थी या नहीं, और कामिनी का पाठक के सिवाय कोई दूसरा प्रेमी था या नहीं?
8: मुझे माफ कीजिए, मैं कुछ नहीं जानती हूँ।
2: याद रखिए आपने हल्फ उठाया है।
8: हाँ जानती हूँ, मैंने हल्फ उठाया है, पर मुझे माफ कीजिए, मैं कुछ नहीं कह सकती।

0: एक सवाल, आप मृत शेखर खोसला के बारे में कुछ जानती हैं?
1: जी नहीं, मैं शेखर खोसला या किसी के बारे में कुछ नहीं जानती।
0: आप कुछ छुपा रहे हैं।
1: आप क्या कहना ना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं मुझसे, मुझसे क्या कबूल करवाना चाहते हैं आप?
2: कामनी जी भाई, सुंदर के साथ तुम्हारा जो संबंध है वो कबूल कर लो ना। अपने पति प्रीतम से छिप छिप कर उससे मिलती हो और कहती हो कि
3: सुंदर तुम बेकार इतनी कड़वाहट लाते हो, हमें कभी मुश्किल से तो ऐसा एकांत मिलता है।
4: ये तुम सोचती हो प्रीतम को पता नहीं चलेगा?
3: प्रीतम बहुत सीधा है, उसने मुझसे कभी कुछ भी नहीं पूछा।
2: लेकिन कोई और जानता है।
4: कोई और जानता है? कौन?
2: केशव ठाकर
4: वो बुद्धू लेखक।
3: हाँ, वो बुद्धू लेखक,
2: वो मूर्ख बना फिरता है,
3: शायद है भी, लेकिन उसकी नजर बड़ी तेज है।
5: जी, मेरा नाम केशव ठाकर, नहीं, मेरा मतलब है केशव लाल पुरुषोत्तम ठाकर, पेशा नाट्य लेखन।
0: तो आपने उस नाटक में देशपांडे का पाठ किया?
5: जी, मैंने देशपांडे का पाठ किया।
0: आप किस नाटक मंडली के लोगों से जान पहचान कैसे हुई?
5: वो बात यह है कि वो सुंदर देसाई है ना, उसके साथ एक बार अचानक मुलाकात हो गई थी, जहाँ वही मुझे अपनी मंडली में ले गया।
0: अच्छा, वो नाटक किसी एक फूल का नाम लो आपने लिखा था?
5: जी हाँ, मैंने लिखा था।
0: उसमें पिस्तौल की जरूरत थी?
5: जी हाँ।
0: आप कामिनी देसाई के बारे में कोई ऐसी बात जानते हैं जो इस खून के मसले पर रोशनी डाल सके?
5: वकील साहब, अजी आप सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा।
0: कामिनी देसाई का पाठक के सिवा कोई दूसरा प्रेमी भी था?
5: जी,
0: मैं पूछ रहा हूँ, कामिनी का कोई दूसरा प्रेमी भी था?
5: जी हाँ, उसका एक दूसरा प्रेमी भी था।
4: तो अब ये भी बता दो कि कैसे तुमने कामनी के ही कारण नाटक लिखा, कैसे कामनी के निकट रहने के लिए तुमने उस नाटक में छोटा सा पार्ट करना स्वीकार किया, और कैसे नाटक के रिहर्सल में तुम हर तरह का अपमान सह लेते थे, और उस दिन रिहर्सल में कामनी को सम्मुख पाकर तुम इतने नर्वस हुए कि सिगरेट का जलता हुआ सिरा मुंह में डाल दिया और मुंह चला लिया।
5: कुछ नहीं।
6: तुम कामनी को ये दीवानों की तरह घूर रहे?
5: कुछ नहीं, वो जरा
7: आंशस हो गया।
0: अच्छा, ठीक है,
8: ये पाठक भी आज कुछ
0: बस आप रिहर्सल शुरू करें। कामनी, तुम ठाकर के पास जाकर क्यों खड़ी हो गई? इसके कंधे पर हाथ रखकर क्या कह रही हो उससे?
9: कह रही हूँ आप पाठक, क्यों बेकार ईर्ष्या करते हो?
0: Stop it.
9: रिहर्सल शुरू करो ना। तुम प्रमोद का डायलॉग बोलो तो मैं कांता का डायलॉग बोलूं।
0: कांता, मान लो
9: मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। प्रमोद, तुम अपनी सीट छोड़ोगे नहीं और मैं सारी जिंदगी।
0: मुझे भी तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, और हमारे बीच पति पत्नी की सारी बातें मुझे लगता है इसी के साथ खत्म होती है।
5: जी हाँ, कामनी का दूसरा प्रेमी था, और वो मैं खुद था, यह केशवलाल पुरुषोत्तम ठाकर।
0: कामिनी भी आपसे प्रेम करती थी?
5: जी नहीं, वो तो मेरा मजाक उड़ाती थी, लेकिन मैं मनी मन उससे प्रेम करता था और अब भी करता हूँ। कामनी की जमीन पर चले उसे मैं चूमने को तैयार हूँ, और जो वो कहे।
0: मतलब आप मन ही मन कामिनी से प्रेम करते थे?
5: जी हाँ, और उसके सामने मैं नर्वस आ जाता, यानी कि घबरा जाता।
0: अच्छा, मरने वाले के बारे में आप कुछ बता सकते हैं?
5: जी, उसका नाम शेखर खोसला था।
0: सवाल यह है कि शेखर खोसला के बारे में आपके पास कोई खास जानकारी है?
5: आज देखिए ना वकील साहब, इस दुनिया में कौन किसी को जान सका है?
0: हाँ या ना में जवाब दीजिए।
5: किस बात का जवाब?

0: शेखर खोसला को आप उसकी मौत से पहले जानते थे?
1: अजी, इंसान को देखे ना, दो तरह से जाना जाता है, एक उसे प्यार करके और दूसरे उससे नफरत करके। भाई, हमारी जानकारी हमारी समझ से बनती है। अजी, मैं तो न तो शेखर खोसला से प्यार करता था न नफरत।
0: बेकार की बात मत कीजिए। अगर सीधा जवाब न दिया तो अदालत के अपमान के जुर्म में सजा होगी, और झूठा जवाब दिया तो जेल।
1: अब देखिए वकील साहब, आप तो खामखा डरवा रहे हैं। अजी, क्या सच क्या झूठ इसका फैसला कर सकूं? जी, इतना विद्वान तो मैं नहीं।
0: आप शेखर खोसला को जानते थे?
1: जी,
0: हाँ या ना?
1: जी जी, कुछ नहीं, याद नहीं।
0: याद कीजिए, आपने उसे 1,000 रुपए दिए थे, ये सच है?
1: जी, क्या बात करते हैं वकील साहब। जी, बहुत लोगों ने मुझे कई बार 1,000 रुपए दे दिए होंगे। अब देखिए ना, अब उस सब का हिसाब तो मुझे याद नहीं।
0: ठीक, दूसरा सवाल, नाटक में जिस पिस्तौल का इस्तेमाल हुआ और जिससे खून हुआ, उसमें असली गोली किसने भरी थी, आप बता सकते हैं?
1: जी नहीं।
0: शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते हैं?
1: कुछ नहीं।
0: ठीक से याद कीजिए।
1: जी, वो जी, मेरी याददाश्त कुछ अच्छी नहीं।
0: ठीक से याद कीजिए, शेखर खोसला से आपने 1,000 रुपए लिए और ये नाटक लिखा जिसमें शेखर खोसला का खून हुआ। ठीक से याद कीजिए, शेखर खोसला कौन था? मिस्टर केशव ठाकर चुप क्यों है, बताइए शेखर खोसला कौन था?
2: छिपा क्यों रहे हो? बता दो ना। अच्छा, तो तुम कामनी और पाठक की वो बात बता दो जो उस दिन तुमने ओट में छिपकर सुनी थी। किस दिन? मैं तो प्रायः रोज ही छिपकर कामनी को देखा करता था। अरे, उस दिन रिहर्सल के बाद जब तुम कामनी से मिले थे और फिर ओट में छिप गए थे।
3: कामनी, रिहर्सल के बाद केशव ठाकर तुमसे क्या कह रहा था?
4: कुछ भी तो नहीं। कुछ भी तो नहीं, बेचारा सिर्फ बॉडम है, मेरी तारीफ कर रहा था।
3: सच बताओ कामनी।
4: पाठक, कितने शक्की हो तुम। तुम सोचते हो मैं उस फंटूश को प्यार करती हूँ।
3: नहीं, लेकिन ये जरूर सोचता हूँ कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो।
4: मान लो छिपा रही हूँ, फिर
3: तो फिर हमारे संबंध का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। हमारे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे, सीधी सादी बात।
4: धमकी देते हो?
3: सफाई चाहता हूँ।
4: कैसी सफाई? ओह, इतना भी तुम्हारी समझ में नहीं आता, शक्की अंधे फूंदू पति की तरह पूछे जा रहे हो। फिर भी मैं तुम्हारी कसम नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी झूठी कसम खा ही नहीं सकती। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती।
3: यानी कि तुम कुछ छिपा रही हो?
4: हाँ, मैं कुछ छिपा रही हूँ, लेकिन तुम्हारी झूठी कसम नहीं खा सकती। विश्वास कर सको तो करो कि जो कुछ मैं छिपा रही हूँ वो तुम्हारी भलाई के लिए है, धोखा देने के इरादे से नहीं।
3: यह चरित्र की क्या जरूरत है? तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा क्यों नहीं कि तुम जो छिपा रही हो वो चाहे जितना भी डरावना क्यों ना हो, मैं उसे छेड़ लूंगा। ऐसा क्यों समझते हो कि मैं तुम्हारा प्रेमी नहीं रहूंगा?
0: मिस्टर केशव ठाकर
1: जी,
0: क्या सोच रहे हैं बताइए। ठीक से याद कीजिए, शेखर खोसला कौन था?
1: जी जी, वो मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा वकील साहब। मेरा मतलब है, शेखर खोसला के बारे में मैं कुछ नहीं जानता।
5: सरदारी वकील अपनी जिरह बंद करें, अब अदालत खुद पांचों गवाहों से सवाल करेगी। केशव ठाकर
1: जी,
5: शेखर खोसला कौन था?
1: जी जी, कहा ना हुजूर, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता।
5: स्वाति सोनी, शेखर खोसला कौन था?
4: जी जी, कैसे समझाऊं आपको, मैं कैसे समझाऊं एक स्त्री के दिल की बात, मैं कैसे कहूं शेखर खोसला कौन था? मैं शेखर खोसला को जानती हूँ, या कि शेखर खोसला को नहीं जानती।
5: प्रीतम सोनी, शेखर खोसला कौन था?
6: जी

0: जी नहीं, मैं शेखर खोसला को नहीं जानता। इसके बारे में मुझे मुझे कुछ पता नहीं।
1: सुंदर देसाई, आपकी बहन कामनी जिसका खून किया उसके बारे में आप कुछ जानते हैं?
0: जी जी, वो उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। बात ये थी सर कि थिएटर हॉल में औरों की तरह वो भी निमंत्रित था, और निमंत्रण पत्र उसी संस्था ने भेजे थे जिसने हमें नाटक खेलने के लिए बुलाया था। मैं इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं जानता।
1: जगन्नाथ पाठक, शेखर खोसला के बारे में क्या आप जानते हैं?
0: जी, अब मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता।
2: किसी एक फूल का नाम लो, इस नाटक का पहला भाग अभी आपने सुना। मूल गुजराती लेखक मधुराय, हिंदी रूपांतरण ज्योति व्यास, संपादन चिरंजीत, निर्देशक सुशील बनर्जी, प्रस्तुति आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की थी। इस नाटक का दूसरा भाग आप सुनेंगे कल नाट्य तरंग में।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं एक ऐसी कोरियोग्राफर जिनके कोरियोग्राफ किए गए गानों ने आपको जमकर थिरकाया है। उनके कई गाने ऐसे हैं जिनको सुनते ही आपके पैर मचल उठते हैं नाचने के लिए। आज के जमाने की महत्वपूर्ण कोरियोग्राफर्स में उनकी गिनती होती है।
2: प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, रत मिलन की लायो, प्रेम रतन।
1: आज बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान। इनसे बातचीत कर रही हैं विधि जैन। ये है इस बातचीत का पहला भाग।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। श्रोताओं, आज स्वागत कर रहे हैं हम सभी उनका जिनके इशारों पर बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे थिरके हैं। सलमान खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सनी देओल, महेश बाबू, आयुष्मान खुराना, अनुपम खेर और लगभग 30 से अधिक दिग्गज अभिनेताओं को अपनी कोरियोग्राफी से नया अंदाज देने वाली, वहीं माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, करीना कपूर, कैटरीना कैफ, जूही चावला, अमीषा पटेल, अंतरा माली और अनेक प्रसिद्ध अभिनेत्रियों के यादगार गीतों को अपनी कल्पना और सृजनशीलता से जीवंत बनाने वाली बड़ी प्यारी सी कोरियोग्राफर। आज की बातचीत केवल फिल्मों तक नहीं, आज हम जानेंगे एक कलाकार के संघर्ष की कहानी, सफलता के पीछे छिपी मेहनत, शूटिंग के अनसुने किस्से और सितारों के साथ काम करने का अनुभव और उस सफर को जिसने इन्हें भारतीय फिल्म जगत के अग्रणी कोरियोग्राफरों में स्थापित किया है। चलिए बिना किसी देर के विविध भारती राष्ट्रीय सेवा में पूरे आत्मीय स्वागत और हार्दिक अभिनंदन के साथ हिंदी फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध, सम्मानित और बेहतरीन कोरियोग्राफर शबीना खान जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में।
4: थैंक यू। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे याद किया, बुलाया, बिकॉज ये सबके दिलों की धड़कन है, तो मेरे दिल की बहुत बड़ी धड़कन है।
3: जी, विविध भारती देश की सुरीली धड़कन।
4: विविध भारती देश की सुरीली धड़कन।
3: जी, तो ये जो सुरीली धड़कन है, आज एक बहुत सुरीली देश की बेटी से बात करने वाली है, जिस बेटी ने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत सारा काम किया और बहुत सुंदर तरीके से पर्दे पर खुद नहीं उतरी, दूसरों से उतरवाया। तो हमारे बीच में शबीना जी आप हैं और आप एक बहुत बढ़िया डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और उसके साथ एक बेहतरीन कोरियोग्राफर हैं। तो ये जो कोरियोग्राफी है या डांस का चस्का जिसे कहते हैं, ये लगा कब, ऐसा कब मन हुआ कि अब मुझे कर लेना चाहिए?
4: सो बेसिकली चस्का तो नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि जिस उम्र में मैंने काम शुरू किया
3: जी,
4: उसमें हमें चस्के नहीं पता चलते हैं। अच्छा। बहुत छोटी थी मैं एक्टिंग इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सीख रही थी।
3: ओके।
4: तो हुआ यूं कि घर की जरूरतें होती है ना, तो उस उम्र से ही मुझे एहसास बहुत जल्दी हो गया, क्योंकि हम उस फैमिली से आते हैं जहाँ पे

0: एहसास, मोहब्बत, प्यार, तरबियत, इसकी बहुत वैल्यू है। तो वो वैल्यू में एहसास हुआ कि घर में जरूरत है। तो एक्टिंग इंस्टीट्यूट होती थी एक, मधुमति एकेडमी।
1: जी
0: मधुमति जी वो है जो हेलन जैसी लगती थी, सोलो डांस करती
1: जी
0: थी,
1: जी जी बिल्कुल
0: उनके हस्बैंड और वो सिखाते थे। वहां पे एक छोटा सा काम कर रही थी मैं उस उम्र में,
1: क्या उम्र होगी वो लगभग?
0: सेवेंथ स्टैंडर्ड में होंगी।
1: ओके,
0: तो मेरी
1: बारह
0: बहन
1: तेरह
0: और
1: साल
0: मैं, हम दोनों घर में बहुत डांस करते थे।
1: जी
0: बिल्डिंग में 31st नाइट में जब प्रोग्राम्स होते थे तो हम
1: जी
0: दोनों को बुलाते थे कि
1: अच्छा,
0: आप
1: डांस
0: कंपटीशन में आ जाओ।
1: करने जी
0: तो मेरी छोटी बहन बहुत ज्यादा चंचल थी और वो हमेशा से चाइल्ड आर्टिस्ट स्टेज पे काम करती थी।
1: जी
0: मैं पढ़ रही थी, मैं बहुत ज्यादा पढ़ाकू थी। तो
1: अच्छा
0: जरूरत तब हुई जब लगा कि फीस भरना है, छोटे भाई बहन हैं, हम पांच भाई बहन हैं, तो लगा कि चलो कुछ काम भी किया जाए। ट्यूशन देती थी, फिर लगा कि अच्छा डांस अच्छा करते। तो मधुमति मैम ने देखा और मम्मी से कहा कि आप छोड़ो अपनी बेटियों को, मैं उनको सिखाती हूँ।
1: अच्छा,
0: और
1: एक
0: वहां
1: हाथ
0: पे
1: मिल
0: मैं,
1: गया।
0: हाँ, एक हाथ मिल गया। और वहां पे मैं उर्दू डिक्शन सिखाने लगी अंकल के साथ बैठ के। उनके जो शौहर थे वो
1: अच्छा
0: पुराने एक्टर थे बहुत बड़े, तो वो उर्दू सिखाते थे सारे बच्चों को।
1: जी
0: तो मैं उनके साथ डिक्शन, क्योंकि हमारे घर में एक चलन है कि
1: हाँ
0: उर्दू सिखाया जाता है, तो वो मैं सिखा रही थी उनके साथ। एक्टिंग भी सिखाने लगी वो हमें। अम्मी को बुला के एक दिन बोला कि तुम्हारी बेटियां बहुत टैलेंटेड है,
1: अच्छा,
0: तो मैं इनको एक्टिंग भी सिखा रही हूँ। अम्मी ने कहा कि ठीक है मैम,
1: सिखा
0: अपने
1: लो
0: साथ रख के
1: जी
0: आप देखिए कैसे। तो स्कूल के बाद हम 2-3 घंटे वहां जाते थे, और पता नहीं था कि वो चीज कब जाके जिंदगी में काम आ जाएगी। अम्मी हमेशा सिखाती थी कि बेटा जिंदगी का एक फ्लो होता है, जो ऊपर वाले की मर्जी है वो फ्लो चलता है, फ्लो के साथ चलो।
1: जी,
0: और एक, हमारी तरबियत को नहीं भूलना है,
1: क्या बात
0: अपनी
1: है,
0: तरबियत जो मैंने तुम्हें दी है उसको हाथ में रख के आपने काम करना है।
1: मतलब नदी जैसे बह रही है, बहते जाओ, लेकिन अपने जो उसूल हैं उनको छोड़ना नहीं
0: बिल्कुल
1: है। जी, बहुत
0: बिल्कुल,
1: बढ़िया बात
0: बहुत ज्यादा ऊपर जाके झलकना भी नहीं है कि पानी तुम्हारा सूखी घास में मिलके वहां चला जाए,
1: जी
0: समेटते हुए आगे बढ़ना है। उनकी तरबियत है जो आज हम लोग यहाँ तक पहुंच पाए हैं। वहां से फिर एक्टिंग इंस्टीट्यूट से स्टेज शोज के ऑफर आने लगे। तो गणेश हेगड़े जी,
1: जी
0: जो बहुत
1: बहुत
0: बड़े
1: बढ़िया
0: कोरियोग्राफर है,
1: कोरियोग्राफर
0: उन्होंने
1: हैं।
0: मुझे और मेरी बहन को लॉलीपॉप, गणेश हेगड़े, ये उस वक्त के दिग्गज स्टेज
1: बिल्कुल
0: के कोरियोग्राफर्स हैं।
1: जी
0: तो पता चला कि एक शो किया जाएगा तो हमें इतना अमाउंट मिलेगा। तो अम्मी
1: हाँ,
0: मेरी
1: तो
0: हमेशा साथ होती थी।
1: अमाउंट के लालच में आप काम
0: अमाउंट
1: की
0: ये था,
1: जाए।
0: हाँ, कि एक इतना अमाउंट आएगा तो दिमाग सोचने लगा कि
1: हाँ,
0: अगर ये पैसा आता है तो महीना गुजर जाएगा। तो मधुमति
1: कैलकुलेशन
0: मैम
1: से
0: ने,
1: अलग
0: हाँ,
1: है।
0: मधुमति मैम ने बोला बेटा करो, बुरा नहीं है।
1: हाँ
0: अम्मी को बोला कि आप साथ रहो बच्चों के।
1: जी
0: तो
1: जी
0: वो एक सिलसिला शुरू हुआ वहां से। और मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी,
1: तो आप उस
0: मुझे,
1: समय बैकग्राउंड डांसर्स के फॉर्म में
0: नहीं
1: कर रही
0: बिल्कुल
1: थी
0: नहीं
1: या लीड डांसर्स थे?
0: नहीं मैं स्टेज पे डांस कर रही थी उनके ट्रुप के साथ। तो
1: अच्छा
0: उनके अपने अपने ट्रुप होते थे, तो
1: जी
0: पहले गणेश हेगड़े, लॉलीपॉप, इन्हीं का ट्रुप चलता था।
1: जी
0: उनके एक ट्रुप में 8 लड़कियां, 12 लड़कियां ऐसे होती है।
1: ठीक,
0: उसमें मेरे परफॉर्मेंस बेसिस पे मुझे जल्दी चांस मिल गया। पोनी वर्मा उनकी मेन असिस्टेंट होती थी, जो अभी कोरियोग्राफर है।
1: जी
0: तो पोनी वर्मा ने, यू नो, शी गॉट इन्वॉल्व एंड शी गॉट मी। तो स्टेज शुरू हुआ, स्टेज से वो रास्ता मिलने लगा। गणेशाचार्य जी ने देखा मुझे डांस करते हुए कि लड़की तो एक्सप्रेशन के साथ, क्योंकि एक्टिंग बैकग्राउंड से आती थी मैं, तो ग्रेस और क्लासिकल डांस सीखो तो आपको एक ग्रेस अलग लेवल का मिलता है।
1: वो चीज हम अभी भी देख रहे हैं आपके सोशल मीडिया पे, जब आप डांसेस डालती हैं तो
0: हाँ,
1: चेहरा अलग
0: तो
1: दिखता है
0: क्योंकि
1: चाहे
0: आप
1: कहाँ हो।
0: क्लासिकल डांस सीख के आते हो, जैसे क्लासिकल सिंगिंग भी उतनी ही, जो क्लासिकल सिंगिंग सीख के आते हैं वो एक अलग लेवल के सिंगर बनते हैं,
1: जी
0: उसी तरह आप जब क्लासिकल डांस सीख कर आते हो तो आपके परफॉर्मेंस की लेवल अलग हो जाती है। और फिर मैं एक्टिंग बैकग्राउंड से आती हूँ
1: जी
0: तो एक्टर मेरे अंदर घुसा हुआ है
1: घुसा
0: बचपन
1: हुआ
0: से,
1: है जी।
0: तो वो जो एक एबिलिटी है मेरी एक्टिंग और क्लासिकल डांस की, उसने मुझे बहुत सहारा दिया। तो जब गणेश आचार्य जी, जो बहुत बड़े कोरियोग्राफर है, उन्होंने मुझे देखा परफॉर्म करते हैं, उस वक्त वो एक असिस्टेंट ढूंढ रहे थे, तो
1: जी
0: मैं कभी बैकग्राउंड डांसर फिल्मों में नहीं बनी, मैं स्टेज से डायरेक्ट गणेश आचार्य जी के यहाँ पर आई। उन्होंने
1: अरे
0: अम्मी
1: वाह
0: से बात की, उन्होंने कहा आपकी बेटी डांस बहुत अच्छा करती, मुझे एक ऐसी ही असिस्टेंट की जरूरत है, क्योंकि अब उनका काम बढ़ रहा था
1: तो उन्हें
0: काफी
1: एक
0: उस
1: और
0: वक्त।
1: हाथ चाहिए था जी।
0: तो फिर उस तरह से, माई मदर यूज टू बी देयर विथ मी ऑलवेज, शी नेवर लेफ्ट मी अलोन टू टेक डिसीजन, क्योंकि मैं थी बहुत छोटी। तब तक मैं यहाँ पहुंची 8-9 स्टैंडर्ड में आ चुकी थी,
1: बहुत छोटे थे
0: स्टिल
1: आप,
0: स्कूल में थी।
1: बहुत
0: तो वो,
1: छोटे थे।
0: मम्मी ने कभी हाथ नहीं छोड़ा। फिर वहां से सिलसिला शुरू हुआ, असिस्टेंट बनी उनकी, उनके साथ 3-4 साल काम किया, बड़ी यहीं पर हुई हूँ, समझते समझते, सीखते सीखते। फिर प्रभु देवा जी के साथ काम करने का
1: क्या
0: मौका
1: बात
0: मिला।
1: है,
0: फिर एक, मैं सरोज जी की बहुत बड़ी फैन थी,
1: बिल्कुल
0: मैं
1: सब
0: काम, बहुत बड़ी
1: है
0: फैन, मतलब मैं
1: मास्टर जी के फैन सब
0: सब
1: है
0: है। जब
1: जी।
0: मैं असिस्टेंट थी, उनके गाने देख देख कर, उनकी जो लचक, उनका ये, उनका वो कहते हैं ना कि एक आप होते हो एकलव्य, काम यहाँ किया लेकिन मैं उनकी एकलव्य बन गई।

0: आज भी जब कोरियोग्राफी करने खड़ी होती हूँ इंडियन डांस, और ऐसा लगता है मेरे अंदर सरोजी समा गई, अपने आप ऐसा लगता है वो मेरे अंदर समा गए।
1: जी
0: तो वो एक उनके साथ मेरा एक इनडायरेक्ट एक लव्य वाला एक रिलेशन शुरू हो गया। उन्हें दूर से देख देख कर निहार निहार के मैंने अपने काम को संवारा।
1: आपने अपने आप को इतना सारा संवार लिया है, तो जिसने इतना संवारा है यानी शबीना जी, तो शबीना जी को गाने तो बहुत पसंद होंगे, है ना?
0: बहुत ज्यादा
1: तो कोई एक गाना जो आपका हो या आपका नहीं भी हो लेकिन आपको बहुत पसंद हो, जो आपके दिल को सुकून देता हो, ऐसा लगे कि बस अब यही सुनना
0: मैं पुराने गानों की बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत बड़ी
1: है। तो
0: फैन
1: हमारे
0: हूँ।
1: विविध भारती के श्रोता आपको बहुत प्यार करेंगे।
0: आप जैसे देखो, मैंने कल इंस्टाग्राम पे डाला, आजा पिया तो हे प्यार दू, गोरी
1: खूबसूरत
0: बैया तो
1: गीत
0: पे
1: है।
0: वार
1: जी
0: दू।
1: जी जी जी
0: एक
1: गाइड
0: तो जो
1: फिल्म का
0: अल्फाज,
1: ये
0: जो लिखाई होती थी उस वक्त की लिरिक्स,
1: गाना
0: लता जी जब गाती थी, तो कौन है जो एक्सप्रेशन नहीं दे पाएगा, आप मुझे बताइए।
1: जी
0: तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ पुराने गानों की। आज भी जब मुझे अगर गाड़ी में कोई गाने सुनने हैं तो मैं पुराने गाने सुनती हूँ जो
1: तो
0: मुझे
1: फिर उनमें से
0: सुकून
1: कोई
0: देते
1: एक
0: हैं।
1: हीरा जो आप बता दें तो हम हमारे श्रोताओं को सुनवा दें।
0: एक तो पहले सुनाइए, आजा पिया तो हे प्यार दो, गोरी बैया तो पे वार दो।
1: चलिए
0: उसके बाद
1: जी,
0: हाँ
1: उसके
0: ये
1: बाद की
0: गाना, उसके
1: भी
0: बाद लग जा गले
1: अच्छा
0: के फिर ये हंसी रात हो ना हो।
1: बड़ी बढ़िया सी फरमाइश है आपकी, पर
0: बहुत
1: हम
0: ज्यादा
1: आपके तरफ से हमारे श्रोताओं को सुनवा देते हैं ये प्यारा सा गाना जो है, आजा पिया तो है प्यार दूं, गाइड
0: प्लीज
1: फिल्म का गाना है,
0: प्लीज
1: सुनते हैं ये गीत।
0: प्लीज सुनाइए।

0: तो शबीना जी, आपका फिर से एक बार स्वागत है। गाना आपकी पसंद का हमने सुनवा दिया, लग जा गले ड्यू रहा, थोड़ी देर बाद हमारे श्रोताओं तक जरूर पहुंचाएंगे।
1: अब मुझे ये पूछना है कि कोरियोग्राफ तो आपने किया है, छोटी सी शबीना जो है वो बड़ी हो रही हैं, 9वीं 10वीं की उम्र में आ गई हैं। मुझे नहीं लगता कि उस समय की बेटियों में इतनी समझदारी होती थी, मतलब कई चीजें तो हम जानते ही नहीं थे, और कई सारे लोग बोले बरन बरन के लोग मिलते थे, अलग अलग तरीके के लोग आपको मिला करते होंगे। आपकी माँ आपके साथ रहती थी तो आप मैनेज कर पा रही थी। पहला गाना कौन सा था जो एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर आपने कोरियोग्राफ किया था और आपको ऐसा लगा था हाय ये मैंने कर दिया?
2: सी, जब हम असिस्टेंट होते हैं तो हम कोरियोग्राफी नहीं करते, उस वक्त की बात है। आजकल अलग माहौल है। जब मैं असिस्टेंट थी तो मेरा काम यह है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है।
0: जी जी।
2: तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा
0: जी,
2: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है
0: जी,
2: उस लेवल पे करना है।

0: वहाँ पे असिस्टेंट कोरियोग्राफर की ड्यूटी सामने
1: शुरू
0: आती
1: हो
0: है,
1: जाती है जी।
0: शुरू हो जाती है। कई मास्टर होते हैं जो खुद डांस नहीं करते, जो खड़े रह के आपको दर्शाते हैं और आपको करके दिखाना है। मेरे जो मास्टर थे गणेश आचार्य जी, वो खुद बहुत अच्छे
1: इज
0: डांसर
1: अ
0: थे,
1: वेरी गुड डांसर।
0: वेरी ग्रेसफुल। उनका ग्रेस उनके मास्टर से आता है, जो कमल मास्टर जी थे।
1: जी
0: और
1: वो भी
0: कमल
1: बहुत
0: मास्टर जी
1: अच्छे,
0: बहुत कमाल,
1: बहुत
0: उन्होंने
1: जी
0: एक ट्रेंड, जिसे कहते हैं कि हमें ये मालूम है भगवान दादा का डांस होता था,
1: जी
0: भोली सूरत दिल के, जो वो हाथ का
1: वो
0: स्टेप
1: सब
0: था,
1: कमल जी का
0: वो
1: दिया हुआ।
0: कमल
1: जी
0: जी
1: जी
0: उसमें माहिर थे। उनके असिस्टेंट थे गणेश आचार्य जी,
1: जी
0: उनके असिस्टेंट हूँ मैं।
1: बड़ी अच्छी परिपाटी से चली आ रही
0: बिल्कुल,
1: है।
0: वो अपने मास्टर की कहानियां हमें सुनाते थे
1: हाँ
0: कि कमल मास्टर जी खड़े खड़े भी अगर पूरा गाना कर लें तो आपकी नजर नहीं हटेगी। और वही मास्टर जी करते थे, गणेश मास्टर जी। वही मैंने उनसे सीखा कि ग्रेस जान जाए बट ग्रेस ना जाए।
1: क्या डायलॉग
0: हाँ, मेरे लिए
1: है।
0: वो बहुत जरूरी है कि बिना ग्रेस के तो मैं बात भी नहीं कर सकती।
1: जी
0: तो ग्रेस इज वॉट आई लर्न फ्रॉम गणेश आचार्य जी, जो उनके अंदर कूट कूट के
1: जी
0: भरा हुआ है। तो उनकी असिस्टेंट जब आप बनती हो ना, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है
1: बिल्कुल।
0: कि आपका मास्टर सेट पे एक हीरो होता है, हीरोइन होती है। तो आप किसी जेंट्स मास्टर की जब असिस्टेंट होती हो, तो आपकी जिम्मेदारी दुगना हो जाती है, क्योंकि आप फीमेल, आपको ही देख रही है। जो हीरोइन है वो आपको देखकर, वो सुन तो रही है मेरा मास्टर ये बोल रहा है, बट आपको देख रही है। तो
1: हाँ, क्योंकि
0: इसलिए
1: एक्सप्रेशंस उसको आपसे मिलेंगे,
0: बिल्कुल
1: फीमेल वाले
0: अदायगी
1: एक्सप्रेशंस
0: मुझसे
1: आप ही
0: मिलेगी।
1: दोगी।
0: डुएट सॉन्ग
1: बिल्कुल
0: है, जैसे मैं बहुत फेमस गाना अगर गणेश मास्टर जी का बताऊं,
1: हाँ,
0: व्हाट इज मोबाइल नंबर, व्हाट इज, मैं
1: क्या
0: असिस्टेंट थी
1: जी
0: मास्टर जी के साथ, मैं कर रही हूँ, गोविंदा और करिश्मा को दिखा रहे, तो करिश्मा मुझे देख रही है। तो
1: हाँ
0: मेरे अंदर मुझे वो कला लानी है जो मेरे मास्टर के अंदर बचपन से है। बस वही दिमाग हमारा होता था उस वक्त, घोड़े का चश्मा लगा के अपने मास्टर को कॉपी करना
1: जी
0: और करके दिखाना।
1: जी
0: तो वहां पे हमारे, आप जितने फेमस गाने उठा लो 90s के,
1: जी
0: जुड़वा के गाने, सारे सलमान खान के गाने, सारे गोविंदा के गाने, सारे सनी देओल के गाने, संजय दत्त के गाने, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर, शिल्पा शेट्टी, शिल्पा शिरोडकर, ये जितनी, करीना कपूर, रानी मुखर्जी, ये सारे गाने, उनकी सारी फिल्में उठाओ, गणेश मास्टर जी ने की है।
1: और
0: और
1: गणेश
0: उन
1: मास्टर जी के साथ खड़ी थी शबीना
0: शबीना खान। तो अब
1: खान।
0: जब मैं कोरियोग्राफी करने निकली, तो लोग बोलते, अरे रानी आपकी तरह डांस कर रही थी, कभी कभी तो करिश्मा आपकी तरह कर रही थी। तो ये
1: मैं ही
0: जो
1: सिखा रही थी
0: मैं
1: उस
0: ही,
1: समय।
0: हाँ उसी वक्त, क्योंकि वो लोग भी बहुत, उस वक्त के स्टार्स भी वैसे ही थे, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ आपको सुनते थे, आपको करते। तो वो वाला एक एरा से हम आते हैं,
1: तो
0: यू नो।
1: फिर उन गानों में से कोई एक गाना जो आपको बहुत पसंद हो, हालांकि काश कि हम रेडियो पे वो डांस दिखा सकते हैं। अभी हम रेडियो पे वो डांस तो नहीं दिखा सकते आपका, पर हम चाहते हैं कि वो कोई एक गीत जो उस समय का, उस इरा का, जो आपने किया हो और आपको बहुत मजा आया हो कि यार असिस्टेंट डायरेक्टर होने के बाद भी बड़ा मजेदार कर दिया
0: मैं
1: मैंने
0: मजेदार
1: असिस्टेंट
0: बताऊं, थोड़े
1: कोरियोग्राफर।
0: से लोग जो आज भी उस गाने को बहुत पसंद करते हैं, पीपल से दैट हमें शबीना दिखती है उसमें,
1: जी
0: वो है रानी मुखर्जी का एक गाना था, कुड़ी कवारी देरे पीछे
1: है, क्या
0: पीछे
1: बढ़िया
0: पीछे
1: गाना
0: पीछे।
1: है।
0: उसमें मैं असिस्टेंट थी, और जितने लोग मुझे अब देखते हैं,
1: जी
0: जिन्होंने देखा है, बोलते यार रानी लगता है शबीना तुम कर रही हो, बिकॉज वो सांझेदारी होती
1: नहीं,
0: थी।
1: आपका चेहरा भी काफी मिलता है और आवाज भी बहुत मिलती है रानी जी से
0: उस वक्त
1: तो।
0: काफी लोग रानी और मुझे कहते भी थे, और वी वर लाइक रियली गुड फ्रेंड्स, एंड दैट्स हाउ आप एक दूसरे को पसंद करके एक अच्छा गाना डिलीवर करते हो।
1: जी
0: तो वो गाना अगर आप देखोगे या आप प्ले कर पाओ,
1: बिल्कुल, ये
0: आपकी
1: गाना
0: मर्जी
1: हम
0: है।
1: जरूर हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे। बहुत खूबसूरत सा गीत है और शायद जसपिंदर नरूला जी
0: हाँ
1: ने
0: जी,
1: गाया हुआ
0: हाँ
1: ये
0: जी,
1: गाना है और बड़ा खूबसूरत, वो बुलंद आवाज के साथ, उस
0: बिल्कुल
1: बुलंदी के साथ जो किया गया है तो बेहतरीन है। तो ये गीत जरूर हम हमारे श्रोताओं को सुनाएंगे।
0: बिल्कुल।
1: इसमें रानी मुखर्जी दिख रही हैं, लेकिन रानी मुखर्जी को दिखाने के लिए शमीना खान पूरा डांस दिखा रही है और जो रानी मुखर्जी है उस डांस को कर रही हैं। तो आपकी ये बेहतरीन असिस्टेंट कोरियोग्राफी डायरेक्शन, खूबसूरत सा गीत हमारे श्रोताओं के लिए आपकी तरफ से।

0: ये गीत तो बड़ा प्यारा है, हम तो स्टूडियो में बैठे हैं कुर्सी पे तो हम नाच नहीं सकते, लेकिन जरूर से इस गीत पे मुझे विश्वास है कि हमारे सारे श्रोता जो हैं वो डांस कर रहे होंगे और याद कर रहे होंगे। रानी मुखर्जी की बात आई तो आपका चेहरा बहुत ज्यादा रानी मुखर्जी से मिलता है और आपसे बात होते होते आपने मुझे ये बात कही भी थी कि एक गाने में बहुत सारी जगह रानी को पैर में चोट लगी थी, वो किस्सा अगर आप खुद बता दें तो बड़ा अच्छा लगेगा।
1: सो ऐसे इंसिडेंट तो 2-3 बार हुए हैं
0: जी।
1: जैसे एक गाना मैं बताऊं अगर आपको, जिसमें टाइटल सॉन्ग है, जिसमें ऐसे दिखाना है कि मैं डांस कर रही हूँ
0: हाँ।
1: और अरबाज खान को
0: हाँ।
1: रानी मुखर्जी का कैरेक्टर जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो दिखाई देती है।
0: अच्छा।
1: तो सलमान भाई ने कहा कि हु बेटर देन शबीना।
0: हाँ।
1: सो बहुत कम लोगों को मालूम है, अभी आपके माध्यम से जितने लोग सुन रहे वो वापस जाके YouTube पे देखेंगे तब समझ आएगा, लेकिन लोगों को देखकर भी समझ नहीं आया था। आज भी बहुत कम लोग हैं जिन्हें पता है कि दो लड़कियां थी,
0: ऐसा मुझे भी समझ नहीं आया था।
1: हाँ,
0: उस गाने
1: आप
0: में
1: देखिए
0: जी
1: गाना शुरू मुझसे होता है, सेम कपड़े सेम हेयर स्टाइल एवरीथिंग सेम, मैं डांस करना शुरू करती हूँ, हेलो ब्रदर, दैट सॉन्ग ब्रदर, हेलो ब्रदर,
0: उसमें दोनों जगह पे आप हैं बट
1: मैं हूँ, और फिर वो चेंज होता है अरबाज खान के पॉइंट ऑफ व्यू से, रानी आती है। तो वो जब हम कहते हैं तब पता चलता है कि अच्छा वो लड़की दूसरी थी क्या, बहुत लोगों को लगता था। इवन ऑन द सेट रानी मुखर्जी का जो मेकअप आर्टिस्ट है वो घूम के मेरे पास आके मेरा मेकअप कर रहे हैं, तो दादा मैं हूँ शबीना रानी। तो हमारी हाइट पर्सनालिटी बाल काफी कुछ मिलता था उस वक्त
0: जी।
1: और फिर एक गाना था काली नागिन की जैसी जुल्फे तेरी काली काली, मैं असिस्टेंट थी और उसमें काफी वाइड शॉर्ट्स और मिड वाइड में हमें गाना जल्दी खत्म करना था, शायद पता नहीं रानी को भी ये बात पता है कि नहीं, तो वो आने से पहले काफी शॉर्ट्स मेरे साथ और आमिर जी
0: हो
1: के
0: गए
1: साथ
0: थे।
1: हो जाते थे।
0: अच्छा,
1: तो वो एक गाना था, उसके बाद में चांदी की डाल पर सोने
0: वो
1: का
0: मटकी
1: मोह,
0: फोड़ने वाला गाना
1: मटकी फोड़ने वाला
0: जी।
1: गाना, वहां पे भी मैं असिस्टेंट थी और काफी वक्त ऐसे वाइड शॉट, तो काफी ऐसी फिल्में थी जहाँ पे लगे अच्छा जल्दी करना है, सनलाइट को संभालना है, तो आजा शबीना तू कर ले,
0: जी
1: तो आई यूज टू डू इट।
0: मतलब मजे मजे में जिंदगी में बड़े सारे काम कर लिए, मतलब जरूरत पड़ी तो हम खुद ही मेकअप करके उतर गए और डांस करके
1: हाँ,
0: आ गए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, यही अदायगी होती है।
0: जी जी जी अभी आप असिस्टेंट कोरियोग्राफर असिस्टेंट डायरेक्टर आप काम करते जा रही हैं, तो इसमें आपने बहुत सारी फिल्मों में और भी काम किया होगा उस समय
1: बहुत सारे
0: जी। उसके बाद आपने अपना खुद का जो पड़ाव है या बोलना चाहिए मेरा कदम, वो कब लिया और कैसे लिया?
1: सो असिस्टेंट पीरियड की एक बात जो मैं जरूर मेंशन करना
0: जी
1: चाहूंगी ताकि जो आपके सुनने वाले हैं लड़कियां
0: जी
1: है वो समझे इस बात को, कि मेरी अम्मी ने एक शर्त रखी थी कि पढ़ाई नहीं छोड़नी तुमने,
0: पढ़ाई नहीं छोड़नी है जी, बहुत
1: तो
0: बढ़िया
1: मेरे
0: बात है।
1: असिस्टेंट पीरियड में मैं पढ़ाई भी कर रही थी, 10th कंप्लीट की,
0: हाँ
1: कॉलेज जाना शुरू किया,
0: ओके
1: काम भी कर रही हूँ, कॉलेज भी जा रही हूँ और घर भी संभाल रही हूँ, अपने बहन भाइयों की
0: आप
1: पढ़ाई।
0: कॉलेज में क्या विषय पढ़ रहे थे उस समय?
1: मैंने 2 साल साइंस लिया था, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी।
0: आप कोरियोग्राफी के साथ
1: हाँ, तो क्योंकि मैं
0: मेडिकल
1: कोरियोग्राफर
0: की पढ़ाई
1: कभी
0: कर रहे हैं
1: बनना नहीं चाह रही थी, मैंने
0: जी।
1: काम शुरू ही एक सोच के किया था, अम्मी और मेरी ये सोच थी कि हमने अपनी पढ़ाई को सपोर्ट करना है और मैंने डॉक्टर बनना है,
0: जी
1: क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, 100% मार्क्स स्कोर करती थी स्कूल में। मैंने 1 साल पहला साइंस लिया, बहुत डिफिकल्टी से पढ़ाई भी की काम भी किया, सेकेंड ईयर फिर मुझे इसको स्किप करना पड़ा क्योंकि उस वक्त तक भाई बहन बड़े हो रहे थे, पैसों की भी जरूरत थी और पढ़ाई अगर करके मार्क्स कम आए तो मुझे वो गवारा नहीं था क्योंकि जिंदगी भर मैंने 100% स्कोर किया था,
0: हारे तो कभी नहीं थे।
1: कभी हारे नहीं, तो मैंने सोचा ठीक है, फिर मैंने वहां से छोड़कर कॉमर्स में आ गई मैं, कि
0: अच्छा,
1: कोई बात नहीं ग्रेजुएशन कंप्लीट करते फिर देखते क्या होता है, तो पढ़ाई साथ साथ चलती रही मेरी।
0: मतलब आपने जो भी पढ़ा अच्छा कठिन ही पढ़ा,
1: हाँ
0: 11th 12th भी अगर आप साइंस से पढ़ रहे हैं तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन

0: या फिर आप बायो की लाइन में पढ़ रहे हैं तो इतने सारे
1: बहुत
0: बायोटेक्निकल
1: कुछ
0: नेम्स और बहुत सारी
1: बहुत
0: चीजें
1: कुछ।
0: होती हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री सबसे
1: तो
0: डर
1: ऐसा
0: तो
1: होता
0: मुझे
1: था कि
0: लगता है आपने
1: असिस्टेंट
0: पढ़ा।
1: डेज में मेरी किताबें मेरे साथ होती थी, अम्मी साथ होते थे, किताबें साथ होती थी, पढ़ाई भी कर रही होती थी।
0: ये
1: और
0: बहुत बड़ी बात है और शायद ये प्रेरणा वाली बात है हमारे उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि हम एक साथ पढ़ाई के साथ कुछ और नहीं कर
1: बिल्कुल यही
0: सकते।
1: मैं चाहती थी कि आपके
0: जी,
1: जरिए पता
0: तो
1: चले
0: हमारे
1: लोगों को।
0: कितने सारे श्रोताओं में जो कितने बच्चे हमें सुन रहे होंगे उनको कितनी अच्छी बात पता पड़ रही है कि आप काम भी कर रही हैं, कमाई भी कर रही हैं, दोनों चीजें हो रही हैं,
1: बिल्कुल
0: प्लस पढ़ाई भी हो रही है, वो भी साइंस की,
1: जी,
0: बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ये
1: बिल्कुल
0: तीनों बहुत हैवी सब्जेक्ट हैं, तीनों में बहुत पढ़ना, याद करना, फिजिक्स
1: बिल्कुल
0: की मैथ्स भी होती है।
1: बिल्कुल। इसलिए
0: और
1: जब सेकेंड ईयर पे आई तो मैंने खुद डिसीजन लिया कि मैं नहीं कर पाऊंगी।
0: बट कॉमर्स भी इजी नहीं
1: हाँ,
0: है।
1: बीके में मास्टर थी मैं अपनी क्लास
0: जी, क्या
1: की, मतलब मैं खुद,
0: बात है,
1: हाँ,
0: बुककीपिंग
1: पढ़ाई में
0: ये।
1: अच्छी। हाँ, तो बुक कीपिंग वॉज वेरी गुड, विच इज हेल्पिंग मी नाउ ऑल्सो। तो जो
0: हाँ
1: पढ़ाई है वो मेरी जिंदगी में आज भी मेरे बहुत सपोर्ट में है। जो मैं सिस्टमेटिकली अपने करियर को संभाल पाई हूँ वो सिर्फ एक नॉलेज था, पढ़ाई का, डिसिप्लिन का।
0: जी
1: और आप एक स्टूडेंट होते हो

0: कि मैं नहीं कर पाऊंगी।
1: कॉमर्स भी इजी नहीं
0: हाँ,
1: है
0: बीके में मास्टर थी मैं अपनी क्लास
1: जी,
0: की, मतलब मैं
1: क्या
0: खुद,
1: बात है,
0: हाँ
1: बुककीपिंग,
0: पढ़ाई में
1: सही
0: अच्छी, हाँ तो बुक कीपिंग वॉज वेरी गुड, विच इज हेल्पिंग मी नाउ ऑल्सो। तो जो
1: हाँ
0: पढ़ाई है वो मेरी जिंदगी में आज भी मेरे बहुत सपोर्ट में है। जो मैं सिस्टमेटिकली अपने करियर को संभाल पाई हूँ वो सिर्फ
1: जी
0: एक नॉलेज था पढ़ाई का, डिसिप्लिन का।
1: जी
0: और आप एक स्टूडेंट होते हो तो आप एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हो कि आपको जल्दी सोना है, जल्दी उठना है,
1: जी
0: वो आज
1: बिल्कुल
0: भी मेरी लाइफ में है। इसलिए मैंने कहा कि ये टॉपिक मैं करना चाहती हूँ आपके साथ, कि आप कर सकते हो जब आपके दिल दिमाग में ये टारगेट बैठ जाता है कि आपको ये करना है।
1: यानी उस समय नींद कम होगी, पढ़ाई और मेहनत ज्यादा होगी, और वो
0: बिल्कुल
1: सब करके आप हर फील्ड में आप जीती।
0: बिल्कुल। और आज इंसान को, अच्छे खासे दिमाग वाले इंसान को 4 घंटे की नींद बहुत है, बहुत है।
1: जी
0: ये जो 6 घंटा 8 घंटा है वो एक्टरों के लिए ठीक है, जिन्हें अच्छे दिखना है, सुंदर दिखना है, लेकिन अगर आपको आपका करियर बनाना है तो
1: जी
0: आपके अंदर बेचैनी होनी चाहिए, आपको भूख नहीं लगनी चाहिए। शाहरुख खान साहब बहुत अच्छा कहते हैं कि अगर आपको नींद नहीं आती और आपको भूख नहीं लगती और आप बेचैन हो तो
1: हाँ,
0: मतलब आप बहुत बड़े बनोगे आगे जाके।
1: क्या बात है,
0: आप सुकून की नींद सो गए तो खत्म,
1: सुकून की नींद नहीं, पेट भर
0: बिल्कुल
1: के भूख नहीं,
0: बिल्कुल।
1: और एक अलग
0: ये
1: बेचैनी।
0: बिल्कुल मैं अपने आप
1: इसके
0: को
1: लिए
0: आज
1: डॉक्टर के पास नहीं जाना है,
0: नहीं
1: काम
0: जा,
1: करने के लिए लग
0: चार
1: जाना है।
0: घंटे की नींद काफी होती है दिमाग को और तंदुरुस्ती को
1: जी
0: कायम रखने के लिए।
1: कई बार लोग इसे कह देते हैं कि हम डिप्रेस हो रहे हैं या हमें कोई और समस्या हो रही है, ये सब नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दे लो, आपके अंदर कुछ पनप रहा है,
0: बिल्कुल,
1: कुछ जाग
0: ये
1: रहा है।
0: बेचैनी जो है एक नए कल की शुरुआत है।
1: जी
0: हमेशा
1: जी
0: हिमेश रेशमिया ने एक बार बहुत अच्छी बात कही, हम जब प्रेम रतन धन पायो कर रहे थे, कहते हैं, मैंने कहा सर कितना खूबसूरत गाना बनाया आपने, तो ही सेड रोटी की भूख मुझे आज भी है,
1: इतना होने के
0: ये भूख ही मुझसे करवाती है।
1: बाद
0: तो मैं सर
1: और उसके बाद वो लोग रोटी नहीं खाते मेंटेन करने के
0: बिल्कुल।
1: लिए।
0: तो अब आपके सवाल के जवाब की तरफ आती हूँ कि
1: जी
0: ये कब हुआ, जब कोरियोग्राफी शुरू की।
1: जी
0: मैं कोरियोग्राफर बनना नहीं चाहती थी, मैं पढ़ाई करके कुछ बनना चाहती थी, कुछ अलग बनना चाहती, लेकिन जिंदगी का मकसद कुछ और होता है, ऊपर वाले का स्क्रीन प्ले कुछ और होता है। और मेरी अम्मी हमेशा कहती है ना, फ्लो के साथ चलो। एक फ्लो आया जब मैं प्रभु देवा जी को असिस्ट कर रही थी, चेन्नई में थी मैं, गणेश मास्टर जी के साथ अब काम छोड़ दिया 4-5 साल के बाद, और अब लगा कि ठीक है दिशा बदलनी चाहिए, तो
1: जी
0: मैंने प्रभु देवा जी को ज्वाइन किया।
1: जी
0: मैं चेन्नई में शूट कर रही थी और मुझे बॉम्बे में राम गोपाल वर्मा जी ढूंढ रहे थे। हाँ
1: अच्छा, क्या
0: जी,
1: बात है।
0: तो असिस्टेंट डेज में जिनको भी साथ मैंने काम किया उनको एक चीज वो नहीं भूल पाए कि एक लड़की है जो ऐसा परफॉर्म करती है लगता है माधुरी दीक्षित नाच रही है। तो वो जो मेरा परफॉर्मेंस था लोग भूल नहीं पाए। हर इंसान, मतलब असिस्टेंट डेज में भी ऐसा होता था कि ऐश्वर्या राय गाना कर रही है हमारा दिल आपके पास, और वो पूछ रही है कि गणेश मास्टर जी की असिस्टेंट शबीना है ना अभी भी,
1: अच्छा, प्रश्न ही होता था,
0: हाँ
1: शबीना आएगी ना
0: शबीना है
1: सिखाने
0: ना,
1: के लिए। हाँ
0: तो उन्होंने पूछा शबीना है ना, हाँ हाँ शबीना है, उनका वीजा अमेरिका का, तो अनिल कपूर और बोनी कपूर जाते वीजा लगवाने मेरा,
1: मतलब आपने इतना अच्छा काम किया कि आपके लिए अनिल कपूर
0: हाँ
1: जाके वीजा लगवा
0: वीजा।
1: रहे।
0: और मुझे कॉल आता है कि भैया तुम्हारा 10 साल का वीजा लग गया है, समझ रही हो, तुम अनिल कपूर बोल रहा हूँ शबीना, मतलब वो लेवल का। शाहरुख भाई ने एक बार बोल दिया कि अगर असिस्टेंट्स को अवार्ड होता तो मैं शबीना को अवार्ड दिलवा देता,
1: क्या बात है,
0: जब मैं उनके साथ मैं तो हूँ पागल सॉन्ग कर रही थी, जब मैं परफॉर्म भी
1: हाँ
0: कर
1: क्या
0: रही थी।
1: खूबसूरत गाना
0: तब तो मैंने बिल्कुल ज्वाइन पूरी तरह से किया नहीं था, मैं
1: है।
0: पढ़ ही
1: जी
0: रही थी,
1: जी जी
0: असिस्टेंट डेज की बात है।

0: वो वाले माहौल में राम गोपाल वर्मा मुझे ढूंढ रहे हैं मुंबई में, और वो कहते हैं कि एक लड़की थी जो गणेश आचार्य जी के साथ परफॉर्म करके दिखाया था उसने मुझे एक गाना,
1: जी
0: वो लड़की को ढूंढो उसको ब्रेक देते हैं, वो बिल्कुल माधुरी की तरह नाचती है, और फिल्म का नाम था जिसके लिए वो मुझे ढूंढ रहे थे, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ,
1: 2003 की ये फिल्म है।
0: बिल्कुल, और वो ढूंढ रहे हैं मुझे। फिर वहां से मुझे ढूंढा गया, चेन्नई से बुलाया गया और अपनी ऑफिस में बुलाया, अम्मी और मैं बैठे और बात कर रहे हैं उनसे, और मैं कह रही हूँ कि सर मैं कोरियोग्राफर नहीं बनना चाहती, मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता,
1: सीधे ब्रेक
0: मुझे
1: मिल रहा है बट
0: बिल्कुल
1: आप जाना चाहती हैं पढ़ने के लिए। जी
0: मुझे आता ही नहीं कुछ, मैंने सिर्फ यही सीखा है कि अपने मास्टर्स के लिए अच्छा काम करना है, मैंने कभी टेक्निकली सीखा ही नहीं कि कैमरे के पीछे क्या होता है, तो मुझे बनना ही नहीं था इसलिए मैंने सीखा ही नहीं, मुझे एक ही बात आती है कि आपको परफॉर्म कैसे करना है। ही सेड दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, ही सेड मैंने सरोज जी को साइन कर लिया है, मैं फिर भी चाहता हूँ कि तुम करो अंतरा के साथ ये फिल्म, अंतरा माली हीरोइन थी
1: जी
0: उसकी, चंदन अरोरा जी उनके डायरेक्टर थे जो बहुत बड़े एडिटर थे उस वक्त भी, सर
1: जी
0: सर मुझे कुछ नहीं आता, इसे चंदन है तुम्हारे साथ तुम्हें बता देगा, एक गाना करो मजा आया तो आगे करना,
1: वो
0: फिर
1: गाना कौन सा था पहला वाला?
0: तुमसे मिली नजर तो असर हुआ
1: हाँ
0: है आज
1: वो भी
0: ये
1: बहुत
0: दिल,
1: अच्छा किया था अंतरा माली जी ने,
0: आहा, आहा,
1: बढ़िया किया था
0: बहुत
1: वो।
0: फेमस हुआ था वो गाना। ही सेड मैंने ऑडिशन किया है काफी लड़कियों को, बट तुम जाओ अंतरा से मिलो और देखो क्या होता है, मैं गई, अंतरा ने मुझे दो गाने दिए, इस पे कल आप परफॉर्म करके दिखा देना, मैंने किया, वो गाना था एक दो तीन और हमको आज कल है इंतजार,
1: हाँ, वो
0: माधुरी
1: मुझे
0: दीक्षित
1: अभी
0: का।
1: अंतरा जी दिखाई दे रही हैं, अंतरा माली की, वो उस गेटअप में खड़ी हैं स्टेज पे और वो उसको परफॉर्म कर रही हैं।
0: बिल्कुल,
1: जी
0: तब वो गाना मैंने उनको परफॉर्म करके दिखाया, एंड शी जस्ट स्टूड अप एंड शी हग्ड मी एंड शी सेड तुम ही करोगी मेरे गाने,
1: क्या बात है।
0: तो मैंने कहा कि मैम मुझे आता नहीं है बिहाइंड द, तो चंदन अरोरा साथ में कर लेंगे, मेरी भी पहली पिक्चर है, सच अ
1: सीख लेंगे
0: ग्रेसफुल डायरेक्टर, सच अ गुड एडिटर इज,
1: जी।
0: उनकी वजह से मैं बहुत कुछ सीख पाई, उन्होंने मुझे कहा कि देखो तुम शॉट मुझे ऐसे बताना, गर्दन का मूवमेंट है तो यहाँ पे हाथ रखना गर्दन के नीचे, कमर का मूवमेंट है तो कमर की तरफ हाथ रख के बताना, पूरा फुल फिगर है तो बताना कि मुझे पूरा देखना है, इतनी सादी अल्फाज में उन्होंने मुझे एक कोरियोग्राफी सिखा दी, और फिर वहां से सिलसिला शुरू हुआ, और जब पहला गाना एडिट
1: कोई
0: करके,
1: टेक्निकल वर्ड्स नहीं थे
0: ये सर
1: इसमें।
0: तुमने यही सीखना है, और फिर जो सीखोगे अपने काम से सीखो, काम करते करते सीखो,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: राम गोपाल वर्मा इज माई फर्स्ट टीचर एंड चंदन अरोरा इज माई सेकेंड टीचर, आई टेक इट लाइक दैट, एंड अंतरा माली इज माई फर्स्ट स्टार हु उस दिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोला चल साथ में करते हैं,
1: जी
0: तो वो फिल्म मैंने की और मुझे बहुत मजा आया, और फिर लगा कि ओ माई गॉड ये मेरा क्रिएशन है, जब 70 mm के पर्दे पे मैंने पहली बार अपनी रचना देखी तो मुझे लगा कि स्टेप्स भी मेरे हैं,
1: जी
0: लाइट्स भी मैंने बताई है, एंगल भी मेरी, ये मैंने क्रिएट किया है,
1: ये मेरा बच्चा है।
0: हाँ, तब मैंने मम्मी को बताया, मम्मी मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मुझे ये करना है, मम्मी बोले करो बेटा,
1: एक्चुअली मैं, जब आप कुछ सजाते हो तो सजाने के पहले भी आप एक अकेले कमरे में बैठ के शायद उस
0: आप
1: डांस
0: उसको
1: को
0: जीते हो,
1: जी रहे होगे, उसके
0: बिल्कुल
1: साथ कुछ सपने भी बुन रहे होगे
0: बिल्कुल,
1: और उसको आपने एक जीवन दे दिया।
0: मतलब मैं अगर आपसे ये कहूं कि हम रिहर्सल हॉल के अंदर बैठ के गाना एडिट तक देख लेते हैं,
1: हाँ
0: एडिटिंग तक,
1: हाँ
0: पहला प्रोसेस होता है गाना आता है, कोरियोग्राफी होती है, डायरेक्टर को दिखाते हैं, शूट करते हैं, एडिट करते हैं,
1: जी
0: तो पहले प्रोसेस में बैठ के हम एडिटिंग रूम के अंदर गाना देख लेते हैं,
1: जी
0: ये इतनी खूबसूरत रचना है जिसको आप रचने जा रहे होते हो, तब मुझे वहां पे मजा आया और मैंने कहा कि अब यही करना है मुझे, फिर जिंदगी का मोड मुझे कोरियोग्राफी की तरफ ले आया, और वहां से मेरी कहानी

0: शुरू हुई। आपको सुन के ना इतना मजा आ रहा है कि जिंदगी में आप एक 20 मिनट आधा घंटा किसी को सुन रहे हो और सुनते सुनते आप उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके जीवन में काम आ जाएंगी, ऐसी मिलते जा रही हैं। तो आपसे बात करके शबीना जी बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन हमारे श्रोताओं को हमें कोई गीत तो सुनाना पड़ेगा, और आपके गीतों में से कोई गीत सुनाना है या पुराना सुनाना है हम आप पे बिल्कुल छोड़ देते हैं। आज आपकी पसंद हमारे श्रोताओं तक पहुंचनी चाहिए जितनी भी
1: तो,
0: चाहिए।
1: मेरा एक गाना है मेरी अपनी फिल्म का जो मेरा अपना फेवरेट है
0: जी,
1: प्रेम रतन धन पायो फिल्म से है, गाना है जलते दिए।
0: बहुत खूबसूरत गीत है,
1: उसमें मुझे वो आत्मा दिखती है जो पुराने गानों में दिखती थी।
0: जी जी,
1: जो आप सुनेंगे या आप देखेंगे तब भी आपको लगेगा कि ये गाना रूह को टच करके जाता है।
0: इसके साथ एक प्रश्न आ रहा है मन में, वो जो बीच बीच में जो दिए जल रहे हैं और वो बीच में से जो आपकी अभिनेत्री नृत्य कर रही हैं और नृत्य करते करते यहाँ से वहां जा रही हैं, तो इस चीज के लिए भी विशेष सुरक्षा कुछ की जाती होगी कि कैसे वो कर रही हैं, तो वो थोड़ा सा उसके बारे में बता दें तो हम गाना सुना।
1: अगर आप गाना देखेंगे आपके जरिए जो इतने लोग
0: सुनेंगे और बाद में देखेंगे भी,
1: देखेंगे और सुनेंगे, तो ये जो दिए देख रहे थे आप, क्योंकि गाना था जलते दिए, तो हमारे जो सूरज बजातिया जी है उनको तो सब जानते हैं, सबके दिलों की धड़कन है वो, तो वो बहुत ही रियल लाइफ में जीते हैं अपनी।
0: बिल्कुल,
1: उनसे मैंने, वो मेरे एक मेंटोर है, मेरे टीचर है, उनसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। जब ये गाना आया उन्होंने कहा कि हम दिए खुद जलाएंगे।
0: खुद जलाएंगे यानी
1: नकली दिए भी मिलते हैं जो आप ऑन करके डाल दो,
0: एलईडी वाले जी।
1: सिर्फ नहीं, उन्होंने अपने डीओपी को बोला, मणिकंडन हमारे डीओपी थे, हे सेट मैं चाहता हूँ कि हम दिए जलाएं, जितने
0: दिए जलाएं
1: दिख रहे हैं हम जलाएंगे, भले 50-100 लोग भागे शॉट के पहले दिए जलाए और बाहर आ जाए। तो ये एक बहुत बड़ी कहानी है इस
0: का, ये काम ऐसा होता है।
1: तो उसमें दिए जलाने में मैं भी होती थी, मेरे असिस्टेंट, उनके असिस्टेंट, वो भी भागते थे कि दिए जलाना है, पानी में भी दिए जल रहे हैं
0: जी,
1: आपने जो सवाल किया, साइड में
0: जल रहे हैं,
1: जहां जहां वो जा रही है वो दिए जल रहे हैं, और उन दियों को हम जलाते थे और एक डिस्टेंस मेंटेन करके, क्योंकि उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी
0: और वो बहुत चलकर नेट की साड़ी है वो,
1: तो वो हमारा एंगल हम ऐसे रखते थे कि दिए लगे उनके बहुत करीब, बट वो होते थे बहुत दूर।
0: मेरा प्रश्न वही था कि हमें ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल दिए के बगल से निकल रही है, और वो
1: हमारा एंगल ऐसे रखते हैं कैमरा के, कैसा लगे कि है बहुत करीब, लेकिन वो है बहुत, हम जो भी फिल्म के सेट पे करते हैं वो बहुत ही सोच समझ के, हमारे जो लोग एक्सपर्टीज रखते हैं इस मामले, वो हमारे सेट पे होते हैं
0: जी,
1: और फायर के लिए बराबर से इक्विपमेंट होते हैं, ऐसे नहीं होता,
0: फिल्म सेट हैं,
1: डॉक्टर्स होते हैं, सारी चीजों को बहुत ध्यान में रख के फिल्म के सेट पे काम किया जाता है। जैसे लोग आजकल रील बना रहे हैं, उनको भी ये समझना चाहिए कि आप देख के रील बनाते हो, लेकिन आप भी इसका ध्यान रखो कि सेफ्टी बहुत जरूरी है। घर में रील बनाते हो, पीछे पर्दे लगे हैं, वो पर्दे जल जाए, घर में रहने वालों को नुकसान हो जाए,
0: सेफ्टी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी चाहिए।
1: तो इस गाने को बहुत ही प्यार से, कोमलता से दर्शाया गया,
0: बहुत प्यारा, बहुत सॉफ्ट, बहुत गीत है और बहुत प्यारा गीत है ये, दिल में ऐसे लगता है सुनते सुनते कि हाँ कुछ हो रहा है। तो जब कुछ हो रहा है तो वो गाना सुन लेना चाहिए। तो हमारे श्रोताओं के लिए इस प्यारी सी सूचना के साथ, जानकारी के साथ कि कैसे शूट किया गया ये गाना जलते दिए, आप सबके लिए

0: अभी आपने फीमेल एक्टर्स का नाम लिया, ऐश्वर्या का नाम लिया आपने, आपने बहुत सारे लोगों का नाम लिया
1: जी।
0: बहुत सारी एक्ट्रेस हैं, जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी इंटरनेट पे, सर्च किया, ढूंढा आपको, और वो ढूंढते ढूंढते तो कभी कभी ऐसी चीजें जो होती हैं सोशल मीडिया वाली, वो भी बड़ी काम आ जाती हैं। तो वहां से ये भी जानकारी मिली कि लगभग जब हम पढ़ रहे थे तो 34-35 महिलाएं जो हैं, एक्ट्रेस जो हैं, अभिनेत्री जो हैं, उनको आपने बढ़िया डांस करवाया है, बढ़िया कोरियोग्राफ किया है। तो पूजा जी हैं, सोनाक्षी सिन्हा हैं, विपाशा हैं, परिणीति हैं, माधुरी हैं, रेखा हैं, रेखा जी को भी आपने सिखाया है। तो मैं जानना चाहती हूँ, या हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं बात, तो ये बड़ा वैसा प्रश्न है, कौन है जो बड़ी सरल सी है और बड़ी आसानी से सीख जाती है और बड़े प्यार से कर लेती है?
1: आपने अभी और पुराने सबका नाम एक साथ ले लिया।
0: नहीं, आप अलग से बता सकती हैं।
1: हर एक के बारे में बता
0: जी, जी, जी।
1: रेखा जी हमारी उमड़ा जान
0: जी,
1: उनसे बेहतर कौन हो सकता है। उनके साथ मैंने सुपर नानी एक फिल्म की थी इंद्र कुमार जी की
0: जी।
1: मैं नई कोरियोग्राफर थी
0: जी।
1: और जब उनको पहली बार देखा मेरे पैर ठंडे हो गए, हाथ ठंडे हो गए, बिकॉज उनकी अदायगी
0: आज भी उतनी ही खूबसूरत,
1: आज भी उतनी ग्रेसफुल,
0: 73-74 बरस की उम्र में भी वही अदायगी,
1: आज भी वो स्टेज पे खड़ी हो जाए बस यूं देख ले तो दिल के अंदर तीर घुस जाते, वैसी है वो। और उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल किया और उनके साथ मैंने वो फिल्म की
0: जी,
1: उसमें डांसिंग नंबर भी था एक, और बहुत प्यार से किया। मेरी उस साल नई शादी हुई थी, उन्होंने अपने हाथ से बना के

0: एक मंगलसूत्र मुझे पहनाया
1: आ, क्या बात है।
0: और अपने हाथ से एक लेटर दिया लिखकर, इसे मैं कहती हूँ अचीवमेंट है। ठीक है, उसके बाद सोनाक्षी सिन्हा बहुत ग्रेसफुल है।
1: अच्छा,
0: बहुत ग्रेसफुल है, उसमें वो बात है।
1: अच्छा,
0: जो हम कहते हैं ना अदायगी, नजाकत, यू नो, वो है। परिणीति इज ऑल्सो वेरी ग्रेसफुल।
1: यस,
0: ग्रेसफुल मैं तब कहती हूँ ना, परिणीति के साथ अक्षय कुमार, परिणीति का एक गाना किया था, कीमती एक सॉन्ग था मेरा, बहुत ग्रेसफुल। जहां आपके पास डांस नहीं करना है, खड़े रह के कुछ बोलना है, कुछ गाना है, वहां पे आपकी नजाकत और आपका ग्रेस पता चलता
1: इसे
0: है।
1: अंग्रेजी में मिनिमल कहते हैं, या मतलब कमतर में बेहतरीन करके
0: बिल्कुल
1: निकल जाना।
0: बिल्कुल,
1: जी
0: आपको ज्यादा शोर शराबा, जंप वंप करने की जरूरत नहीं है। आप बस, आपका क्लोजअप लगा और आपने सिर्फ कैमरा को देखा और एक लाइन गा दी। इसे कहते हैं अदायगी,
1: हाँ,
0: जो परिणीति में है, सोनाक्षी में है। सोनम इज रियली गुड, सोनम प्रूव्ड इन प्रेम रतन धन पायो, शी वर्कड रियली हार्ड विथ मी। अगर मेरा नाम, परिचय इस दुनिया को और इस इंडस्ट्री को पता चला तो प्रेम रतन धन पायो फिल्म थी,
1: बिल्कुल,
0: और उसमें मेरी हीरोइन थी सोनम कपूर।
1: सोनम
0: शी वर्क
1: कपूर।
0: रियली हार्ड, रात को दो दो बजे तक रिहर्सल किया। और शी, क्योंकि मैं अपनी अदायगी को कैमरे के सामने तो दिखा सकती नहीं हूँ, बट मैं अपनी एक्ट्रेसेस के साथ, अगर वो मेरे साथ मेहनत करने तैयार है, तो उनके साथ मेहनत करके अपने आप को उनके जरिए कैमरे पे दिखा सकती हूँ। जो जलते
1: बहुत
0: दिए में आप
1: सॉफ्टनेस
0: देखिए,
1: के साथ में उन्होंने
0: बिल्कुल
1: डांस किया जी।
0: शकुंतला बन गई थी वो, बिल्कुल उस
1: हाँ,
0: गाने
1: ऐसा
0: में।
1: ही
0: यही था,
1: दुष्यंत का ही इंतजार रह गया था। शी वॉज वेरी
0: शी
1: गुड,
0: वेरी
1: बहुत
0: ग्रेसफुल।
1: बहुत बहुत प्यारा किरदार उन्होंने।
0: जितनी भी मेरे साथ, अभी मैं एक नई फिल्म कर रही हूँ, शर्वरी,
1: अच्छा,
0: नई लड़की, आज की लड़की है, बहुत ग्रेसफुल है वो भी। तो होता क्या है, जब आपका प्रोफाइल बनता चला जाता है तो लोग आपको सर्च करते हैं और फिर कहते हैं, ओह आपने इतनी ग्रेसफुल गाने की है, मुझे भी करवा दीजिए।
1: सही बात है,
0: यू नो,
1: कहेंगे लोग।
0: बस उसी की वजह से मेरा एक जो प्रोफाइल बना है कि कंसिस्टेंसी ऑफ डिलीवरिंग क्लासिक एंड गुड वर्क, जो बहुत जरूरी होता है, वो ही है। तो ये जितनी भी लड़कियों का आपने नाम लिया जिनके साथ मैंने काम किया, दे वर्क हार्ड विथ मी एंड दैट्स हाउ दे हैव।
1: इनके कोई
0: तो
1: नखरे नहीं होते थे कि तुम मुझे ये मत कराओ, वो मत कराओ, मैं ऐसा नहीं करूंगी, वैसा नहीं करूंगी। जैसे माधुरी दीक्षित हैं, वो अपने आप में परिपक्व हैं नृत्य के लिए। ऐश्वर्या राय हैं, उन्होंने भी बहुत सारा कुछ सीखा हुआ है नृत्य में। तो इन लोगों का कुछ ऐसा अपनी फरमाइश नहीं होती है
0: सी, जैसे माधुरी दीक्षित की बात की
1: जी?
0: आपने, मैं उनकी डाई हार्ट फैन हूँ।
1: जी,
0: उनके साथ अब असिस्टेंट डेज में मैं एक पुकार फिल्म का गाना कर रही थी,
1: एक ही जरा जरा
0: वो भी किया। और एक गाना था जो फिल्म में नहीं डाला, गणेश मास्टर जी कर रहे
1: जी
0: थे।
1: जी
0: जब वो मेरे सामने आए और मुझे उनको करके दिखाना था, और पहली बार मैंने अपनी प्रेरणा को अपने सामने देखा, तो
1: जी
0: मैं रो पड़ी।
1: हाँ,
0: शी केम, शी हग्ड मी एंड शी गॉट टू नो दैट आई एम अ बिग फैन। शी सेड, अगर मेरी अच्छी फैन है तो मुझे करके दिखा ये गाना पूरा। और मैंने उनको पूरा गाना डांस करके दिखाया। शी सेड, मिरर लाओ, मुझे शबीना को कॉपी करना है।
1: आह, क्या बात है
0: हाँ, ये होता है अचीवमेंट।
1: जी।
0: और मैं बिल्कुल शून्य थी, क्योंकि माधुरी दीक्षित ने कभी लोगों को बदल के अपने परफॉर्मेंस नहीं किया। उन्होंने जितने कोरियोग्राफर के साथ काम किया, ये है लेजेंड होने की एक बहुत बड़ी निशानी। आप कब लेजेंड बनते हो, आपके अंदर ये क्वालिटीज होती है।
1: उन्होंने हर कोरियोग्राफर को
0: उन्होंने
1: गुरु
0: अगर
1: मान के
0: माधुर,
1: उसके जैसा ही
0: उन्होंने
1: काम
0: सरोज
1: किया
0: जी को अगर निभाया स्क्रीन पे, तो उन्होंने जय बोराडे को निभाया।
1: जी।
0: आपको पता है, जय बोराडे ने उनके साथ बहुत बड़ी फिल्म की थी जो सूरज बड़जात्या की थी, उसका नाम था हम आपके हैं कौन।
1: जी, बहुत
0: उन्होंने निभाया
1: खूबसूरत
0: उनको, उन्होंने उनको निभाया, गणेश आचार्य जी को निभाया। बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी मुश्किल जो गाना है,
1: जी
0: मैं असिस्टेंट थी, वो भी उन्होंने किया,
1: जी
0: माधुरी दीक्षित जी ने। तो उन्होंने मेरे साथ जब वो गाना असिस्टेंट में किया, बड़ी मुश्किल भी, शी नेवर सेड कि मुझे चेंज करना है। शबीना ने बहुत अच्छा किया, शबीना मुझे बताओ कैसे किया, मुझे ऐसे करना है। जब एक दिग्गज कलाकार आपको ये कहता है तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है।
1: जी
0: और वही चीज लेकर चल रही हूँ अपने कोरियोग्राफी के पीरियड में मैं। टचवुड, अभी तक कोई ऐसी हीरोइन नहीं आई जिन्होंने ये कहा कि ऐसे नहीं करना है, वैसे करना है, क्योंकि मैं परफॉर्म करके दिखाती हूँ उनको। और मेरे डायरेक्टर जैसे सूरज बड़जात्या, जलते दिए, साड़ी पकड़ के एक मोमेंट है, चलना है। सूरज जी ने कहा, सोनम मुझे यही चाहिए। जब आपका डायरेक्टर आप पे भरोसा करता है
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल,
0: एक्टर फिर खामोश हो जाता है।
1: हाँ
0: और सलमान खान, उन्होंने
1: हाँ
0: जब वो गाना देखा, मैं और मेरा असिस्टेंट जो मेरा एसोसिएट कोरियोग्राफर है, मेरा छोटा भाई है वो, सगा भाई है,
1: जी,
0: वो भी मेरे साथ रह रहे कि वो भी एक एक्टरों की तरह परफॉर्म करता है।
1: अरे वाह,
0: हम दोनों ने जब करके दिखाया तो सलमान खान जी ने एक बात बोली कि मुझे पता चल गया मुझे कैसा करना है, मुझे इसकी तरह करना है। सोनम तू देख ले तुझे क्या करना है। सूरज जी ने बोला कि शबीना।
1: जी
0: तो वहां पे कभी कभी जब एक्टर कुछ बोलने जाता है तो आपका हीरो, स्टार, मेगा स्टार या आपका डायरेक्टर आपके साथ होता है, तो फिर सब कुछ बैलेंस होके चलता है। और मेरे मामले

0: मैं यही चीज मेरे साथ ज्यादा नहीं हुई, क्योंकि जब ग्रेसफुली मैं करके दिखाती हूँ तो एक्टर लोग को लगता है मैम हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, आपका 50% भी हो जाए तो बहुत होगा।
1: हाँ,
0: उसके लिए आपको करना पड़ेगा, पहले
1: और उनको वहां तक लाना पड़ता
0: लाना
1: है,
0: पड़ेगा
1: मेहनत
0: आपको
1: करनी पड़ती है।
0: उनके कैरेक्टर को। मैं करके दिखाती हूँ, इसलिए कई बार ऐसा होता है कि मैं एक फिल्म एक वक्त में करती हूँ ताकि
1: हाँ
0: उस कैरेक्टर को जी पाऊं, उसकी तरह बन पाऊं, उसके जैसे लचक लाऊं, उसके जैसे। वरना कैरेक्टर कुछ और कर रहा है, कोरियोग्राफर अगर कुछ और दिखा रहा है तो वो कैरेक्टर जी नहीं पाएगा फिल्म के अंदर बराबर से।
1: मतलब एक फिल्म जब बन रही होती है तो उसके पीछे एक डायरेक्टर, एक राइटर, एक डीओपी और उसके कई सारे लोग, इनके पीछे
0: सारे
1: इनके
0: एचओडीज
1: असिस्टेंट्स, एक कोरियोग्राफर और उसके कई सारे असिस्टेंट उन किरदारों को खुद में जी रहे होते हैं,
0: बिल्कुल,
1: और तब कहीं जाके वो अकेला अभिनेता या अभिनेत्री नहीं जी रहे होते हैं, बहुत सारे लोग उस
0: तभी
1: किरदार को
0: प्रेम
1: जी रहे
0: रतन
1: होते
0: धन
1: हैं।
0: पायो बनी है। मैंने वो ही फिल्म की 1.5 साल, और कोई फिल्म को हाथ नहीं लगाया। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकती थी, मैं कर सकती थी, लेकिन उसके पीछे राज यही है कि पूरी फिल्म जब मैं अकेली कर रही हूँ, ये
1: जी
0: पूरी फिल्म मेरी अपनी फिल्म है,
1: जी
0: इसका कोई भी कोना कोई भी म्यूजिक मेरे हाथ से ना निकल जाए। और उस कैरेक्टर को मैं मैथिली को जीने लगी,
1: जी
0: जो
1: बिल्कुल
0: सोनम का कैरेक्टर है।
1: जी।
0: फिर मुझे प्रेम को भी जीना है, फिर मुझे सूरज बड़जात्या जी को जीना है,
1: वो दो छोटी बहनों को भी जीना है
0: उनको भी
1: बीच में
0: जीना है, हर एक कैरेक्टर को जीना है।
1: जी।
0: तो फिर उतना टाइम तो देना पड़ेगा ना आपको, तभी तो ये ऐसी फिल्में बनती है। अगर आप मेरा करियर स्पैन देखो, जितने साल मैंने काम किया है, मैंने मल्टीपल फिल्में क्वांटिटी में नहीं की है, मैंने क्वालिटी में की है।
1: तो ये बढ़िया बात आपके साथ चल रही है, और इसके बीच मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको गले लगा लूं, क्योंकि इतनी अच्छी बात आपने बताई है, और शायद हमारे श्रोता भी इस बात को सुनकर समझ पा रहे होंगे। वहां तक
0: बिल्कुल
1: पहुंच, मैं तो सेट तक पहुंच चुकी थी, तो हमारे श्रोता भी सेट तक पहुंच ही रहे होंगे।
0: बिल्कुल,
1: थे तो ये लग जा गले तो सुनाना बनता है।
0: उफ प्लीज।
1: तो आपका पसंदीदा गीत, और ये कहूं पूरी यूनिवर्स का पसंदीदा गीत, मदन जी ने क्या बढ़िया इसमें
0: बिल्कुल,
1: संगीत दिया है, क्या बढ़िया इस गीत को गाया गया है, और क्या फिल्माया गया है।
0: मैं फिल्माने पे अगर कुछ बोल पाऊँ इस
1: हाँ
0: पर,
1: बिल्कुल
0: अगर
1: जी,
0: आप इस गाने को फिर से मेरे मेरे इस
1: आपके
0: इंटरव्यू के
1: नजरिए से।
0: बाद अगर आप वापस से जितने आपके श्रोता है वो भी देखें, तो उन्हें समझ आएगा कि इस गाने को ब्लैक एंड व्हाइट पे शूट किया गया। कोई सोच सकता है कि हर एक शॉट मूवमेंट में है, वहां पे कैसे शूट किया होगा, हर एक शेडो के साथ कैमरा का जब एंगल चलता है, कई बार हाथ में कैमरा लेके डीओपी ने शूट किया होगा, लेकिन उसकी स्मूथनेस,
1: हाँ
0: उसकी अदायगी देखिए। वो एडिट पे संभाला हुआ गाना नहीं है, वो वैसे शूट किया गया है। इसको पिक्चराइज इतना बढ़िया किया गया है कि मैं हर गाना आज भी शूट करने से पहले लग जा गले देखती जरूर हूँ,
1: अच्छा
0: क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में आप शेडो क्रिएट कर रहे हो चेहरे के ऊपर।
1: हाँ
0: जंगल में वो गाना शूट हो रहा
1: हाँ
0: है और दो लोग
1: लाइट
0: हैं,
1: इफेक्ट्स इतना खूबसूरत आ रहा
0: बिल्कुल
1: है जी,
0: दो ही लोग हैं और कुछ नहीं है,
1: कुछ नहीं है,
0: और दोनों हर फ्रेम में है,
1: और बहुत ज्यादा लाइट्स भी नहीं दिखाई
0: लाइट्स
1: गई
0: भी
1: हैं
0: नहीं है।
1: बैकग्राउंड में, क्योंकि वो
0: तो
1: जंगल का है।
0: उसको वो जो सूदिंग, वो गाना अगर सुनने में प्यारा है तो देखने के बाद भी लोगों ने उसको उतना ही पसंद
1: जी
0: किया है।
1: बिल्कुल।
0: यहाँ पे कोरियोग्राफर आता है बीच में, कि
1: तो ऐसे
0: कोरियोग्राफर एक
1: गानों में भी
0: म्यूज,
1: कोरियोग्राफर का काम
0: बिल्कुल
1: होता है,
0: बिल्कुल
1: सिर्फ
0: होता
1: नाचने के लिए नहीं, बाकी
0: है, बिल्कुल होता है। आपने अगर अभी मेरा एक गाना सुनाया है जलते दिए,
1: जी
0: और आप ये गाना देखिए, आई
1: जी
0: वॉज इंस्पायर्ड बाय लग जा गले
1: जी
0: फॉर शूटिंग माई सॉन्ग जलते दिए।
1: जी
0: तो बीइंग अ सेंसिबल कोरियोग्राफर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शूट सच सॉन्ग्स विथ योर डायरेक्टर।
1: जी
0: डायरेक्टर नॉर्मली मूवमेंट वाले शॉट नहीं लेते, लेकिन म्यूजिक की डिमांड होती है,
1: की मोमेंट हो।
0: मोमेंट हो, कैमरा कॉम्प्लीमेंट करे, जो लग जा गले में हुआ है।
1: जी
0: कैमरा इज कॉम्प्लीमेंटिंग एवरी इमोशन ऑफ साधना जी और मनोज कुमार जी,
1: बहुत खूबसूरत गीत है।
0: और कैरेक्टर्स देखो उसके जो जी रहा है कोरियोग्राफर उस गाने में। इसी को मैं कहती हूँ कि अपने कैरेक्टर को जीना एक कोरियोग्राफर को आना चाहिए।
1: तो इतनी अच्छी बात के बाद तो ये गाना बनता है, तो जल्दी से सुना देते हैं ये लग जा गले।

जानी मनी कोरियोग्राफर शबीना खान से विधि जैन की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: ऊपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: हार्मोन हमारे शरीर का एक जरूरी हिस्सा है और जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं।
2: परेशान हूं मैं।
1: विविध भारती पर हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर संजय भदादा आपको बताएंगे हार्मोन्स के असंतुलन के बारे में और इसके बाद हुई हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के बारे में।
3: हमारी जो डिसऑर्डर्स है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, वो महिलाओं में अगर मैं बोलूंगा तो 70% महिलाएं और 30% मेल इसमें अफेक्ट होते हैं। विविध भारती के पूरे हिंदुस्तान के सुनने वाले श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि बोन डिसऑर्डर्स हॉर्मोन्स के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं।
1: 10 अगस्त शाम 4 बजे और 11 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सेहतनामा।
1: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
5: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं
1: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
5: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कम्प्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन किया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त तथा विकास निगम में शामिल होने का आग्रह किया। ये निगम देश के सहकारी बैंकों का एक छात्र संगठन है। उन्होंने मुंबई के फोर्ट क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये संगठन अपनी सेवाओं को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाकर शहरी बैंकिंग क्षेत्र में परिवर्तन लाएगा। सरकार ने उद्योग जगत के प्रमुख कारोबारियों और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ड इंडिया, कास्ट 24 और काउंसलिंग फॉर स्टार्टअप के साथ कई रणनीतिक समझौता ज्ञापनों की घोषणा की है। इन समझौता ज्ञापनों पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने हस्ताक्षर किए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि कैश फ्री पेमेंट्स के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे के सहयोग को मजबूत करना है। झारखंड में आज JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और विरोध प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के विभिन्न समूहों के बीच आज दूसरे दौर की उच्च स्तरीय वार्ता हुई।
2: सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के शासन में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है। पार्टी सांसद तरुण चुग ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर, वकील, व्यापारी और अन्य लोग अपनी सुरक्षा के लिए माफियाओं को जबरन वसूली की रकम देने को मजबूर हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2026 में CEO गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज टेंडोग लेहो रम फाट के अवसर पर सिक्किम के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने कहा कि ये त्यौहार लेप्चा समुदाय की समृद्ध संस्कृति और विरासत तथा उनकी भूमि के बीच अटूट संबंध का एक सुंदर उत्सव है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वायुसेना बैंड कल नई दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रस्तुति देगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देशभक्ति के इस संगीतमय कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी श्रोता सुन रहे थे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारी सांध्यकालीन सभा के प्रसारण। सपनों को पंख देने और हौसलों को एक नई परवाज देने आ गया है युवाओं का अपना मंच, जहां समसामयिक मुद्दों की गर्माहट भी है और सुरों का ठंडा फुहार भी, जहां सच्ची दोस्ती का टूट भरोसा है तो आने वाले कल की ढेरों जानकारियां और संभावनाएं भी। युवा जोश, उमंग और जीवंतता से लवरेज आपके चहेते कार्यक्रम युवाणी में आज हमारे साथ में स्टूडियो मौजूद है मोमल राज पुरोहित और साथ में हैं दिव्या सारस्वत। ये लेके आए हैं आपके लिए अपना शो युवाणी। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युवाणी।

0: रिमझिम सी फुहारे हो, खिड़की से आती ठंडी ठंडी हवा, हाथ में गर्मा गर्म चाय की प्याली हो और साथ में क्रिस्पी करारे पकौड़े। आहा साथियों, सावन का महीना है, अगस्त की ये मस्त बरसाती रंगत है और आकाशवाणी को जो अपना साथ है और शाम की शुरुआत है, इसका मजा कुछ और ही हो जाता है जब हम लेकर आते हैं आपके लिए कार्यक्रम युववाणी। नमस्कार साथियों, मैं हूँ आपकी युवा सखी दिव्या
1: और मैं हूँ आपकी दोस्त मूल राजपुरोहित। हम सब दोनों की तरफ से आप सभी को सावन के इस सुहाने मौसम में प्यार भरा नमस्कार। दिव्या, मौसम तो वाकई बहुत अच्छा है, मन कर रहा है रेडियो की ट्यूनिंग थोड़ी और तेज़ कर लें और दूसरा चाय का कप भी मंगा लें।
0: बिल्कुल मूमल, लेकिन इस सुहाने मौसम में चाय और पकौड़ों का मज़ा लेते लेते अगर हम अपने फ़ोन की स्क्रीन पर नज़र दौड़ाएं तो साथियों, एक चीज़ बहुत ज़रूरी याद आती है कि आज है 8 अगस्त और आज के इस खास दिन पर हम बात करने वाले एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर, वो है डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा।
1: सही कहा तुमने दिव्या, बारिश के मौसम में जैसे हम छतरी लेकर बाहर निकलते हैं ताकि भीगने से बच सकें, वैसे ही इस डिजिटल की दुनिया में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए हमें साइबर सुरक्षा की छतरी तानना भी बहुत ज़रूरी है।
0: बहुत ही पते की बात कही है मोमल तुमने। आज जब हमारी सुबह की चाय से लेकर रात की शॉपिंग तक सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तब इस डिजिटल सफ़र को सुरक्षित और बेफिक्र कैसे बनाया जाए, इसी पर होगी आज की हमारी चटपटी और ज्ञानवर्धक चर्चा।
1: दिव्या, आजकल हम जैसे देखते हैं कि हर दूसरे दिन किसी न किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड की खबर सुनाई देती है या देखने को भी मिलता है हमारे आसपास। कभी बैंक अकाउंट से हमारे पैसे निकल जाते हैं तो कभी सोशल मीडिया आईडी हैक हो जाती है। ये साइबर क्राइम आखिर किस किस रूप से हमारे सामने आ रहा है?
0: साथियों, आज साइबर अपराधी नए नए तरीके अपना रहे हैं। सबसे आम तरीका है फिशिंग, यानी आपको एक ऐसा फर्जी लिंक या मैसेज भेजा जाएगा जो देखने में बिल्कुल असली बैंक या किसी असली कंपनी का लगेगा, लेकिन जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करके अपनी जानकारी भरते हैं तो आपका डेटा उनके पास चला जाता है। इसके अलावा डिजिटल अरेस्ट और वर्क फ्रॉम होम के नाम पर भी लोगों को डरा कर, धमका कर या लालच देकर ठगा जा रहा है।
1: अरे बाप रे, ये तो बहुत ही खतरनाक है, यानी लालच और डर दोनों एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं ठगने के लिए। दिव्या, हमारे श्रोताओं को ये भी बताया जाए कि अगर डिजिटल दुनिया को सुरक्षित रखना है तो क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है और किस किस बुनियाद पे हम अपने डिजिटल दुनिया को सुरक्षित रख सकते हैं?
0: तो सबसे पहली बुनियादी बात है मुमल, मजबूत पासवर्ड। अब कई लोग अपना नाम, मोबाइल नंबर या जैसे सीधा ही डिजिट 1 2 3 4 5 6 दबा देते हैं और ऐसा पासवर्ड याद रखते हैं ताकि भविष्य में उन्हें आसानी से काम आ सके। तो ये जो हैकर्स होते हैं, इनके लिए बेहद आसान हो जाता है उनके अकाउंट को हैक करना। पासवर्ड साथियों हमेशा अक्षरों, नंबरों और विशेष चिन्हों जैसे @ हेस अंडर स्पेस का मिश्रण होना चाहिए। और हाँ, अपने हर अकाउंट का पासवर्ड हमेशा अलग अलग रखें ताकि एक आईडी अगर आपकी हैक होती है तो बाकी की सेफ रह सके।
1: ये तो बहुत ज़रूरी बात है। और दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखिए, 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन जिसे बोलते हैं हम, ये आप अपने फ़ोन का हमेशा ऑन रखिए। जब भी कोई भी नया इंसान आपके अकाउंट को लॉगिन करने की कोशिश करेगा, चाहे आप ही किसी और फ़ोन से लॉगिन करने का ट्राई करेंगे, आपके फ़ोन पर एक OTP ज़रूर आएगा। बिना OTP आपके, बिना मौजूदगी या मंजूरी के आपका अकाउंट कोई भी ओपन नहीं कर पाएगा।
0: और इसका सबसे बड़ा नियम होता है साथियों, जैसे मुमल ने बताया, OTP

0: ओटीपी या पिन कभी भी किसी भी अनजान या फिर नॉन इंसान के साथ भी शेयर नहीं करने चाहिए, चाहे सामने वाला खुद खुद को बैंक का मैनेजर बताएं, पुलिस अफसर बताएं या कस्टमर केयर ही क्यों ना बताएं। आपकी जो ओटीपी है सिर्फ और सिर्फ आप ही यूज़ करने चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, बैंक कभी भी आपसे फ़ोन पर पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगता।
1: बिल्कुल सही। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर मिलने वाले फ्री वाईफाई स्पेशली, उनका आप जब भी इस्तेमाल करते हैं तब आप सतर्क रहिए। जब भी आप ऐसे फ्री वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं उसमें अपनी बैंकिंग ट्रांजेक्शन या फिर संवेदनशील कि जो भी चीज़ें होती हैं वो कभी भी इस्तेमाल ना करें।
0: और अगर कहीं भी दुर्भाग्य से किसी के साथ ऐसा कहीं साइबर फ्रॉड हो भी जाए तो डरने की बजाय तुरंत सही कदम उठाना चाहिए। भारत सरकार की राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत कॉल करें और अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। साथ ही cybercrime.government.in पर रिपोर्ट भी कर सकते हैं।
1: अरे दिव्या, तुमने कितनी अच्छी बात समझाई है हम सभी को। आज के बाद अगर हम हमारे साथ कुछ ऐसा होता हुआ देखे या हमारे आसपास किसी के साथ भी ऐसे कोई क्राइम होते हुए देखे तो आपको कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले 1930 पर रिपोर्ट करना है। और जितना जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी अगर कोई आपके पैसे ट्रांसफ़र करने वाला है तो उसके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा और वापस मिलने की जो संभावना है उतनी जल्दी हो जाएगी।
0: तो दोस्तों, जैसे सावन के महीने में, सावन के जो बारिश का मौसम है, हम सावधानी से गाड़ी चलाते हैं ताकि फिसलन ना हो, ठीक वैसे ही इंटरनेट की सड़क पर भी सतर्कता से अलर्ट होकर इंडिकेटर अपना ऑन रखिए। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी डिजिटल लाइफ का बेफिक्र होकर आनंद लीजिए।
1: और इसी खूबसूरत संदेश के साथ अब वक्त हो चुका है एक प्यारे से सुहाने मौसम का। चाय के कप हाथ में रखिए और वो चाय की चुस्कियों के साथ इस सॉन्ग को एंजॉय करिए।

0: साथियों, अब हम लाए हैं आपका फेवरेट सेगमेंट यानी कि क्विज क्वेश्चन, जिसमें हम पूछते हैं आपसे दो सवाल और उन सवालों के उत्तर देते हैं कार्यक्रम के अंत में। आज का पहला प्रश्न है,
1: 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल कितने देश शामिल हुए? मैं अपने सवाल को दोहराती हूँ, 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल कितने देश शामिल हुए?
0: और आज का दूसरा प्रश्न है,
1: भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रमुख केंद्रीय मंत्रालय कौन सा है? मैं अपने सवाल को दोहराती हूँ साथियों, ध्यान से सुनिएगा, भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रमुख केंद्रीय मंत्रालय कौन सा है?
0: इनके जवाब आप सोच के रखिए, हम कार्यक्रम के अंत में जरूर बताएंगे। तब तक एंजॉय करिए।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: एक जमाने से कहानी है, सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
7: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
6: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान,
7: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
6: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
7: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
6: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
7: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
6: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
7: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़, जन जन तक।

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: दोस्तों, जैसा हमने पहले बात की, आज 8 अगस्त है, एक ऐसी तारीख जो भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में अमर है। आज ही के दिन यानी 8 अगस्त को 1942 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक मैदान से एक ऐसा क्रांतिकारी आह्वान किया था जिसने सोए हुए देश को झकझोर करके रख दिया और अंग्रेज़ों की हुकूमत के ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम किया।

0: बिल्कुल सही कहा दिव्या तुमने। यही वह ऐतिहासिक दिन था जब बापू ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अधिवेशन में देश को ऐतिहासिक करो या मरो का अमर मंत्र दिया और अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो यानी कि क्विट भारत मूवमेंट को भी एक विगुल फूंका था।
1: साथियों, जरा उस दौर के माहौल की कल्पना कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, देश में निराशा और आक्रोश की लहर थी। ऐसे में 8 अगस्त की शाम जब गांधी जी ने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा था, मैं आपको एक छोटा सा मंत्र देता हूँ, आप इसे अपने दिल में छाप लें और अपनी हर सांस में इसे प्रकट कर दो, और मेरा मंत्र है, करो या मरो, डू और डाई।
0: और अंग्रेजों का अंदाज भी नहीं था, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि देश की जनता इस आह्वान को किस कदर अपने सीने से लगा लेगी।
1: ब्रिटिश हुकूमत इस कदर बौखला गई थी मोमल उस टाइम कि 8 अगस्त की देर रात और 9 अगस्त की तड़के ही ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसे तमाम शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर उन्हें जेल में डाल दिया गया। ब्रिटिश सरकार को लगा था मोमल के नेताओं को जेल में बंद करके वे इस आंदोलन को दबा लेंगे, लेकिन हुआ क्या, इसके विपरीत, जब बड़े नेता जेल में चले गए तो देश का आम नागरिक और विशेषकर हम जैसे युवा खुद ही अपना नेता बन चुके थे।
0: बिल्कुल, और जब दमन चक्र चला तब अरुणा, असफ अली जैसे निडर वीरांगनाओं ने 9 अगस्त की सुबह ग्वालियर टैंक मैदान में पुलिस को धमकी, पुलिस की जो धमकियां थी उसके बावजूद तिरंगा फहराया, क्रांति का परचम बुलंद कर दिया।
1: और वहीं अरुणा असफ अली के साथ ही उषा मेहता जी जैसी साहसी महिलाओं ने गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाकर पूरे देश तक आंदोलन की खबरें पहुंचाई, जिसे अंग्रेज अफसर महीनों तक ढूंढ ही नहीं पाए। और मज़े की बात तो यह है कि आंदोलन सिर्फ शहरों या मुंबई दिल्ली तक सीमित नहीं रहा, हमारी मरुधरा, हमारे प्यारे राज्य राजस्थान में भी इसकी गूंज साफ सुनाई दी थी। जयपुर, जोधपुर, हमारे बीकानेर और मेवाड़ के प्रजामंडलों और युवाओं ने कई जगह जुलूस निकाले, गिरफ्तारियां दी और विदेशी हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी।
0: सचमुच दिव्या, किसान, मजदूर, छात्र, महिलाएं हर वर्ग के इस महायज्ञ में आहुति देने के लिए निकल पड़े। कई जगहों पर तो लोगों ने अपनी समांतर सरकारें तक बना ली। यह आंदोलन इस बात का प्रमाण था, जब भारत की जनता ठान लेती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे गुलाम नहीं बना सकती।
1: और साथियों, आज जब हम आज़ाद भारत की इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो हमें उस दौर की अनगिनत गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी के लिए 8 अगस्त का ये दिन सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि देश के प्रति हमारे कर्तव्य को याद दिलाने की एक प्रेरणा पुंज भी है।
0: और उस दौर में चुनौतियाँ विदेशी हुकूमत को बाहर धकेलने की थी, और आज हमारे सामने चुनौती है अज्ञानता, भ्रष्टाचार, कुरीतियाँ और देश की प्रगति में रोड़ा अड़ाने वाली सोच की, जो हमारी पिछली सोच है। उन सभी को हमें एक साथ कहना चाहिए कि भारत छोड़ो।
1: आइए आज 8 अगस्त के इस पावन अवसर पर हम सभी मिलकर एक संकल्प लेते हैं साथियों, कि हम अपने अपने क्षेत्र में निष्ठा से काम करते हुए देश की संप्रभुता, एकता और विकास में अपना अटूट योगदान जरूर देंगे।
0: तो आइए दोस्तों, भारत माता के उन वीर सपूतों, वीरांगनाओं और अमर शहीदों के चरण में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जिसकी जो बुनियाद है वो अभी भी हमारे अंदर शामिल है
1: और जिनकी बदौलत आज हमारा देश आजाद है। देश के उन तमाम नायकों को हमारा शत शत नमन, और इसी राष्ट्रप्रेम के जज्बे को सलाम करते हुए आइए सुनते हैं देशभक्ति और राष्ट्रपिता को समर्पित एक प्यारा सा गीत।

0: शब्द तभी सार्थक होते हैं जब वो समाज की सच्चाई को आवाज दे। साहित्य केवल मनोरंजन नहीं है बल्कि संवेदनता, विचार और परिवर्तन का एक माध्यम भी है।
1: जी साथियों, अब हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के ऐसे महान साहित्यकार की जिन्होंने अपनी लेखनी से समाज की पीड़ा, मानवीय संवेदनाओं और सांप्रदायिक सौहार्द का सशक्त चित्रण किया। हम बात कर रहे हैं भीष्म साहनी की।
0: दोस्तों, भीष्म साहनी, इनका जन्म 8 अगस्त 1915 को तत्कालीन अविभाजित भारत के रावलपिंडी में हुआ था। वह हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार, उपन्यासकार, नाटककार और अनुवादक थे और प्रगतिशील चिंतक भी थे।
1: भीष्म साहनी ने अंग्रेजी साहित्य में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन लेखन के लिए उन्होंने हिंदी भाषा को अपना माध्यम बनाया। उन्होंने अध्यापन, अनुवाद और साहित्य सृजन के माध्यम से समाज को नई दृष्टि प्रदान की। वे प्रगतिशील लेखक आंदोलन से भी जुड़े रहे।
0: क्या दिव्या, तुम ये जानते हो उनकी रचनाओं में आम आदमी का जीवन, सामाजिक असमानताएं, मानवीय रिश्ते और सांप्रदायिक संदर्भ प्रमुख विषय रहे हैं। उनकी भाषा सरल जरूर थी, सहज भी थी और प्रभावशाली भी। जिसने भी उनकी रचनाएं पढ़ी है उन्होंने आगे तक उसको पहुँचाया है और हर वर्ग के पाठकों तक उनकी रचनाएँ पहुँची है।
1: बिल्कुल, और जब भी मूमल भीष्म साहनी का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले उनका प्रसिद्ध उपन्यास तमस याद आता है। ये उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक हिंसा की भयावहता को अत्यंत संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत करता है। इस कृति के लिए उन्हें 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।
0: बिल्कुल दोस्तों, तमस पर बाद में एक चर्चित दूरदर्शन धारावाहिक भी बनाया गया जिससे लाखों दर्शकों तक उनकी विचारधारा पहुंची, मानवीय दृष्टि को भी पहुंचाया गया। उनकी अनेक प्रमुख कृतियों में से है झरोखे, बस्ती, मध्यदास की माड़ी, कड़ियाँ और अनेक कहानियाँ, संग्रह और नाटक भी शामिल हैं।
1: साथियों, भीष्म साहनी का मानना था कि साहित्य का उद्देश्य सिर्फ कहानी कहना नहीं है बल्कि समाज को सोचने के लिए प्रेरित करना भी है। उनकी रचनाएं हमें मानवता, सहिष्णुता

0: और आपसी भाईचारे का संदेश देती आई है।
1: बिल्कुल, और आज के समय भी उनकी रचनाएं उतनी ही फेमस है, क्योंकि उनकी रचनाएं हमें हमेशा याद दिलाती है कि नफरत और हिंसा कभी भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। प्रेम, संवाद और संवेदना आपस में जो प्यार है, वही हमारे समाज को मजबूत बनाता है।
0: और साथियों, भीष्म साहनी की जयंती हमें उनके साहित्य को पढ़ने, समझने, उनके मानवीय मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा देती है। नई पीढ़ी के लिए, हम सभी युवाओं के लिए उनकी रचनाएं इतिहास, समाज और इंसानियत को समझने का एक महत्वपूर्ण और सरल माध्यम हो सकता है।
1: तो आइए दोस्तों, इसी अवसर पर हम सभी उनके साहित्य को नमन करें और संकल्प लें कि समाज में समानता, मानवता और मूल्यों को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान देंगे। एक साथ होकर आगे बढ़ेंगे ताकि समाज मजबूत हो और समाज आगे बढ़े।
0: और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में अगले गीत की ओर।

0: दोस्तों, धरती की हर सांस में प्रकृति का संगीत बसता है। हर पेड़, हर पौधा, हर जीव जीवन का आधार बनता है। जहाँ रेत का अथार्थ विस्तार दिखता है, वहीं प्रकृति अपनी अनगिनत रंगों से जीवन की अद्भुत कहानी भी लिखती है।
1: और साथियों, जैव विविधता और थार का रेगिस्तान। जब भी रेगिस्तान का नाम आता है तो हमारे मन में दूर दूर तक फैले सुनहरे रेत के टीले, तपती धूप और कम वर्षा का दृश्य उभर जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यही थार का रेगिस्तान जैव विविधता का एक अनमोल खजाना भी है।
0: बिल्कुल दिव्या, जैव विविधता जिसका अर्थ है धरती पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीव जंतु, पौधे, सूक्ष्म जीव और उनके प्राकृतिक आवासों की विविधता। यही विविधता हमारे पर्यावरण को संतुलन बनाए रखती है। यदि प्रकृति की कोई एक कड़ी भी कमजोर हो जाए तो उसका प्रभाव पूरी पारिस्थितिक तंत्र पर पड़ता है।
1: और साथियों, थार का रेगिस्तान भारत के सबसे बड़े और विश्व के प्रमुख रेगिस्तानों में से एक है। यह राजस्थान के अधिकांश भाग में फैला हुआ है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है और गर्मियों में तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इतनी कठिन परिस्थितियों में के बावजूद भी यहाँ का जीवन अद्भुत है, अनोखा है।
0: सच कहूँ तो थार की वनस्पतियाँ प्रकृति की अनोखी देन हैं। यहाँ खेजड़ी, रोहिड़ा और कई प्रकार के ऐसे पौधे पाए जाते हैं। ये पौधे बिल्कुल कम पानी में भी जीवित रहते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकने के साथ साथ पक्षियों के लिए चारे का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। विशेष रूप से देखा जाए तो खेजड़ी का वृक्ष राजस्थान की संस्कृति और ग्रामीण जीवों से जीवन में इसकी बहुत गहराई है।
1: साथियों, केवल

0: ही नहीं, थार के वन्य जीव जो हैं वो भी अपनी विशेष पहचान रखते हैं। यहाँ चिंकारा, मरून लोमड़ी, रेगिस्तानी बिल्ली, नील गाय, सियार, गोह, शाही और खरगोश, अनेक प्रकार की सांप और छिपकलियाँ भी पाई जाती हैं। इन सभी जीवों में रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लिया है और अपना जीवन जी रहे हैं।
1: बिल्कुल, पक्षियों की दुनिया में भी ये कम रोचक नहीं है। सर्दियों के मौसम में हजारों प्रवासी पक्षी थार की तरफ रुख करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा फ्लैमिंगो है और कई अन्य पक्षी भी शामिल हैं। वहीं गोडावर्न जो राजस्थान का एक राज्य पक्षी है, थार की सबसे महत्वपूर्ण और दुर्लभ प्रजातियों में से एक पाई जाती है। इसका संरक्षण आज अत्यंत आवश्यक माना जाता है।
0: देखो, संरक्षण अत्यंत आवश्यक माना ही जाएगा क्योंकि गोडावर्न की घटती संख्या हम सभी के लिए एक चिंता का विषय है। इसके संरक्षण के लिए सरकार, वन विभाग और अनेक सामाजिक संस्थाएं मिलकर प्रयास कर रही है, लेकिन इस प्रयासों की सफलता तभी संभव है साथियों, जब आम नागरिक भी प्रकृति संरक्षण में अपनी भागीदारी को समझे और अपनी भागीदारी को सहजता से, सरलता से और सजग होकर भागीदारी को निभाए।
1: दिव्य, क्या तुम जानती हो कि थार का रेगिस्तान केवल जैव विविधता ही नहीं बल्कि लाखों लोगों के आजीविका का भी आधार है। यहाँ रहने वाले लोग पशुपालन, कृषि और पारंपरिक जीवन शैली के माध्यम से प्रकृति के साथ सामाजिक स्थापित करके जीवन जीते हैं। यही कारण है कि यहाँ के लोग लोकगीत, लोक कला और संस्कृति में भी प्रकृति के प्रति सम्मान स्पष्ट दिखाई देता है।
0: लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय तो मूमल आजकल की जलवायु परिवर्तन है, बढ़ता प्रदूषण है, अनियंत्रित चराई है, अवैध शिकार के साथ साथ प्राकृतिक आवासों का लगातार नष्ट होना जैव विविधता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुके हैं। यदि समय रहते हमने सजग होकर इन समस्याओं का समाधान नहीं किया तो कई दुर्लभ प्रजातियां हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो सकती हैं।
1: इसके लिए दोस्तों हमें छोटे छोटे कदम उठाने पड़ेंगे और हम हमेशा सब जगह कहते हैं कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए, पौधे लगाने चाहिए, जल का संरक्षण करना चाहिए, वन्य जीवों का शिकार रोकना चाहिए, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें, पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाएं, और ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। जब समाज और प्रकृति साथ साथ आगे बढ़ेंगे तभी तो विकास भी टिकाऊ होगा।
0: साथियों, विद्यालयों, महाविद्यालयों और सामाजिक संस्थाओं को भी पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। बच्चों और युवाओं में प्रकृति के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
1: बिल्कुल दिव्या, ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो थार का रेगिस्तान है केवल रेत का विस्तार नहीं है बल्कि जीवन संघर्ष और प्रकृति के प्रति संतुलन जीवन का एक उदाहरण भी है। इसकी जैव विविधता हमारे राष्ट्र की धरोहर है जिसकी रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है।
0: तो साथियों, आज हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि प्रकृति की रक्षा करेंगे, जल और वन्य जीव का संरक्षण करेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और हरित पर्यावरण छोड़ेंगे।

0: दोस्तों, जो स्वयं को पहचान ले वही जीवन का सार जान ले। दुनिया बदलने से पहले आइए स्वयं को बदलने का एक छोटा सा प्रयास कर लें।
1: आत्ममंथन। साथियों, आत्ममंथन जो हमारे व्यक्तित्व, हमारे व्यवहार और हमारे जीवन की दिशा तय करता है।
0: दिव्या, सबसे पहले ये बताओ कि आत्ममंथन का अर्थ क्या है?
1: आत्ममंथन, जैसे समुद्र मंथन का नाम सुना है तुमने, ठीक वैसे ही आत्ममंथन यानी अपने अंदर की सारी चीज़ों को झकझोर कर सही और गलत का निर्णय लेना, अपने विचारों, अपने व्यवहार, आदतों और कार्यों को ईमानदारी से मूल्यांकन करना। ये स्वयं से प्रश्न पूछने की प्रक्रिया है कि क्या हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, या मुमल हमारी कौन सी आदतें हमें आगे बढ़ा रही है और कौन सी हमें आगे बढ़ने से रोक रही है।
0: बिल्कुल दोस्तों, अक्सर हम

0: दूसरों की कमियां आसानी से देख लेते हैं लेकिन अपनी कमियों पर ध्यान बिल्कुल नहीं देते। आत्ममंथन हमें स्वयं को समझने और हमें खुद से बेहतर बनने का अवसर देता है।
1: और साथियों, हम अक्सर देखते हैं यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में अपेक्षित सफलता नहीं प्राप्त करता तो केवल परिस्थितियों या दूसरों को दोष देने की बजाय यदि वह यह सोचता है कि तैयारी में मेरे कहाँ पर कमी रह गई, तो यही जो विचार है, यही आत्ममंथन है, यही सोच है जो भविष्य में सफलता का मार्ग खोल सकती है और भविष्य में सफलता की पूंजी बन सकती है।
0: और यही बात जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है, चाहे आप अपने परिवार में हो, चाहे आप अपनी काम की जगह पे हो या समाज में। जब भी हम अपने व्यवहार का विचार करते हैं, व्यवहार के ऊपर कि हम किसी से कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हम ये तो देख लेते हैं कि सामने वाले ने हमसे गलत व्यवहार किया है, लेकिन उस गलत व्यवहार के पीछे हमारा उससे क्या व्यवहार है उस पर कभी हम ध्यान नहीं देते। हमारे संबंध लोगों से अधिक मधुर बनते हैं, वह तभी बन पाते हैं जब हम खुद के बारे में जानते हैं कि हम सही हैं या गलत, और निर्णय अधिक हमारे संतुलन हो पाते हैं।
1: और आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है साथियों, उसमें लोग स्वयं के लिए समय निकालना भूल ही चुके हैं। दिन भर की व्यस्तता के बाद यदि हम केवल 10 से 15 मिनट भी शांत बैठकर अपने दिन भर के कार्यों और अपने किए हुए व्यवहार पर विचार करें तो हम अपनी कई गलतियों को पहचान सकते हैं और हमारे जो रिश्ते हैं वो बहुत ही मधुर बन सकते हैं।
0: बिल्कुल, और आत्ममंथन हमें हमारी शक्तियों का भी एहसास कराता है। अब आप सोच रहे होंगे कि शक्तियों पे कैसे, कई बार हम केवल अपनी कमजोरियों पे ध्यान देते हैं, हमसे ये नहीं हो पाया, हम वो नहीं कर सकते, जबकि हमारी खूबियां बहुत ज़्यादा हैं, वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। आत्ममंथन हमें हमारी क्षमताओं को पहचानने और उनका सही उपयोग करने का प्रेरणा देता है।
1: साथियों, कई बार हम देखते हैं कि आत्ममंथन से लोग देखते हैं कि हमेशा अपनी, जैसे मोमल ने बताया, अपनी कमियां ढूंढते हैं, तो आत्ममंथन का सीधा अर्थ स्वयं को दोष देना बिल्कुल नहीं है। इसका उद्देश्य अपनी गलतियों को स्वीकार करना है और उनसे सीखना है और आगे बढ़कर बेहतर बनने का संकल्प लेना है। यानी जो गलतियाँ हमने पीछे कर दी सो कर दी, अब आगे हमें वो गलतियाँ कभी दोहरानी नहीं है। जो व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है वही सच्चे अर्थों में प्रगति करता है।
0: महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि सच्चा परिवर्तन स्वयं से शुरू होता है।
1: बिल्कुल,
0: जबकि व्यक्ति अपने भीतर अगर झांके तब वह समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। आत्ममंथन करने के बहुत कुछ थोड़े बहुत सरल तरीके हैं जिसे हम सभी जानते हैं। प्रतिदिन कुछ ऐसा समय एकांत में बैठना, दिन भर के कामों को सोचना नहीं और अपनी गलतियों को लिखना, अच्छी आदतों को अपनाना और संकल्प लेना कि दूसरों से मिली सकारात्मक सलाह पर क्या हम विचार कर सकते हैं।
1: साथ ही उमल, हमें ये भी सोचना चाहिए कि क्या हमारे शब्दों और व्यवहार से किसी का दिल तो नहीं दुखा, क्या हमने कभी किसी की मदद की, क्या हम अपना समय सही कार्यों में लगाया। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न ही हमें बेहतर इंसान बनाने की दिशा में आगे लेकर जाते हैं।
0: और आत्ममंथन केवल व्यक्तित्व विकास का माध्यम नहीं है बल्कि ये समाज राष्ट्र के विकास का भी आधार है। जब हम प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी को ईमानदारी से पालन करेंगे तो दोस्तों समाज स्वयं ही अधिक संवेदनशील और जागरूक और प्रगतिशील बनेगा।
1: तो साथियों, एक बात सोचें, हम अपने लिए कुछ समय ज़रूर निकालेंगे, अपने भीतर ज़रूर झांकेंगे, अपनी जो भी कमियां हैं उनको दूर करेंगे, दूर करने के साथ साथ अपनी कमियों को, गलतियों को एक्सेप्ट करना भी सीखेंगे, अपने अच्छे गुणों को अधिक विकसित करेंगे। याद रखिए, दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलना सबसे बड़ा परिवर्तन होता है।

0: दोस्तों, आज के समय में हर युवा की सबसे बड़ी ज़रूरत है एक अच्छी नौकरी और सम्मानजनक कमाई। इसी ज़रूरत को ध्यान रखते हुए हम आपके लिए लाए हैं रोजगार समाचार, जहां आपको मिलेगी सरकारी नौकरियां और रोजगार से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी।
1: साथियों, आरपीएससी फिजियोथेरेपिस्ट परीक्षा 2026, इस भर्ती के तहत फिजियोथेरेपिस्ट के लिए कुल 20 पदों पर नियुक्ति की जाएगी और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 21 अगस्त। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होना ज़रूरी है और फिजियोथेरेपी में डिप्लोमा होना ज़रूरी है।
0: वहीं आयु सीमा की बात करें तो अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि 21 से 40 के बीच में होनी चाहिए। और अभ्यर्थी का आयु सीमा कई कई अभ्यर्थी को आयु सीमा पर छूट भी दी गई है।
1: साथियों, तो अगर आपने 12वीं के साथ फिजियोथेरेपी में डिप्लोमा किया है और आपकी उम्र निर्धारित सीमा के अंदर है, तो एक अच्छी सरकारी नौकरी पाने का ये आपके लिए सुअवसर हो सकता है।
0: बिल्कुल, इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी राजस्थान रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर OTR के माध्यम से अपना ऑनलाइन आवेदन बुक कर सकते हैं। और पोर्टल के इस भर्ती की अंतिम तिथि 21 अगस्त वहाँ पे दी गई है, और आप अभी जाइए और जो भी इंटरेस्टेड है डिप्लोमा किया है वो जाकर वहाँ पर अपनी वहाँ पे लॉग इन करें और अपनी सारी इंफॉर्मेशन फिल करें। दोस्तों, कार्यक्रम के शुरुआत में हमने आपसे पूछे थे दो सवाल, अब समय हो चुका है उनका उत्तर जानने का। आज का पहला प्रश्न था, 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल कितने देश शामिल हुए?
1: साथियों, इसका सही जवाब है 74 देश, यानी 74 कंट्रीज। और हमारा दूसरा सवाल आपसे ये था, भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रमुख केंद्रीय मंत्रालय कौन सा है? तो वो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।
0: इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातचीत हुई। अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, तब तक के लिए
1: नमस्कार,
0: नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। आज का युववाणी कार्यक्रम आपके लिए लेकर प्रस्तुत हुए थे मूमल राज पुरोहित और दिव्या सारस्वत। आकाशवाणी बीकानेर की तरफ से हमेशा ही 5:05 पर आप सभी को इंतजार रहता है कार्यक्रम युववाणी का। इसमें हम लोग लेकर आते हैं कई सारी जानकारियाँ और कई सारी बातें जो

की बेहतरीन पसंद है। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर। संध्या के 5:55 होते हैं। लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

0: तो सांध्य किरणों की पहली दस्तक के साथ मूर्धरा की इस पावन संस्कृतिक धरा में मैं आपका स्वागत करता हूं। आपका हम सफर आज की शाम का, आज की सुहानी सायंकालीन सभा में आप सभी का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं। साहित्य की सुगंध और संगीत की सरगम और सूचनाओं की इस त्रिवेणी संगम में आज हम आपके साथ आपके लिए लेकर आए हैं ज्ञान मनोरंजन और सरोकारों की बेहद खास श्रृंखला। तो आइए नजर डालते हैं आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर। संध्या 6 बजे सबसे पहले रुख करेंगे देश की धड़कन का, यानी आकाशवाणी दिल्ली से किए जाएंगे रिले हिंदी में समाचार। 6:05 खबरों के तुरंत बाद फिजाओं में घुलेगी मधुर सुरों की मिठास। सजने जा रही है सदाबहार फिल्म संगीत की महफिल, जहां गूंजेंगे चुनिंदा शीर्षक गीत। 6:30 पर हम लोग सुनेंगे हमारे जयपुर केंद्र की ओर से, जहां से प्रसारित होंगे प्रादेशिक समाचार। और 6:40 पर आपके लिए पेश किया जाएगा कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। 6:45 पर समय रहेगा राजस्थानी में प्रादेशिक समाचारों का। संध्या 7 बजे आप सुनेंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। 7:30 पर वक्त रहेगा हमारे ग्रामीण अंचल के प्यारे श्रोताओं के चहेते शो का गूंजे गांव गुआड। आपके स्नेह भरे फरमाइशी पत्रों और ईमेल से सजे इस लोकगीत के सतरंगी कार्यक्रम में आज आपके साथ लाइव जुड़ेंगे अश्विनी व्यास। रात्रि 8 बजे आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत होगा इस सप्ताह संसद में। रात्रि 8:15 पर ठीक रात बजकर हमारे शहर की सांस्कृतिक और साहित्यिक हलचलों का साप्ताहिक आईना आप सुनेंगे बीकानेर दर्पण का 156वां अंक। इस विशेष अंक की रचनाकार हैं श्रीमती पुनीत बिश्नोई। इसे अपनी मखमली आवाज दे रहे हैं श्री महेश उपाध्याय और कार्यक्रम का कुशल संयोजन किया है श्री अमित सिंह ने। रात्रि 8:45 पर देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आकाशवाणी दिल्ली से हम लेकर हाजिर होंगे समाचार संध्या। और रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे News@9। रात्रि 9:15 पर रात के सन्नाटे में सुरों का जादू जगाने के लिए एक बार फिर से सजाएंगे फिल्म संगीत की ये अनोखी महफिल। रात्रि 9:30 पर अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती, इसमें आज आप सुनेंगे लघु रूपक राष्ट्र जागरण की दीपशिखाएं, स्वतंत्रता संग्राम की अग्रणी महिला सेनानियां, इस बारे में ये लघु रूपक होगा। रात 10 बजे शास्त्रीय संगीत के रसिकों के लिए शुरू होगा सुर साधना का शिखर संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। आज की सभा के आमंत्रित कलाकार होंगे देश के सुप्रसिद्ध शहनाई वादक गिरिमल्लप्पा भजंत्री। श्रोताओं, रात्रि 11 बजे हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों के अंतिम बुलेटिन के साथ ही आज के सुंदर सफर को विराम दिया जाएगा। हमें पूरा विश्वास है कि सुरों का सरगम और सूचनाओं का संगम हमारी इस शाम को बेहद यादगार बनाएगा। शब्दों की मर्यादा और सुरों के माधुर्य के साथ हमारा साथ यूं ही अटूट बना रहे, इसी उम्मीद के साथ जुड़े रहिएगा अपनी माटी की आवाज आकाशवाणी बीकानेर के साथ। अब समय हो रहा है हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत

0: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग हैं और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम में शामिल होने का आग्रह किया है। ये निगम देश के सहकारी बैंकों का एक प्रमुख संगठन है। उन्होंने मुंबई फोर्ड क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि समुद्री क्षेत्र में भारत की प्रगति में नाविकों की भूमिका सबसे प्रमुख है। मुंबई में नाविकों की सुरक्षा और कल्याण पर एक कार्यक्रम में श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत दुनिया के प्रमुख समुद्री देशों में से एक बनकर उभरा है। इस अवसर पर व्यापक डिजिटल समुद्री गवर्नेंस प्लेटफॉर्म ई समुद्र का भी शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य नाविकों, नौवहन कंपनियों, बंदरगाहों, सेवा प्रदाताओं और समुद्री क्षेत्र से जुड़े लोगों को पारदर्शी और नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करना है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि ये आंकड़ा दर्शाता है कि भारत स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति कर रहा है। सरकार ने उद्योग जगत के प्रमुख कारोबारियों और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ड इंडिया, कॉर्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ कई रणनीतिक समझौता ज्ञापनों की घोषणा की है। इन समझौता ज्ञापनों पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे के सहयोग को मजबूत करना है। झारखंड में आज JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के विभिन्न समूहों के बीच आज दूसरे दौर की उच्चस्तरीय वार्ता हुई।
2: सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2026 में CEO गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई। यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ सशस्त्र बलों ने सैन्य अभियान शुरू कर दिए हैं। यमन सशस्त्र बलों के प्रवक्ता कर्नल माजिद अल नुजैली ने कहा कि हूती विद्रोहियों के बार बार हमलों के बाद सरकारी बलों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता का मुकाबला कल फाइनल में चीन की क्यू हान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी श्रोता सुन रहे थे हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रम हिंदी में समाचार। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढुलामारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर

और FM 101.6 MHz पर। संध्या के 6:05 हुए हैं। सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। आदाब, नमस्कार और राम राम बीकानेर। मैं आपका अपना दोस्त, आपका हमराही, एक बार फिर से हाजिर हूं आकाशवाणी बीकानेर के ढुलामारू चैनल से, आपके अपने ढुलामारू चैनल से। शाम का इस शांत पहर, बीकानेर की गलियों में छाई हुई खामोशी और रेगिस्तानी हवा की हल्की सी सरसराहट भी, ऐसे माहौल में जब इंसान दिन भर की आपाधापी से फुर्सत पाकर कुछ देर अकेला बैठता है तो खिड़की से झांकता यह चांद सिर्फ रोशनी ही नहीं देता, यादों अरमानों की एक पूरी किताब खोल देता है। किसी ने क्या खूब लिखा है, ख्वाबों का शहर बहुत बड़ा होता है साहब, यहां हर किसी के हिस्से का एक आसमां होता है। जी हां, आज हम चर्चा करने वाले हैं इसी शीर्षक पर, आपके जहन की बात, आपके मन की बात। शीर्षक लेकर आए हैं ख्वाब।

ख्वाब कितना छोटा होता है ना शब्द। लेकिन इसका दायरा इस असीम आसमान से भी बड़ा होता है। ख्वाब वो नहीं जो हम सोए हुए देखते हैं, ख्वाब तो वो होते हैं साहब जो हमें सोने नहीं देते। कभी ये ख्वाब बीकानेर के इन रेशमी धुरों पर बैठकर आसमान को छूने की चाहत बनते हैं, तो कभी किसी की आंखों में छुपी हुई उम्मीद बनकर चमकते हैं। और जब बात ख्वाबों की हो साहब, तो हमारे क्लासिकल बॉलीवुड के उस सुनहरे दौर के गोल्डन एरा को याद कीजिए। कैसे भूल सकते हैं हम उस दौर के गीतकारों के लिखे गए ख्वाबों के शीर्षक के ऊपर। कितने सारे सुरीले संगीत बनाया है उन्होंने, सिर्फ शब्दों में नहीं पिरोया गीतों को, बल्कि उन्हें जिया है, उसे अमर बना दिया है। चलिए आज के इस हसीन सफर का आगाज करते हैं इस गीत से।

0: कमाल है दीपा, मुझे वहाँ अकेले छोड़ के चली
1: क्यों
0: आई?
1: क्यों, अच्छे खासे तो थे वहाँ, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई।
0: मैंने क्या किया?
1: उसका हाथ पकड़ते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई?
0: मैंने कहा उसका हाथ पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा था।
1: बात एक ही हुई, अपना हाथ छुड़ा तो सकते थे, तुम्हें बढ़ावा दिया तभी ना उसकी हिम्मत पड़ी।
0: अरे हद है भाई, मैंने क्यों बढ़ावा दिया उसको, तुम सामने ही तो थी।
1: हाँ, मैं कुछ समझती नहीं हूँ ना, सब मर्द एक जैसे होते हैं, कोई सुंदर सी लड़की देखी और पिघल पड़े, और गाना भी क्या चुन के सुनाया, रात कली ख्वाब में आई, कोई भजन वजन नहीं सुना सकते थे क्या?
0: अरे सुनो तो सही, दरअसल ये गाना मैंने तुम्हारे बारे में लिखा है।
1: मेरे बारे में?
0: हाँ, रात कली यानी तुम ही तो रात को हमारे लिए दरवाजा खोलती हो, तुम्हारे एक ख्वाब देखता हूँ और सुबह होते ही तुम्हें से आंखें चार होती हैं, है ना?
1: हटो चापलूस कहीं के।
0: सच दीपा तुम्हारे लिए लिखा है, सुनो ना, सुनते ही समझ जाओगी। रात कली

0: ख्वाब में आई और गले का हार हुई।
1: वाह वाह वाह वाह वा। उसके लिए तो जनाब सुर में गा रहे थे, और यहाँ रैट कली एक ख्वाब में आई।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: वाह, रात कली एक ख्वाब में आई। इस नगमे को सुनकर दिल सचमुच किसी ख्वाब में सो खो जाता है। दोस्तों, ख्वाब सिर्फ रातों को ही नहीं आते, ख्वाब तो इस मोहब्बत का नाम है। और अगर जिंदगी में अगर वो शामिल हो या ना हो, तो सफर कितना अधूरा या कितना पूरा लगेगा, ये आप सोच ही सकते हैं। अगर वो हसीन ख्वाब है, वो हमसफर हमारी ज़िंदगी में ना आया होता, तो गीतों के बोल ये सुर कहाँ से होते जो हम अगला गीत सुनने वाले हैं। हम जो जिस बारे में बात कर रहे हैं, हमारे मीत, हमारे ख्वाबों का पूरा परचम लिए हमारे ज़िंदगी में, हमारे सपनों में, हमारी पूरी रूह तक कब्ज़ा किए हुए रहते हैं। इस बीच मुकेश की आवाज़ आपके लिए खास।

से मुकेश की आवाज़ में भी आपने शैलेंद्र के लिखे हुए इस गीत को सुना। इसकी धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। जिंदगी की राहों में कभी कभी ख्वाब ऐसे भी मोड़ पर ला खड़ा करते हैं जहां इंसान हकीकत और अफसाने के बीच बिल्कुल फर्क भूल जाता है। कभी रात का अकेलापन ढेरों ख्वाब दिखा जाता है, तो कभी कोई चेहरा सामने आकर पूछने पर मजबूर कर देता है कि तुम ख्वाब हो या कोई हकीकत। तो चलिए आपको भी लिए चलते हैं। देवानंद साहब का बड़ा ही बेफिक्र अंदाज, मजरूर साहब के बोल देखें, ये कौन सा गीत है, समझ ही गए होंगे ना आप।

ये थे देवानंद साहब के बेफिक्र अंदाज को आवाज देते हुए किशोर कुमार। फिल्म का नाम तीन देवियां, एसडी बर्मन का संगीत और मजरू साहब के लिखे हुए

खूबसूरत बोल, क्या नफाजत थी साहब उस दौर के संगीत में। रात जैसे जैसे गहराती है, ख्वाब भी उतने ही गहरे होते चले जाते हैं। कभी कभी ये ख्वाब हमें पुराने बीते दिनों की याद दिलाते हैं, तो कभी खुद इंसान एक ख्वाब में ही चला जाता है, खुद को भी एक ख्वाब मानने लगता है। एक ऐसा ख्वाब जो इस दुनिया के मेले में गुम हो गया है। आइए सुनते हैं अगला गीत मुकेश की आवाज में, हिमालय की गोद फिल्म से। आवाज में यह खूबसूरत गीत, मैं तो एक ख्वाब हूं।

0: तो श्रोताओं, अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं आज के इस कार्यक्रम ख्वाब से विदा लेने के लिए समय आ गया है। उम्मीद है आपको पुराने गीतों की मखमली चादर और ख्वाबों की ये बातें आपकी इसी रात को और भी हसीन बना गई होंगी। संध्या के 6:30 होते हैं, आपसे कुछ देर में आप सुनेंगे हमारे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा शक्ति को विकसित भारत के निर्माण का मजबूत आधार बताया। सोशल मीडिया के युग में विद्यार्थियों से दूसरों से तुलना करने से बचने को कहा। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में देश में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार। पिछले 12 सालों में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 400% बढ़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बूंदी को 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। और प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर मॉनसून सक्रिय, कल सभी जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट।

0: समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है। श्री मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आज के दौर की चुनौतियां अलग है, हालांकि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन सहित अन्य क्षेत्र देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। युवाओं की आत्मनिर्भरता की यह पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा।
0: श्री मोदी ने सोशल मीडिया के युग में नजर आने वाले विकर्षणों के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को वेतन, नौकरी या कार्यक्षेत्र के आधार पर दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना चाहिए।
1: जब हम बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए प्रारंभ करते हैं तो एक बड़ा डिस्ट्रक्शन भी हमारे सामने आता है। ये डिस्ट्रक्शन होता है एक दूसरे से कंपैरिजन का। लेकिन याद रखिए, जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है, आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं, खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा।
0: स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में देश ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में भारत ने 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले 12 सालों में देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की बढ़ोतरी हुई है। श्री जोशी ने कहा कि गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी का ये आंकड़ा बताता है कि भारत स्वच्छ, हरित और पर्यावरण अनुकूल भविष्य के निर्माण में वैश्विक प्रगति कर रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा है कि न्याय व्यवस्था को प्रभावी और मजबूत बनाने में अधिवक्ताओं, विधि अधिकारियों और लोक अभियोजकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये सशक्त न्याय व्यवस्था की आधारशिला है। श्री शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर विधि और विधिक कार्य विभाग की ओर से आयोजित संवाद कार्यक्रम में विधिक क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि सरकार कानून और न्याय व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। विधिक क्षेत्र से जुड़े सभी कार्मिकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए उन्हें बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।
2: हम सभी जानते हैं कि हमारे लोक अभियोजकों का न्याय प्रशासन में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। न्याय व्यवस्था पर आमजन का विश्वास लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। हमारी सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक व्यक्ति को समय पर न्याय मिले, कानून का शासन मजबूत हो। इस दिशा में आप सभी का योगदान, संवेदनशीलता, प्रभावी न्याय व्यवस्था मिले।
0: मुख्यमंत्री निवास पर इसी समय विभिन्न जिला स्तरीय जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के सदस्यों की ओर से धन्यवाद और आभार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत कल जयपुर में राज्य स्तरीय तिरंगा रैली का आयोजन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अगुवाई में यह रैली निकाली जाएगी। अल्बर्ट हॉल से शुरू होकर यह रैली बड़ी चौपड़ पहुंचेगी। जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि रैली के निर्धारित मार्ग पर सुरक्षा और यातायात प्रबंधन सहित अन्य इंतजाम किए गए हैं। उधर सभी जिलों में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही है। इसी कड़ी में बाड़मेर में तिरंगा प्रभात फेरियां निकाली जाएगी। उधर जालौर में भी विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए नागरिकों में देशभक्ति का संचार किया जाएगा। आज भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ है। अगस्त 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू हुआ था, जो स्वाधीनता संग्राम का ऐतिहासिक और निर्णायक पड़ाव बना।

0: इसने देश की आजादी की लड़ाई को नई दिशा प्रदान की। महात्मा गांधी के करो और मरो के आह्वान ने देश भर के लाखों भारतीयों को एकजुट करने की प्रेरणा दी। यह आंदोलन आजादी की लड़ाई में जन जन का आंदोलन बना। इस आंदोलन की वर्षगांठ सिर्फ इतिहास को याद करने का अवसर नहीं है, बल्कि उन महान स्वाधीनता सेनानियों के आदर्शों को भी आत्मसात करने का समय है जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। राज्यसभा में कल भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्वाधीनता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी गई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज बूंदी में 100 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान श्री बिरला ने कहा कि हाड़ौती क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत देश दुनिया में अपनी खास पहचान रखती है। उन्होंने कहा कि विरासत के साथ विकास के नए आयाम स्थापित करने के संकल्प के साथ बूंदी को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए आधुनिकता और विरासत के समन्वय के साथ बूंदी में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने खेती किसानी और उससे जुड़े कारोबार को देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने युवाओं से कृषि को केवल परंपरागत व्यवसाय के रूप में नहीं बल्कि इसे आधुनिक तकनीक नवाचार और उद्यमिता से जोड़कर सशक्त बनाने का आह्वान किया है। श्री बागड़े आज उदयपुर में महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में नॉर्थ वेस्ट जोन कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि कृषि क्षेत्र में तकनीक अनुसंधान स्टार्टअप फूड प्रोसेसिंग सहित व्यापक अवसर मौजूद हैं। युवा इन्हें पहचानकर कृषि को उद्यमिता से जोड़ सकते हैं। इस मौके पर श्री बागड़े ने एग्री विजन स्मारिका का भी विमोचन किया। राज्यपाल ने कृषि महाविद्यालय परिसर में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से खदानों में काम करने वाले श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। श्रम कल्याण संगठन की प्रशासक रश्मि रेखा ने बताया कि आईटीआई पॉलिटेक्निक और डिग्री कोर्स के विद्यार्थियों को 6,000 रुपये तथा प्रोफेशनल डिग्री के विद्यार्थियों को 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। पात्र 31 अगस्त तक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
1: बीड़ी श्रमिकों और चूना पत्थर डोलोमाइट खदान श्रमिकों के बच्चों के लिए वर्ष 2026-27 के लिए स्कॉलरशिप योजना शुरू हो गई है और स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 है। प्रतिवर्ष स्कॉलरशिप देते समय यह होता था कि सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप मिलती थी। इस बार ऐसा है कि अगर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप उनको किसी और विभाग से मिल रही है तो भी श्रम कल्याण संगठन की स्कॉलरशिप उनको मिलेगी।
0: प्रदेश में अगले 3-4 दिनों तक अधिकतर स्थानों पर मॉनसून के सक्रिय रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कल सभी जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 2 दिनों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने, भरतपुर उदयपुर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इसी दौरान पूर्वी भागों में 1-2 जगह भारी से बहुत भारी बारिश के आसार हैं।
2: देखिए पिछले 2 दिनों से साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इस सिस्टम का असर पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मध्यम से कहीं कहीं भारी बारिश के रूप में जारी रहेगा। 8 से 10 अगस्त के दौरान भी यदि देखें तो पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर जोधपुर संभाग के कुछ इलाकों में भी मेघ गर्जन के साथ मध्यम से कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। हालांकि जो पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र हैं इनमें अभी भी कुछ इलाकों में बारिश की कमी आगामी दिनों में जारी रह सकती है।
0: आज अजमेर किशनगढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों में कुछ देर तेज बारिश हुई। वहीं चूरू के सारदुलपुर और धौलपुर के राजाखेड़ा में कल हुई मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। डांग क्षेत्र में हुई अच्छी बारिश से पार्वती नदी में भी पानी की आवक बढ़ गई है। भरतपुर के बंद बारेठा बांध का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। रक्षाबंधन के अवसर पर डाकघर ने राखी से रक्षा अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत बहनें सीमा पर तैनात जवानों को

0: राखी और सम्मान पत्र भेज सकेंगी। पाली डाकघर अधीक्षक तरुण कुमार शर्मा ने बताया कि कई जवान रक्षाबंधन पर छुट्टी के कारण घर नहीं आ पाते, ऐसे में बहनें डाक के माध्यम से उन्हें राखी भेजकर अपना स्नेह और सम्मान पहुंचा सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा शक्ति को विकसित भारत के निर्माण का मजबूत आधार बताया। सोशल मीडिया के युग में विद्यार्थियों से दूसरों से तुलना करने से बचने को कहा। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में देश में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार। पिछले 12 सालों में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 400% बढ़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बूंदी को 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। और प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर मानसून सक्रिय, कल सभी जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से डूंगरपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख चिंतन जोशी ने तैयार किया है। श्रावण मास के चलते इन दिनों जिले का माहौल धार्मिक बना हुआ है। विभिन्न शिवालयों में कई धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जा रहा है। शहर के प्रसिद्ध नया महादेव मंदिर में नाव महोत्सव आयोजित किया गया। इसके तहत सुबह मंदिर में पूजा अर्चना और अनुष्ठानों के बाद शाम को नाव महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। भगवान को नाव में विराजित कर श्रद्धालु नाचते गाते भजन कीर्तन कर रहे हैं। वहीं जिले के प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम, देव सोमनाथ महादेव मंदिर और भुवनेश्वर शिवालयों में भी धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं। इन दिनों मौसम का मिजाज भी बदला हुआ है। जिले में पिछले दिनों अच्छी बरसात हुई। आसपुर, सागवाड़ा, डूंगरपुर शहर, सीमलवाड़ा और बिछीवाड़ा क्षेत्रों में अच्छी बरसात से जलाशयों में पानी की आवक भी बढ़ी। वहीं संभाग के बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों में बारिश की वजह से जिले के प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम की तीनों पुलिया पर पानी बहने लगा, जिस वजह से बेणेश्वर धाम पिछले दिनों टापू में तब्दील हो गया। हालांकि दो दिनों बाद पानी उतरने से फिर से आवाजाही शुरू हो गई। इन दिनों आसमान में बादल देखे जा रहे हैं और किसानों ने खरीफ की बुवाई शुरू कर दी है। अच्छी बरसात के साथ ही किसानों को बेहतर पैदावार की उम्मीद भी जगी है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े हाल ही में डूंगरपुर जिले के देवल स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में पहुंचे। उन्होंने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान कार्यक्रम में युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नशा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से व्यक्ति को कमजोर करता है। उन्होंने किसानों, गरीबों और आदिवासी परिवारों से आयुष्मान कार्ड सहित सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। जिले में इन दिनों शहरी और ग्रामीण फॉलो अप शिविर लगाए गए हैं। इन शिविरों के जरिए लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया जा रहा है। शिविरों में बिजली, पानी और सड़क से जुड़े मामलों के साथ साथ जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, पट्टा वितरण और नामांतरण जैसे काम किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर देशल दान सहित अधिकारी शिविरों का निरीक्षण कर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना की ओर से सागवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र में अपशिष्ट जल प्रबंधन परियोजना को लेकर संवाद कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में पूर्व सांसद कनकमल कटारा ने परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जनप्रतिनिधियों और आमजन से सहयोग की अपील की। उपखंड अधिकारी सुबोध सिंह चारण ने समयबद्ध और व्यवस्थित कार्य करने पर जोर दिया। 5 अगस्त को जिला स्तरीय युवा संबल रोजगार शिविर लगाया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मैरिज हॉल में हुए इस शिविर में 40 से अधिक कंपनियों ने 670 युवाओं के साक्षात्कार लिए और चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। विभिन्न योजनाओं के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए 58,41,000 रुपए के ऋण भी वितरित किए गए। आशान्वित ब्लॉक कार्यक्रम के तहत झोथरी ब्लॉक में आंगनबाड़ी केंद्रों और पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विकास नगर का निरीक्षण किया गया। इस दौरान पोषाहार, मध्यान्ह भोजन, पेयजल, स्वच्छता, विद्यार्थियों के नामांकन और शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा की गई। विद्यालय परिसर में पौधरोपण भी किया गया। बाद में पंचायत समिति में हुई बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। जिले के सतीमपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बीते दिनों बालिका जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने विद्यार्थियों को महिला सुरक्षा, पॉक्सो कानून, साइबर अपराध, नशे से

0: बचाव और आत्मरक्षा की जानकारी दी। छात्राओं को डिजिटल सुरक्षा, महिला हेल्पलाइन, राजकोप सिटीजन ऐप और सखी सेंटर के बारे में भी बताया गया। डूंगरपुर में नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की तैयारी की समीक्षा की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर देशल दान ने मतदान केंद्र, कानून व्यवस्था, प्रशिक्षण, मतदाता सूची, परिवहन, चिकित्सा और नियंत्रण कक्ष से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर पूरे करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार ने डूंगरपुर जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में 43 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से 181 किलोमीटर से अधिक लंबाई की 85 सड़कों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। डूंगरपुर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौजवाना ने विकसित भारत बनावण री मजबूत बुनियाद बतायो। सोशल मीडिया रा जमाना माए विद्यार्थियाओं दूजाओं तुलना करण बचपा सारू कहो। साफ ऊर्जा रा हलका माए देश 300 गीगावाट रो आंकड़ो पार कीनो। लारला 12 साल माए नवीकरणीय ऊर्जा पैदा करण रो बूतो 400% बध्यो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी ने विकास रा 100 करोड़ रुपया रा कामारी सौगात तीनी। और प्रदेश माए घन खरठोड़ा चौमासारी बिरखा, काल सगला जिला माए बिरखा सारू चेताई चियो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि हर पीढ़ी वारी बगतरी खास चुनौतियां रो सामो करता थका राष्ट्रीय जिम्मेदारी पूरी करे है। वे आज IIT दिल्ली रा 57वां दीक्षांत समारोह में बोल रहा है। श्री मोदी कहो कि मौजूदा दौर री चुनौतियां न्यारी है, हालांकि देश में नुआ हलका रा विकास नौजवाना सारू नुआ मौका बन रहा है। वे कहो कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन समेत न्यारा न्यारा हलका देश ने खुद रे पाण उबो करण री दिशा माए काम कर रहा है। प्रधानमंत्री कहो कि नौजवाना रे खुद रे पाण उबा भेवण री आ पहल विकसित भारत बनावण सारू मजबूत बुनियाद रो काम करेला।
2: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा।
1: श्री मोदी सोशल मीडिया रा जमाना रो जिक्र करता था का कहो कि विद्यार्थियों ने तनख्वाह, नौकरी या कार्यक्षेत्र रा आधार दूजों तुलना करण बचनो चाहिए।
2: जब बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए प्रारंभ करते हैं तो एक बड़ा डिस्ट्रक्शन भी हमारे सामने आता है। ये डिस्ट्रक्शन होता है एक दूसरे से कंपैरिजन का। लेकिन याद रखिए, जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है, आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं, खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा।
1: भारत गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली बनावण रा हलका माए खास उपलब्धि हासिल करता थका 300 गीगावाट रो आंकड़ो पार कर लीनो है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए आ जानकारी दीनी। वह बतायो कि लाडला 12 साल माए देश रो नवीकरणीय ऊर्जा बूतो 400% बध्यो है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो है कि न्याय व्यवस्था ने असरदार और मजबूत बनावण माए वकीला, न्यायिक अहलकारा और लोक अभियोजका रो खास काम है। वे आज जयपुर माए वाना रहवास माथे विधि और विधिक कार्य विभाग री ओर राखी ज्या संवाद कार्यक्रम माए न्यायिक हलकाओं जुड़िया नुमाइंदा सागे बातचीत कर रहा है। मुख्यमंत्री कहो कि सरकार कानून और न्याय व्यवस्था ने असरदार बनावण सारू लगातार कोशिश कर रही है। श्री शर्मा कहो कि न्यायिक हलकाओं जुड़िया सगला कर्मचारियों रा भला रो ध्यान राखता थका वाने काम करण रो बेहतर वातावरण मुहैया करावण री कोशिश करी जा रही।

0: सभी जानते हैं कि हमारे लोक अभियोजकों का न्याय प्रशासन में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। न्याय व्यवस्था पर आमजन का विश्वास लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। हमारी सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक व्यक्ति को समय पर न्याय मिले, कानून का शासन मजबूत हो। इस दिशा में आप सभी का योगदान, संवेदनशीलता, प्रभावी न्याय व्यवस्था मिले।
1: हर घर तिरंगा अभियान 2026 राते काल जयपुर में राज्य स्तरीय तिरंगा रैली निकाली जावेला।

0: भरतपुर उदयपुर और जयपुर संभाग रा कुछ हल्का माए मझलाऊं तेज दर्जारी बारिश वह सके है। इस दौरान प्रदेश रा उगणी हल्का माए एक दो ठौड़ जोरदार घनी जोरदार बिरखा विवण रा आसार है।
1: देखिए पिछले दो दिनों से साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इस सिस्टम का असर पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मध्यम से कहीं कहीं भारी बारिश के रूप में जारी रहेगा। 8 से 10 अगस्त के दौरान भी यदि देखें तो पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर जोधपुर संभाग के कुछ इलाकों में भी मेघ गर्जन के साथ मध्यम से कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। हालांकि जो पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र हैं इनमें अभी भी कुछ इलाकों में बारिश की कमी आगामी दिनों में जारी रह सकती है।
0: इन बीच आज अजमेर और किशनगढ़ समेत कई हल्का माए थोड़ी देर ताई चोखो में बरसियो। चूरू जिला रा सादुलपुर और धौलपुर जिला रा राजा खेड़ा माए काल हुई झमाझम बिरखा पाछे कई हल्का माए पानी फरकियो। डांग हल्का माए भया चोखा में पार्वती नदी माई पानी री आमद बध गई है। भरतपुर जिला रा बारेठा बांध माई पानी रो लेवल लगातार बध रियो है। कर्नाटक माय भी राष्ट्रीय जिम्नास्टिक होड़ माय हनुमानगढ़ जिला रा बेहरवाला गांव रे कल्पना महिला चांदी रो तमगो जीतियो है। कल्पना इनु पहली राष्ट्रीय और राज्य स्तर री होड़ा माय कई तमगा जीत चुकी है। दूजगानी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लाडला दिना ग्लासगो माय पूरा फिया राष्ट्रमंडल खेलना री मुक्केबाजी होड़ माय सोना रो तमगो जीतन वाली कोटारी अरुंधति चौधरी रा रहवास माथे पूगर मारा परिवार वाला ने शुभकामनावां दीनी। ई मौके श्री बिरला कहो के कोटा बूंदी माए अंतर्राष्ट्रीय मानका ने मुजब खेलना रा सुविधा विकसित करन री कोशिश करी जा रही है। राखी रा त्योहार रे मौके डाक विभाग री ओर राखी से रक्षा अभियान शुरू करी चियो है। इन तेत बहना सरहद माथे तैनात फौजियां ने राखी और मान पाना भेज सकेला। पालीरा डाक घर अधीक्षक तरुण कुमार शर्मा बतायो कि कई जवान राखी रे मौके घरा नहीं जा सके है। इन कारण बहना डाक रे जरिए वने राखी भेजर प्रेम और मान पूगा सके है। पाली माए राखी भेजन वाली बहना सारू डाक घर माए न्यारी खिड़की री व्यवस्था करी जी है और ऑनलाइन चुकारा रो सुबितोई मुहैया कराई चियो है। काल विश्व आदिवासी दिवस मनायो चावेला। ओ दिन आदिवासी समाज री संस्कृति परंपरा और गौरव रो उत्सव है। ओ आदिवासी अस्मिता और हकाना प्रति एकजुटता और संकल्प रो दिन है। इस साल री थीम आदिवासी पारंपरिक दाइयों का सम्मान जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा राखी जी है। आदिवासी दिवस रे मौका दौसा जिला रा नांगल प्यारी वास माए खास कार्यक्रम राख्यो जावेला। आखिर माए खास समाचार एक कर फेर सुन ली रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौजवाना ने विकसित भारत बनावन री मजबूत बुनियाद बताया। सोशल मीडिया रा जमाना माए विद्यार्थियों दूजाओं तुलना करण बचबा सारू कहो। साफ ऊर्जा रा हल्का माए देश 300 गीगावाट रो आंकड़ो पार कीनो। लाडला 12 साल माए नवीकरणीय ऊर्जा पैदा करण रो बूतो 400% बधियो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी न विकास रा 100 करोड़ रुपया रा कामारी सौगात तीनी। हर प्रदेश माए घनखर ठोड़ा चौमासारी बिरखा। काल सगड़ा जिला माए बिरखा सारू चेताई चियो। इंसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 7 बजे हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: किसान वाणी सुनबा वाला सभी किसान भाइयों ने और सुनबा वाला सभी श्रोताओं ने अनीता की घनी घनी राम राम सा, और प्रभु भाई आपने भी घना घना राम राम सा।
7: बिल्कुल अनीता बहन, थाने और सुनबा वाला अपना जगह हितड़ू श्रोता है, दूर दराज गांव ढाणी रमाई ने बैठे हुआ कार्यक्रम सुने है। आप सगला ने घने मानसू प्रभु दयाल वर्मा रो भी राम राम सा।
6: प्रभु भाई, भाई देखो सा, अपने किसान भाई तो खेती बाड़ी करे ही छे और शुरू से अपने बड़का भी देखो करता ही आया छे, और आज आप देख भी रहा छा की तरीका से जो नई पीढ़ी छे वा खेती की किसानी से थोड़ो सो उनको लगाव छे ने जो कम हो तो दिख।
7: बिल्कुल सही बात कह रहा हो, देखो खेतों का मायने जहाँ चौमासा की फसलां ले लियो चाहे सियाला की फसलां ले लियो, टाबरियां जहाँ कई बार आप पूछा तो भाई का गेहूं की फसल खड़ी है या जहाँ चौमासा में आप बाजरा की बात करा या तिल की बात करा मूंग की बात करा तो वो टबरी आज का बता नहीं सके भाई आ कौन सी फसल है। तो अब बात था कि सांची है कि भाई आज को जो टबरी है वो बनाई लिखाई में तो आगे बढ़ रही है लेकिन जो खेत को और जमीन को जो ज्ञान है वो भी करने थोड़ा सा कम हो रही है।
6: पर देखो सा, आप जो अपनी नई पीढ़ी छे अपने युवा छे वो पढ़े लिखे छे ना, तो आपने जो या पढ़ाई लिखाई छे नौकरी में तो सही छे, पर आजकल देखो बहुत ज्यादा जो छे मतलब वह छे कि भाई नौकरी के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन है गो, तो ई तकनीक ने जो अपनी पुरानी पीढ़ियां करती आ रही छे खेती बाड़ी उन अपने जो पढ़े लिखा युवक छे ना वह भी ऊ चीज ने आगे बढ़ा सके छे। वह किया भाई देखो पढ़े लिखे तो वह छे ही, साथ ही साथ नई तकनीक वाने मालूम छे तो वैज्ञानिक तरीका से खेती बाड़ी क्या कर सके छे, क्या ज्यादा मुनाफा पा सके छे, तो इसू आपने खेती बाड़ी में तो बढ़ोतरी होली, नई तकनीक आवली और आपनो मुनाफो बहुत ज्यादा होलो।
7: बिल्कुल अपन देखा जी कई किसान भाई करे ही है और आज को जो युवा है जो बेरोजगार न रेवे तो बिग कने सासु बढ़िया तरीको उसके अपना बड़का जो काम करतो आया है अपनो पुछते नहीं काम जी खेती बाड़ी अपना जमीन से जुड़े रेवला और अपनो स्वास्थ्य है अपनो मन तन दोनों चोखा रेवला बिक के लिए। देखो आप अगर युवा जगह पढ़े लिखे है रोजगार नहीं है बांग करने तो बे आधुनिक खेती की अगर आप बात करना अनिता बहन तो बिग मानी जैविक खेती है प्राकृतिक खेती है या संरक्षित जगह खेती है बिग सागे सागे जहाँ पोली हाउस लगार भी आप बढ़िया जगह आई है, हाइड्रोपोनिक्स एक जगह विदेशी जगह तकनीक है वह भी आई है।
6: बिल्कुल, पर देखो ये चीज ऐसा ना अपनी नई पीढ़ी ने पतो चे आपने जो बड़का कर खेती करा चाहे तो वह तो पुरानी ऊपर ही चल रहा चे, पर जो नई पीढ़ी अगर उस जुड़े ली तो नई तकनीक ले रावली नया चीजा ले रावली नया विचार ले रावली तो उसू हर चीज में ही बढ़ोतरी होली जोखिम कम हो वाला, तो ये चीजा आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है जिससे की जो या बहुत ज्यादा बेरोजगारी आजकल अपने दिख रही है वह भी एक हद तक कम रेवली, और जो युवा छे आपकी जो मातृभूमि छे मात्र वा छोड़ भी कौन पावलो आपका परिवार के साथ रेवलो और आपका परिवार ने भी सही तरीका से चला सके छे।
7: बिल्कुल देखो और जगह की खेती के अलावा जहाँ कोई भाई लोग है तो खेती के मायने कई प्रकार का जगह औजार है उपकरण है खेती से संबंधित बांग ने भी जहाँ कोई भाई लोग चाहे तो थोड़ी जानकारी ले किराए के ऊपर जहाँ जगह कृषि से संबंधित जहाँ ट्रैक्टर है रिपर है सीड ड्रिल है हार्वेस्टर है यानी कि मशीन है बन किराए के ऊपर भी भाई लोग अगर चाहे तो खरीद बन देश के है
6: जी। और देखो सर खेती के साथ साथ ही और दूसरे तरीका से भी आपके आर्थिक स्थिति मजबूत कर सके चे भाई, केवल पारंपरिक फसला पर निर्भर न रहबा की बजाय बागवानी सब्जी को उत्पादन मक्खी पालन मशरूम पालन और मशरूम को उत्पादन पशुपालन और प्रसंस्करण जैसा काम खेती में जोड़ सके चे या आपकी नई पीढ़ी ही बहुत बेहतर तरीका से कर सके।
7: अनिता बहन ने सही बात की, देखो प्रसंस्करण या भाई का अचार बना लियो मसाला या

0: सागे जहाँ आटो है, दाल है, पापड़ है, ये यहाँ की चीजें की कृषि उत्पाद है बांसू आना थोड़ा सो बढ़िया तरीका से बनार अन बाजार का मान ले जाओ तो भी को मुनाफा और ज्यादा कमा सके।
1: बिल्कुल सा। और देखो सा, आपने तो खबर यो ही चाहे भाई, पढ़े लिखे युवा खेती से दूर जावा की बजाय आपका ज्ञान और तकनीक ने खेत तक लिया वे, तो खेती केवल एक परंपरा को नहीं बल्कि आधुनिक और लाभदायक व्यवसाय बन सके छे।
0: बिल्कुल
1: और जो आपने यहाँ खेती बाड़ी के रुझान प्रति रुझान कम होते जा रहे छे उन्हें बढ़ा सके छे, नया और युवा ई के साथ साथ जुड़ सके छे, तो और जो आपने खेती बाड़ी छे उनको स्तर बहुत बढ़िया है वेलो।
0: बिल्कुल बढ़िया बोलो निश्चित रूप से। और किसान भाई थोड़ी सी जानकारी ले और भी क्या पचाए आ खेती की तरफ अगर आवे तो निश्चित रूप से बिन फायदो ही फायदो है।
1: बिल्कुल सा। और देखो सा, अब टाइम हो चालो छे थोड़ी सी जानकारी लेबा को, और अपना विशेषज्ञ भी कार्यक्रम में पधार चुके छे, उद्यानिकी में पादप प्रति नियामकों को प्रयोग के बारे में बतावला राकेश कुमार जी। तो प्रभु भाई अब आप जानकारी दिलाओ सा।
0: बिल्कुल सा किसान भाई और बना कार्यक्रम में जानकारी देवा के वास्ते पधार चुकिया है राकेश शर्मा जी। आप फार्म मैनेजर है कृषि विज्ञान केंद्र सोमू टांकड़ा सो कार्यक्रम में पधारे है और आज अपन जानकारी दे वाला पादप वर्धी नियामक का कृषि में महत्व है ई विषय पर। तो सबसे पहले तो राकेश शर्मा जी आपको कार्यक्रम में घणो घणो स्वागत है सा, राम राम सा।
2: राम राम सा किसान भाइयों।
0: आपसे सबसे पहले सवाल वही रेलो के पादप वर्धी नियामक हुए कहीं है।
2: किसान भाइयों, पादप वृद्धि नियामक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वो कार्बनिक यौगिक है जो पौधे के भीतर ही बनते हैं सूक्ष्म मात्रा में। और किसान भाइयों, ये बीज का जब से अंकुरण होता है उसका जरावस्था आती है तब तक ये कार्य करता है। पादप वृद्धि नियामक सभी फसलों में अंकुरण से लेकर जरावस्था तक सभी क्रियाओं को प्रभावित करता है, जिसमें अंकुरण आ गया, उसकी वृद्धि आ गई, उसका विकास आ गया, उसका पुष्पन आ गया, उसका फलन आ गया। इन सभी क्रियाओं को ये नियामक पूरी तरह प्रभावित करता है और उसके विकास में सहयोग प्रदान करता है।
0: जहाँ का आप बता रहे हैं कि इतना सारा कारक है जगह प्रभावित करे तो आप मुख्य मुख्य जहाँ कारकों की बात करें तो पादप वर्धि नियामक ने प्रभावित करवा वाला कौन कौन सा कारक है।
2: किसान भाइयों, पौधों की वृद्धि के लिए दो तरह के कारक होते हैं जो इनको प्रभावित करते हैं। एक होता है बाह्य कारक, जिसमें जल, वायु, प्रकाश और मृदा, इन सब का प्रभाव पड़ता है।
0: जी
2: साथ में एक आंतरिक कारण होता है जो पादप वृद्धि नियामक के द्वारा प्रभावित होता है। उसमें आता है ऑक्सिन, उसमें आता है जिब्रेलिन, उसमें आता है साइटोकाइनिन, उसमें आता है एब्सेसिक एसिड और उसमें इथाइलिन। ये सभी आंतरिक कारण है जो सूक्ष्म रूप से पौधों के अंदर विकसित होते हैं और पूरी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं।
0: और आप बात करें भाई के पादप वर्धी नियामकों का प्रकार की तो आगे कोई प्रकार भी हुएगा।
2: बिल्कुल प्रभु जी। किसान भाइयों, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जो उनकी विकास में सहायक हो, जिसको कहते हैं अपन वृद्धि नियामक जो रेगुलेट कर रहा है। दूसरा होता है वृद्धि बाधक, जो उसकी वृद्धि में रुकावट पैदा करता है, जैसे नाम से ही जाना जा रहा है। तो ये दोनों प्रकार के होते हैं,
0: तो
2: एक वृद्धि
0: सा
2: को रोकता है, एक वृद्धि को बढ़ाता है।
0: बिल्कुल आप वर्दी ने बढ़ा वाला की अगर आप बात करें तो वर्दी नियामक कत्ता प्रकार का वर आपको कहीं कहीं काम है।
2: किसान भाइयों, जो वृद्धि को बढ़ाने वाले हार्मोन्स हैं ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं,
0: जी
2: जिसमें पहला आता है ऑक्सिन। ऑक्सिन प्राकृतिक रूप से इंडोल एसिटिक एसिड का यौगिक है और इसके जो प्रमुख कार्य हैं किसान भाइयों, जैसे जड़ों में फुटान करना, सिक्का प्रधानता मतलब सिक्का को ऊपर बढ़ाता है। अगर अपने को सिक्का को ऊपर से कटिंग नहीं करेंगे तो उस पार्श्व सिराएं नहीं बढ़ेगी। तो ये जो काम करता है ऑक्सीजन, ये सिक्का को सीधी ऊपर ले जाने का काम करता है
0: जी
2: और कोशिकाओं की सीधी वृद्धि करता है। दूसरा किसान भाइयों होता है साइटोकाइनिन, और साइटोकाइनिन वो हार्मोन्स है जो नई पत्तियों का विकास करता है,
0: जी
2: नई पत्तियों में क्लोरोफिल बनाता है, पार्श्व शाखाओं को बढ़ाता है। अभी
0: जी
2: मैंने ऑक्सीजन में आपको बताया था कि ये सीधी पार जो शिका है, ऊपरी शिका उसको बढ़ाता है। अगर ऊपरी शिका को काट दें तो वहां फिर साइटोकाइनिन काम करता है और वो साइड की जो शाखाएं हैं उनकी वृद्धि कराता है।

0: पत्तियों को, जरावस्था को बढ़ाता है। जरावस्था का मतलब है कि जो पुरानी पत्तियां हो गई उनको नीचे गिराने का काम भी ये करता है
1: जी।
0: अगर फल भी पक गए तो उनको गिराने का काम भी साइटोकाइनिन करता है। तो किसान भाइयों इसको अच्छी तरह समझ लीजिए कि साइटोकाइनिन है तो जरावस्था बढ़ जाएगी उसकी, जरावस्था मतलब उसकी वहां रहने की क्षमता बढ़ जाएगी
1: जी।
0: क्योंकि ये जो पोषक तत्व है अपने उनको भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते हैं और ये सक्रिय रूप से विभाजन को भी दर्शाता है
1: जी।
0: ये मुख्यतः मूल शीर्ष और कलिकाओं में मिलता है कि साइटोकाइनिन जहां बनता है वो अपना जो जड़ों का मूल है लास्ट कोना है या तो वहां डेवलप होता है या जो कलिकाएं होती है वहां डेवलप होता है। किसान भाइयों साथ में जो वृद्धि को बढ़ाने वाला हार्मोन है तीसरा है जिब्रेलिन और जिब्रेलिन का कार्य साइटोकाइनिन से थोड़ा सा अलग है। ये तने की ग्रोथ को बढ़ाता है, ऑक्सिन जड़ों की ग्रोथ को बढ़ा रहा था, साइटोकाइनिन फलन और पत्तियों की जरावस्था को बढ़ा रहा था
1: जी।
0: और जिब्रेलिन ये तने की ग्रोथ को बढ़ा रहा है। फलों के आकार में वृद्धि करनी हो अपने को तो भी जिब्रेलिन काम आता है। आपने देखा होगा या सुना होगा कि सेब में या अपना तरबूज होता है उसमें जिब्रेलिन का इंजेक्शन दे दें तो वो तुरंत उनका आकार बढ़ जाता है। साथ में फलों के पकाव के समय को बढ़ाता है, मतलब फल सड़े कि मतलब कीपिंग कैपेसिटी उसकी बढ़े ये काम भी जिब्रेलिन करता है, उसकी क्षमता को बढ़ा देता है कि वो रोक सके उसे कुछ दिनों तक ताजा फल को रख सके अपन। माल्टिंग को भी बढ़ाता है और सुसुप्त अवस्था को तोड़ता है, जैसे डोरमेंसी में कोई चीज गई हो बीज डोरमेंस पड़ा हो जर्मिनेट नहीं हो पा रहा हो तो उसके लिए जिब्रेलिन काम आता है, उसकी डोरमेंसी तोड़कर वो उसमें अंकुरण पैदा कर देता है। किसान भाइयों ये तीन तो हैं जो वृद्धि को बढ़ाने वाले हार्मोन हैं और अब जो आगे अपन चर्चा करेंगे वो वृद्धि को रुकावट में डालने वाले हार्मोन हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी बीज जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं, प्रतिकूल कंडीशन होती है
1: जी।
0: पानी की कमी है, मौसम अनुकूल नहीं है, ताप पूरा नहीं मिल रहा है तो बीज जर्मिनेट नहीं हो पाता है। उस समय एब्सेसिक एसिड नाम का हार्मोन काम करता है और वो उसको पूरी डोरमेंसी में ले जाता है कि वो बीज खराब नहीं हो। कई बार आपने देखा होगा कि बारिश नहीं हो रही है तो उस समय एब्सेसिक एसिड उन रंध्रों को बंद कर देता है जिससे वाष्पोत्सर्जन ज्यादा नहीं हो तो भी ग्रोथ चेक हो जाती है। ये उपापचय की जितनी भी क्रियाएं हैं उनको भी रोक देता है। ये डोरमेंसी को बढ़ाता है इसलिए कि बीज और पौधा अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य कर सके। अगर अनुकूल परिस्थिति उनको मिल जाएगी तो तुरंत यह सुसुप्त अवस्था को तोड़कर जर्मिनेट हो जाएगा, पानी पूरा मिल जाएगा, रंध्र खुल जाएंगे और साथ में किसान भाइयों ये वृद्धि को भी रोकता है। किस लिए रोकता है कि प्रतिकूल कंडीशन में जब पौधे को जीवित रखने के लिए अनुकूल कंडीशन नहीं है उस समय उसकी वृद्धि को ये रोक देता है तो पौधा जिंदा रह जाता है। किसान भाइयों लास्ट जो हार्मोन है अपना वो है एथिलीन। ये ऐसा हार्मोन है जो दोनों में अपन काउंट कर सकते हैं, इसको वृद्धि को बढ़ाने वाले में भी काउंट कर सकते हैं और वृद्धि को रोकने वाले में भी काउंट कर सकते हैं। जैसे कि ये फलों के पकाने में सहयोग करता है। अब उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको बताता हूँ, मौसमी के साथ में या संतरे के साथ में अगर कच्चे केले रख दिए जाए तो वो पक जाते हैं। ये क्यों पकते हैं? क्योंकि संतरे से एथिलीन गैस निकलती है उससे केला पक जाता है
1: जी।
0: तो सीधा सा व्यवहार था इसका कि कहीं तो ये फायदा कर रहा है साथ में कहीं ये नुकसान भी करता है। नुकसान ये करता है कि सड़ाव पैदा होते हैं एथिलीन, मतलब जैसे पकता है एथिलीन ज्यादा होने से उसमें सड़ाव आ जाता है। पत्ती में अगर पकाव आ गया तो एथिलीन डेवलप होकर पत्ती झड़ जाती है। और एक इसका बेनिफिट, दूसरा बेनिफिट ये है कि मूंगफली में ये जर्मिनेशन जल्दी कर देता है, ये एथिलीन के कारण ही होता है। आलू की स्प्राउटिंग बढ़ा देता है। आलू में देखा होगा आप लोगों ने कि जगह जगह से जर्मिनेशन सा हो जाता है, उनको काट कर कंधों को ऊपर लगा देते हैं तो आलू पैदा हो जाता है। वो स्प्राउटिंग एथिलीन के कारण ही किसान भाइयों हो पाती है। पुष्परण और फलन दोनों की वृद्धि को भी प्रेरित करता है। और कई जगह ये कुकुम्बर, स्पेशली कुकुम्बर की बात करूंगा मैं, कुकुरबिटेसी कुल के पौधे हैं, खीरे स्पेशली, उसमें ये मादा फूलों की संख्या

0: बढ़ा देता है जिससे उसकी उत्पादन क्षमता और उत्पादकता बढ़ जाती है।
1: जी
0: किसान भाइयों, ये पांचों हार्मोन्स हैं जो पौधों की वृद्धि भी कराते हैं, वृद्धि को रोकते भी हैं, और इनमें से एक हार्मोन ऐसा है एब्सेसिक एसिड
1: जी,
0: जो कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जा सकता, वो प्रकृति प्रदत्ति है। बाकी के चारों हार्मोन्स को अपन लोगों ने कृत्रिम रूप से भी बना लिया है।
1: बिल्कुल, आप बड़ा विस्तार से जगह पादप वृद्धि नियामक एवं कृषि के मायने जो उपयोग है भी के बारे में आप जानकारी दे रहे हो। ए जी, यहाँ बड़ा वाला और घटा वाला आगे ते बात करी, किसान भाई जब पादप वृद्धि नियामकों को प्रयोग करे तो कौन कौन सी मोटी मोटी बातें हैं वो वन ध्यान रखना चाहिए, कोई यहाँ की कोई मात्रा हुए या किस प्रकार से उनको प्रयोग करना चाहिए भी के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी किसान।
0: जैसे किसान भाइयों, अपन देखते हैं कि अपना फलन तो गया लेकिन वो झड़ रहा है, उसको रोक नहीं पा रहे हैं
1: जी।
0: तो अपन प्लेनोफिक्स नाम के एक हार्मोन का अपन स्प्रे करते हैं। उसकी डोज अपने को 3 ml के लगभग प्रति 15 लीटर में रखनी है। किसान भाइयों, अच्छी तरह समझ लीजिएगा, 3 ml अगर अपन डालेंगे 15 लीटर में तो पत्तियों को और फलों को वो रोकेगा
1: जी।
0: और अगर अपन ने 5 ml उसको कर दी तो किसान भाइयों वो पत्तियों फलों के साथ में पत्तियों को भी नीचे गिरा देगा। इथिलीन मैंने कहा था कि दोनों काम आती है, ये रोकने के काम भी आती है और जरावस्था के लिए भी काम आती है, जरावस्था मतलब उसे झाड़ने काम भी आती है। तो इस डोज का विशेष ध्यान रखेंगे किसान भाइयों।
1: और कोई फलाने पकावा के वास्ते कौन कौन सा हार्मोन काम आवेगा?
0: पकाने के लिए केवल एथिलीन ही काम आती है जो गैसीय फॉर्म में होती है, एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय फॉर्म में होता है।
1: और आप कई बार सुना भाई के कटिंग या जगी लेयरिंग करे भी के मायने जड़ा को विकास करवा के वास्ते भी या कोई हार्मोन से जगह प्रयोग करे किसान भाई, तो वह कौन कौन सा है?
0: किसान भाइयों, बहुत सारे लोग गुलाब की, गुड़हल की, ये बहुत सारी कटिंग होती है जो डेवलप करते हैं, लेयरिंग करते हैं, तो वहाँ जड़ों का विकास करने के लिए उन्हें ऑक्सीजन काम में लेनी पड़ेगी। ऑक्सीजन का अगर हार्मोन का काम में लेंगे तो वहाँ जड़े विकास विकसित हो जाएगी और एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो अपने को ध्यान रखना है ऑक्सीजन ही काम में लें।
1: और फलाने या झड़बा की जगह समस्या हुए भी सो अगर अपन बचाना है किसान भाई की कोई समस्या आएगी तो भी के वास्ते भी कोई हार्मोन है जो काम में लियो जा सके, कहीं लियो जा सके तो कौन सो है?
0: किसान भाइयों, जैसे अपन ने पूर्व में भी चर्चा की है, इथिलीन एक ऐसे ही हार्मोन है जो फलों को पकाव तक ले जाता है। इसको कृत्रिम रूप से भी अपन काम में ले सकते हैं और प्रकृति प्रदत्त भी होता है। प्रकृति प्रदत्त तो प्रकृति ने दिया ही है, कृत्रिम रूप से काम मिले तो एथिलीन गैस को अपन जहाँ स्टोर किया है उसमें छोड़ देते हैं तो वो फल सारे पकाव पे आ जाते हैं। एक उदाहरण तो मैंने दिया कि अगर एक फल सड़ा हुआ है
1: जी,
0: उस फल के चारों तरफ फल रख दीजिए आप, वो सारे सड़ जाएंगे। क्यों सड़ जाएंगे? क्योंकि वो फल सड़ा हुआ है जो एथिलीन का गैस का रिसाव कर रहा है या एथिलीन गैस डेवलप कर रहा है, वो एथिलीन सबको पका देगी और एक अपर लिमिट तक पका देगी कि वो सब सड़न की स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो एथिलीन गैस ऐसी है किसान भाइयों जिससे हम फलों को पकाव पे ले जा सकते हैं।
1: और चलता चलता कोई मोटा मोटी रूप में कोई बात छूटगी किसान भाइयों तक पूर्ति करनी चाहिए?
0: किसान भाइयों, ये पादप वृद्धि नियामक जो चीज है ये एक आधुनिक शब्द है। पहले अपन हार्मोन्स के नाम से जानते थे इन सबको, अब लेकिन इसको पादप वृद्धि नियामक के नाम से जानने लग गए हैं। मेरा ये निवेदन है कि आप जब भी अनुकूल कंडीशन में कोई क्रॉप लगाएं तो ये ध्यान रखें कि तापमान, प्रकाश, मृदा की स्थिति और हवा पानी ये एकदम प्रॉपर रहे तभी फसल लगाएं। क्योंकि पहले जब लगाते थे अपने पूर्वजों जब खेती करते थे तो वो चंद्रमाओं की कलाओं के आधार पर खेती करते थे
1: जी।
0: वो सारी कलाएं साइंटिफिक थी लेकिन अपन उन चीजों को भूल गए हैं और अपन मन में आए उसी समय सोइंग करने लग गए। मन में आए जब ही अपन बिजाई कर देते हैं तो उससे अपने को नुकसान ज्यादा हो रहा है, फायदा कम हो रहा है। तो मेरा तो किसान भाइयों यही निवेदन है कि आप जब भी सोइंग करें एक प्रॉपर समय को देखते हुए सोइंग करें, सायंकालीन सोइंग करें तो ज्यादा फायदा होता है। तो ये सारे हार्मोन्स भी काम करेंगे, अपना भाग्य भी काम करेगा और किसान सफल भी होगा
1: जी। पादप वृद्धि नियामकों का कृषि के मायने महत्व है, ई विषय पर किसान भाई और बिना अपन जानकारी दे रहा। राकेश शर्मा जी, आप फार्म मैनेजर है कृषि विज्ञान केंद्र चोमू टांकरडा सो आज अपने कार्यक्रम का मैंने पधारिया और किसान भाई ने अत्ता महत्व विषय पर जानकारी दी। तो शर्मा साहब, आपको मोकड़ो मोकड़ो धन्यवाद।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: उतला बोल रहे।

0: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब?
0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहाँ,
1: पर हम तो सब यही डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: प्रभु भाई, बहुत ही घना घना धन्यवाद आपका, जो राकेश कुमार जी से इतनी चौकी जानकारी दिलाई। और देखो साहब, बहुत सारी बातें ऐसी राकेश जी बताया कि भाई की तरीका से खेती किसानी में कसी बातें ध्यान में राख बाड़ी चर, कसी बातें कौन ध्यान है राख बाड़ी। और सबसे मोटी बात यह चाहे कि समय पर अगर आपा काम कर ला ने तो सभी चीज को समय अनुसार सही तरीका से फायदो मिले लो।
4: बिल्कुल, तो और सही समय फायदा की बात करें तो आप कार्यक्रम ने सीधो एक मीठी सी लोक रचना की तरफ ले
3: चला। बिल्कुल साहब,

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल पेंशन से सुरक्षित उनका कर
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 7:30 होने को हैं। सभी श्रोताओं को इंतज़ार होगा कार्यक्रम ग्रामीण जगत का। तो गोधूली बेला में खेतों की सौंधी महक और चौपालों की गूंज लेकर हाजिर हैं गूंजे गाँव गुआड़। अब प्रसारित होने जा रहा है आपका सबसे प्रिय फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम ग्रामीण जगत, जिसमें आप सुनेंगे गूंजे गांव गुआड़। एक फरमाइशी मंच जहां लोक धुनें अपनी ही बोली बोलती हैं। यह कार्यक्रम लेकर आता है राजस्थान की मिट्टी की सौंधी धनक, खेतों की हलचल, बरसात की खुशबू, चौपाल की कहावतें, मेलों की चहल पहल, धरती पुत्रों के वो गीत या गाथाएं, रोजमर्रा की मेहनत की गूंज। हर गीत में होती है हमारी मातृभूमि की अपनत्व भरी महक, वो सौंधी गंध। हर गीत में गाँव का दिल धड़कता है। आज आपके लिए लेकर के आए हैं धड़कते दिल की नई सौगात भरत कुमार जाजड़ा। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रामीण जगत। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे गूंजे गांव गुआड़, जिसमें शामिल होंगे आपके ईमेल और फरमाइशी पत्रों पर आधारित लोकगीत।

देखो आज है शनिवार और आज रे दिन आप घनी उड़ीक राख्या करो हो आप रे फरमाइशी कार्यक्रम गूंजे गांव गुआडरी। आज रे दिन आप रे जकी फरमाइश है बे मैं सुनाया करा आपने और आज रे दिन आप रे जका मेल है कागद है बने बाचा करा। कोई भाई लोग अगर चाहे कि अबार भी वो मेल देवे और अबार ही शामिल हो जावे तो मेरी भी कोशिश कर सको आप। मैं देखो मेल घना सारा उड़ा है सगड़ा मेल तो शामिल को नहीं हो सके पर कोशिश कर सा जका अबार मेल आवे बिना ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करा। और ठिकानो है जो आप नोट कर लो सा ई एक हफ्ते में कहीं भी दे दो अगले शनिवार तक जका है सगड़ा रिकॉर्ड उसी और बिर मायनू छाट जका है कुछ आपने सुनाया करा नाम बाँचया करा। ठिकाणो अगर मेल करना चाहो तो मैं आपने बता दूं ग्रामीण जगत बीकानेर @gmail.com। एक बार फिर बोल दूं GRAMIN ग्रामीण JAGAT जगत BIKANER बीकानेर @gmail.com। इर अलावा अगर आप मैंने कागज भेजना चाहो तो मैंने कागज भी भेज सको कार्यक्रम गूंजे गांव गुआड़ ढोला मारू चैनल द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बीकानेर ये ठिकाने माथे कागज भेज दो वो भी माने मिल जैसी। और बीर बहादुर मैंने आपकी फरमाइश ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करने और हमारो लगातार प्रयास रहे से कार्यक्रम में निजर करूँ सा पैदलो गीतर लो और बीर बाद आपने बताऊँ का फरमाइश ही केरी। गीतर दो है शकुंतला जोशी आवाज़ में।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
3: प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता, यह यूनेस्को का संदेश है। पृथ्वी की जलवायु करोड़ों सालों से प्राकृतिक कारणों से बदलती रही है, जिसमें ग्रहों की गति, सूर्य उत्पादन और ब्रह्मांड से आने वाले प्रभाव। यह हजारों सालों में धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन होते हैं, कभी हिमयुग, कभी गर्म अवधि। जलवायु को बदलने वाले मुख्य कारण हैं पृथ्वी के कक्ष का आकार, उसकी अक्षीय झुकाव और ज्वालामुखी गतिविधि। समुद्री धाराएं और बर्फ का आवरण भी जलवायु पर असर डालते हैं। बड़े उल्कापिंडों के प्रभाव से भी अचानक जलवायु परिवर्तन का कारण बना है। यह एक रोचक तथ्य है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 4 से 6 डिग्री सेल्सियस का वैश्विक तापमान परिवर्तन पृथ्वी को हिमयुग या गर्म युग में बदल सकता है?
4: गीतर लो थोड़ी देर पहले सुनियो सा शकुंतला जोशी री आवाज रे मैंने मारी 1.25 लाख री लूम और सुनने वास्ते माने मेल भेजियो हो दादा बाबू रोड गिरीडीह झारखंड सु मोहम्मद यासीन अनजान साइमा नवाज हसन नवाज बाबू अहद मिफरा नाज और बेबी चाहत। हरियाणा सु एक कागज आयो है लेकिन गाँव रो नाम कोनी लिखियो सा। साहिल कागरा, मोनी कागरा, प्रिंस बोट, सीताराम कागरा, तन्वी बोट, चक 15 PS जिला गंगानगर राजस्थान सु सर्वजीत सिंह जोशन, सर्वजीत कौर जोशन, रॉबिन और यारा साथी। सरधना मेरठ सु आदि जैन, अंश जैन, भव्य जैन, बेबी अवियर, अंशिका जैन। माल्यान सरधना सु अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जी वीएम जैन। रायपुर छत्तीसगढ़ सु विनोद वंडलकर, वीणा वंडलकर और विविधा वंडलकर। इर अलावा मैंने एक नियमित श्रोता है जैनान व्यास कॉलोनी बीकानेर सु अशोक कुमार शाही, संतोष शाही और राजश्री और गौरव शाही। एक और नियमित श्रोता है सर जका कमला कॉलोनी बीकानेर सु माने मेल भी लिखियो है, कागज भी लिखियो है, सुभाष खत्री। तेलंगाना निजामाबाद सु अडिक राखी शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख और शेख रहीम मुन्ना। इर अलावा गांव घमंडिया, तहसील सूरतगढ़, जिला गंगानगर सु जगदीश ढुकिया, प्रमिला ढुकिया, ज्योति, सरिता, तमन्ना, सचिन, विष्णु और शिवम ढुकिया। गांव कुंदनपुरा, जिला बाड़मेर, राजस्थान सु जगदीश सुंबरा, मोहनलाल, नरेश, निम्बाराम और सगड़ो सुंबरा परिवार। अबे भाई लोग निजर करो सा आपने आगलो गीतड़ लो सीमा मिश्रा की आवाज में।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: थोड़ी देर पहले गीतड़लो सुनियो सा, और सुनने वास्ते माने मेल भेजियो हो भोपालगढ़ राजस्थान सु धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, पूजा परिहार, और यार बार चलते कार्यक्रम में भी आयो है। मुजफ्फरपुर बिहार सु आर्यन राज, रोहित राज, हैप्पी आनंद, टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई सु अनुश्री, प्रदीप यामिनी और वीणा कालिया, गांव जाखोद राजस्थान सु शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश खटक, दीपक खटक और पूजा खटक, ग्राम पोस्ट मऊ तहसील मंगरोल जिला 12 सु श्रवणलाल योगी, गायत्री योगी, सोनिया, उमा, मयंक और योगी परिवार, सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान सु ए भी नियमित श्रोता है। ए मैंने मेल भी भेजे है, रोजिना ही मेल भेजे है और इर अलावा मैंने कागज भी भेजे है। और सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर सु है रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गरवी, गोविंदपुरा नीमका थाना सु दातार सिंह, संगीता कुमारी, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत, और सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा सु विनय मोहन, मीनाक्षी, प्लोमा और ईशानी। अभी निजर करना सा आगलो गीतड़ लो आपने, और मेरी आवाज है छोटी बनोरी।

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: तो भाई लोग थोड़ी देर पहले गीतड़ लो सुनियो छोटी बानो री आवाज रे मैंने साहेब जी जयपुर से आया और सुनने वास्ते जकी फरमाइश भेजी नियमित श्रोता है और यह बार चलते कार्यक्रम में और मैंने अबार अबार फरमाइश और भेजी है और अबार जको मेल भेजियो है भी मैंने लिखियो है वो के भरत कुमार जा जडा जी राम राम सा, मैं कार्यक्रम सुन रहा हाँ तो थाने भी घणो घणो राम राम सा और ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश हूँ। सत्येंद्र कुमार चांसोलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक चांसोलिया और सगड़ो यारो परिवार, तो एक बार फिर हूँ आपने घणो घणो राम राम सा। और इर अलावा मारखने जो अगला मेल आउड़ा है ए है इर अलावा बलियांग बिस्नाराम बलियाण, बिदामी देवी, सुनील बलियाण, पूजा बलियाण, सुरेश बलियाण और सगड़ो बलियाण परिवार जो है ए लिखनड़ा है गांव भवानी माँ धोरे कनले ढाणी गांव तापूसू। इरे अलावा एक और मार्खने मेल अबार

है मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा सु बेरड़ी नाना जी लाम से ए कह रिया के आपरो कार्यक्रम आबार सुन रिया है। इरे अलावा गांव सेंसवास जिला झुंझुनू सु माने एक मेल भेजियो हो नेकीराम रेवाड़ संतोष और ममता कृष्णा पार्क दिल्ली सु कागज भेजियो हो सुखविंदर सिंह जोड़ा सिटी दीवाना गांव गोविंदगढ़ माझी वाली करणपुर राजस्थान सु माने कागज भेजियो राजू टूटेजा कुशदिल टूटेजा उर्मिला टूटेजा गुड्डू जीनू मनु शिव सेठी करणपुरी स्माइल टूटेजा अलक्ष्य जानी पायला कला जिला बाड़मेर सु मोहनलाल प्रजापत माणक दरिया कुमारी ऊसावाला और यहाँ साथी नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान सु नरेंद्र सुथार मनोज सुथार शीशपाल सुथार पवन कुमार शंकर बिहारी और यारा साथी। अबे नजर करूँ साहब ने आगलो गीतड़ लो पुष्पा सैनी और ज्ञानेश्वरी शर्मारी आवाज में।

विजय विराट और सगड़ो वणकर परिवार। सनावत मध्य प्रदेश हूँ दिलीप मालाकर, जितेंद्र मालाकर, योगेश मालाकर, मुस्कान मालाकर और सगड़ो मालाकर परिवार। अब निजर करासा आग लोग इतर लो अफरोज बानोरी आवाज में।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण जगत। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढुला मारो चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर और FM 100.6 मेगाहर्ट्स पर संध्या के 8 बजने को हैं। अब से कुछ देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से इस सप्ताह संसद में।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप विशाल शर्मा से इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं PTI भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का ये तीसरा सप्ताह था। इस सप्ताह भी दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग तथा अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी जैसे मुद्दों को लेकर भारी हंगामा किया। इस वजह से पूरे सप्ताह दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा। हालांकि इस दौरान कुछ अहम विधेयकों को बिना चर्चा के या संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद उन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराया, लेकिन विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। इसके बाद दोपहर 12 बजे और फिर अपराह्न 2 बजे भी सदन में हंगामे की स्थिति बनी रही, जिस कारण से कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद 2 बजे शुरू हुई तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। सदन ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ध्वनिमत से बिना

चर्चा के विधेयक को पारित कर दिया। मेघवाल ने मॉनसून सत्र के पहले दिन ही 20 जुलाई को सदन में यह विधेयक पेश किया था। इससे पहले सदन ने इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा मई में लागू किए गए अध्यादेश को नामंजूर करने के तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय के संकल्प को अस्वीकृत कर दिया। सदन ने विधेयक पर कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया। विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश करते हुए मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है, जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान है। सरकार ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 भी पेश किए। इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 2:10 पर ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी इन्हीं मुद्दों को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू कराया, लेकिन विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। कुछ सदस्यों ने तख्तियां दिखाई, जिस पर सभापति ने आपत्ति जताई। हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। सदन में हंगामा जारी रहने पर सभापति ने बैठक दोपहर 2 तक स्थगित कर दी। बैठक दोपहर 2 शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाना चाहा, लेकिन अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी। हंगामे के बीच ही सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण में वर्ष 2014 से कई गुना बढ़ोतरी हुई है। मांझी ने कहा कि इस विधेयक में न केवल एमएसएमई की परिभाषा में सुधार किया गया है, बल्कि इसके कारोबार की सीमा को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसी के साथ विधेयक पर लाए गए विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया। इस दौरान विपक्षी सदस्य लगातार हंगामा और नारेबाजी करते रहे। सदन में व्यवस्था बनते न देख उपसभापति हरिवंश ने करीब 3:30 बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। मंगलवार को लोकसभा की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहे थे। हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन की बैठक दोपहर 2 तक स्थगित कर दी। बैठक 2 शुरू होने पर पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखने को कहा। इस दौरान विपक्षी सदस्य पहले की तरह ही शोर शराबा कर रहे थे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। हंगामे के बीच सदन ने इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक मुख्य रूप से कर प्रशासन को सुव्यवस्थित करने तथा आयकर कानूनों में आवश्यक बदलाव करने के लिए लाया गया है। उधर राज्यसभा में भी राम मंदिर चढ़ावा चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण बैठक बार बार बाधित हुई। उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट के कुछ सदस्यों पर चढ़ावे की चोरी का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य जांच एजेंसियां आरोपों की जांच क्यों नहीं कर रही हैं। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया और राम मंदिर निर्माण का विरोध किया। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 तक स्थगित कर दी। सदन की बैठक 12 शुरू होने पर भी सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2 बैठक शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने से जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया, किंतु सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामे के बीच विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून को ठीक से लागू नहीं कर देश और लोकतंत्र के साथ धोखा करने का आरोप लगाया और दावा किया कि वर्तमान सरकार इन दोनों के सार्वभौमिक पंजीकरण के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। मंत्री

जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 को और संशोधित कर विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को कड़ा बनाना है। इसके बाद भी विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रही और उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को भी पहले जैसी स्थिति ही रही। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराया, लेकिन विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री के बयान की मांग दोहरा रहे थे। हंगामा देखते हुए अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। कार्यवाही फिर शुरू होने पर स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने चर्चा और पारित करने के लिए बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। सदन ने हंगामे के बीच ही इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की बैठक होते ही विपक्षी सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर विरोध जताते हुए नारेबाजी की और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मामले में गृहमंत्री की सदन में मौजूदगी की मांग की। हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े अपने मुद्दे उठाए। हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सभापति ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, किंतु सदन में हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विधेयक में उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा के दौरान विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। विधेयक पर करीब 2.5 घंटे तक चली चर्चा का जवाब देते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है, जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। कानून मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके बाद सदन में विपक्षी सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व के मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन की बैठक पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। बृहस्पतिवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने की वर्षगांठ का उल्लेख किया और सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद विपक्षी सदस्य सदन में हंगामा करने लगे और अध्यक्ष ने 11:03 पर बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक 2 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्य आसन के सामने आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रखा। विपक्ष के हंगामे के कारण विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी। सदन ने इस संबंध में जून में लागू अध्यादेश को अस्वीकृत करने के आरएसपी सदस्य एन के प्रेमचंद्रन के सांविधिक संकल्प को खारिज कर दिया। सदन ने कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया। इसके बाद ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया गया। ये विधेयक सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से होने वाले भुगतान पर शुल्क लगाने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार देता है। इसके बाद बैठक दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच ही सदन ने विनियोग विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया, जिसके तहत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में खर्च हुए अतिरिक्त राशि के लिए संसद से मंजूरी मांगी है। इस दौरान कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन भी किया। सुबह 11 बजे सभापति सीपी राधाकृष्णन ने बैठक शुरू होने पर शून्यकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन कांग्रेस तथा कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री के बयान की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े अपने मुद्दे उठाए। सदन में हंगामा

0: ਤੇ ਨਾ ਦੇਖ ਸਭਾਪਤੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਥਗਿਤ ਕਰ ਦੀ। ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਪਰ ਸਭਾਪਤੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੋਰਗੁਲ ਕੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਸਦਨ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 2:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੇ ਲੀਏ ਸਥਗਿਤ ਕਰ ਦੀ। ਦੁਪਹਿਰ 2:15 ਪਰ ਬੈਠਕ ਪੁਨਃ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਪਰ ਵੀ ਸਦਨ ਮੇਂ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਸਦਸਿਓਂ ਕਾ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਰਹਾ ਔਰ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਹਰਿਵੰਸ਼ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਕੇ ਭੀਤਰ ਹੀ ਬੈਠਕ ਕੋ ਦੁਪਹਿਰ 2:45 ਤੱਕ ਸਥਗਿਤ ਕਰ ਦਿਆ। 3 ਬਾਰ ਕੇ ਸਥਗਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਅਪਰਾਹਨ 2:45 ਪਰ ਬੈਠਕ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਵਿਨਿਯੋਗ ਸੰਖਿਆਂਕ 3 ਵਿਧੇਯਕ ਕੋ ਚਰਚਾ ਕੇ ਲੀਏ ਸਦਨ ਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਆ। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा के दौरान कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दल के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री के बयान की मांग करते हुए सदन से बहिर्गमन किया। विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा के दौरान सदस्यों ने अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलू उठाए। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि सरकार ये अनुदान की अनुपूरक मांगें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष में अतिरिक्त खर्च के लिए लाई है। उन्होंने कहा कि सरकार इस अतिरिक्त बजट को लोक लेखा समिति PAC की सिफारिश पर लाई है और PAC की अध्यक्षता विपक्ष के नेता के पास है। वित्त मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर इसे लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। इसके बाद सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोकहित के विभिन्न मुद्दे उठाए। सप्ताह के अंतिम दिन शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का उल्लेख किया। फिर सदन ने कुछ क्षण मौन रखकर देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान का उल्लेख करते हुए विपक्षी सांसदों से उनसे प्रेरणा लेने को कहा। अध्यक्ष ने कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर का मानना था कि देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्य अपनी मांग दोहराते हुए नारे लगाने लगे। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो मंत्री जीतनराम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रखा। इस दौरान विपक्ष के सदस्य लगातार नारेबाजी करते रहे। हंगामे के बीच ही सदन ने विधेयक को चर्चा के बिना पारित कर दिया। राज्यसभा में यह विधेयक सोमवार को ही पारित हो चुका है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को ही थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण लगातार 15वें दिन भी प्रश्नकाल और शून्यकाल शुरू नहीं हो सके। राज्यसभा की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने पर सभापति CP राधाकृष्णन ने आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का जिक्र करते हुए कहा कि करो या मरो के नारे के साथ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी के लिए जो संघर्ष किया उसकी वजह से ही आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। बाद में सदस्यों ने स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के सम्मान में कुछ क्षण के लिए मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभापति ने इसके बाद शून्यकाल शुरू कराना चाहा। विपक्षी सदस्यों के ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी और इसके बाद सदन में हंगामा जारी रहने पर करीब 5 मिनट के भीतर ही बैठक दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: अभी आप सुन रहे थे हमारे दिल्ली केंद्र से इस सप्ताह संसद में। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर। मरुधरा की माटी और गौरव और बीकाना की संस्कृति की सुगंध लेकर हाजिर है बीकानेर दर्पण का शानदार 156वां अंक। श्रोताओं, यहाँ की हजारों हवेलियों के कंगूरे जहाँ इतिहास की गौरव गाथा गाते हैं, वहीं यहाँ का आधुनिक साहित्य आने वाले कल की नई इबारत लिखता है। कला और संस्कृति के इस अनूठे संगम को समेटे आज हम आपको रूबरू कराएंगे शहर की साहित्यिक और सांस्कृतिक फिजाओं में तैरती नई तरंगों से। विरासत को सहेजने और संवारने के सिलसिले में आइए हम सब मिलकर हम सफर बनते हैं आज के इस विशेष सफर के। इस रसमयी यात्रा की रचनाकार हैं, प्रस्तुति है श्रीमती पुनीत बिश्नोई की। इन शब्दों को जीवंत कर रहे हैं स्वर देकर श्री महेश उपाध्याय और सूत्रधार की भूमिका में संयोजन कर रहे हैं श्री अमित सिंह। तो दिल थामिए और आनंद लीजिए बीकानेर की इस सुरीली दास्तान का, बीकानेर दर्पण।

0: बीकानेर दर्पण कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का बीकानेर दर्पण के इस अंक में स्वागत है। आज के इस अंक में सबसे पहले चलते हैं स्थानीय महाराजा नरेंद्र सिंह सभागार नागरी भंडार। जी हाँ, जहां दिनांक 2 अगस्त को हिंदी विश्व भारती नागरी भंडार बीकानेर द्वारा स्वर्गीय पंडित विद्याधर शास्त्री की 125वीं जयंती के अवसर पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस व्याख्यान का विषय बहुत ही गंभीर और समसामयिक था। विषय था गीता में जीवन प्रबंधन। जी हाँ, गीता में जीवन प्रबंधन। व्याख्यान के मुख्य वक्ता थे प्रोफेसर शिव नारायण जोशी। आप जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर पद से सेवानिवृत्त है। व्याख्यान में सानिध्य और अध्यक्षता थी मानव प्रबोधन प्रन्यास शिवबाड़ी बीकानेर के अधिष्ठाता स्वामित विमर्शानंद गिरी जी की। वहीं विशिष्ट अतिथि थे डॉक्टर घनश्याम आत्रेय और डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव। आइए सबसे पहले सुनते हैं मुख्य वक्ता प्रोफेसर शिव नारायण जोशी ने गीता में जीवन प्रबंधन विषय पर क्या कहा।
1: मोह और भय, ये दो जो है दोष होते हैं, ये दो दोष मूल दोष है। क्रोध, लोभ, लालच मूल नहीं है। मूल दोष दो है, वो है मोह। मोह का मतलब क्या है? आसक्ति, लगाव, चिपक जाना। कोई इच्छा ऐसी हो उस इच्छा से चिपक जाना, कामनाओं से चिपक जाना, मोह से होता है। तो मोह जो है, और दूसरा भय। किस बात का भय? यार मैं ऐसा करूंगा तो ये परिणाम हो जाएगा, मेरा ये नुकसान हो जाएगा, नफा नुकसान, अपना जो भी भय, कई कई तरह का भय। तो मोह और भय, ये दो मूल दोष हैं। अब मोह से क्या होता है? कामनाएं, इच्छाएं, लोभ, लालच, ये मोह से जनित है, ये मोह से होते हैं। तो आपकी जो भी बेईमानियां हैं, वो बेईमानियां किसके कारण से होती है? मोह के कारण से। अब दूसरा आ गया आपका भय। आदमी हिंसक कब होता है? जब भयभीत होता है। भय से क्रोध उत्पन्न होता है, भय से हिंसा होती है, समझिए। तो जो भी निंदा आदि जो दोष है, वो सारे के सारे दोष इन माया, भय, मोह और आपके भय से उत्पन्न होते हैं। तो वह अर्जुन मोह और भय से ग्रसित था। अब उस अर्जुन को उन्होंने, जो कृष्ण ने जो उपदेश दिए, वो खाली अर्जुन के लिए नहीं थे, वो एक मनुष्य मात्र के लिए उपदेश है, वो हर मनुष्य के लिए उपदेश है। इसीलिए ये जो गीता है, वो आपका हमारे लाइफ मैनेजमेंट का सर्वश्रेष्ठ।
0: और आइए अब सुनते हैं अध्यक्ष उद्बोधन देते हुए मानव प्रबोधन प्रन्यास शिववाड़ी के अधिष्ठाता स्वामी स्वामित विमर्शानंद गिरी जी ने गीता में जीवन प्रबंधन विषय का विषयांतर करते हुए क्या कहा।
2: गीता और जीवन प्रबंधन। गीता क्या है? मेरे एक हाथ में ये पुस्तक है, दूसरे हाथ में ब्रह्मांड की सारी भाषाओं की सारी पुस्तकें हैं। श्रेष्ठ कौन सी है? वजन ज्यादा किसमें है? अपरेंटली तो इनमें ही है, इसका वजन देख पुस्तक का क्या है। तो इस पुस्तक में ऐसा क्या है कि हम इसको गीता कह रहे हैं, इसको शास्त्र कह रहे हैं? बाकी ब्रह्मांड की सारी पुस्तकें किसी व्यक्ति ने अपनी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को लेकर लिखी है। अभी बताया मन से गीता क्या है। बंधु, आज से 5127 वर्ष पूर्व चिंतन करते रहना, उस वक्त हम कहाँ थे। जितना जितना आप गीता को टच करने से पहले महाभारत का अध्ययन करेंगे,

0: उस वेद व्यास जी की जीवनी का अध्ययन करेंगे, उस योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जीवनी का अध्ययन करेंगे और अर्जुन का अध्ययन करेंगे, तब शायद गीता के किसी एक श्लोक को आप हृदयंगम कर सकते हैं। उसके बिना बहुत मुश्किल है, इतना गहन चिंतन करना पड़ेगा। तो आज से 5125 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अभी बताया, युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र में, युद्ध के मैदान में, युद्ध के मैदान में तो आवश्यकता किसकी होती है? हथियारों की होती है, रणनीति की होती है। अर्जुन को निमित्त बनाकर संपूर्ण मानवता के अभ्युदय निश्रेष के लिए जो आपस में संवाद हुआ गुरु शिष्य का, उसको एज इट इज किसने ग्रहण किया? वेद व्यास जी ने अपनी अप्रतिम मेधा शक्ति से, जितंबरा मेधा शक्ति से उन्होंने महाभारत के हृदय के अंदर प्रतिस्थापित कर दिया, जिसको हम श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। वो गीता जिसके बारे में जीवन की हर समस्या का समाधान है, हमने कह तो दिया, हाँ उस समस्या का भी समाधान है। अभी तो हमारा तो विषय पर टच करूंगा सिर्फ मैं, गीता को लेकर बहुत सारी बातें होगी, अब भी बहुत कुछ कहना बाकी रह गया है। गीता धर्मशास्त्र है या अर्थशास्त्र है, या निष्काम कामना पूर्ति का शास्त्र है, या कामना पूर्ति का शास्त्र है, या मोक्ष शास्त्र है, गीता एक शास्त्र चारों है। गीता का पहला श्लोक हम शायद ध्यान से कम पढ़ते हैं। किसकी जिज्ञासा है, किसने पूछा पहला श्लोक? धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र कौन है? कितने नेत्र हैं धृतराष्ट्र के? हमारे कितने नेत्र हैं? होमवर्क। और किससे पूछा प्रश्न? प्रश्न किया धृतराष्ट्र ने, जो जन्मांध है, प्रश्न किया संजय से, जिसके कितने आंख हैं। संजय को तो वेदव्यास जी का प्रसाद था ना, अनंत आंखों से वो सारा दृश्य को देख रहा था। हम प्रश्न पूछ रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं? आंख बंद करके धृतराष्ट्र बनकर प्रश्न पूछ रहे हैं, और पूछ रहे किससे? ये चिंतन करना पड़ेगा, तब हमारे अंतर का जो शिष्यत्व है वो बाहर निकलेगा, और वो जो गुरु जो चारों तरफ है, अंदर बाहर, वो क्षण क्षण में है, कण कण में, घट घट में, क्योंकि वो ओमनी पोटेंट है, ओमनीशियंट है, ओमनी प्रेजेंट है। इतना हम सबको बनना होगा, तब उसके अंदर से एक गुरुत्व बाहर निकलेगा। और तब संजय ने कहा, गीता का अंतिम श्लोक, पहला श्लोक और अंतिम श्लोक, ये भी आपने बता दिया, शायद चिंतन करना होगा हमको सिर्फ, क्या मेरा जीवन, गीता केवल प्रबंधन का विषय नहीं है, गीता केवल जीवन प्रबंधन का विषय नहीं, मैं कहता हूँ गीता मृत्यु प्रबंधन का दिवस है। आर वी रेडी फॉर दैट? क्या मैं मृत्यु को स्वीकारने के लिए तैयार हूँ? जीवन कहते किसे हैं? गीता बता रही है। मृत्यु किसे कहते हैं? गीता बता रही है। वो अंतिम श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयभूतिर ध्रुवानेतिर मतिर्मम।
1: व्याख्यान के अंत में आगंतुकों को धन्यवाद देते हुए आप हैं साहित्यकार मोहम्मद फारूक चौहान।
2: सबसे बड़ी खुशी की बात है कि श्रीनाथ जोशी जी, जो बीकानेर डूंगर कॉलेज में रह चुके हैं और दर्शन शास्त्र के अध्येता भी थे और प्रोफेसर रहे हैं, और आज इसके बाद जोधपुर चले गए और वहाँ उन्होंने बहुत सारे लोगों को तैयार किया। दर्शन का जो मतलब ही होता है कि आप एक पन्ना लेके बैठते हो तो उस पन्ने को पूरा नहीं पढ़ पाते हैं, इतना गूढ़ विषय है। ऐसे गूढ़ विषय पर आपने अपनी बात सरल तरीके से और बड़े आसान तरीके से, बड़े हंसी के साथ में आपने प्रस्तुत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार हम प्रदर्शित करते हैं। घनश्याम आत्रेय जी जो है युग पक्ष में, इनके काफ़ी लेख गीता से संबंधित लेख आते रहे हैं, और प्रोफेसर ये गणित के, सॉरी फिजिक्स के जो है अध्येता रहे हैं, लेकिन धर्म के मामले में इनकी जो गूढ़ जो ज्ञान है वो वास्तव में अचंभा करने वाला है। इनकी दृष्टि बड़ी विशाल है और जब आप इनसे बात करते हैं तो बात सुनते चले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति हमारे बीच आए हैं और तबीयत इनके ख़राब हुए तब भी ये हाजिर हुए हैं, और इसके लिए इनका बहुत बहुत आभार। मनमोहन सिंह यादव साहब जो है वो दर्शन शास्त्र के बहुत ही गूढ़ वैज्ञानिक भी कह सकते हैं, अपनी बात को गहरे से कहने वाले हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और मुझे, मैंने कहा यार मुझे कुछ सीखना है तो क्या आप जलालुद्दीन जी को पढ़िए, रूमी को पढ़िए, तो मैं तो एक पन्ना भी नहीं पढ़ पाया। तो इतना गूढ़ विषय पे आपने सरल तरीके से अपनी बात रखी और आप आए, हमारा मान रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे, हम देखते हैं स्वामी सोमगिरि जी महाराज जब आते थे तो बड़ा मन प्रसन्न हो जाता था और अपनी वाणी से लोगों को जो ज्ञान देते थे और लगातार बोलते रहते थे, शब्दों में कहीं रुकावट नहीं आती थी, और वही उन्हीं के पद चिन्ह चलते हुए हमारे विमर्शानंद जी जो है

0: वो उन्हीं के चरम चलते हुए परचरम चलते हुए और हमारे बीच पधारे हैं, और समय कम होते भी शॉर्ट रूप में हमें गीता के बारे में बताया कि गीता का पढ़ना क्यों ज़रूरी है, तो इसमें सारी बातें आ जाती है। तो आप सब लोग आए, और हमारा मतलब जो छोटे से निवेदन पे आपने हमारा स्वीकार किया, तो हम आपके लिए बहुत आभारी हैं।
1: श्रोताओं, सावन का महीना आरंभ हो चुका है। एक प्रचलित दुआ है, सियाड़ो खाटू भलो, उनाड़ो अजमेर, नागौर नित्रो भलो, सावन बीकानेर। सावन मास में बीकानेर के रीति रिवाज और परंपराएं बहुत ही खास और जीवंत तो होती है। श्रोताओं, बीकानेर में सावन सिर्फ धार्मिक महीना नहीं है, बल्कि आस्था, सामूहिकता और मौज मस्ती का भी समय माना जाता है। चलिए पहले जानते हैं शिवबाड़ी स्थित लालेश्वर महादेव मंदिर के महंत श्री विमर्शानंद गिरी जी क्या कहते हैं सावन माह के बारे में।
2: सावन भगवान शिव को

0: श्रोताओं, बीकानेर में सावन सिर्फ धार्मिक महीना नहीं है, बल्कि आस्था, सामूहिकता और मौज मस्ती का भी समय माना जाता है। चलिए पहले जानते हैं शुबाड़ी स्थित लालेश्वर महादेव मंदिर के महंत श्री विमर्शानंद गिरी जी क्या कहते हैं सावन माह के बारे में।
1: सावन भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सावन के महीने में साक्षात इंद्र देवता उस देवादि देव महादेव के ऊपर स्वयं अभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं। पूरा जो सावन का महीना होता है, और अब सावन के महीना आता है हमको भिगोने के लिए, इंद्र देवता भी आते हैं हमको भिगोने के लिए। और महादेव तो स्वभाव से ही इतने सरल हैं कि यदि कोई शुद्ध हृदय को लेकर महादेव को केवल जल भी अर्पित करता है तो महादेव उससे प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी महादेव ये चाहते हैं कि मेरा भगत यदि सक्षम है, हालांकि वो सक्षम भी महादेव की कृपा से है, फिर भी महादेव की सरलता देखो कि महादेव ये कहते हैं कि शिव पुराण में ये कहते हैं कि यदि कोई मेरा भक्त सक्षम है तो वो मेरा दूध से अभिषेक करे, शहद से अभिषेक करे, घी से अभिषेक करे, केसर से अभिषेक करे, और पंचोपचार से करे, षोडशोपचार से करे या सहस्त्रोपचार से करे। मुख्य भाव ये है कि महादेव ये चाहते हैं कि आबाल वृद्ध और जो आर्थिक रूप से कमजोर है उससे लेकर जो अत्यधिक संपन्न है, वे सभी महादेव के बनाए हुए सुंदर संसार में अपने सारे कर्तव्यों को निभाते हुए देश से ऊपर उठ जाएं। जब हम हीनेश और शीनेश से, स्त्रीपने और पुरुषपने से, तेरे और मेरे से, राग और द्वेष से जितना जितना ऊपर उठ रहे हैं, और यदि और सरल कहा जाए तो अपने कर्तापन, ज्ञातापन और भोक्तापन, जिसे भगवान ने गीता में भी कहा है आई एम द डूअर, आई एम द नोअर, आई एम द क्रिएटर, इस भाव से हम जितना जितना ऊपर उठते जाते हैं उतना उतना हमारे अंदर एक दिव्य भाव जागृत हो जाता है। और सावन का ये महीना इसीलिए अत्यधिक लोकप्रिय भी है और इसलिए अत्यधिक महत्व भी है कि कोई भी यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातः 3 बजे से लेकर 6 बजे से उठकर महादेव का अभिषेक करता है, किसी भी रूप में करता है, तो महादेव उसकी हर शास्त्रीय मनोवांछित इच्छा की पूर्ति करते हैं। इसलिए शास्त्रों में सावन का अत्यधिक महत्व है।
2: इस मंदिर में पूरे सावन के महीने में कौन कौन से प्रोग्राम होंगे?
1: महादेव का रुद्राभिषेक होता है, और ये एक रुद्राभिषेक तो होता है जो मंदिर के स्वयं तरफ से होता है, उसके अलावा कोई भी भगत चाहे तो अपने स्वयं की तरफ से भी अतिरिक्त रुद्राभिषेक करवा सकता है मंदिर से अनुमति लेकर। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पर्व आता है इस सावन के महीने में, वह श्रावण शुक्ला दशमी। इस दिन मंदिर का वार्षिक मेला लगता है। परंपरा है कि इस दिन मंदिर का वार्षिक मेला लगता है, और उस पूरे जब मंदिर की स्थापना हुई थी तो पूरा गांव उमड़ के आता था। ये मंदिर एक सामने एक जैन मंदिर हो रहे हैं, दोनों मंदिर के अनुयायी मिलकर, ऐसी परंपरा है कि दोनों मंदिर के अनुयायी मिलकर सामने जो तालाब है वहाँ जाकर अपनी भावनाओं का विसर्जन करते थे। उसका उद्देश्य भी होता था कि पूरे वर्ष भर कोई भी यदि गलती किसी भी व्यक्ति से हो गई है तो उसमें उस रुद्राभिषेक के द्वारा, उस अभिषेक के द्वारा उसके अंदर का मल हट जाए और पूरे समाज के अंदर एकता और अखंडता बनी रही, इस भावना को लेकर ही मंदिर का निर्माण होता है, और इस भावना को लेकर ही इस मंदिर के अंदर रुद्राभिषेक किए जाते हैं।
0: बीकानेर में सावन के महीने में प्रत्येक शिव मंदिर में पूजा अर्चना अभिषेक और विशेष श्रृंगार होते हैं। मंदिरों के अलावा घरों में भी भक्तगण शिव की पूजा अभिषेक भावभक्ति से करते हैं। आइए सुनते हैं मंदिरों और घरों में हो रहे महादेव अभिषेक की एक झलक।
3: जाते हे तिर्मी दुष्ट महादेव भगवतो दया भगवतो दयात्मा।

0: श्रोताओं, बीकानेर नशा मुक्त जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत दिनांक 2 अगस्त को रानी बाजार के हनुमान चौक में स्थित पंचमुखा हनुमान मंदिर परिसर में समाज जगेगा नशा भागेगा विषय पर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें पूरे मोहल्ले के बच्चे, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, किशोरियां, युवतियां सभी ने उत्साह से अपनी अपनी भागीदारी दिखाई। सबसे पहले कार्यक्रम का संदर्भ और मुख्य कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया गया।
1: हम गांवों में जाते हैं तो लोग बड़ी खुशी से डॉक्टर साहब का आवादर करते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब वास्तव में ये पीड़ा अब कोई उठा नहीं रहा और आप अगर आप ये कर रहे हो तो हम आपके साथ हैं। जिस प्रकार इस क्षेत्र के जो टीम है, हमने जो जितने भी अभी तक प्रोग्राम किए, एक बात आपको बता दूं, सबसे बढ़िया जो टीम है ना वो इस क्षेत्र की, एक बार ताली बजाकर स्वागत करें। यहाँ के जो टीम है बहुत एक्टिव है, बहुत जोशीली है। और इनका एक और चीज देखी हमने, ये जहां भी हमें लेकर जा रहे हैं, हम घर घर तक गए, इनका मान सम्मान बहुत है हर घर में। इन्होंने जो बीड़ा लिया तो लोग कह रहे हैं नहीं ये बहुत अच्छा, क्योंकि ये परमानेंट अच्छा काम करते हैं, तो ये भी अच्छा ही काम था। तो इसको अब जो बच्चों ने, हमने बच्चों को भी जोड़ा इससे, वही जो नशा करता है तो वो तो डॉक्टरों के इलाज का अब उसको जरूरत है, और जो नशा नहीं करते वो हमारी ये बच्चे हैं। बच्चे सुरक्षित है तो बीकानेर पूरा हमारा सुरक्षित है। तो बच्चों पर ये जो निबंध प्रतियोगिता है हमने कराई है क्षेत्र में, बच्चे घर पूरे को, माँ को, पिता को, भाई को, बहन को, पड़ोसियों को, सबको, बच्चे जब हीन भावना से देखते हैं ना तो नशा अपना आप खरा लगने लगता है हर इंसान को। तो इन निबंध प्रतियोगिता की है, बच्चों ने इतना बढ़िया लिखा है, इनकी कॉपी है, एसपी, कलेक्टर, डॉक्टर सब जांच करते हैं, और इन्होंने इतने बढ़िया डायग्राम बनाए। एक बार तालियां इन बच्चों के लिए बजाइए।
0: संस्थान के पदाधिकारियों ने माल्यार्पण के अलावा शब्दों से सभी का स्वागत किया।
2: कर अपने समाज, अपने बच्चों और अपने भविष्य को नशे जैसी भयावह बुराई से मुक्त करने का संकल्प लेने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व पधारे हैं जिन्होंने चिकित्सा को केवल अपना पेशा नहीं बल्कि मानव सेवा का माध्यम बनाया है, जिन्होंने हजारों लोगों के जीवन में आशा की नई किरण जगाई, टूटते परिवारों को फिर से मुस्कुराना सिखाया और नशे की अंधेरी राह पर भटक चुके युवाओं को नई जिंदगी का रास्ता दिखाया। ऐसे महान समाज सेवी, प्रख्यात मानसिक स्वास्थ्य एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ आदरणीय डॉक्टर कन्हैया कच्छावा जी का पंचमुखा परिवार की ओर से मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। साथियों, किसी भी समाज की सबसे बड़ी पूंजी उसका युवा वर्ग होता है, लेकिन जब वही युवा नशे की गिरफ्त में आने लगता है तो केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा परिवार, पूरा समाज और पूरे राष्ट्र का भविष्य प्रभावित होता है। ऐसे समय में डॉक्टर कन्हैया कच्छावा जी जैसे व्यक्तित्व समाज के लिए आशा की वह रोशनी बनकर सामने आते हैं जो लोगों को केवल दवा ही नहीं बल्कि जीवन जीने की नई प्रेरणा भी देते हैं। डॉक्टर साहब का यह अभियान हमें याद दिलाता है कि नशा किसी समस्या का समाधान नहीं बल्कि हर समस्या की शुरुआत है, और एक व्यक्ति का नशा छोड़ना केवल उसकी जीत नहीं बल्कि पूरे परिवार की मुस्कान की वापसी है। आज पंचमुखा की इस पावन धरती से हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने घर, अपने मोहल्ले और अपने शहर को नशा मुक्त बनाने में अपना पूरा सहयोग देंगे। पंचमुखा सेवा संस्थान एवं समस्त वार्ड 48 परिवार की ओर से हम डॉक्टर कन्हैया कच्छावा जी के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस जन जागरण अभियान के लिए अपना अमूल्य समय दिया और समाज हित में इस नेक कार्य का नेतृत्व स्वीकार किया।
0: श्रोताओं, अगर नशे को दूर भगाना होता है तब हमें पुलिस की सहायता भी लेनी होती है, क्योंकि नशे को फैलाने वाले जो अपराधी हैं, जो व्यक्ति हैं, जो समाज को खराब करते हैं, उनके लिए हमें मानसिक विचार और जागरूकता के अलावा हमें पुलिस की सहायता भी चाहिए। इस कार्यक्रम में पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर

0: श्री महेंद्र दत्त शर्मा शामिल थे और क्या कहते हैं आप अपने उद्बोधन में?
1: जिस उद्देश्य से, जिस डेडिकेशन से ये लोग लगे हुए हैं, मैं करीबन 10 महीने से इनके साथ जुड़ा हूँ, इनकी संस्था के साथ। मैं, मेरा परिचय जैसे इन्होंने बताया, महेंद्र दत्त शर्मा इंस्पेक्टर। यहाँ बीकानेर में नशे के खिलाफ एक टीम गठित की गई है, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स, उसका मैं यहाँ इंचार्ज हूँ। हमारी एक टीम है, नशे के खिलाफ हम पकड़ने का काम करते हैं, अवेयरनेस का काम करते हैं। उसी कड़ी में मैं डॉक्टर साहब के साथ जुड़ा, कई प्रोग्रामों में इनके साथ रहा। जिस तरीके से ये एक ग्राउंड लेवल पे जाकर मेहनत करते हैं, बहुत मुश्किल काम है लोगों को बिना किसी काम के इकट्ठे करना। हम यहाँ स्वार्थ के लिए तो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कोई आज हमें कोई चीज़ मिल रही हो, कोई फ्री में सामान मिल रहा हो, तो भीड़ मैनेज करनी पड़ती है। इस तरीके के कार्यक्रम में लोगों को आना, शामिल होना, आप सब लोग बैठे हो, काफ़ी टाइम से बैठे होंगे, तो इसका मतलब आप लोगों में एक जोश है, एक अवेयरनेस है कि हमें इस मुद्दे पे काम करना है। तो डॉक्टर साहब और उनकी टीम जिस तरीके से ग्राउंड लेवल पे लगी हुई है, मैं मेरी ड्यूटी कर रहा हूँ, ये अपना क्लिनिक, अपना हॉस्पिटल चला रहे हैं, लेकिन उससे हटके ये जो काम कर रहे हैं नशे को रोकने के लिए, अवेयरनेस का कार्यक्रम कर रहे हैं जनता के बीच में, ग्राउंड लेवल पे जाके गली गली मोहल्ले मोहल्ले में काम कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को अपने परिवार से शुरू करना है, अपने घर से शुरू करना है। क्या हमारे घर में हमारे परिवार का सदस्य तो कोई इस मामले में संलिप्त नहीं है, नशा लेने का आदि तो नहीं हो रहा? क्या हमारा बच्चा सही जगह जा रहा है, स्कूल टाइम पे जा रहा है, टाइम से आ रहा है, उसका कहाँ उठना बैठना है, किन लोगों के साथ संगति है, कहीं वो नशे की चपेट में तो नहीं आ रहा? अगर ऐसी कोई स्थिति बन रही है तो हमें सबसे पहले उसको रोकना है। हम अपने घर को सुरक्षित करेंगे, उसके बाद हम अपने पड़ोस को देखेंगे, हम अपने मोहल्ले को देखेंगे, अपने समाज को देखेंगे। तो निश्चित तौर पे अगर हम हमारे मोहल्ले को, हमारे घर को, हमारे समाज को, हमारे इस वार्ड को सुरक्षित कर लेंगे सब जगह अपने आप, तो पूरा देश, पूरा स्टेट, पूरा बीकानेर सुरक्षित हो जाएगा।
0: नशा मुक्ति के अभियान के मुख्य सूत्रधार डॉक्टर कन्हैयालाल कच्छावा ने जन सहयोग से नशा मुक्ति की बात रखते हुए अपनी बात कही।
2: देखिए, आज का जो कार्यक्रम है ये नशा मुक्ति के ऊपर है, और ये कार्यक्रम क्यों करना पड़ रहा है? बीमारियां तो बहुत सारी है, जैसे शुगर की बीमारी भी है, बीपी की भी बीमारी है, बहुत अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं, लेकिन नशे के ऊपर इस कार्यक्रम को करने की जरूरत क्यों है? नशे के ऊपर इस कार्यक्रम को करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि ये एक साधारण बीमारी नहीं, ये एक साधारण बीमारी नहीं, ये एक प्रकार की महामारी बन चुकी है। महामारी का नाम सुनते हैं ना बच्चों, आपने सुना होगा महामारी? सुनते हैं? जोर से बोल के बताएं हाँ या ना। सुना है ना, जैसे कोरोना नाम की महामारी आई थी। बीमारी और महामारी में अंतर क्या होता है? बीमारी के अंदर लोग बीमार तो कम होते हैं और ठीक ज्यादा होते हैं, लेकिन महामारी के अंदर बीमार ज्यादा होते हैं और ठीक कम होते हैं। वापस बोल के बताओ मुझे, बीमार ज्यादा होते हैं और ठीक कम होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? महामारी बोलते हैं। और जब महामारी होती है तो महामारी का जो इलाज है वो खाली डॉक्टर के पास में नहीं होता। अपन ने जैसे कोरोना के अंदर देखा था, कोरोना महामारी को अपन ने कैसे हराया? जब पूरा समाज, पूरा परिवार, हर व्यक्ति जब कोरोना के खिलाफ योद्धा बनकर खड़ा हुआ था, तभी अपन कोरोना जैसी महामारी को हरा पाए थे। अगर वो साधारण बीमारी होती तो ठीक है, डॉक्टर उसका इलाज कर देते। और मैं इसको महामारी क्यों कह रहा हूं? आज बीकानेर के अंदर छोटे छोटे बच्चे 12 साल के, 13 साल के, 14 साल के, 15 साल के, 16 साल के, 17 साल के, 18 साल के, 19 साल के छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो इस नशे के अंदर खराब हो रहे हैं। और नशे भी ऐसे जो हमने कभी नाम ही नहीं सुने। मैंने तो जब मैं अपनी MBBS शुरू की थी उस समय मैंने नहीं सुना था कि MD क्या होता है, चिट्टा क्या होता है, स्मैक क्या होता है। हम लोगों ने तो ये नाम भी नहीं सुने थे उस समय जो नाम थे। आज बीकानेर के अंदर इस तरह के नाम आ रहे हैं तो बड़ा मन के अंदर ही होता है कि छोटे छोटे बच्चे खराब हो रहे हैं। और कोई ऐसा नहीं कि कोई 5-5, 10-10, 20-20 रुपए का नशा कर रहा है।
0: श्रोताओं, डॉक्टर कन्हैयालाल कच्छावा ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कुछ जीवंत उदाहरण भी दिए, जिससे ये साबित होता है कि बीकानेर में नशे ने अपनी जड़ें बहुत ज्यादा फैला ली है, हमें सावधान होने की आवश्यकता है। चलिए सुनते हैं डॉक्टर कन्हैयालाल कच्छावा क्या कहते हैं।
2: मेरे पास में एक 17 साल का बच्चा आया जिसने मुझे बताया, पिछले 15 दिनों के अंदर मैंने 6 लाख रुपए की MD पी ली। 15 दिनों के अंदर 6 लाख रुपए, मतलब एक महीने का कितना हो गया? 12 लाख रुपए। अब मैं तो बीकानेर के अंदर ऐसी कोई सरकारी नौकरी नहीं जानता।

0: नहीं जानता जिसके अंदर एक महीने के अंदर कोई 17 साल का बच्चा है वो कितना कमा ले, 12 लाख रुपए कमा ले। और वो 12 लाख किस में लगा रहा है? एमडी के अंदर, नशे के अंदर लगा रहा है। किसी से पूछा कि हाँ बेटा कैसे आना हुआ, तो उसने बोला कि मुझे इलाज लेना है। मैंने कहा किस बात का इलाज लेना है? तो बोले कि मैं गुटके खाती हूँ। मैंने कहा कितने गुटके खाती है? कि मैं 8 गुटके एक दिन में खा लेती हूँ। 7 साल की बच्ची 8 गुटके एक दिन के अंदर। तो मैंने कहा तेरी माता पिता कहाँ है? तो वह मम्मी अभी आपसे ट्रीटमेंट ले गई थी। तो मैंने उसकी मम्मी को बुलाया। अब मैंने मजाक मजाक में बोला था, उसके गोद में क्या एक 1.5 साल का बच्चा था, तो मैंने मजाक मजाक में बोला, मैंने कहा ठीक है माता हो तो चलो ठीक है, तो 7 साल की बच्ची खराब होगी, ये 1.5 साल बच्चे रो ध्यान है कि वो तो कोई खावे नहीं, कि डॉक्टर साहब कहीं करा घर में बिखरेड़ा हुआ 2-4 दाना तो वो भी चाप ले। क्योंकि हमारे घर का जैसा माहौल है ना, देखिए वही चीज आगे ट्रांसफर होती है। तो इस चीज के प्रति हम अवेयर हुए कि बच्चों को इस चीज से हम दूर रखें, बच्चों को इस चीज से किसी भी प्रकार से ना जोड़े कि बेटा जार बो 2 पूड़ियां लिया, बेटा जार बे 4 पूड़ियां लिया, क्योंकि हम पूड़ियों के प्रति उनको नॉर्मल कर रहे हैं। फिर एक चीज है वो दूसरी चीज की तरफ बढ़ती है, दूसरी है वो तीसरी चीज की तरफ बढ़ती है, फिर वो पूरा परिवार है वो हमारे सामने आ जाता है। और जिस दिन बच्चा खराब होकर हमारे सामने आता है, हम उस दिन उसको कह नहीं पाएंगे कि बेटा ये चीज गलत है।
1: श्रोताओं, यहां एक बात हम बताना चाहेंगे कि बीकानेर के युवाओं में इन दिनों नशे की लत ने जोर पकड़ रखा है। ऐसे में हमें सावधान और जागरूक रहकर इसे जड़ से खत्म करना होगा, और यह कार्य किसी एक का नहीं है, समाज के हर वर्ग का है। उल्लेखनीय है कि आकाशवाणी बीकानेर समय समय पर इससे संबंधित जानकारियां और बचाव के उपायों से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। हम सभी का कर्तव्य है इस अभियान के तहत डोर टू डोर जनसंपर्क के माध्यम से आम जन को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करें। और अब हमें भी इस समय जागरूक होना होगा, क्योंकि कार्यक्रम का समय पूरा हो रहा है। संयोजन था श्री अमित सिंह का, प्रस्तुति थी श्रीमती पुनीत विश्नोई की, और वाचक स्वर था महेश उपाध्याय का। अब अगले अंक तक अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम बीकानेर दर्पण, प्रस्तुति श्रीमती पुनीत बिश्नोई की, मखमली आवाज श्री महेश उपाध्याय की, और संयोजन श्री अमित सिंह का। ये आकाशवाणी बीकानेर का हमारा चैनल है। रात्रि के 8:45 होते हैं। अब प्रस्तुत है
2: समाचार। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने कहा उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
4: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल

0: काल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है।
0: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
0: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नव क्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फॉरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
2: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। ये शहरी सहकारी बैंकों को 24 घंटे साइबर निगरानी और सुरक्षा सहायता प्रदान करेगा। श्री शाह ने देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम में शामिल होने का भी आग्रह किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ट इंडिया, कॉर्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए UPI निशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेनदेन निशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि UPI के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेनदेन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेनदेन भी निशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो ये केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेनदेन पर नाममात्र दर से लागू होगा। मंत्रालय ने कहा है कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन एक सक्षम प्रावधान है जिसका उद्देश्य UPI की दीर्घकालिक स्थिरता, तकनीकी उन्नति और उभरते जोखिमों के प्रति लचीलापन सुनिश्चित करना है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति को दर्शाता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू

0: ने देश में महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की शिरोमणि अकाली दल की मांग का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर महिलाओं को सशक्त बनाना होगा और निष्पक्ष तथा समान परिसीमन सुनिश्चित करना होगा, जिससे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिले। शिरोमणि अकाली दल ने चंडीगढ़ में अपने वरिष्ठ नेताओं की बैठक में ये मांग रखी थी। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC और राज्य में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मामला अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बीच राज्य सरकार और विभिन्न छात्र संगठनों के बीच बातचीत जारी है।
1: 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर परीक्षा रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की गई है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले कई दिनों से आंदोलनरत छात्र अपनी मांगों पर कायम हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि केवल मौखिक आश्वासन से संतुष्ट नहीं होंगे और जब तक ठोस परिणाम सामने नहीं आता आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच राज्य सरकार ने विभिन्न छात्र संगठनों से बातचीत का सिलसिला तेज कर दिया है। कई संगठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता के बाद सरकार ने उनकी मांगों और सुझावों पर आगे निर्णय लेने की बात कही है। प्रशासन ने आंदोलन के मद्देनजर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: रेलवे ने मध्य प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए रोजाना चलने वाली इटारसी मदन महल पैसेंजर रेलगाड़ी को मंजूरी दी है। ये रेलगाड़ी 5 घंटे से अधिक समय में 242 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये बगरा तवा, सुहागपुर और दूसरे स्टेशनों पर रुकेगी। ये आकाशवाणी है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में भोपाल में 5 अगस्त से चल रही 11वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में आज भोपाल घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। इसका उद्देश्य ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग मजबूत करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 10 ब्रिक्स सदस्य और 4 सहयोगी देशों सहित कुल 14 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
2: बैठक की शुरुआत केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के संबोधन से हुई। इसके बाद ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक और भोपाल डिक्लेरेशन के प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी। इसके साथ ही भोपाल में आयोजित ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक के प्रमुख कार्यक्रम भी सम्पन्न हो गए हैं। अब ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि सांची के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वे विश्व धरोहर और बौद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित होंगे। कल यानी 9 अगस्त को प्रतिनिधिमंडल भीम बैठका का दौरा करेगा, जहां वे भारत की प्राग ऐतिहासिक और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2026 में CEO गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई, ताकि भारत को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपकरणों के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा है कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति पेजिश्कियन ने युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के साथ वार्ता करने और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के अपनी सरकार के निर्णय का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिका समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करता है, ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करेगा, लेकिन अगर अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहता है तो ईरान इसे जारी रखने के लिए बाध्य नहीं होगा। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया था कि ईरान के साथ संघर्ष जल्द ही समाप्त हो सकता है। श्री ट्रंप ने दोहराया कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित चल रही वार्ताओं पर भी सकारात्मक परिणाम की आशा व्यक्त की है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने सरकारी कंपनी अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी से जुड़ी एक जहाज पर होर्मुज जलडमरू मध्य के पास हुए ईरान के हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह घटना समुद्री आवाजाही की आजादी की गारंटी देने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार

0: वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की आशंका है। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेज बारिश हुई। राजधानी में कल सुबह भी बारिश की संभावना है। उधर ओडिशा में बाढ़ का खतरा एक बार फिर मंडरा रहा है। बैतरनी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से भद्रक और अन्य निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका व्यक्त की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
1: उड़ीसा में एक बार फिर भारी बारिश हो रही है। आईएमडी ने सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है, जबकि कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। भद्रक में सालंदी और बैतरणी नदियों का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा फिर से पैदा हो गया है। भद्रक और तिहिड़ी ब्लॉक के कई निचले इलाकों और गाँव में पानी भरा हुआ है। कटक में सापुआ और कंटिया नदियों के उफान पर होने से पुराने कटक संबलपुर रोड के कुछ हिस्सों पर आवाजाही प्रभावित हुए है और खेतों में पानी भर गया है। भारी बारिश ने राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और अब कुछ खेल खबरें। अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता ने आज सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को हराया। अश्मिता का मुकाबला कल फाइनल में चीन की क्यू हान से होगा। उधर उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi emphasizes importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory. Union Minister Amit Shah stresses need for stronger cyber security and digital safeguards for urban cooperative banks. Government signs strategic MOUs with key industry leaders to strengthen support to startups. Iranian President says his country is committed to diplomacy but will not surrender under pressure. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall over Uttarakhand and Chhattisgarh tomorrow. Flood threat again looms over Odisha with rising river levels. And in badminton, Ashmita Chaliha to face China's Che Han in women's singles final of Korea Masters Tournament. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory, addressing the 57th convocation of the Indian Institute of Technology, IIT Delhi, today. Mr. Modi urged the students to keep national interest at the center of their decisions and ask themselves how their actions can benefit the country and address its needs. The Prime Minister said new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. He cited sectors such as semiconductors, space and drones and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Vikasit Bharat.
3: Aaj Bharat, economic self-reliance, technological self-reliance, industrial self-reliance, aise har sector mein aatmanirbhar banne ke liye kaam kar raha hai. Yahi विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस

ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 101.6 MHz पर। रात्रि के 9:15 होते हैं। लीजिए संगीत की महफिल की शुरुआत फिर से करते हैं। सुनवाते हैं आपको मुकेश की आवाज़ में ये पहला गीत।

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: ये भी एक अच्छा ख्वाब है ना हम सभी की ओर से, आप सभी के लिए, कि हम लोग चाहते हैं एक हेल्दी बीकाना। और ये हेल्दी बीकाना हो भी क्यों ना, हमारे ख्वाब भी तो कितने छोटे छोटे से हैं कि हम लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, इसमें क्या बड़ा है। आप सोचिए ना, बचपन से ही हमारे ख्वाब जो हुआ करते ना वो बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, सादे निष्पाप। कागज़ की नाव बना ली, बारिश के पानी में तैरा दी, मतलब ये हमारा सबसे बड़ा ख्वाब हुआ करता था कि हमारी नाव तैर जाए। मेले से मिलने वाला मिट्टी का वो छोटा सा खिलौना, पतंग की वो कटी हुई डोर, कितना प्रयास करते थे लंबी सी डंडी लेकर के, झाड़ा झंकार लगा करके उसको पकड़ने के लिए। या फिर अगर घर की बात करूं तो माँ की गोद में सर रख कर सो जाना, कितना कितना सुकून भरा होता था। ये सब ख्वाब तब पाना कितना आसान होता था, अब यही ख्वाब बहुत दूर की बात लगते हैं।

इसलिए कहते हैं इंसाफ के ख्वाब कभी कभी देख लेने चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे ख्वाब ही इंसान को इंसान बनाते हैं। हमें उम्मीद की डोर से बांध के रखते हैं। अगर आंखों में ख्वाब न हो तो जिंदगी महज सांसों का आना जाना बनकर रह जाएगी।

0: रात के इस खामोश पहर पर जब दुनिया सो रही होती है, शहर की बत्तियां बुझ जाती हैं, सन्नाटा हमसे बातें करता है। ये वही वक्त होता है जब हमारे ख्वाब चुपके से हमारी हथेली पर आकर बैठ जाते हैं और हमारे कान में फुसफुस आते हैं कि वक्त हो चुका है, अब इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करना है। तो आइए आज की खूबसूरत सुरमई सुहानी राम रात को नाम करते हैं उन सभी अधूरे ख्वाबों के ऊपर, और लेते रहिए यही ख्वाब, क्योंकि ख्वाब एक जादुई कारवां है। रात के 9:30 होते हैं। अब से कुछ देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती। इसमें आप सुनेंगे एक लघु रूपक राष्ट्र जागरण की दीपशिखाएं स्वतंत्रता संग्राम की अग्रणी महिला सेनानियों से। तो लिए चलते हैं हमारे अगले प्रसारण दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता।

0: संस्कृति केवल हमारी स्मृतियों में सुरक्षित अतीत का नाम नहीं, वो उन विचारों, मूल्यों, कलाओं और अनुभवों की एक निरंतर यात्रा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हुए हमारे वर्तमान को अर्थ देती है और भविष्य की दिशा तय करती है। भारत की सांस्कृतिक चेतना और समृद्ध ज्ञान परंपरा में स्वतंत्रता का विचार भी कुछ ऐसा ही है। केवल राजनीतिक मुक्ति नहीं, बल्कि विचारों की स्वतंत्रता, ज्ञान की स्वतंत्रता, अपनी पहचान और अपनी परंपराओं को समझने की स्वतंत्रता। इसी विषय पर आज की पत्रिका के संपादकीय में हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की प्राध्यापक डॉक्टर विभा नाइक।
1: भारतीय ज्ञान परंपरा विश्व की प्राचीनतम वैचारिक धरोहर है, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह किसी एक रूढ़ी, डॉग्मा या संकीर्ण विचारधारा से बंधी हुई नहीं है, बल्कि इसके मूल में स्वतंत्रता का एक ऐसा गहरा, व्यापक और बहुआयामी मूल्य निहित है जो मनुष्य को न केवल बाहरी बंधनों से मुक्त करता है, बल्कि उसे आंतरिक और आध्यात्मिक धरातल पर भी परम स्वतंत्र बनाता है। आधुनिक युग में जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमारा ध्यान राजनीतिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की आजादी, नागरिक स्वतंत्रताओं और व्यक्तिगत स्वायत्तता की ओर ही अधिक जाता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि भारतीय चिंतन में स्वतंत्रता केवल अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव अस्तित्व के चरम लक्ष्य और उसके लोक परलोक के कल्याण से भी जुड़ी हुई है। स्वतंत्रता शब्द दो पदों से मिलकर बना है, स्व और तंत्र, जिसका अर्थ है अपने तंत्र या अपने नियम के अधीन होना। यहाँ स्व का अर्थ व्यक्ति की वह अंतर्निहित चेतना है जो समूचे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई

हुई है, जिसका लक्ष्य है वासनाओं, विकारों, अज्ञान और इंद्रियों की अधीनता से मुक्ति। इस स्वतंत्रता की सिद्धि तब होती है जब मनुष्य अपने विवेक और धर्म के अनुशासन में रहकर आचरण करता है। इसीलिए भारतीय चिंतन धारा में स्वतंत्रता का लक्ष्य मोक्ष या मुक्ति है, जिसे सभी आस्तिक दर्शनों में जीवन का अंतिम लक्ष्य स्वीकारा गया है। स्वतंत्रता का यह बोध भारतीय ज्ञान परंपरा की पहचान है। भारतीय ज्ञान परंपरा में जहां वेदों को परम प्रमाण मानने वाली आस्तिक परंपराएं जैसे न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत दर्शन हैं, तो वहीं वेदों की सत्ता को खारिज करने वाली नास्तिक परंपराएं जैसे जैन, बौद्ध और चार्वाक दर्शन भी समानांतर रूप से हैं। विचार और अभिव्यक्ति की इसी स्वतंत्रता का एक उत्कृष्ट उदाहरण हमें उपनिषदों के संवादों में भी मिलता है, जहां गुरु और शिष्य के बीच अत्यंत लोकतांत्रिक और स्वतंत्र माहौल में संवाद मिलता है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में भी जब अर्जुन विषाद से घिर जाते हैं और किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, तब भगवान कृष्ण उन्हें जीवन, प्रकृति, कर्म और आत्मा का गहनतम ज्ञान देते हैं और पूरे 18 अध्यायों के वृहत उपदेश के बाद अंत में अर्जुन से कहते हैं, मैंने तुम्हें यह परम गोपनीय ज्ञान दिया है, अब तुम इस पर पूरी तरह से विचार करो, इसका विश्लेषण करो और फिर जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। निर्णय लेने की यह स्वायत्तता और स्वतंत्रता ही भारतीय ज्ञान परंपरा का वास्तविक गुण है, जो भारतीय सामाजिक और राजनीतिक चिंतन में भी धर्म के माध्यम से प्रतिध्वनित होता है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि यहाँ धर्म का तात्पर्य किसी विशेष कर्मकांड या संप्रदाय से नहीं है, बल्कि उन सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों, कर्तव्यों और नियमों से है जो समाज के विनियमन के लिए आवश्यक हैं। इसी धर्म का प्रभाव है कि भारतवर्ष में कभी भी राजा की सत्ता को निरंकुश और असीमित नहीं माना गया है। ऋग्वेद का संगच्छध्वम संवदध्वम समवो मनांसि जानताम का उद्घोष सामाजिक स्वतंत्रता और समता का एक ऐसा ही प्रमाण है जो सभी को अपने साथ चलने, साथ बोलने और सभी के मनों को समान रूप से समझने के भाव पर केंद्रित है। यह इस बात का भी प्रमाण है कि सामूहिक चेतना के विकास के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और परस्पर संवाद को कितना अनिवार्य माना गया है। इसी प्रकार भारत ही नहीं विश्व में समादृत रामचरितमानस के उत्तर कांड से एक उदाहरण द्रष्टव्य है, जहां राज्याभिषेक के बाद राम प्रजा को संबोधित करते हुए कहते हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने जोई जो अनीति कछु भाखो भाई तो मुहि बर जहु भय बिसराई, जिसका अर्थ है कि वही मेरा सच्चा सेवक है और वही मुझे सबसे अधिक प्रिय है जो मेरी आज्ञा का पालन करता है। हे भाई, यदि मैं कभी कोई अनुचित या अनीति बात कह दूं तो तुम सारा भय भुलाकर मुझे टोक देना। अपने शुद्ध विचार को निर्भीक भाव से रखना ही भारतीय चिंतन धारा का स्वतंत्रता चिंतन या स्वातंत्र्य बोध है, क्योंकि भारतीय मनीषा एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति की विश्वासी है। आज जब दुनिया में अपने विचार को ही एकमात्र सत्य मानकर दूसरों पर थोपने की हिंसक प्रवृत्ति बढ़ रही है, तब भारतीय ज्ञान परंपरा का यह मूल्य हमें सह अस्तित्व, सहिष्णुता और लोकतांत्रिक विमर्श की वास्तविक राह दिखाता है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस स्वातंत्र बोध की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि आज का व्यक्ति राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है, उसे मतदान का अधिकार है, बाजारवादी संस्कृति ने उसे अपनी पसंद की वस्तुएं खरीदने की असीमित आजादी भी दी है, वह समाज, प्रकृति और परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को भूलता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आज पर्यावरण संकट, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक बिखराव जैसी परिस्थितियां बनी

0: हुई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ स्वार्थ सिद्धि प्रमुख है। स्व का बोध या स्वातंत्र बोध का विचार यहाँ दूर दूर तक नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा इस एकांगी स्वतंत्रता के स्थान पर एक पूरक और समग्र स्वतंत्रता मॉडल प्रस्तुत करती है। यहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता समाज और प्रकृति की स्वतंत्रता के साथ जुड़ी हुई है। आधुनिक पर्यावरण चेतना और सतत विकास का मूल मंत्र भी यही कहता है कि हमारी उपभोग की स्वतंत्रता तब तक ही न्याय संगत है जब तक वह दूसरों के अस्तित्व और प्रकृति के संतुलन को खतरे में न डाले। इस प्रकार हम पाते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित स्वतंत्रता का मूल्य अत्यंत व्यापक, गहन और शाश्वत है। यह काल और भूगोल की सीमाओं से परे जाकर संपूर्ण मानवता के कल्याण की बात करता है। विश्व को यह समझने की आवश्यकता है कि आज के आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों को यदि अधिक मानवीय, संवेदनशील, न्यायपूर्ण और टिकाऊ बनाना है तो उन्हें स्वतंत्रता की केवल बाहरी व कानूनी अवधारणाओं तक ही सीमित रहने के बजाय भारतीय चिंतन धारा के चेतना और कर्तव्य आधारित स्वतंत्रता मूल्य को आत्मसात करना होगा।
1: भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित स्वतंत्रता के मूल्य, इसी विषय पर आज के संपादकीय में अभी आपने सुना दिल्ली विश्वविद्यालय की प्राध्यापक डॉक्टर विभा नाइक को। भारतीय ज्ञान परंपरा की यही विशेषता है कि वो हमें केवल उत्तर नहीं देती, वो प्रश्न करने का साहस भी देती है, और शायद यही किसी भी जीवंत संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत है। साहस अज्ञानता के विरुद्ध प्रश्न करने का हो या किसी अन्याय के विरुद्ध। हमारे देश में ऐसी प्रबुद्ध और साहसी आवाजों की कमी कभी नहीं रही।

0: मातरम।
1: आज जब हम भारत की आजादी की कहानी याद करते हैं तो हमारे सामने कुछ बड़े नाम, कुछ बड़े आंदोलन और कुछ ऐतिहासिक घटनाएं उभरती हैं। लेकिन आजादी की ये कहानी सिर्फ उन्हीं नामों की नहीं थी, ये उन अनगिनत स्त्री पुरुषों की भी कहानी थी जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसी ही एक आवाज को समर्पित है हमारी अगली प्रस्तुति, हिमालय की बेटी, आजादी की आवाज।
2: चौदह जनवरी 1902 दक्षिण सिक्किम के संगमू गांव में एक बच्ची ने जन्म लिया। लेपचा समुदाय के एक परिवार में जन्मी हेलेन उनके माता पिता की 7 संतानों में तीसरी थी। बाद में उनका परिवार करसियांग आ गया, वो पहाड़ी इलाका जहां चाय के बागान और शिक्षा के नए अवसर उनके जीवन को एक नई दिशा देने वाले थे। लेकिन हेलेन की राह आसान नहीं थी। कम उम्र में ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, मगर पढ़ाई छूटने का अर्थ ये नहीं था कि सीखने और आगे बढ़ने का सिलसिला भी रुक गया। सन 1917 पहाड़ियों में चरखे और खादी का आंदोलन चल रहा था। कलकत्ता से आए एक वक्ता के भाषण ने युवा हेलेन के मन को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने तय कर लिया उनका जीवन अब देश की सेवा के लिए होगा। अगले ही वर्ष 1918 में वो कलकत्ता पहुंची, चरखा प्रशिक्षण केंद्र में सूत कातना सीखा। उनकी प्रतिभा और लगन ने उन्हें मुजफ्फरपुर बिहार में आयोजित खादी और चरखा प्रदर्शनी में कलकत्ता का प्रतिनिधित्व करने का अवसर भी दिया। फिर आया वर्ष 1920, बिहार भयंकर बाढ़ की चपेट में था, हजारों लोग प्रभावित हुए थे। ऐसे समय में हेलेन लेपचा राहत कार्यों में जुट गई निस्वार्थ भाव से लगातार, और इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई महात्मा गांधी से। हेलेन की सेवा और समर्पण से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें साबरमती आश्रम में आने का निमंत्रण दिया। साबरमती आश्रम में गांधी जी ने उनके व्यक्तित्व और देशभक्ति को करीब से देखा। यही गांधी जी ने उन्हें नया नाम दिया, सावित्री देवी। लेकिन

0: जिस आवाज में इतनी दृढ़ता हो, वो सत्ता को भला कैसे सुहाती। ब्रिटिश सरकार की निगाहें अब उन पर थीं। उनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। गिरफ्तारी से बचते हुए वो इलाहाबाद पहुंची और कुछ समय आनंद भवन में रही। वहां उनका संपर्क कांग्रेस के कई नेताओं से हुआ, लेकिन पहाड़ उन्हें पुकार रहे थे। वो वापस करसियांग लौटी और दार्जिलिंग की पहाड़ियों में स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करने में जुट गई। घर घर जाकर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का अभियान, ब्रिटिश प्रशासन की पाबंदियां और उनके सामने एक दृढ़ निश्चय, वो पीछे नहीं हटी। 29 जनवरी 1922, हेलेन लेपचा गिरफ्तार कर ली गई। दार्जिलिंग सदर जेल में 3 महीने, फिर करसियांग में नजरबंदी। समय आगे बढ़ा। सन 1939 और 40, नेताजी सुभाष चंद्र बोस करसियांग में नजरबंद थे। हेलेन लगातार उनके संपर्क में रही। कहा जाता है कि वो संदेश पत्रों के माध्यम से पहुंचाती थी।
1: मैं दिलीराम दुलाल, एक पत्रकार और इतिहास के विद्यार्थी।
2: कोलकाता में मोहम्मद अली पार्क में आयोजित सभा में हेलेन लेपचा महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गई थी। उन्होंने झारिया कोयला क्षेत्र के 10,000 से अधिक मजदूरों का नेतृत्व करते हुए आदिवासी श्रमिकों को शोषण के खिलाफ ऐतिहासिक प्रदर्शन भी किया था। उनको इसी आंदोलन में शामिल होने के कारण गिरफ्तार भी किया गया था। और बाद में जब उन्होंने दार्जिलिंग में अपने साथियों के साथ सदर जेल में 3 महीने तक, बाद में 3 वर्षों तक फार्सियंग में जब उनको नजरबंद रखा गया था, उस समय में भी उन्होंने स्वतंत्र संग्राम में योगदान दिया था। जैसे कि 1939-40 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस खारसंग में नजरबंद थे, तब उन्हें उनके साहसिक पलायन में महत्वपूर्ण सहायता की थी। बताया जाता है कि पठान की भेष तैयार करने में हेलेन लेपचा ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया था। उनके योगदान के कारण सिक्किम सरकार ने हाल ही में सरकारी मेडिकल कॉलेज को उनके नाम पर रखने के लिए हेलेन लेपचा मेडिकल कॉलेज निर्णय लिया है।
3: मैं सोमनाथ पांडे सिक्किम से, मैं एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हूँ। हेलेन लेपचा के खोज में हम लोग ने सक्रियता से काम किया। उनका सभी इष्टजन थे, उनका जो मित्रों था, उनका परिवारजन था, उनसे मिलके उनका जो पेपर्स वगैरह ताम्र पत्र सब हम लोग ने निकाल के अभी पूरा ऑडियो विजुअल्स पूरा इतिहास हम लोग ने समेट लिया है। सिक्किम में 1973 से पहले उस समय में भी सिक्किम के लोग भारत के आंदोलन में, स्वाधीनता आंदोलन में किस तरह से भाग लिया करते थे, इस प्रश्न में हम लोग खोज करते हैं। इसी दौरान में सावित्री देवी जो हेलेन लेपचा है उनका संदर्भ में हम लोग ने काम किया है। वो विशेष करके मजदूरों को इकट्ठा करना, मजदूरों को स्वावलंबी कैसे बनाना, इस क्षेत्र में उन्होंने काम किया। सबसे पहले तो बीमारियों को देखा, दवाई औषधियां किया, उसके बाद में उन्होंने स्वावलंबी बनाने का काम किया। तब ये तब वो बड़ा स्वाभिमानी, वो एक तो निडर माता के रूप में परिचित है। उनका 3 नाम है। एक तो सबसे पहले नाम उनका हेलेन लेपचा था, तो बाद में जाके ये नाम थोड़ा सा अंग्रेज का जैसा लगा। अंग्रेजी स्कूल से ये शिक्षित हुई थी, तो अंग्रेज का जैसा नाम होने के बाद में महात्मा गांधी ने उनको सावित्री देवी नाम दे दिया। तब उनका गांव में जो खरसांग और सिक्किम में उनका नाम साइली दीदी करके परिचित था। साइली मतलब होता है नेपाली भाषा में थर्ड, तीसरा होता है। तब साइली करके थर्ड करके साइली दीदी करके ऐसा नाम प्रसिद्ध हुई। तो उनको ताम्र पत्र भी मिला उस समय में स्वाधीनता संग्राम के, लेकिन वो थोड़ा सा समाज में वो ओझल हो गई, क्योंकि हमारा ऐसा है कि जो आगे निकल गए उनका इतिहासकारों ने समेट दिया, लेकिन जो ट्राइबल उन्होंने विशेष करके दुर्गम क्षेत्र में ही काम किया, तो उनका नाम थोड़ा इतिहास में थोड़ा सा पीछे रह गया था। तो अभी बहुत अच्छा से उनका नाम आगे आ रहा है। सिक्किम में तो उनका नाम से मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, तब तो और उनका कई रास्ता का नाम हेलेन लेपचा का नाम से अभी बन रहा है।
0: वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भाग लिया। स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने समाज सेवा का काम जारी रखा। 15 अगस्त 1972 को भारत सरकार ने उनके स्वतंत्र

0: स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को सम्मानित करते हुए उन्हें ताम्रपत्र प्रदान किया। 18 अगस्त 1980 को हेलेन लेप्चा ने अंतिम सांस ली, लेकिन उनका जीवन आज भी हमें प्रेरणा देता है।
1: हेलेन लेप्चा, हिमालय की बेटी, आजादी की आवाज। अभी आपने ये लघु रूपक सुना। आलेख अंकुश रोनियार का था, वाचन स्वर प्रांजल।

स्वतंत्रता संग्राम केवल रणभूमि में लड़ी गई लड़ाई नहीं थी, ये घरों में लड़ी गई, विद्यालयों में लड़ी गई, लेखन और पत्रकारिता में लड़ी गई, गीतों और कविताओं में लड़ी गई। और इस संघर्ष में भारतीय महिलाओं ने अपनी विशिष्ट भूमिका निभाई। किसी ने आंदोलन का नेतृत्व किया, किसी ने जेल की यातनाएं सही, किसी ने भूमिगत रहकर क्रांतिकारियों की सहायता की, तो किसी ने अपने लेखन और विचारों से राष्ट्र की चेतना को जगाया। ऐसी ही कुछ साहसी महिलाओं की स्मृति को समर्पित है हमारी अगली प्रस्तुति, राष्ट्र जागरण की दीपशिखाएं, स्वतंत्रता संग्राम की अग्रणी महिला सेनानियां। आलेख और स्वर है प्रसारण कर्मी और प्राध्यापक बिंदु पांडे का।

0: जब हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो सबसे पहले स्मरण होती है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जिस अदम्य साहस का परिचय दिया वह भारतीय इतिहास की अमर गाथा बन चुका है। अंग्रेजी सत्ता के सामने उनका यह संकल्प, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, आज भी राष्ट्रीय स्वाभिमान का उद्घोष प्रतीत होता है। इसी संघर्ष की एक और तेजस्वी कड़ी बेगम हजरत महल। अवध की इस वीरांगना ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया और लखनऊ में विदेशी सत्ता को खुली चुनौती दी। स्वतंत्रता आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने वाली एक सशक्त आवाज थी सरोजनी नायडू। अपनी वोजस्वी वाणी और राष्ट्रवादी विचारों के माध्यम से उन्होंने हजारों महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। वे मानती थी स्वतंत्र भारत का निर्माण तभी संभव है जब महिलाओं को समान अवसर और सम्मान प्राप्त हो।
1: I believe that I must disprove the age-old proverb that the woman has the last word and the longest word. I have the last word, no doubt, not because I am a woman, but because I'm acting today as a hostess of the Indian National Congress.
0: महात्मा गांधी के संघर्ष में एक मौन किंतु अत्यंत सशक्त शक्ति थी, कस्तूरबा गांधी। उन्होंने सत्य, अहिंसा और सेवा के आदर्शों को जीवन में उतारते हुए अनेक आंदोलनों में भाग लिया और जेल यात्राएं भी की। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि हर बड़े परिवर्तन के पीछे त्याग, धैर्य, समर्पण की एक शांत धारा भी बहती है। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जब अधिकांश राष्ट्रीय नेता गिरफ्तार कर लिए गए, तब अरुणा आसफ अली ने ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर अंग्रेजी शासन को सीधी चुनौती दी। उनका साहस उस दौर के युवाओं के लिए प्रेरणा बना। स्वतंत्रता संग्राम की चेतना को जन जन तक पहुंचाने में साहित्य की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और इस क्षेत्र में सुभद्रा कुमारी चौहान का योगदान अविस्मरणीय है। वो केवल एक कवित्री ही नहीं बल्कि सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी भी थी। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने जेल यात्रा की और राष्ट्रीय आंदोलनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उनकी अमर कविता खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी ने भारतीय जनमानस में देशभक्ति और स्वाभिमान की ऐसी लौ प्रज्वलित की जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की।

0: आंदोलन के दौरान एक युवा महिला ने अपनी आवाज को स्वतंत्रता का हथियार बना लिया। यह थी उषा मेहता। उन्होंने गुप्त कांग्रेस रेडियो की स्थापना कर पूरे देश में स्वतंत्रता का संदेश पहुंचाया। जब अंग्रेजी सरकार समाचारों और सूचनाओं पर नियंत्रण स्थापित कर चुकी थी, तब उनके साहसिक प्रयासों ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की।
1: This is the Congress radio calling on 42.34 meters. Today, we shall read to you a stupid reasoning of the CNC.
0: सुचेता किपलानी ने भी स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने संगठनात्मक क्षमता और नेतृत्व कौशल का परिचय देते हुए भूमिगत आंदोलनों को सशक्त बनाया। बाद में वे स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी और यह सिद्ध किया कि संघर्ष से निकला नेतृत्व राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करता है। बंगाल की वीरांगना मातंगिनी हाजरा का बलिदान भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। 73 वर्ष की आयु में भी वे आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। अंग्रेजों की गोलियां लगने के बाद भी उनके हाथों में तिरंगा नहीं छूटा और उनके मुख से वंदे मातरम का उद्घोष निरंतर निकलता रहा। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, तब कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व संभाला। उन्होंने महिलाओं को सैन्य प्रशिक्षण देकर यह स्थापित किया कि राष्ट्र रक्षा और बलिदान के क्षेत्र में स्त्रियां किसी से कम नहीं हैं।
2: नेताजी हमसे 5 घंटे बात किया, हमारे देश का और दुनिया का आधा हिस्सा को कैसे नजरअंदाज करें, यानी महिलाओं को। अगर महिलाओं को भी देश का प्रेम है, उन लोगों को आजादी का जरूरत है, इसलिए अब महिलाओं को भी हम लेने के लिए तैयार है, उनका भी एक फौज बनाएंगे।

अभी आपने सुनी लघु प्रस्तुति राष्ट्र जागरण की दीप शिखाएं। आलेख और स्वर था प्रसारण कर्मी और प्राध्यापक बिंदु पांडे का। इन दीप शिखाओं ने अपने समय को तो रोशन किया ही, आज भी उनका जीवन हमें ये याद दिलाता है कि परिवर्तन की शुरुआत अक्सर एक अकेले साहस भरे कदम से होती है। संस्कृति का संसार बहुत विस्तृत है, कभी वो करघे पर आकार लेता है, कभी किसी पुस्तक के पन्नों में, और कभी उन समुदायों की स्मृतियों में जीवित रहता है जिन्होंने प्रकृति और परंपरा के साथ सह अस्तित्व की अनूठी संस्कृति रची है। हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ये दिवस भारतीय हथकरघा परंपरा और देश के बुनकरों के योगदान को सम्मान देने के साथ साथ स्वदेशी आंदोलन की उस ऐतिहासिक भावना की स्मृति से भी जुड़ा है जब 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक आरंभ हुआ था।

किताबें हमारी स्मृति हैं और पुस्तकालय उस स्मृति का सार्वजनिक घर। हर वर्ष 12 अगस्त को राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर एस आर रंगनाथन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। पुस्तकालय केवल पुस्तकों का संग्रह नहीं बल्कि ज्ञान के संरक्षण और उसके प्रसार के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। और डिजिटल युग में भी वो पढ़ने, शोध और विश्वसनीय ज्ञान तक पहुंचने की संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं। भारत की आदिवासी परंपराएं अपनी भाषाओं, लोक कथाओं, संगीत, नृत्य, कला और

0: प्रकृति केंद्रित जीवन दृष्टि से बेहद समृद्ध हैं। हर वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व के आदिवासी समुदायों के अधिकारों, उनकी सांस्कृतिक पहचान और उनके योगदान के लिए जागरूकता बढ़ाना है। करघे के धागों में बुनी हमारी हस्तशिल्प परंपरा, पुस्तकालयों में संरक्षित ज्ञान की दुनिया और आदिवासी समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ये तीनों मिलकर भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक बेहद सुंदर और समृद्ध चित्र रचते हैं। और अब समय है उन विभूतियों के स्मरण का जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में भारत के सार्वजनिक और सांस्कृतिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, उस्ताद अमीर खां, उस्ताद बिस्मिल्ला खां, राम किंकर बैज, वीएस गायतोंडे, जहांगीर सभावाला, फिरोज शाह मेहता, प्रफुल्ल चंद्र रे, पंडित रविशंकर शुक्ल और अभी हाल ही में दिवंगत हुए पंडित जगन्नाथ बेहरा। इन विभूतियों का स्मरण उन विचारों, कर्मों और सृजनात्मक ऊर्जा को याद करना है जिनसे हमारा सांस्कृतिक वर्तमान निर्मित हुआ। इन महान विभूतियों के अवदान को नमन करते हुए संपन्न होता है संस्कृति भारती का ये अंक। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे हमारे दिल्ली केंद्र से अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं हमारे सांध्यकालीन सभा के प्रसारण, रात्रि के 10 बजने को हैं। हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। इसमें आज के कलाकार होंगे गिरिमल्लप्पा भजंत्री।
2: अखिल भारतीय कार्यक्रम
1: आप इनसे सुनेंगे शहनाई वादन।
2: सुनवाने जा रहे हैं श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री का शहनाई वादन। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री शहनाई की प्रारंभिक शिक्षा श्री रंगाचारी काकंडी की से प्राप्त की। उसके बाद श्री चनवीर बन्नूर के मार्गदर्शन में लगातार 9 वर्ष तक शहनाई वादन की उच्च शिक्षा प्राप्त की। श्री चनवीर बन्नूर डॉक्टर पंडित पुटराज गवाई के प्रमुख शिष्य थे। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री कई पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके हैं, जैसे कि कलाश्री पुरस्कार, कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार इत्यादि। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री देश विदेश के कई प्रमुख संगीत सम्मेलन में अपना शहनाई वादन प्रस्तुत कर चुके हैं। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर श्री मले मलेश हुगार देसाई कल्लूर साथ दे रहे हैं।
3: दिस इज आकाशवाणी। In tonight's national program of music, we bring you a Shahnai recital by Shri Girimallappa Bhajantri. Shri Girimallappa Bhajantri started his initial training in Shahnai from Shri Rangachari Kakandaki. Later, for 9 years, he was under the able guidance of Shri Channaveera Bannur, a prominent disciple of Pandit Puttaraja Gavayi of Gadag. Shri Girimallappa Bhajantri is a recipient of many awards like Kalashri Award, Karnataka Rajyotsava Award, etc. He has performed in many important music festivals of India and abroad. In tonight's program, he is accompanied on the tabla by Shri Male Mallesh Hugar Desai Kallur.
4: Shri Girimallappa Bhajantri apne karyakram ka prarambh rag Rageshri se kar rahe hain. Isme do bandishen japtal aur drut tintal mein nibaddh hai. Suniye rag Rageshri.
3: Shri Girimallappa Bhajantri begins his Shahnai recital with Rag Rageshri, in which he is presenting two compositions set to Japtal and Drut Teen Tal.

0: अब तक आप सुन रहे थे राग रागेश्री, आइए अब सुनते हैं राग जोग।
1: दैट वॉज राग रागेश्री। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री विल नाउ प्रेजेंट राग जोग।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग जोग। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब संपन्न होता है, जिसमें आप सुन रहे थे श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री का शहनाई वादन। आपके साथ तबले पर श्री मले मलेश हुगार देसाई कल्लूर साथ दे रहे थे।
1: That was Raag Jog. With that, we come to the end of tonight's national program of music, in which you were listening to Shahnai recital by Shri Girimallappa Bhajantri, and he was accompanied on the tabla by Shri Male Malesh Hugar Desai Kallur.
0: यह कार्यक्रम आकाशवाणी के धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली के

0: केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड अर्लियर इन द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी धारवाड़ एंड रिलेड फ्रॉम आकाशवाणी दिल्ली।
2: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढुलामारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं हमें सांधिकालीन सभा के प्रसारण। रात्रि के 11 बजने को हैं। आपसे कुछ देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार, पहले हिंदी में और उसके पश्चात अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता की पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नव क्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेन देन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फॉरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
2: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
0: सहकारिता मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ट इंडिया, कार्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए UPI निःशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेन देन निःशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि UPI के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी

भी प्रकार का लेन देन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेन देन भी निःशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो ये केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेन देन पर नाम मात्र दर से लागू होगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीते। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। आज राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में तेज बारिश हुई। राजधानी में कल सुबह भी बारिश की संभावना है। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।